0: क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीक खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नौइयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकरर कर दिया है जिसका अल्लाह ने इज़ नहीं दिया। अगर फैसले की बात तय न हो गई होती तो इनका कजिया चुका दिया गया होता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक आजाब है। तुम देखोगे कि ये जालिम उस वक्त अपने किए के अंजाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आ कर रहेगा। बखिलाफ इसके जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे। जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के हां पाएंगे। यही बड़ा फजल है, यही है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, अलबत्ता कराबत की मोहब्बत जरूर चाहता हूं। जो कोई भलाई कमाएगा हम उसके लिए इस भलाई में खूबी का इजाफा कर देंगे। बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और कदरदान है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने अल्लाह पर झूठा बोहतान घड़ लिया है? अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर कर दे। वो बातिल को मिटा देता है और हक को अपने फरमानों से हक कर दिखाता है। वो सीनों के छुपे हुए राज जानता है। वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर फरमाता है, हालांकि तुम लोगों के सब अफाल का उसे इल्म है। वो ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों की दुआ कबूल करता है और अपने फजल से उनको और ज्यादा देता है। रहे इनकार करने वाले तो उनके लिए सख्त सजा है।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है।

प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।

0: और सड़क हादसात को कम करता है। जब हर शख्स अपनी डेजिग्नेटेड लेन में चलने का एहतमाम करता है तो ना सिर्फ सफर ज्यादा आसान हो जाता है बल्कि सबको अपने रास्ते में चलने की सहूलत मिलती है। इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि हादसे और रुकावटों का खतरा भी कम हो जाता है। जब हर शख्स लेन का ख्याल रखता है तो ना सिर्फ सफर में बेहतरी आती है बल्कि सबके लिए सेफ एनवायरनमेंट भी बन जाता है। चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर लेन में चलना रोड रेज को भी कम करता है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी और अहम वक्त में पहुंचने में मदद मिलती है। अगर हम सब अपनी अपनी लेन में चलें तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को महफूज रख सकते हैं। रोड सेफ्टी को अपनाकर हम अपने सफर को बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है जो सबके अमन और सेफ्टी के लिए जरूरी है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
3: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे दिल की सेहत के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दिल की बीमारी दुनिया में सबसे बड़ी वजह हो रही है मौत की, मगर सही खुराक और छोटी छोटी आदत से हम इस खतरे को बहुत कम कर सकते हैं। तभी आपने सोचा कि आज हमने क्या खाया, या ये कि हमारे खाने में सब्जियां और फल शामिल थे या ज्यादा तली हुई और प्रोसेस्ड चीजें शामिल थी। ये सवाल जब हमसे किया जाता है तो फिर हमने अपनी खुराक पर गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज हमने क्या खाया है, क्या हमने किस तरह से खाया है। और जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे दिल के लिए मुफीद हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट से वो भरपूर होते हैं, तो उन्हें लेना हमारे दिल के लिए बहुत बेहतरीन है। इसी तरह से नट्स हैं जैसे कि गिरीदार मेवे और जो सीड्स हैं वो भी हमारे लिए बेहतरीन हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यानी अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो फिर हमारा जो दिल है वो ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो दिल के लिए बेहद मुफीद हैं, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फिश है उसमें पाए जाते हैं वो बेहतरीन प्रोटीन भी हैं। मगर ये भी कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसानदेह हैं और हमें उन्हें कुछ दूर रखना है अपनी खुराक से, जिससे बहुत ज़्यादा नमक जो है वो तली हुई चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं या फास्ट फूड हैं, और इस तरह से जो बहुत ज़्यादा नमक वाली अशिया हों और जो बहुत ज़्यादा फ्राइड हों उनसे आपको दूर रहना है। एक शख्स रोज़ाना बर्गर और फ्राई चिप्स जो हैं वो खाता था। एक दिन वो डॉक्टर के पास गया तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर था, कोलेस्ट्रॉल की भी वार्निंग उन्हें उसे मिली। तो फिर उस शख्स ने सब्जियां, फिश और नट्स अपनी खुराक में शामिल किए गए। 3 महीने के बाद जब ब्लड दोबारा उसका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक किया गया तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी थी। دل کی جو دوست غذائیں ہیں یعنی دل کو جو پسند ہیں بہت, اس میں دالیں ہیں, دلیا ہے, براؤن رائس ہے, ہری سبزیاں ہیں, پھل اور اولیو آئل اس میں شامل ہے. چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ کس طرح سے ہم اپنائیں کہ اپنے دل کو صحت مند رکھ سکیں. ہر کھانے میں ایک جو ویجیٹیبل ہے وہ ضرور شامل کر لیجئے. ہفتے میں 2-3 بار آپ فش اپنے کھانے میں شامل کیجئے. نمک اور چینی کم کیجئے. بہت زیادہ جو فرائڈ چیزیں ہیں اور پروسیس چیزیں ہیں وہ کم کھائیے. روزانہ 30 منٹ واک یا پھر جو لائٹ ایکسرسائز ہے وہ کیجیے, کیونکہ صحت مند دل لمبی زندگی اور توانائی کی ضمانت ہے. آج سے ہم اپنی خوراک کا خیال رکھیں گے. ہیلتھ فار آل,
3: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی, ہیلتھ فار آل, ایف ایم 107, دل سے دیسی.
5: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں؟ اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں, مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا. آر جے ایف اور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر, میری پہچان. برن آؤٹ سے لے کر نئے بزنسز تک, صحت سے لے کر سکون تک, یہ شو ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنی باؤنڈریز طے کرنا چاہتی ہیں. آپ سلسلے کی ایک کڑی نہیں, آپ خود ایک پور

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी,
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 Qatar। दिल से देसी।
3: वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आर वैल्यूज। दोस्तों, आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूं एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे। शायद ये लाइन आपने पहले सुन रखी हो कि डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन मोटिवेशन। कैसे? चलिए इसी कैसे को जो है वो आज एक्सप्लोर करते हैं। आजकल हम अक्सर ये सुनते हैं कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशनल वीडियोस, स्पीचेस, कोटेशंस, हम थोड़ी देर के लिए तो ये सब सुन के एनर्जेटिक बन जाते हैं, मगर असल जिंदगी में मोटिवेशन ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, डिसिप्लिन वो आदत है जो इंसान को बिना किसी जज्बाती फीलिंग के भी किसी भी तरह का काम करने पर मजबूर करती है। मोटिवेशन अक्सर इमोशंस पर डिपेंड करती है। जब हम खुश या इंस्पायर्ड फील करते हैं तो काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन जब हम थके हो, मूड ख़राब हो या मसाइल का सामना हो, तब मोटिवेशन गायब हो जाता है। ऐसे वक्त में अगर सिर्फ मोटिवेशन पर ही डिपेंड किया जाए तो शायद हम अपना काम छोड़ देते हैं या शायद उसे अच्छे से कर नहीं पाए। डिसिप्लिन यहाँ काम आता है। डिसिप्लिन सिखाता है कि चाहे दिल करे या ना करे, काम तब भी करना है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जिंदगी बोरिंग लगे या ना लगे, काम तब भी करना है। जी हाँ, जब आप रोज एक वक्त पर उठते हैं, अपना काम टाइम पे करते हैं, अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं, तो धीरे धीरे वो काम आदत बन जाती है। जब काम आदत बन जाए तो मोटिवेशन की ज़रूरत कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट को देखिए, एग्ज़ाम के करीब अगर मोटिवेशन आता है तो वो पूरे दिन पढ़ने का प्लान बना लेता है, लेकिन रोज़ रोज़ पढ़ना मुश्किल लगता है। अगर वही स्टूडेंट डिसिप्लिन फॉलो करे और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत बना ले तो एग्ज़ाम के वक्त टेंशन कम होगी और परफॉर्मेंस 100% बेहतर होगी। यही फर्क है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में। इसी तरह फिटनेस के मामले में भी हम देख सकते हैं, जिम ज्वाइन करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए, नए कपड़े चाहिए, कुछ और सामान चाहिए, लेकिन कुछ हफ्ते बाद जब रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलते तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ रोज वर्कआउट करते रहते हैं वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन एक साइलेंट पावर है। ये शोर नहीं मचाता लेकिन काम पूरा करता है। मोटिवेशन आता है और जाता है, लेकिन डिसिप्लिन अगर एक बार डेवलप हो जाए तो जिंदगी भर साथ निभाता है। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो हर रोज वो काम डिसिप्लिन्ड वे में कर रहे होते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। आखिर में कहना गलत नहीं होगा कि मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको आगे लेकर जाता है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि असल कामयाबी डिसिप्लिन से ही मिलती है। जब आ जाए डिसिप्लिन तो मोटिवेट होने में कोई हर्ज नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब मैं नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों आपसे इजाजत लेंगे इस वादे के साथ कि देखते और सुनते रहना है आपको FM 107। कहते हुए दिल से डीसी।
4: Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। Top 10 Countdown। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान। शो है ये पर्ल्स ऑफ कुरान और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज पल्स ऑफ कुरान में मैं आपके लिए जो सूरत लेकर आई हूँ वो है सूरह शरा और इसकी हम आयत शामिल कर रहे हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह शरा मक्का मुकर्रमा में उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त आजमाइशों और जहनी और जिस्मानी परेशानियों से गुजर रहे थे। कुरैश की तरफ से मुखालफत, तजहीक और दावत हक में मुसलसल रुकावटों ने माहौल को बहुत भारी बना दिया था। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। इससे पहले की आयात में भी अल्लाह ने फरमाया था, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया और आपसे वो बोझ नहीं उतार दिया? फिर इसी तसल्ली को आगे बढ़ाते हुए ये अजीम उसूल बयान किया गया कि मुश्किल के साथ आसानी जरूर आती है। और इस बात को मजीद मजबूत करने के लिए कि जुमला दो बार दोहराया गया ताकि दिल में यकीन मुकम्मल हो जाए। मुश्किल कभी मुस्तकिल नहीं होती और अल्लाह के साथ हर तंगी के बाद वुसअत जरूर आती है। यह आयत सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए है। एक आलमगीर उसूल है कि जिंदगी में हर मुश्किल अपने अंदर आसानी का दरवाजा भी रखती है, चाहे वो फौरन नजर आए या कुछ वक्त के बाद। सूरह शरा की आयत नंबर 5 और 6 कुरान मजीद की उन अजीम आयात में से हैं जो इंसान के दिल में उम्मीद, हौसला और यकीन पैदा करती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये दो मुख्तसर मगर इंतहाई ताकतवर जुमले।

लेकिन जब उसे यकीन होता है कि हर मुश्किल के अंदर एक रास्ता मौजूद है, तो वो हालात का मुकाबला बहुत बेहतर तरीके से करता है। इन आयात का सबसे बड़ा मकसद यही है कि इंसान मायूसी को अपने करीब ना आने दे, क्योंकि मायूसी इंसान को ना सिर्फ ज़हनी तौर पर कमजोर करती है बल्कि उसके अमल और फैसलों को भी मुतासिर करती है। अल्लाह ताला इन आयात के जरिए इंसान को एक मजबूत ज़हनी हालत अता करते हैं। अगर इन आयात को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अप्लाई करें तो हमें हर मुश्किल में एक मुख्तलिफ चीज नजर आएगी। हम सिर्फ रुकावट नहीं देखेंगे बल्कि उसके अंदर छुपी हुई हिकमत और हल को भी तलाश करेंगे। यही कुरान का असल मकसद है, इंसान की सोच को महदूद से वसी बनाना। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि एक अमली रहनुमाई है। ये हमें सिखाती है कि हम मुश्किलात से घबराने के बजाय इनमें छुपी आसानी को तलाश करें, सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है और उसके वादे में कभी कोई कमी नहीं होती। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, ये तकरार कुरान मजीद के स्लूप का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। आम गुफ्तगू में जब कोई बात दोहराई जाती है तो वो या तो जोर देने के लिए होती है या फिर किसी शक को खत्म करने के लिए, लेकिन कुरान का अंदाज इसे कहीं ज्यादा गहरा और हिकमत से भरपूर होता है। यहां तकरार सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि दिलों की तामीर की है। इंसान फितरी तौर पर शक करने वाला होता है, खास तौर पर जब वो मुश्किल हालात से गुजर रहा होता है तो उसका जहन फौरन ये सवाल करता है, क्या वाकई ये मुश्किल कभी खत्म होगी? क्या वाकई इसके बाद आसानी आएगी? यही है वो लम्हा जहां ईमान और शक के दरमियान कश्मकश शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला इस कश्मकश को खत्म करने के लिए एक ही जुमला दो बार दोहराते हैं। ये तकरार इंसान के दिल में यकीन को इस हद तक मजबूत करती है कि शक के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। गोया अल्लाह ताला बार बार दिल को ये यकीन दिला रहे हैं कि ये कोई इम्कान नहीं, ये एक यकीनी हकीकत है। कुरान में तकरार हमेशा एक मकसद के तहत आती है। यहां मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि इंसान की अंदरूनी कैफियत को बदलना है। जब कोई बात बार बार सुनी जाए तो वो सिर्फ जहन में नहीं रहती बल्कि दिल में उतर जाती है। यही वजह है कि यह आयात एक बार सुनने के बाद भी इंसान के अंदर उम्मीद पैदा करती है और जब बार बार पढ़ी जाए तो ये उम्मीद यकीन में बदल जाती है। इस्तकरार का एक और अहम पहलू ये भी है कि इंसान की मायूसी को तोड़ती है। जब इंसान मुसलसल मुश्किलात में होता है तो समझने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी हमेशा इसी हालत में रहेगी, लेकिन अल्लाह ताला उस सोच को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं और कहते हैं कि मुश्किल कभी मुस्तकिल नहीं होती। यहां एक गहरा नुक्ता समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने उसर को एक बार भी अलग से जिक्र नहीं किया बल्कि हमेशा उससे यसर यानी आसानी के साथ जोड़ा। इसका मतलब यह है कि मुश्किल को कभी तन्हा हैसियत दी ही नहीं गई बल्कि आसानी को हमेशा उसके साथ रखा गया है। एक नफसियाती और रूहानी हकीकत है कि इंसान को यह एहसास दिलाया जाए कि उसकी मुश्किल अकेली नहीं है। अब अगर हम इंसानी जिंदगी के तजुर्बात देखें तो हमें ये बात वाज़े तौर पे नजर आती है कि हर मुश्किल के अंदर वाकई कोई ना कोई आसानी छुपी होती है। मिसाल के तौर पर एक तालिबे

जिसके अंदर से आसानी जन्म लेती है। इंसान अगर सब्र करे, समझने की कोशिश करे और अल्लाह पे भरोसा रखे तो वो देखेगा कि उसकी मुश्किल ही

तो वो जल्दी मायूस हो जाता है, गलत फैसले करता है और हालात को मजीद खराब कर देता है। लेकिन अगर वो सब्र करे तो वक्त के साथ हालात बेहतर हो जाते हैं, उसकी सोच साफ हो जाती है और वो बेहतर मौके देख पाता है। मुश्किल और सब्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां मुश्किल होती है वहां सब्र की जरूरत भी बढ़ जाती है। दरअसल मुश्किल सब्र को पैदा करती है और सब्र इंसान को मुश्किल से बाहर निकालता है। ये एक मुकम्मल साइकिल है, मुश्किल, सब्र, समझ, हल, आसानी। सब्र इंसान को कई अहम सबक देता है। सब्र इंसान को सिखाता है कि हर चीज का वक्त होता है। सब्र इंसान को सिखाता है कि वो गुस्से और खौफ में फैसले ना करे। सब्र इंसान के ईमान को मजबूत करता है। सब्र इंसान को मुसलसल कोशिश करने की ताकत देता है। आज के दौर में ज़हनी दबाव एक आम मसला है। ऐसे हालात में सब्र इंसान के लिए एक इलाज की तरह है। सब्र इंसान को ये सिखाता है कि हर मसला हमेशा नहीं रहता। जब इंसान ये यकीन कर लेता है कि मुश्किल आर्जी है तो उसका जहन खुद ब खुद पुरसकून हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सब्र की आला मिसाल है। मक्का की तकालीफ, ताइफ का वाकया और दीगर मुश्किलात के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। ये सब्र ही था जिसने बाद में मदीना की कामयाबियों का रास्ता बनाया। सब्र और उम्मीद एक दूसरे से अलग नहीं है। सब्र इंसान को इंतजार सिखाता है और उम्मीद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर उम्मीद ना हो तो सब्र बोझ बन जाता है और अगर सब्र ना हो तो उम्मीद कमजोर पड़ जाती है। सब्र इंसान के अंदर मजबूत सोच पैदा करता है। वो हर मुश्किल को एक मौके के तौर पर देखता है, ना कि एक रुकावट के तौर पर। यही मजबूत सोच इंसान की जिंदगी बदल देती है। सब्र सिर्फ इखलाक की खूबी नहीं बल्कि जहनी ताकत की बुनियाद है। अगर इंसान सब्र इख्तियार करे तो वो ना सिर्फ मुश्किल बर्दाश्त करता है बल्कि उसके अंदर छुपी आसानी तक भी पहुंच जाता है। हर मुश्किल के साथ आसानी का वादा उसी वक्त समझ में आता है जब इंसान सब्र के साथ आगे बढ़ता है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये अल्फाज सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जहनी और रूहानी इलाज है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आते हैं। मायूसी वो कैफियत होती है जब इंसान ये समझने लगता है कि अब हालात कभी बेहतर नहीं होंगे, कोई हल मौजूद नहीं, कोशिश करने का फायदा नहीं। यह हालत इंसान के दिल को अंदर से तोड़ देती है। मायूसी सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक खतरनाक जहनी हालत है जो इंसान की सोच, अमल और ईमान तीनों को मुतासिर करती है। कुरान मजीद मायूसी को सख्ती से रद्द करता है और ये आयात खास तौर पे इस बात का ऐलान है कि कोई मुश्किल हमेशा के लिए नहीं, कोई तकलीफ मुस्तकिल नहीं और कोई रात हमेशा रात नहीं रहती। ये आयात इंसान को यकीन दिलाती हैं कि अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। उम्मीद वो ताकत है जो इंसान को जिंदा रखती है। जब इंसान के पास उम्मीद हो तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब उम्मीद खत्म हो जाए तो छोटी सी मुश्किल भी बहुत बड़ी लगने लगती है। कुरान उम्मीद को दोबारा जिंदा करता है और कहता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी मौजूद है। ये उम्मीद इंसान को दोबारा खड़ा करती है। मायूसी खत्म करने के तीन बहुत बुनियादी तरीके हैं। सबसे पहले अल्लाह पे यकीन। जब इंसान ये यकीन कर लेता है कि अल्लाह के फैसले में हिकमत है तो उसका दिल मजबूत हो जाता है। इंसान समझता है कि वक्त के साथ हालात बदल जाएंगे, वक्त पे भरोसा करने लगता है। फिर मुस्बत सोच हो जाती है, वो हर मुश्किल में बेहतरी तलाश करता है। मुश्किल इंसान को नीचे लाती है लेकिन उम्मीद उसे दोबारा ऊपर ले जाती है। अगर उम्मीद ना हो तो मुश्किल इंसान को तोड़ देती है, लेकिन अगर उम्मीद हो तो मुश्किल इंसान को मजबूत बना देती है। यही वजह है कि कुरान

0: FM 107. Time check.
1: अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. आ गई वो घड़ी जब आपको ऑफिस निकलना है, क्योंकि अब छुट्टी हो चुकी है. ओवर, जितने भी लॉन्ग वीकेंड वाले लोग हैं, इट्स ओवर नाउ. अब ये दो बारिश का दिन लग रहा था, अभी कल का सैटरडे लोगों कैसे कटा होगा मैं सोच नहीं सकता. बट सिंस वी वर वर्किंग हबी तो नहीं पता लगा, ये तो कुछ फ़ायदा होता है. बट अस्सलाम वालेकुम, जो जो अभी ट्यून इन करेंगे, आज मॉर्निंग शो का बड़ा ही खास दिन है, क्योंकि आज मॉर्निंग शो है, उसके बाद मैं कल से इवनिंग में आ जाऊंगा. सो टेक्निकली टुडे इज़ द लास्ट मॉर्निंग डे फॉर मी, तो कल से अलार्म नहीं लगेगा. कल से भाई आपका अपनी मर्जी से उठेगा, लेकिन आप प्लीज़ अपनी मर्जी से मैसेज जरूर कर दीजिएगा. सुबह की शुरुआत बड़ी ज़रूरी है, अच्छी वाली. सो 666-22107 नंबर है, 666-22107. बहुत कुछ है, बहुत ख़ास है, क्योंकि बहुत ख़ास सुबह भी है. लेकिन सुबह की शुरुआत सुबह के अधिकार से. इंशाल्लाह 10 मिनट 33 सेकंड के बाद मिलते हैं. जाना आपने नहीं, आपको पता ही है बेस्ट जगह पर है. स्टे ट्यून्ड.
2: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशाद खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

फोन पर डिपेंड करता है, मगर आज ये फिनोमेना विटनेस करने वाले हैं लोग. दुल्हिज्जा लूनर मून जो है वो फुल अपने में पहुंच चुका होगा. दैट इज ये न्यूज में आप देख लीजिएगा, फोटो वहीं से चुरा के डाल देना, कहते ना मैंने खींची, करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने लॉन्च किया एक नेशनल अवेयरनेस कैंपेन जो हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस को, ताकि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन जो हैं उनमें और बेहतरी आए और सेफ्टी को और इन्हांस किया जा सके दोनों के लिए, मतलब पेशेंट्स के लिए भी और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी. ये कैंपेन जो है एक बहुत बड़ी रेंज को फॉलो करती है ऑफ अवेयरनेस एक्टिविटीज, जिसमें बहुत इन पर्सन एंड वर्चुअली सारे हेल्थ फैसिलिटीज में ये कैंपेन चलेगी और चल रही है और अलग अलग लैंग्वेजेस में है. तो ये एक्टिविटी में कुछ चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं उसमें फील्ड विजिट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है एजुकेशनल मटेरियल्स का, जिसके बाद जिसमें हैंड हाइजीन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में बात हो रही है, और इसके साथ साथ अवेयरनेस मैसेजेस हैं जो डिजिटल स्क्रीन्स पर डिस्प्ले होते रहेंगे और इन पेशेंट और विजिटर्स को मिलते रहेंगे. सो ये कुल मिला की बात है. बाकी बाकी क्या आज की कहानी भाई साहब, आज की कहानी ऐसी वैसी कहानी है. अरे रे एक मैसेज भाई दोबारा फिर से, फैसल भाई दोबारा फिर से, ईद मुबारक अर्शी की तरफ से, थैंक यू सो मच. अरे भाई कह रहे हैं कि आपका लास्ट मॉर्निंग शो है. जी मेरा आज लास्ट मॉर्निंग शो है, देन कल से आप मुझे इवनिंग में सुनेंगे. सो या थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, एडजस्ट. आज से थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होने वाली हैं, सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि कल से कुछ शोज़ कुछ नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे शोज़ थोड़े से स्कैटर्ड हो जाएंगे, तो आपको एक शेड्यूल फॉलो करना है. बाकी अगर आपने शाम का प्रोमो नहीं सुना है, भाई साहब शाम का प्रोमो है, आपके भाई ने ऐसा कर्रा बनाया इसके अंदर. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू अलीना एंड हाउ वाज ईद. सबसे पहले तो ये बताओ, और अलीना की अम्मा हमारी बहन जो हैं सिद्धरा जी की, बताइए बहन क्या हाल है, कैसी रही ईद, कोई अपडेट नहीं दे रहा है, बताइए. विश करने से नहीं चलेगा ना, आपको बताना भी चाहिए कैसी रही ईद, क्या किया. मैं तो बता दूंगा आपको सब कुछ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा. अच्छा मैं एक सवाल पर आता हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, तो मैं चाहता हूँ एक बार फिर से ज़रा पूछ लिया जाए, बिकॉज रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हो चुका है, वो भी ईद के मौके पर. मतलब वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसा होता है ना कि आदमी को नींद आती है, फिर लगता है क्या होगा, फिर वो जाएगा कुर्बानी में, तो आपको जगना भी पड़ता है, बहुत सारे काम भी होते हैं, तो वो सब करने के बाद थोड़ी देर बाद ऐसे भाई साहब ऐसी नींद आई है, मैं बता नहीं सकता आपको, आधी चीज़ें मुझसे मिस हो गई. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी आप ओवर स्लैप्ड हुए हैं जी, ओवर स्लैप्ड मतलब आप ज़्यादा सो गए हो, हुआ ऐसा आपसे कुछ चीज़ मिस हो गई हो सोने की वजह से, हुआ ऐसा. 666-22107 नंबर बताइए. फैसल भाई कह रहे हैं भाई प्रोमो चलवाओ ना प्लीज़, मैं चलाता हूँ कुछ देर में, डोंट वरी, मैं पूछता हूँ फिर मैं चलाता हूँ, डोंट वरी, प्रोमो तो मैं सुनाऊँगा आपको पक्का 10,000%. हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप कभी ऐसा हुआ कि सो गए, सोते रह गए, खरांड चलने लंबी तब और कुछ ना कुछ भूल गए, पीछे रह गया सोने की वजह से, ऐसा अगर आपके साथ हुआ तो बताइए, बिकॉज मेरे साथ ये हर हफ्ते दो हफ्ते की बात है. पहले मुझे डर लगता था, अब आई डोंट माइंड, क्योंकि सामने वालों को भी पता है सो रहा होगा. तो आपके साथ क्या सीन है जरूर बताइएगा. हफ्स मैंने लिखती है वालेकुम सलाम, ईद वॉज अ बिट बिजी, अराउंड बिजी, चार दिन दावतें थी, कल ऑफिस भी था, ऑफिस के बाद दावत खाई रात 1 बजे से, आज स्कूल के स्कूल भी बच्चों का सर घूम रहा है, लेकिन मज़ा आया बहुत. अरे अरे मुझसे बदमाश करो, सर एकदम जली बेली होता ना, इतना खाऊंगे पता नहीं, कुछ तो हुआ अच्छा सा लग रहा है इतनी दावत खाने के बाद. मुबारक हो बहन, मुबारक हो, इतनी सारी दावतें माशाल्लाह अच्छे से गुजरी हो. आप कैसे हैं, बस ऐसे ही बोल रही मैं, क्या कैसे ही बोल रही मैं. देखो बहन मुझे कन्फ्यूज़ मत करो, आप ये इंसेप्शन मत करो मेरे साथ, सपने में सपना. मैं एकदम बड़े हो अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम शानदार, जैसे आप मिमिक्री कर रही. अच्छा वो ओके. नहीं वो तो होता है बहन, होता है. कल मैं बताऊँ मेरे साथ जो ये हुआ है ना, शाम का शो करने के बाद सीधा सुबह, तो दिमाग एकदम ग्लिच कर गया कि ये क्या प्रोसेस कैसे करें, वो जो चिप है वो काम नहीं कर रही है. 666-22107 नंबर है. और कभी आप सोने की वजह से किसी काम के लिए लेट हुए हैं, एक भाई ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई आज ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ सोने की वजह से.
मुबारक हो मेरे दोस्त, मुबारक हो, क्या नाम है तुम्हारा?

0: नाम तो बता दो एक बारी। तो ये भाई साहब आज लेट उठ गए हैं और इन्होंने मैसेज पहली बार तब कराए तो आई अंडरस्टैंड कि सोने के वजह से लेट हुए। एक साहब और इन्होंने मैसेज किया है, इनका नाम मिस्टर के, पूरा नाम लिख देते, अच्छा चलो ठीक है आपकी मर्जी। तो मिस्टर के ने मुझे मैसेज किया, इनका कहना है कि कबीर भाई मैं एक मरतबा सोने की वजह से अपनी फ़्लाइट मिस कर चुका हूँ, उसका नुकसान आज तक मेरे दिल में जवां है, दिल में जवां है, क्या बात है। और मैं जब फ़्लाइट मिस कर चुका था उसके बाद जो मुझे अपने घर वालों से सुनने को मिला है वो साल भर सुनने को मिला है, और आज तक मैं फ़्लाइट के टाइम पे सोता नहीं हूँ, ना जहाज़ में सो पाता हूँ, ना एयरपोर्ट पे, ना ही घर पे, क्योंकि मुझे जो बातें सुनने को मिली हैं मेरे मेरे क्या मेरे कानों में आज तक गूंजती हैं। ये तो हमारा अपना डायलॉग हो गया, उसकी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है, क्या हमेशा सोने की वजह से जलील हुए, दो दफ़ा मार खाई है ना। अब सब ये जो सोने की वजह से मार खाना होता ना, इसमें आदमी समझ नहीं पाता कि डिफेंड कैसे करे, मतलब कोई डिफेंस नहीं ना इस चीज़ का, क्या डिफेंड करेंगे आप, नींद आ गई सो गया उसके बाद भी पिटाई हो रही है। एक मैसेज है भाई, सोने की वजह से 2018 में ईद की नमाज मिस हो गई थी, क्या बात कर रहे हो, अरे मेरा भाई ये तो बहुत सीरियस मैटर लग रहा है मुझे। मेरे साथ एक बार हुआ था, बता रहा हूँ, वो जो गिल्ट था ना मेरे दिल में आज भी ऐसा है कि मैं बहुत डरा हुआ रहता हूँ। आई रिमेंबर इंडिया में मैं बहुत सालों की पहली बात बता रहा हूँ, 11-12 साल पहले की, पर वो आज तक जो है ना दिल में ऐसा वो हो गया ना, दूध का दला छाछ भी भूख भूख के पीता है भाई। सोने की वजह से जुमे की नमाज की बिल्कुल नोक पर पहुँचा था मैं, और ऐसा लगा था अरे बाप रे ये क्या हो गया मुझसे, कैसे हो गया, क्योंकि मुझे उठाया गया 5-6 बार, डांट भी पड़ी घर वालों से, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा बंदे, उठ जा बंदा बन जा, लेकिन नहीं। और सब कुछ लेट लतीफ होने के बाद जो बैंड बजी है तो वो आज भी जो है दिल में है भाई। एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मंथ में कम से कम 2 बार ऑफिस मिस करता हूँ सोने की वजह से, जुबैर फ्रॉम जुबैल सऊदी अरेबिया। वेरी गुड जुबैर साहब, वेरी गुड। ये तो 2 बार आप, 2-3 बार आपने बताया ना कम से कम 2 बार ऑफिस मिस हो जाता, तो ये क्या वजूहात हैं इसके पीछे मिस्टर जुबैर फ्रॉम जुबैल, क्या दिक्कत आती है रात में, कॉल रात की या रीलें, दोनों में से क्या है आप, वो तो नहीं है जुबैर साहब के ना, यहाँ भी फ़ोन मत रखो मुझे तो तुम्हारे खर्रांडे सुनने हैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है, मैं बढ़िया भाई साहब क्या हाल है आपकी, ईद कैसी गई समी भाई, प्लीज़ अपडेट मी। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम ताबिश है और मैं एक मरतबा लेट हो गया था लखनऊ को चारबाग, शायद आपको पता है वहाँ पर मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। ट्रेन मिस होने के बाद मैंने एक बार फिर से टिकट बुक किया और उसके बाद मैं फिर रेलवे स्टेशन पर ही सो गया। तो एक बार घर पर और एक बार रेलवे स्टेशन पर सोने के बाद कुल मिला के 1000 रुपये का मेरा नुकसान हो चुका है। 1000 रुपये का नुकसान, कौन से साल की बात कर रहे हो भाई, ये अजीब है भाई। भाई कह रहे पहले मैं घर पे सो गया, ट्रेन छूट गई, फिर मैं रेलवे स्टेशन पे जाके सो गया, ट्रेन मिस हो गई। ये तो ये मैं बता रहा हूँ, ये स्पेशल एबिलिटी है लोगों की जो रेलवे स्टेशन पे सो जाते हैं ना, मैं उनका फ़ैन हूँ क्योंकि मैं खुद उनमें से एक हूँ। ये हर कोई नहीं कर सकता भाई। ताबिश भाई आपको लग रहा है कि ये बड़ा आसान है कि आप इंडिया में वो भी लखनऊ जैसी जगह में वो भी रेलवे स्टेशन पर जाके सो जाएं बेखबर, ये क्वालिटी है, ये स्किल है, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। तो हाथ में लाइए ताबिश भाई, अरे आंखों में आंख दे, हाथ डालिए, हाथ में लाइए आप, वेरी गुड, वेल डन जवान, ट्रेन मत मिस करना आगे से प्लीज। कॉल आ रही है एक, अस्सलाम वालेकुम
1: भाई,
0: जी मेरे भाई आपका नाम
1: जिशान
0: भाई, रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दो भाई, जिशान भाई डबल ट्रिपल आवाज आ रही है आपकी,
1: बंद कर दिया भाई।
0: अब बताओ दिशान भाई क्या कहना चाह रहे हैं
1: भाई। वो सोने की बात चली, अभी बकरीद में की छुट्टी में एक मेरा दोस्त जा रहा था,
0: अच्छा
1: सऊदी से,
0: हाँ
1: एयरपोर्ट पे सो गया, फ्लाइट ही छोड़ दी,
0: फ्लाइट ही छोड़ दी उसने, वही बकरीद पे
1: सोने के चक्कर में भाई, अभी एक हफ्ते पहले की बात है।
0: अरे
1: मेरे गाँव का है, फुरकान नाम था,
0: हाँ
1: वो गया एयरपोर्ट, फ्लाइट थी, अब वो कहीं सो गया वही गेट के पास।
0: अरे बाप, वो एक सेकंड, वो एयरपोर्ट पे सोया है,
1: अंदर अंदर एयरपोर्ट में बोर्डिंग करने के बाद सो गया, फ्लाइट मिस हो गई।
0: अरे बोर्डिंग के बाद, अरे भाई साहब, फिर क्या हुआ,
1: फिर गया, फिर वो वही था, टिकट भी रिटर्न निकाल के फिर दूसरी फ्लाइट से आया।

0: अरे बाप रे,
1: इतना सोने के चक्कर पूरा।
0: अरे अच्छा खासा नुकसान हो गया यार उसका, मतलब ये तो बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा। तो उसने
1: ये सबसे पहले की बात है।
0: तो उसने तो

0: पास हो गया था एयरपोर्ट पे।
1: ये वो बोर्डिंग पास जिंदगी भर याद रहेगा भाई फुरकान भाई को, जिंदगी भर याद रहेगा। निशान भाई आपकी ईद कैसी रही?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से कट गई। आप बताएं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम शानदार। तो दावतें लुट गई, अभी भी दावतें बाकी हैं, अभी भी चल रहा है माहौल?
0: नहीं नहीं, बस दावतें खत्म हो गई, छुट्टी खत्म, दावतें खत्म,
1: छुट्टी खत्म, दावतें खत्म। ठीक है, चाय पीजिए इसी बात पे आप हमारी तरफ से।
0: इंशाल्लाह, चाय मैं पीता नहीं भाई।
1: अरे भाई क्यों, ऐसा क्यों?
0: बस नहीं, बस चाय कॉफी भी नहीं पीता भाई।
1: अरे चाय कॉफी दोनों ही नहीं?
0: नहीं,
1: बहुत रेयर ब्रीड है भाई आपकी, बताइए क्या पीते फिर आप? मतलब
0: पहले पीता था, अभी 4-5 साल से छोड़ा है भाई।
1: कोई खास, कोई खास वजह?
0: कुछ नहीं, बस वैसे ही छोड़ दिया, नहीं जमा।
1: कहाँ है, कहाँ से निशान भाई वैसे?
0: इंडिया, आजमगढ़।
1: आजमगढ़ के होके आप कह रहे हैं मैं चाय और कॉफी दोनों नहीं पीता हूँ? आजमगढ़ वाले आपको एक्सेप्ट करते हैं?
0: भाई बहुत ज्यादा ही चाय पीता था, मैं एकदम छोड़ दिया।
1: वही मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा आजमगढ़ में अगर कोई कह दे कि मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, आजमगढ़ वाले उसको निकाल दे शहर से। तो भाई तुम बाहर रहो, यहाँ मत आओ, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग।
0: इधर इधर आके ना वो डब्बे वाले दूध से मेरे को जमती नहीं थी, इसके लिए छोड़ ही दिया।
1: ऐसा बोलो भाई, ये तो मेरे साथ भी है भाई, डब्बे वाला नहीं जमता।
0: वो मेरे को अजीब सा उसका टेस्ट आता है, मजा नहीं आती चाय पीने में।
1: फ्रेश फ्रेश दूध चाहिए, मतलब फ्रेश दूध वाली चाहिए। ठीक है जिशान भाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको, और आजमगढ़ तक हमारी दुआएं पहुंचाइएगा ईद मुबारक उन सबको। थैंक यू मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
0: थैंक यू, थैंक यू।
1: तो जिशान भाई ने जो बताया है, जिशान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इनके भाई दोस्त है फुरकान, वो हफ्ते भर पहले नींद के चक्कर में बोर्डिंग पास लेके सो गया बंदा एयरपोर्ट पे। आप बता रहे हैं ये गम देखिए, घर घर पे अगर कोई बंदा सो जाए, फ्लाइट छूट जाए, तो उसका थोड़ा दर्द कम होता है। बंदा वहां जाके एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास लेके सो जा रहा है भाई, क्या दिक्कत है ये? हफ्ते पहले लिखती है, मैं सुबह स्कूल जाने के पहले फ्रेश होने जाती थी तो पानी से भरी बकेट होती थी कॉर्नर में, उस पर बैठे सो जाती थी। बाहर बाहर सब डोर बजाते थे। एक दफ़ा इस पे कुटापा चल रहा था। क्या क्या क्या याद करा दिया, सोने के बहुत किस्से हैं। मेरा भी ऐसी है, वो है ना वो जो बकेट पकड़ के नींद जो आती है बहन, वो बहुत सॉलिड नींद होती है। वो वही लोग समझ सकते हैं बहन। मैं समझ गया, आप भी हमारी ही तरफ हैं। सो बहन थैंक यू सो मच, वेलकम, प्लीज़ बैठ जाइए। एक मैसेज है, एक दफ़ा लॉटरी का नंबर लगाना था रात को, रात को क्या वो मिस हो गया, सुबह वही नंबर विन हो गया। क्या बात कर रहे भाई, मजाक कर रहे ना उमर भाई? उमर भाई कह रहे हैं एक बार लॉटरी में नंबर लगाना था और वो नंबर जो था मैं लगा नहीं पाया, नींद आ गई, सुबह वही नंबर जो था वो लॉटरी में निकला। कितने की लॉटरी थी उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ, तराजू में तोल के कि आपका गम कितना बड़ा होगा। एक मैसेज, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बट ड्यूटी थी भाई, ड्यूटी तो चल रही समी भाई। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जावेद भाई? वालेकुम अस्सलाम। और मैसेज है, हाउ आर यू? टुडेज़ टॉपिक बताता हूँ, ईद मुबारक फराज भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो टॉपिक ये कि कभी ऐसा हुआ कि आप सोने की वजह से आपने कुछ चीज़ मिस कर दी हो, कोई मीटिंग, कोई काम, कोई फ्लाइट, कोई ट्रेन। आप देख रहे हैं फराज भाई क्या क्या सुनने को मिल रहा है, नींद ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने फ्लाइटें मिस करी हैं, घर पे नहीं बाकायदा बोर्डिंग पास लेकर बाकायदा गए, सामान चेक इन कराया होगा, बोर्डिंग पास लिया होगा, जहाज़ के दरवाजे तक हो सकता है पहुँचे होंगे, फिर नींद लग गई। तो इसमें एयरलाइंस की भी गलती है, मैं बताऊँ क्यों नहीं जगाया इस आदमी को यार, थोड़ा कॉल वॉल कर देते। तो फुरकान भाई जिनके साथ ऐसा हुआ है उनको कॉल नहीं आई, मतलब ये कौन सी एयरलाइन थी? और फराज भाई एक और किस्सा सुनिए, अभी आप पता नहीं आपके साथ कभी ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, लोग रेलवे स्टेशन में जाके सो जा रहे हैं पूरे शोर में। मेरा भी एक किस्सा है परवेज भाई, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। हाँ तो मेरा भी एक किस्सा है, मैं लखनऊ गया था, ठीक है मैं बताता हूँ इसे, कि पहले एक कॉल आ रही है उसके बाद हम इस बात पर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
1: नदीम भाई कैसे मेरा भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो कल से सोने वाले हो और यहाँ पे सबको सोने की कहानियाँ सुना रहे हो।
1: आप मेरी चाल समझ गए हैं नदीम भाई, आप मेरी चाल जो है वो समझ गए आप। तो आज मैं कमोली का रोल कर रहा हूँ। बताइए नितिन भाई।
2: जाते जाते बोले मैं तो कल से सोने वाला हूँ, आज सबकी कहानियां सुन लूंगा, क्या क्या मिस हुआ कि मेरी आदत ना खराब हो जाए।
1: हाँ भाई।

0: अपना अपना देख लो, मैं तो नहीं लगाऊंगा कल से अलार्म। तो नदीम भाई आपके साथ कभी हुआ है मिस किया आपने कुछ नींद?
1: मेरे साथ ऐसा मिस करने जैसा तो कुछ नहीं हुआ है क्योंकि हमेशा सब उठा ही देते हैं। मेरे साथ जब मैं अकेला जब कतर आया था, जब भाई थे यहाँ पे, तो बैचलर में जब हम लोग सोते थे, मतलब बैचलर में रहते थे,
0: हाँ,
1: तो भाई मेरे भाई के पास लाइसेंस था, मेरे पास लाइसेंस नहीं था,
0: ओके,
1: तो वो लेट आते थे
0: हाँ,
1: रात में कभी कभी बाहर से, और मैं अकेला घर में रहता था।
0: ओके,
1: और मैं घर पे बात करते करते दरवाजा भी लॉक करके सो जाता था।
0: अच्छा,
1: अब भाई आके रात में बेल बजाए या दरवाजा ठोके या जो भी हो, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। ऐसे दो तीन बार हो चुका है। भाई को बेचारों को फिर दूसरों के रूम में या कहीं पे, वो बैचलर था तो बाहर बड़ा हॉल का सोफा वगैरह वहां पे सोना पड़ा है दो तीन बार।
0: भाई बहुत अलग लेवल की तकलीफें दी हैं आपने तो यार। मतलब एक होता कि बंदा सोने की वजह से अपना कुछ मामला मिस हो गया, यहाँ तो आपने दूसरे के जीवन में धनिया बो दिया। बहुत बढ़िया।
1: कितनी बार अच्छा भाई बोलते भी थे कि तू सो जाता है तो लॉक मत किया कर, लेकिन पता नहीं वो क्या, वो टाइम पे ऐसा था कि घर में कब लॉक कर दिया, कब ऐसा होता था कि नहीं नहीं अभी तो जागा हूँ, फिर कब आग लग गई, कब सो गया पता नहीं। और फिर भाई आके बेचारे बैल बजाए, दरवाजा ठोके, क्या क्या ट्राई कर, दूसरी चाबी भी थी लेकिन मैं चाबी भी नहीं निकालता था कि वो खोल सके डोर।
0: अरे भैया यार, तो आपकी नींद मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा सॉलिड वाली नींद है, मतलब कि बजता रहे कुछ भी होता रहे।
1: थोड़ा टाइम सोता हूँ लेकिन बहुत, अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि
0: हाँ,
1: अभी ईद के टाइम पे तो बेटे की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी,
0: हाँ
1: तो वाइफ रात में उठा रही थी, वाइफ बोली उठे ही नहीं तुम, उसकी नाक बंद हो रही थी बार बार,
0: अरे
1: तो
0: हाँ।
1: मैं सोया था तो बोली तुम उठे ही नहीं, मैं 3-4 बार उठाई।
0: भाई आपकी नींद, भाई सलाम है आपकी नींद को, भाई इतनी सॉलिड नींद जो है आपकी। वैसे मेरी भी है तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, आई एम कम्प्लीटली अग्री, ये है कुछ फॉर्मूला। लेकिन अभी मैं आपकी नॉर्मल शिफ्ट तो शाम में तो मुलाकात होगी नहीं आपसे, खैर आपके बाद बात कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
1: नहीं नहीं मैं देखता हूँ, रेडियो में सेल डलवा लिया है मैंने तो,
0: अच्छा, अरे वाह वाह वाह, ये बहुत बहुत अच्छा
1: हाँ
0: काम किया आपने नदीम भाई।
1: तो अपना ऐप वैप का तो कुछ समझ नहीं आया, ट्राई भी किया था तो फिर
0: हाँ,
1: मैंने रेडियो में सेल ही डलवा ली, बोला अपना
0: वेरी
1: यही
0: गुड,
1: ठीक है।
0: ये बहुत बढ़िया गया नदीम भाई, आपने बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जजाकल्ला। अभी बेटी की तबीयत कैसी है, ठीक है?
1: ओके हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बस 1-2 दिन के लिए था, वो फिर दवा वगैरह ड्रॉप्स वगैरह मंगा लिया तो
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: बेटर है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: अभी आए थे तो अपनी भागम दौड़ शुरू हो गई स्कूल स्कूल की।
0: हाँ यार, अब तो ऑब्वियसली नदीम भाई, चलो ख्याल रखो मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू सो मच,
1: ओके
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो फराज भाई पूछ रहे थे मुझसे नदीम भाई कॉल के बाद, ये कह रहे हैं कि मुझे तो नींद नहीं आती। फराज भाई आप बहुत पंचुअल टाइप के बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, कह रहे हैं आर यू चेंजिंग शिफ्ट्स, आई एम नॉट चेंजिंग शिफ्ट्स, माई कंपनी सेट सो। एक मैसेज है, लास्ट ईयर मैंने ईद की नमाज लास्ट ईयर ईद उल अज़हा की नमाज छूट गई थी, बड़ा अफसोस हुआ। अरे भाई साहब, जब स्पेशली ये ईद की नमाजें छूट जाएं नींद की वजह से ना भाई, बुरे से ज़्यादा बहुत कुछ फीलिंग आती है, ऐसा लगता है मैं कितना बुरा आदमी हूँ। ये सबसे पहली फीलिंग है। फराज भाई कह रहे हैं कि न्यू टाइमिंग्स, भाई न्यू टाइमिंग शाम को 5 से 7, जो पहली वाली टाइमिंग्स हुआ करती थी वो वाली टाइमिंग्स रहा करेंगी। तो ये वाला सीन है जी, मैं एक बारी, अरे रे रे रे रे रे रे, मैंने गलत नंबर डायल कर दिया, देखो ऐसा होता है। एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपका नाम?
2: मेरा नाम जावेद।
0: जावेद भाई, जावेद भाई कैसे?
2: मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो पर्सनल नंबर है और ये कंपनी का।
0: हाँ तो भाई आप ऐसे
2: जो है ना,
0: आप ऐसे डबल पर्सनैलिटी खेलोगे मेरे साथ तो कैसे पकड़ूंगा मैं आपको? एजेंट की तरह भाई कॉल कर,
2: क्या आपका उसमें नाम हाँ, भी नहीं आता है,
0: वही तो कंफ्यूजन है, वही तो कंफ्यूजन है ना, ये तो कमाल है। जावेद भाई क्या सीन है फिर आपका, कभी ज्यादा नींद खींची है जिसकी वजह से हो गया काम?
2: नहीं मेरा तो ऐसा किस्सा नहीं हुआ, लेकिन एक बार मेरे साथ में हो गया। मैंने क्या किया, मैं बाहर था गांव में, तो मेरे बच्चे जो है ना दो समझदार है, लेकिन क्या किया उन्होंने बंद करके और सो गए दोनों। अब मैं बाहर से बेल भी बजाता हूँ, बेल भी बजती है बाहर से, ये डोर को भी नॉच करता हूँ, लेकिन उनको सुनता नहीं क्योंकि बीच में मेन डोर है, मेन डोर से अंदर हॉल का डोर है,
0: ठीक है,
2: फिर उसके अंदर रूम का डोर था, तो बिंदास सोए हुए उनको पता ही नहीं। मैं बेल पे बेल मार रहा हूँ, रात का टाइम है, रात का अपना उधर आपको मालूम है ना, कुत्ते भी रहते हैं तो थोड़ा डर भी रहता है।
0: फिर क्या किया?
2: मैं परेशान हो के, बहुत बुरी तरह परेशान हो के, मैंने फिर डोर के ऊपर चढ़ के

0: ऊपर से गेट के ऊपर से जाके अंदर से खोल के फिर एक दो उनको लगाया बराबर, ऐसा सोते हैं बोला
1: एक दो लगाया
0: उतना पकड़ लेता तो मुझे।
1: हाँ यार ऑब्वियसली अब मतलब अपने ही घर में डकैती करनी पड़ी है आपको, वेरी गुड।
0: इतने मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, कम से कम 15 से 20 मिनट आधा घंटा हो गया मेरे ख्याल।
1: अच्छा नहीं भाई भाई अब ये जो है आपके साथ
0: दो बच्चे हुआ? थे मेरे, दोनों सोए थे अंदर, मैं बोला एक भी नहीं उठा तुम दोनों में थे।
1: हाँ नहीं ये तो भाई इस पे तो लगाना बनता है ऐसा, ये किस्सा तो है। पर आपके साथ कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नींद के चक्कर में कुछ मिस हो गया?
0: नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एक बार कोई हुआ होगा बचपन में, लेकिन अभी तो नहीं।
1: भाई सही है यार, मतलब ये तो आप रेयर है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: हाँ, नमाज वमाज के लिए कभी लेट सेट हो जाते हैं, कभी कभी, बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किधर कोई एयरपोर्ट वगैरह में
1: वैसे कभी कुछ मिस, बड़ा कुछ मिस नहीं हुआ। अच्छा वैसा वाला मिस नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई,
0: जज़ाकअल्लाह।
1: ओके मेरे भाई अल्लाह हाफिज़। तो जावेद भाई के बाद जो है एक सेकंड मुझे कॉल करनी थी क्योंकि भाई ने बोला था, तो मैं ज़रा ये कॉल कर लेता हूँ फटाफट। ये हमारे अमन भाई हैं, अमन भाई एक सेकंड ना मिला रहा हूँ, बस बस बस बस बस बस हो गया, ऐसा इंजेक्शन लगा देना। वो देखो बेटा, वो देखो पंखा, वो देखो पंखा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम रफी
2: भाई, कैसे हैं?
1: मैं जी बढ़िया, वीर जी दसो क्या हाल है?
2: हाँ जी ठीक हो जी, आज फिर आखिरी दिन है मॉर्निंग टाइम का।
1: हाँ जी आज मॉर्निंग है और कल से इवनिंग है,
2: कल से 5 to 7 है ना?
1: कल से 5 to 7 है जी।
2: भाई ने तो सेल डलवा लिया हमारे, तो मोबाइल में वो जैक लगा हुआ 3.5 mm का, उसमें रेडियो चलता है।
1: ये क्या बात है मेरा भाई, सॉलिड सॉलिड सेटिंग है, सॉलिड मेरा भाई, सॉलिड।
2: घर में भी जो स्पीकर है ना उसमें भी FM रेडियो है, उसमें भी।
1: बहुत बढ़िया, ये तो इंतजाम हो गया, पूरा सेट है भाई, ये अच्छी बात है। मैं
2: एग्जैक्ट टाइम पे ड्यूटी खत्म होती है, घर में होता हूँ 5 बजे, आराम से लगा के अपने घर के काम किया करूंगा आपकी स्टोरी सुनने के लिए।
1: अरे माशाल्लाह, अच्छा आपका एनडी शिफ्ट हो रही है 5 बजे ही? वेरी नाइस।
2: नहीं इवनिंग शिफ्ट नहीं है, एंड 7 to 4 है ना?
1: 7 to 4 है। अच्छा तो फिर तो आप घर पे होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तो फिर आप जुड़े रहेंगे, अच्छी बात।
2: कबीर भाई क्वेश्चन क्या था आज का?
1: क्वेश्चन ये है अमन भाई कि कभी नींद ज्यादा होने की वजह से आपसे कुछ चीजें मिस हो गई, जैसे फ्लाइट स्लाइट मिस हो जाती है लोगों की, आपके साथ कभी हुआ है कि ज्यादा सो लिए तो कुछ मामला मिस हो गया, कोई काम मिस हो गया?
2: जी नहीं, जी नहीं, नींद की वजह से तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर सुबह कोई काम रहेगा ना तो ऐसी नींद एकदम सॉफ्ट रहेगी के कभी कभी अगर जरूरी काम रहेगा, फ्लाइट रहेगा, स्पेशली नींद ही नहीं आती।
1: तो फिर भी मतलब पूरे दिन में कभी कभी नहीं हुआ ऐसा? कमा रहे यार।
2: नहीं नहीं नींद की वजह से नहीं, अगर याद करूंगा तो कभी कभी आधा घंटा एक आध घंटा लेट हुआ रहूंगा, क्योंकि लेट सोने की वजह से ऑफिस के लिए।
1: ओके मतलब वैसे सेट है आपका, मतलब कब पंचुअल बच्चे हैं आप?
2: पंचुअल
1: Very
2: और
1: nice.
2: नींद बहुत सॉफ्ट है, यानी अगर कुछ भी चीज की आवाज रहेगी, कोई भी नॉक भी करेगा ना, फर्स्ट नॉक पे भी और फर्स्ट अलार्म पे भी नींद टूट जाएगी, ऐसा है यानी।
1: भाई हमारे साथ तो ऐसा, अगर कोई नॉक वॉक करेगा और कॉल वॉल भी आएगी नींद में ना, तो मुझे लगता है सपने में चल रहा है, चलने दो। तो
2: जी मैंने सुना था, एक भाई ने बोला था कि वो सोए रह गए और उनके भाई बाहर ही खड़े रह गए, मैंने कहा वाह क्या बात है, की अंदर ही छोड़ दी।
1: भाई एक भाई का ने सुना आपने, वो कह रहे हैं वो बंदे जो हैं वो फ्लाइट बुक करके, ठीक है,
2: हाँ जी,
1: एयरपोर्ट जाके बोर्डिंग पास लेके बंदा सो गया एयरपोर्ट पे, जहाज उड़ लिया।
2: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड,
1: नेक्स्ट लेवल
2: है, यानी फ्लाइट प्यारी नहीं है,
1: नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल चल रहा है मामला,
2: नेक्स्ट लेवल।
1: तो ठीक है अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपका दिन बढ़िया जाए।
2: थैंक यू सो मच कबीर भाई,
1: थैंक यू सो मच, ओके मेरे भाई, और अमन भाई के बाद जो है एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये क्या नाम है आपका? इन्होंने कहा है कॉल मी, ओके चलो मैं कॉल मी कर लेता हूँ, आपको भी कॉल मी कर ही लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। यार मैं बता रहा हूँ, मैं जब भी नंबर डायल कर रहा हूँ जैसे लगता है मुझे छोड़ के सबके नंबर एकदम वो है, VIP टाइप के नंबर हैं सबके, मुझे क्यों नंबर अच्छा नहीं मिला, मैंने या तो लिया नहीं, ध्यान नहीं दिया। उठा लो वीर जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: हाँ जी मेरा भाई, आपका नाम?
3: मेरा नाम सलीम कबीर भाई, क्या हाल चाल है जनाब?
1: अरे सलीम, अरे अनारकली को चुनवा दिया जाए। ठीक है, हाँ जी बढ़िया,
3: बस अनारकली का कमी है इधर।
1: अनारकली कब आएगी बताओ शेखू?
3: हाँ जी कबीर भाई क्या हाल है? ठीक है,
1: बढ़िया मेरा भाई।
3: मैं भी बताना चाहता था इसे एक बात की, मैं नींद की वजह से मेरा मैट्रिक का जो एग्जाम था एक सब्जेक्ट में मैं आधा मतलब घंटा से थोड़ा ज्यादा लेट हो गया।
1: मैट्रिक के एग्जाम में आप लेट हुए हैं? कितना लेट हुए हैं? पूरा एग्जाम छोड़ दिया या फिर कुछ बीच में टुकड़े टुकड़े मिल गए?
3: नहीं, आधा घंटा लेट हो गया। सुनिए ना, वो बारिश का मौसम था। हाँ। वो भी उस दिन मेरा, मैं बांग्लादेश से हूँ एक्चुअली, तो मेरा बांग्ला सब्जेक्ट था उस दिन।
1: अच्छा, बांग्ला ही सब्जेक्ट था, बहुत बढ़िया। हाँ, फिर
3: जी मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले उधर पहुंचने से कम 10-15 मिनट लगता था। मैं सोचा उस तक बारिश शुरू हो गया अचानक। मैं बोला ठीक है 5 मिनट बैठ जाता हूँ। उसी रात भर पड़ा तो बैठे बैठे नींद आ गया।
1: अच्छा, बैठे बैठे नींद आ
3: गई। बैठे बैठे नींद आ गई है उधर ही। मैं फिर तकरीबन 10-15 मिनट के बाद मैं सपना देख रहा हूँ कि यार मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं उसमें लेट हूँ, मैं भाग रहा हूँ, कसम खुदा के एकदम सपना में आ रहा है।
1: अच्छा, फिर
3: अरे मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं लेट चल रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, ऐसा मतलब अपना कपड़ा पहन के, आधा कपड़ा पहन के भाग रहा हूँ। जाग के देखा सचमुच मेरा एग्जाम के लेट हो गया। घड़ी देखा तो अरे यार, मैं आधा कपड़ा लेके अपना वो फाइल लेके भागता रहा उधर जाके एग्जाम हॉल में पहुंचा तो गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा।
1: फिर क्या किया?
3: फिर मैं अपना आईडी दिखाया, बहुत जोर जबरदस्ती गार्ड अंदर नहीं जाने देता, तो उससे हाथ को मैं धक्का दे के अंदर चला गया सीधा एग्जाम हॉल में।
1: मुझे लगा आपने पैर पकड़ लिए होंगे, मेरे दो दो बच्चे हैं।
3: मुझे नहीं, नहीं, कसम से मैं एकदम, मैं तो आप, मेरे को मालूम है कि मैं अपना राइट हूँ, लेट हुआ तो क्या मुश्किल है। मैं उसको धक्का देके बोला सीधा पहले हॉल में जाता हूँ, फिर देखा जाएगा जो भी होगा।
1: बहुत बढ़िया, तो उसको तो धक्का देके हॉल में चले गए। हॉल में कैसे एंट्री ली? तो इन्विजिलेटर होगा ना
3: जाके, वो जो जिस रूम में मेरा एग्जाम चलता था उस रूम में जाके सलाम किया कि सर मेरा ऐसा ऐसा हालत है, लेट हो गया, मैं एग्जाम, अपना आईडी दिखाया, एडमिट कार्ड दिखाया, बोलता है जल्दी बैठो।
1: अच्छा,
3: क्वेश्चन दिया, अभी लिख रहा हूँ तो मेरा हाथ कांप रहा है। अरे यार मैं आधा घंटा लेट है, अभी हाथ कांप रहा है कि मैं कैसे लिखूं कैसे। वो भी आपको मालूम है अपना लैंग्वेज है, उसमें लिखना पड़ता है बहुत।
1: हाँ,
3: एक
1: अच्छा।
3: सेकेंड का कमी नहीं है, एकदम लास्ट तक लिखना पड़ता है इतना मतलब उसमें।
1: अच्छा, मतलब बांग्ला का, बांग्ला एग्जाम था ना आपका? बांग्ला लैंग्वेज का?
3: हाँ, बांग्ला एग्जाम था अपना। okay. लैंग्वेज का बांग्ला एग्जाम था।
1: ठीक है,
3: तो
1: ठीक है।
3: उसमें क्या है, एकदम आप जब से शुरू करोगे एकदम लास्ट इन तो एक सेकंड तक आपको लिखना पड़ेगा, तब भी खत्म नहीं होता।
1: अच्छा ठीक है, तो कितने नंबर लेके आए होता हूँ इतने लेट जाने?
3: और लेट जाने से मैं उस सब्जेक्ट में 56 नंबर लेके आया।
1: अरे यार, अच्छे खासे ले आया भाई, तालियां आपके लिए, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया।
3: 56 नंबर लेके आया, उसी नंबर में मैंने मेरा लिखने में बहुत स्पीड हूँ मैं, फिर मैं उससे भी ज्यादा स्पीड में इधर उधर नहीं देखे मारता रहा दबादब। छोड़ेगा नहीं।
1: वेरी गुड।
3: कुछ वो हम लोग तो कभी कभी कोऑपरेट भी करता है आगे पीछे वाले के साथ, कोई भी क्वेश्चन कोई टॉपिक पूछ लेता भी। उस दिन मैं बोला छोड़ो पूछना, सब गया तेल लेने, पहले अपना खत्म करो।
1: वेरी नाइस भाई, मतलब आपने ये जो किस्सा बताया है, आप एक स्टोरी टेलर भी है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो आधे घंटे लेट हो जाने के बाद भी आदमी अगर 56 नंबर
3: ले आया। पब्लिक एग्जाम था, कसम से मेरा दिल जैसा कि बंद होने वाला था, अरे यार मेरा एग्जाम जा रहा है,
1: ऑफ कोर्स
3: 20 मिनट हो गया।
1: वैसे बांग्ला में कितने नंबर मिल जाते हैं लैंग्वेज में? जैसे इंग्लिश में तो थोड़े नंबर कटते हैं।
3: बांग्ला में जैसा, बांग्ला में तो 60-70 के ऊपर जाना बोले तो बहुत टफ है,
1: बहुत
3: कोई नहीं जा सकता।
1: अच्छा, ऐसा है,
3: ऐसा है, लिखना है कि 70 के ऊपर जिसने गया तो समझ लीजिए कि वो बांग्ला मतलब बांग्ला का मास्टर है।
1: अच्छा, ये इसलिए मैंने सवाल पूछा ना, क्योंकि जब अलग अलग जुबानों के एग्जाम्स होते हैं तो किसी किसी में स्कोर करना आसान होता है, किसी में बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ बांग्ला में कितना मुश्किल है।
3: हमारा वो तो जैसा कि मैट्रिक में इंटरमीडिएट में तो आदमी ज्यादा फेल करता है बांग्ला में।
1: अच्छा, फेल कर रहा है लोग? अरे भाई, ये तो आपकी भाषा है।
3: मैक्सिमम स्टूडेंट अगर फेल देखा ना, वो आपको अगर ढूंढेगा तो आपको 80% स्टूडेंट मिलेगा बांग्ला में फेल है।
1: अरे तो नई चीज पता लगी है मुझे भाई, ये नई चीज पता लगी।
3: बांग्ला लैंग्वेज इस तरह की है, सब बांग्ला लैंग्वेज कुछ इस तरह की है, इंटरमीडिएट में बांग्ला में फेल करता है मैक्सिमम स्टूडेंट।
1: ये भाई आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है मुझे, बताऊं मैं आपको, मैं इस पे एक दिन शो करूंगा, मजा आएगा इस पे बात करके। पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने के लिए, और आपको बहुत मोहब्बत, इतने दिल से आपने किस्सा बताया, थैंक यू भाई।
3: कसम से मेरा अभी भी दिल में धड़क रहा है।
1: नहीं नहीं, कोई एग्जाम नहीं, आराम से नाश्ता करो।
3: वो भी पब्लिक एग्जाम, मेरा लाइफ का पहला एग्जाम पब्लिक एग्जाम में बैठा, उसमें भी मैं लेट
1: अरे मेरा भाई अभी तो लेट नहीं होते ना, अभी तो काम शाम बढ़िया चल रहा है, लेट हो रहा है?
3: नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसके बाद से कभी भी कदर भी कभी लेट नहीं हुआ।
1: अल्लाह का शुक्र मेरे भाई,
3: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
3: थैंक यू कबीर भाई, शुक्रिया, सलाम
1: अलैकुम, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। भाई ने बहुत मजेदार किस्से बताया भाई, मजा आ गया इनसे बात करके। मुझे नहीं पता था कि बांग्ला लैंग्वेज में इतने ज्यादा दिक्कत आ जाती है। बड़ा नहीं, मेरे सवाल में क्या था मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि कभी ओवर स्लीपिंग की वजह से, यू ओवर स्लेप्ट सम डे और सम टाइम, और आपका कोई काम छूट गया और ज़्यादा सोने की वजह से, तो बताइएगा। बाकी मैसेज आए मेरे पास, तला भाई फ्रॉम अलखोर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, तला भाई फ्रॉम अलखोर लिखते हैं, भाई लेटेस्ट तो ये हो गया कि बेगम बच्चे गए हुए थे, रात भर जगा बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हम सो गए फ़ोन साइलेंट पर रख के, बेगम बच्चे कैब करके गए गेट बंद, जो शामत आई है उस दिन बता नहीं सकता। भाई ये मैं पढ़ के जो है मुझे हंटरों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है, पता है पुतला भाई, ऐसे चटाक और एक चीखने की आवाज़ आ रही है, जैसे आपने मुझे बताया किस्सा। तो तला भाई इसके बाद तो मैं एक ही सवाल पूछ सकता हूँ, जख्म अभी भी है? एक और मैसेज आया मेरे पास, और बहुत मोहब्बत से मुझे मैसेज किया है ये अबू आकिब भाई ने, लिखते हैं डेयर आरजे कबीर, लेटर लिखा है मुझे बाकायदा, कहते हैं विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एज सून एज यू बिगिन योर न्यू जर्नी ऑन द इवनिंग शो, योर मॉर्निंग शो हैज़ बीन वंडरफुल पार्ट ऑफ आर डेली रूटीन, ब्रिंगिंग अस एंटरटेनमेंट, पॉजिटिविटी एंड मेमोरेबल स्टोरीज एवरी डे, थैंक यू फॉर ऑल द स्माइल्स, इंस्पिरेशन एंड एनर्जी यू शेयर विद अस इन द मॉर्निंग्स, व्हाइल वी विल मिस यू हियरिंग यू एट द स्टार्ट ऑफ द डे, वी आर एक्साइटेड टू सी यू शाइन इन अ न्यू टाइम स्लॉट। एक्चुअली में अब आखिर भाई न्यू टाइम स्लॉट मॉर्निंग का था, इवनिंग का नहीं था, मगर आपने इतनी मोहब्बत से ये मैसेज किया है ना, थैंक यू सो मच, यू रियली ऑलमोस्ट ब्रॉट टेयर्स इन माई आईज, थैंक यू सो मच फॉर दिस स्वीट स्वीट मैसेज दिस मॉर्निंग। अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे सुबह ये खत लिखने की सोची, थैंक यू सो मच, रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी भाई, इमोशनल कर दिया यार, ओके थैंक यू। आप ज़रा सवाल वापस आने, क्योंकि जवाब एक आ चुका है मेरे पास, एक भाई ने लिखा है कि भाई सोने की वजह से एक बार मेरे साथ बहुत दिक्कत हो चुकी है, मैं अपनी शादी में लेट था, है क्या बात कर, किस्सा सुनिए इनका, बहुत कमाल का किस्सा है, इनका नाम है महमूद, और ये महमूद भाई जो हैं ये यूपी से हैं, इन्होंने मैसेज किया, अच्छा यूपी फैज़ाबाद से, ओके तो ज़रा किस्सा सुनिए भाई का। ये कह रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा था और शादी का दिन था और मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, और मैं तैयारी से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ, और झपकी आ रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई आगे जगा देगा, और उसके बाद मैं फ़ोन साइलेंट पे रख के सो गया, लोगों ने दरवाज़ा खड़काया फिर भी आँख नहीं खुली, आधे एक घंटे बीतने के बाद किसी ने दरवाजे को धक्का देके कुंडी तोड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं गुजर चुका हूँ। अरे भाई, अरे भाई, अरे बाप रे, तो एक सेकंड, ये ऐसी नींद आपकी कि दरवाजा खटखटाने में भी आप नहीं उठे, ये कौन सा किवाड़ था भाई, कमाल है भाई, दूल्हे को सो लोग डर गए होंगे मेरे भाई, बहुत ज्यादा डर गए होंगे, तो फिर आपको अंदर आके तो पीट भी नहीं सकते कि दूल्हा ही है ये, इसको क्या मारे हम। बच गए आप महमूद भाई, ये शादी का दिन आपको ताउम्र याद रहेगा, अच्छी बात है, वन मोर रीजन टू रिमेम्बर द डे ऑफ योर मैरिज। एक मैसेज आया भाई फ्लाइट मिस का तो पूछो ही नहीं, एक मैसेज है तला भाई फ्रॉम अलखोर का, ये कह रहे हैं कि आई ऑलवेज बुक फ्लाइट एट 2 AM फ्रॉम पाकिस्तान, तो कह रहे हैं हमेशा बुक करते हैं फ्लाइट वो पाकिस्तान से रात के 2 बजे, दिसंबर में जा रहा था, साली की शादी थी, ऑलरेडी 3 दिन बाद निकाह था, फ्लाइट वॉज बुक, एक सेकंड तला भाई आपका मैसेज छोटा नहीं चाहता, एक मैं कॉल उठा लूँ बीच में उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। तला भाई का मैसेज पढ़ा था, तला भाई आ गए, तला भाई एकदम बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी रही ईद? मेरा ईद मुबारक मेरे भाई, ईद मुबारक,
4: तुमने मुझे बिरयानी खिलाई ना, आइसक्रीम करो अभी तक जबान पे ना,
1: वो है भाई, वो चटकारा जो है ना वो वैसे ही आना चाहिए, वैसे ही है वो, मैं क्या करूँ, क्वालिटी ही ऐसी है मेरी।
4: मैं कोना घूंगा, कोना मिलने के लिए।
1: नहीं,
4: पे कोनिया पड़ेंगी तुम्हें,
1: कोरी से ठीक है, लेकिन नहीं वो जो आपको प्रॉमिस किया था, आई एम बट फुलफिल दैट, क्योंकि बिरयानी हमारे नहीं बनी है बकरीद पे, टू बी ऑनेस्ट। यस, हमारे दिल के टिक्के बने थे, दिल के टिक्के बने थे, और कलेजी बनी थी, और बाकी हमने
4: कोरा, और कसम से दे भी नहीं सकता मैं लाइफ,
1: क्या क्या क्या क्या
4: लाइव
1: लाइव
4: में दे नहीं सकता,
1: फैमिली वाले हैं,
4: पर फैमिली वाले हैं, बता रहा हूँ मैं भी फैमिली मैन हूँ, लेकिन तुमने फैमिली मैन
1: फैमिली
4: जब उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और उसे कॉल आती है तो क्या कहता है वो
1: मुझे याद
4: है तो वो ये बस
1: परतला भाई कभी आप लेट हुए सोने की वजह से ओवर स्लेप्ट किसी चीज के लिए?
4: हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप तो भाई का पेपर रहा है
1: पेपर, अरे क्या बात है, कौन सा एग्जाम था?
4: हाँ माशाल्लाह भाई थर्मोडायनामिक्स का पेपर था मेरा, इवनिंग का था पेपर ना वो,
1: मतलब
4: मेरा
1: भाई शाम के पेपर में
4: मतलब दोपहर का पेपर था भाई, वो दोपहर 2 बजे पेपर था।
1: अरे फिर भी
4: आपका भाई बाकायदा पूरी रात पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह,
1: ठीक है,
4: रटके दबा के मारे, थर्रे वर्रे बनाए बेहतरीन वाले, ठीक है। यूनिवर्सिटी पहुंच गया मैं, क्लासरूम खाली थी, क्लासरूम में 2-3 दोस्त हैं, मम्मा पढ़ रहे रिवीजन कर रहे हैं, मैं मुझे सख्त नींद आ रही, बेंच पे मैं लेगा, मैंने कहा यार मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर मुझे उठा देना, कमबख्त मारे मेरे करीबी दोस्त साले मुझे छोड़ के चले गए उठाए बगैर,
1: फिर
4: क्या सप्लीमेंट्री थी, रह गया पेपर,
1: पूरा पेपर रह गया आपका?
4: हाँ पूरा पेपर रह गया भाई।
1: अरे मुझे लगा लेट वेट पहुंचे होगे भाई।
4: नहीं नहीं भाई जान, हम हल्के काम तो होते नहीं है ना, पूरी बंदी
1: अरे भाई तो ये जब वहां से निकले हो गए यूनिवर्सिटी से तो कैसे मुंह दिखाया घर वालों को, क्या बोला?
4: नहीं नहीं नहीं यार घर वालों को क्या मुनी की औलाद हूँ ना, उनको क्या उम्मीद होगी
1: फिर भी भाई
4: उनको तो यही उम्मीद, उनको तो वो तो बड़े खुश थे कि चलो उठ के चला गया ये पेपर देने।
1: मैं पहली मरतबा लाइफ में सुन रहा हूँ कि दोपहर के एग्जाम के लिए आदमी सो गया, बताइए हद हो गई
4: भाई, पूरी रात पढ़ा है, पूरी रात है आपका भाई पढ़ा है, अरे करो उस दिन प्रोफेसर हो जाता आपका भाई अगर पढ़ ले पेपर हो जाता
1: इसलिए खुद को रोक लिया,
4: रिजाइन कर देता।
1: खुद ही को रोक लिया,
4: मैंने नहीं रोका, कुदरत ने रोका मुझे,
1: कुदरत ने रोका कि नहीं हाथ हल्का रखो बेटा,
4: तू नौकरी खा जाए,
1: इतना की नहीं जाना
4: नौकरी
1: खा जाए,
4: औकात में रहो क्या क्या हरकत है ये था।
1: अरे भाई लेकिन माशाल्लाह ये तो है आपके साहब ज्यादा तो टॉप कर रहे हैं और अब्बा जो है वो बता रहे हैं
4: अबे यार पत्नी क्या हरकतें इन लोगों की, मैं तो एक सेटिस्फाई नहीं हूं उनकी हरकतों से,
1: माशाल्लाह बताइए बच्चे जो है वो टॉप कर रहे हैं और अब्बा जो है वो थर्मोडायनामिक्स का एग्जाम छोड़ के आ चुके हैं, वाह वाह वाह ये
4: भाई
1: तो
4: स्कूल में जा रहा हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपका बेटा, मैं तो मैंने कहा अपन शिकायत आ रही है, कोई ना कोई शिकायत आ रही है।
1: हाँ
4: भाई अपन ना चौड़े हो गए, वो शिकायत आ रही है, शिकायत अल्हम्दुलिल्लाह
1: थोड़ी प्राउड फील
4: है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ये कर रहा वो कर रहा है, क्या कर रहा भाई ये तो मैंने तो ये तो शिकायत
1: बेटा, व्हाट इज दिस बिहेवियर बेटा।
4: कॉल आई मुझे, एक प्रिंसिपल ही कॉल आई भाई हमदान के स्कूल की,
1: अच्छा
4: आई एम प्राउड ऑफ हिम, ही गॉट द गोल्ड मेडल, ये है मैं किसकी बेटी की बात कर रहा हूं मैं मोहम्मद तला बात करो, मेरे बेटी की बात, सर आपके बेटे,
1: यू मे हैव द रॉन्ग नंबर, यू मे हैव द रॉन्ग नंबर।
4: मैंने कहा भाई मैंने दीदी क्या कर रही हो, मैं कमजोर दिल का मालिक हूँ दीदी, गुजर पड़ूंगा मैं।
1: अरे यार नहीं पर तला भाई सच में ये होता है, देखा भी है मैंने, जो ऑपोजिट पर्सनालिटी निकल जाती है, मुझे लग रहा है वो हमारी बहन पे गए हैं, मतलब भाभी पे गए हैं कुल मिला के, तो आप पे चले जाते हैं। हाँ
4: दे दो अपनी दीदी को, तुम भी क्रेडिट दे दो अपनी दीदी को, ये सॉरी भाई का मास्टरमाइंड मिला है उनको,
1: हम सबको जो है घर जाके जीवन व्यतीत करना है सुकून से, इसलिए यही कहना पड़ता है।
4: देखो भाई मेरे सीने में गोली खानी पड़े, सच बोला
1: था नहीं जी, मुझे मेरे छाते में आयरन की कमी कोनी भाई मैंने निकाली अच्छा डायलॉग निकल गया मजाक में। हाँ
4: भाई वाकई जोर निकल गया, वाकई गजब वाला निकल गया,
1: सोचो, थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह मेरे भाई। और तला भाई के बाद जो एक मैसेज रह गया था, एक और तला भाई का, तो उनका जरा मैसेज पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा था भाई फ्लाइट मिस, क्या इसका तो पूछो नहीं, पाकिस्तान से रात के 2 बजे फ्लाइट बुक करने की आदत नहीं, दिसंबर का महीना था, जा रहे थे, साली की शादी थी, ऑलरेडी 3 दिन बाद निकला था, फ्लाइट वॉज बुक्ड 7 मंथ्स अर्ली, 7 महीने पहले उन्होंने बुक करी थी। लिखते हैं, मेरे जहन में था कि वही 2 बजे की फ़्लाइट है, बट हमने तो फ़्लाइट 9:30 बजे की बुक की थी, एयरपोर्ट पहुँचे 10 बजे फ़्लाइट जा चुकी थी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। लिखते हैं, पहली दफ़ा था, आई डिडंट टेक द प्रिंट आउट ऑफ द टिकट, दोबारा देखने की कोशिश की। भाई दोबारा देखने की कोशिश किया करें लोग, बड़ा जरूरी है तला भाई। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ढेर सारा ईद मुबारक।
1: ईद मुबारक मेरा भाई। जवान भाई क्या चल रहा है, चाय पियेंगे क्या?
5: बारकल्लाह
1: जी, बताइए भाई, कभी आपके साथ हुआ है?
5: कबीर भाई अगर साथ होते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि थोड़ी सी मतलब ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है बंदों में बोलने की।
1: थैंक यू सो मच भाई,
5: हर लिहाज से मतलब ये बड़ी अच्छी बात है सच में
1: भाई। जज़ाकअल्लाह।
5: आज नहीं, वो एक जरा पजमूर्दगी से, वो होता नहीं है कि कोई पौधा हो और कई कई दिनों से धूप में अगर वो पजमुर्दा सा हो गया हो, मुरझा गया हो, है ना, थोड़ा थोड़ा वो उसके अंदर तो क्या कहते हैं, अरे वो आ गया हो जरा, तो फिर उस पर थोड़ी पानी का छिड़काव कर दिया जाए या उसको सैराब कर दिया जाए तो वो कैसे खिल जाता है, थोड़ा सा आ जाता है ना उसके अंदर हरियाली आ जाती है। तो सुबह सुबह जब आप आते हैं
1: जी भाई,
5: और इत्तफाकन ये है कि सुनते हुए भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है, लेकिन अगर बात करने का मौका मिल जाए, है ना, कुछ
1: भाई, आपके साथ ये आपकी मोहब्बत है जमाल भाई,
5: मौका फराहम हो जाए
1: तो मजा ही आ जाता है। आप तो मतलब माशाल्लाह काफी कतर में काफी एक्टिवली काम वाम भी करते हैं, लेकिन फिर भी कभी जिंदगी में नींद की वजह से
5: पहले एक बार
1: है, क्या हुआ
5: नींद की वजह से कतर से पहले एक बार छोटा सा हादसा हुआ है, वो कभी भूलता नहीं है। जब बात सो के उठने के बाद कोई ऐसी चीज मतलब लेट होने वाली या कोई नुकसान वाली या आपका मजाक मस्खरा बन गया हो, है ना, किसी चीज की वजह से, तो वो पहले याद आ जाता है मुझे।
1: अच्छा,
5: वो हुआ ऐसा था कि मतलब पढ़ाई का जमाना था और ये था कि सुबह इबारत पढ़नी है, तो अरबी की किताब है बुलुगुल मराम, मुझे लगता है कि वो जब शुरुआत में हदीस की पहली किताब है, छोटी सी है।
1: अच्छा ओके।
5: तो ये होता था कि उस्ताद जब पढ़ाने आते थे तो वो इबारत पढ़वाते थे, जो सबक होती थी वो बारी लगी होती थी पूरे क्लास की कि आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी है इबारत पढ़ने की, अरबी की जो इबारत होती है वो पढ़ने की बारी होती, तो उस पर जबरदस्त पेस्ट तो लगा नहीं होता था।
1: ये देखा मैंने भाई, ये तो एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजिंग है। यस अग्री अग्री। फिर
5: सही है ना, तो आपको सारे कवायद के साथ वो तैयारी करके रात को पढ़नी होती है। इत्तेफाक से मैं गया था क्रिकेट खेलने,
1: ठीक है,
5: और वो हम्द होता था मदरसे में, उसमें सब लोग हाजिर होते थे, हम्द के बाद 20 या 25 मिनट का टाइम होता था क्लास में जाने का, मैं उसी में सो गया।
1: फिर
5: लेटे लेटे ऐसे हो गए पड़े रह गए और सब लोग चले गए, जितने थे रूम में कमी ने सब उठाया अपना अपना किताब चल दिए।
1: अरे तो किसी को तो उठाना चाहिए था, किसी ने नोट देखा ही नहीं, मतलब
5: किसी ने नहीं उठाया, सब देख देख के निकल रहे, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। और उनको लगा क्या कि ये मतलब मुकम्मल सोया हुआ तो है नहीं, ये बिस्तर पर ऐसे लेटा हुआ है खाली, वो मतलब ओग रहा है, आ जाएगा अभी।
1: अरे
5: सब चले गए और वहां घंटी शुरू हो गई, और एक यूनुस साहब थे वही पढ़ाते थे।
1: अरे पर ऐसे में ना
5: अल्लाह ताला उनको गरीब के जन्नत करे,
1: इसमें तो खर्रांटे होना बहुत अच्छी बात है, अगर आप खर्रांटे वरांटे मारते तो हो सकता है लोगों को पता लगता है ये कैसे लोग है भाई, किसी को ऐसी कौन सी पोजीशन थी कि लोगों को लगा कि आप सिर्फ लेटे हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई।
5: ऐसा हुआ था, सुनिए, जो हम लोग बेड मिला था सबका बेड एक दूसरे से चिपका हुआ होता था,
1: ठीक है,
5: और वो मुझे लगता चौकी नहीं गांव में बनती है अपने यहाँ, आप समझते होंगे शायद उसको, तो वो चौकी थोड़ा अपने हिसाब से साइज में बनवाते थे वो हॉस्टल वाले, और एक साथ में सबको लगा देते थे, सब अपना अपना बिस्तर लगा के।
1: अच्छा,
5: वो जो लिहाफ होता था ना वो दीवार से चिटका हुआ था, और उसी पर हम थोड़ा सा पैर ऐसे फैला के, और नहीं होता बैठ के ऐसे पीछे आपको दीवार पे कंधा वगैरह लगा के आदमी को नींद आ जाती है, उस हालत में सब लोग हमको छोड़ के चले गए। अब जब वो घंटी टन टन करके बजी, मैं भाई उठाया किताब और क्या छूटा क्या लिया, भागा सीधा। खौफ होता है एक, अब वो सारे बच्चे किताब उताब खोल के और बैठे हुए हैं, और वो भी अपना, और मेरी ही बारी थी इत्तफाक से, वो क्या कहते हैं इबारत पढ़ने की।
1: अच्छा,
5: अगर मेरी बारी ना होती पहले जाता पक्का था।
1: हाँ तो
5: मतलब, लेकिन अगर बारी है तो पहले ही तुम नामजद हो जाओगे ना।
1: हाँ हाँ
5: भाई इसकी बारी है कहाँ है तो पहले पता चल जाएगा ये एब्सेंट है। मैं तो ऐसे दो तीन लाइन बच्चे बैठते थे कोई एक गायब हो जाता तो वो इतने केयर नहीं करते थे, इतना ज्यादा नहीं केयर करते थे।
1: पर आप टाइम पे पहुंच गए ना तो, लागे।
5: नहीं नहीं मैं जब पहुंचा तो वो दूसरे से इबारत पढ़वा के और एक दो हदीसे पढ़ा भी चुके थे।
1: अच्छा ओके।
5: लेकिन जब मैं पहुंचा तो मेरी टोपी इधर कुर्ता इधर जैसे भी करके बहरहाल उन्होंने जब देखा तो ऐसे चश्मा निकाल के अच्छा आ गया यार। आई आई आई
1: भाई हमारे तो चार्जर से भी पटते हुए देखा
5: है मैंने। भिगो भिगो के मारा जाए तो कैसे मारते हुए ऐसा। आई आई तशरीफ रखिए। अरे भाई इनको जगह दीजिए आप बैठे भाई क्या करेंगे। तो उसी में एक लड़का बोल रहा है कि इसी की बारी थी तो बोले अच्छा ठीक है तो फिर जहाँ से पढ़ रहे थे वहीं से बंद करो पहले आप इबारत पढ़ लो।
1: अच्छा ओके।
5: हम इबारत पढ़ने लगे जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में इबारत पढ़ने लगे तो वो कोई हदीस थी हजरत आयशा से मरवी थी। अब वो क्या कहते हैं अरे अनहा कहने के बजाय मैंने अनहो कह दिया। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए रुकिए अब सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: क्या
5: दहशत में हर चीज उल्टी नजर आती है।
1: तो आपकी पिटाई तो तबीयत से हुई होगी।
5: नहीं नहीं पिटाई वाली तो नहीं बात हुई। हाँ। पिटाई से ज्यादा खतरनाक बात हुई।
1: अच्छा
5: बोल रहे हैं वो दहशत में हर चीज उल्टी नजर आती है।
1: हाँ।
5: लैला नजर आता है मजनू नजर आती है।
1: हाँ।
5: हजरत आयशा को तुम तो वो बना दिए अनहा।
1: हाँ।
5: अरे अनहो बना दिए।
1: हाँ।
5: ये कौन सी नया कानून आया भाई अरबी का।
1: पर ये
5: मुअन्नस और मुज़क्कर में फर्क नहीं है।
1: इसके अलावा तो आपके साथ कोई किस्सा नहीं हुआ ना। इसके अलावा तो कोई किस्सा नहीं हुआ आपके साथ।
5: नहीं उसके अलावा तो भले नहीं हुआ लेकिन वो पूरे क्लास वालों ने जो तपोड़ी पीट के भाई स्लैपिंग करके जो हंसा वो उसके बाद फिर हजरत ने बुला के सर का बाल जो पकड़ के पीठ पे दो तीन रख के दिया ना थपाक थपाक वो कहां से भूलेगा कबीर भाई।
1: वेरी गुड।
5: इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि जो दो तीन इबारत पढ़ने वालों में सरे पीरी तामी दो तीन थे उसमें से एक भाई भी था।
1: अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जमाल भाई वक्त थोड़ा सा कम है इंशाल्लाह फिर इस बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी 7:30 हो चुके हैं तो मुझे जिंगर भी चलाना है। मेरे भाई थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
5: अच्छा, अच्छा,
1: ओके मेरा भाई ओके भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो भाई ऑलरेडी बातों बातों में 7:02 बज चुके हैं। अभी मेरे साथ देते रहो ये आपको याद आती रहेगी ये बात। तो 7:03 हो चुके हैं करीब बट कुछ देर मिलते जाइएगा नहीं जिंगल द टाइम है।

0: FM 107. Time check.
1: आज मैं दुआ वाला कबीर फोन पे 7:05 और कुछ मैसेज आए, क्योंकि मैं पूछ रहा था कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि ज्यादा सोने की वजह से आपका कोई काम जो है वो छूट गया हो। तो मैसेजेस हैं, नदीम भाई ने उनके लिए मैसेज किया जो कह रहे थे कि अपनी शादी के दिन ही मतलब तैयारी करते करते आदमी लेट हो गया। वो कह रहे वाइफ से झगड़े में हर बार सुनाती होंगी कि तुमसे क्या उम्मीद करो, तुम तो शादी के दिन तैयार होने से पहले ही सो गए थे, क्या आदमी हो यार तुम। शहजाद सलीम वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग, एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई गुड मॉर्निंग। अहमद भाई ने मैसेज किया है और वो कह रहे हैं कि कबीर भाई ऑलरेडी मिसिंग यू फ्रॉम टुमारो। अरे भाई थैंक यू सो मच भाई, दैट इज ऑल्सो सो स्वीट, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भाई ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, होप यू वेल भाई, आपके साथ तला भाई को मिस भी करेंगे। मेरे तो एग्जाम में ज्यादा नहीं आते थे, वो कौन बच्चा है जो पूरे क्या समझा नहीं मैं क्या लिखा आपने, पर तला भाई आपके लिए मैसेज करें, तला भाई और आपकी कॉन्वर्सेशन को मिस करूंगा। ये मैसेज किया हकीम भाई ने, मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम, क्या है परसों ही ईद की नमाज मिस हो गई है। हकीम भाई मतलब ईद की नमाज सच में मिस हुई आपकी, या मुझे पिछले साल का इस साल कब का बता रहे हैं। भाई कह रहे हैं परसों की ही मिस हुई है भाई, ये तो ये गम तो अभी तक जिंदा होगा दिल में। समीर भाई कह रहे हैं कबीर भाई मेरे साथ तो परसों ही का सीन हुआ, ईद के दूसरे दिन 12:15 को मेरी ड्यूटी शुरू होती है, यहाँ 12:15 उधर होना ही होना है और मैं 11:51 में नींद से उठा और मज़े की बात है 25 मिनट का रास्ता भी है, फिर जो गाड़ी दवाई पहुँच गया 5 मिनट बाकी थे फिर भी। भाई बहुत बढ़िया समीर भाई, ये फास्ट एंड फ्यूरियस मत खेला करो भाई मत करो समीर भाई, ये मुझे लग रहा है इसी वजह से आपको ये पिंक विंक ट्रक दिखते हैं मेरा भाई। और कोई बात नहीं, मैसेज क्या है ये सूर्य भाई ने, सूर्य भाई थैंक यू सो मच मेरा भाई गुड मॉर्निंग। एक मैसेज है ये हमारे जो है इंजीनियर मोहम्मद फैजान, आपका मैसेज अभी पढ़ता हूँ, मैं एक सेकंड पहले एक कॉल उठा लूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो कबीर भाई।
1: मैं एकदम बढ़िया, भला चंगा, आप सुनाइए।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सोचा भाई सारा चल रहा होता है, किसी बहन की भी आवाज सुनाई दे जाए आपको।
1: देती है जी, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आते हैं माशाल्लाह, और बहुत सारी बहनें
2: जुड़ी हैं। आपको जो टॉपिक था ना वो भी बस कुछ वैसे ही
1: क्या समझा नहीं,
2: समझो मर्द हजरात के इंटरेस्ट के टॉपिक लाते हैं आप।
1: नहीं नहीं मर्द हजरात, अरे नींद का मर्द हजरात से क्या लेना देना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या आपका ये दिमाग का ना एक अलग थ्योरी आपने बना ली है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नींद से क्या ताल्लुक है सिर्फ मर्द हजरत के, तो नींद तो औरतें मर्द दोनों ही लेते हैं।
2: मर्द हजरत की नींद बड़ी बेफिक्री की नींद होती है, घर आके वो छुट्टी पे होते हैं।
1: अरे नहीं भैया ऐसा नहीं है। अभी देखिए आपको पढ़ाऊं, 3-4 मैसेज जो मेरे पास आए हुए हैं वो 3-4 बहनों के ही हैं, उन्होंने बताया कि उनके साथ भी क्या क्या कमाल कमाल के किस्से हुए, तो नींद का ताल्लुक दोनों से सिमिलर है।
2: कमाल की चीजें हुई, मैंने आपको लास्ट टाइम मेरा ख्याल एक कॉल में बताया था कि मेरी नींद पक्की वाली हुआ करती थी, मोहल्ले वाले उठ जाते थे, मैं नहीं उठ पाती थी। हम अपनी ड्यूटी लगा के जाते थे मेरी, के भाई तुम सबसे बड़ी हो। शादी की तैयारी के लिए रात में बाबा को टाइम नहीं मिलता था, वो गए और मैं सोती पड़ी रह गई। उन्होंने पूरा मोहल्ला आके हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा रहा कि आधी रात को इनका दरवाजा क्यों पीटा जा रहा है, बच्चे अंदर है, अम्मा अब्बा बाहर है, उनको घर में एंट्री नहीं मिल रही, मेरी ड्यूटी लगा के सोए हैं कि मुनीबा सबसे बड़ी है और आपने उठ के दरवाजा खोलना है। बेटा छोटे बहन भाई तो छोटे हैं, आपने उठ के हमारे लिए दरवाजा खोलना है।
1: पर अभी अभी आजकल होता है आपकी नींद के चक्कर में कुछ मिस होता है आपसे अभी आजकल हाल फिलहाल में।
2: मैं शादी का भी मुझे याद आ रहा था, एक बता रहा था शादी का याद फिक्र करे थे। शादी से एक दिन पहले पता क्या हुआ, जो मेहंदी वाली थी ना उसको कोई हमारी बहन जो है ना वो हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी सारा, मतलब सारी मैनेजमेंट सारे काम उनके जिम्मे थे, क्योंकि हम तो बस ऐसे थे जैसे पता नहीं हम कतर जा रहे हैं, पर खानदान में पहली शादी, घर में सबसे बड़े, हमें लग रहा था हमें तो ऐसा देश निकाला दिया जा रहा है, हमें कोई होश ही नहीं थी, हमारी छोटी बहन सारे काम करवा रही थी तो वो सब कुछ मैनेज करा रही थी। अब वो मेहंदी वाली पे उनको कोई डाउट हो गया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि पहली शादी है और मेहंदी अच्छी सी होनी चाहिए, वरना तो मेरा सारा ड्रेस व्रेस जो मैंने तैयार कराया उसका तो इम्पैक्ट ही खराब हो जाएगा।
1: ओहो,
2: तो जब वो कैंसिल कराया तो रात को सब लोग घर पे इकट्ठे हैं एक दिन पहले मेहंदी वहंदी मेहंदी वाली ऐसा कोई हमारे होता नहीं है लेकिन बस यार सबकी गैदरिंग थी और जब रात हो गई तो फिर अल्लाह दुल्हन को तो मेहंदी नहीं लगवाई। अच्छा अब से अपने कॉन्टेक्ट वगैरह उस जमाने में आपको पता है ज्यादा कोई मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे 2008 की बात कर रही हूँ।
1: अच्छा
2: फिर आधी रात को एक लेडी जिसको वो जानती थी कि ना वो सारी बहनें मेहंदी अच्छी लगा लेती हैं। अब ये तीन चीजें और 12 बजे के बाद हमने उनके घर पे रेड किया कि हमारी कल शादी है हमें मेहंदी लगा दो।
1: उन्होंने आने दिया आपको? ये बहुत बड़ी बात है।
2: मेहंदी रात 2-3 बजे तक चली।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह
2: माशाल्लाह।
1: ज्यादा चार्ज भी किया होगा उन्होंने, ऐसे थोड़ी भी छोड़ दिया होगा आपको।
2: चार्ज का तो मुझे याद नहीं है।
1: कहीं लग जाए
2: अच्छी लग जाए, ये इम्पोर्टेंट था कितना चार्ज किया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं।
1: वही ना, मैं उस टाइम बंदा सोचता नहीं है, ज्यादा खर्चा हो जाता है चक्कर में। नहीं बट ठीक है।
2: बहरहाल जब रात को 3 बजे घर आए और अगले दिन लंच के टाइम पे बारात आनी थी, आप फिर सोचिए क्या हुआ। जब हम सोए तो ऐसा सोए कि कोई हमें उठाए ना, और जब उठे तो ऐसे उठे कि क्या हो रहा है हमारे साथ आज।
1: ये जो किस्से है ना, ये आपको ताउम्र याद रहेंगे। कई मरतबा क्या होता है आदमी या तो इनके चक्कर में या तो पंचुअल बन जाता है, फिर और ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ।
2: और फिर हुआ क्या, 11 बजे उठाया गया, अल्लाह की बंदी तुम्हारे बगैर शादी नहीं हो सकती, तुम ब्राइड

0: अच्छा ठीक है, तो आप देखिएगा, आप देखिएगा, मैं आपको एक एक मेरे पास
1: तैयार हुए ना, हाँ अनाड़ी हमने अपने डिजाइनर को बोला भाई तैयार भी कर दो, पार्लर वालियों के बहुत हाँ, सारा आर्टिफिशियल ओवरलोडेड मेकअप उस टाइम पसंद नहीं थे, हाँ, उसने जरा कोई अपना जो है ना अच्छी सी प्रोफाइल बनाई के भी मतलब बातों से हाँ, भी अच्छा कर देंगे, अब वो उसके हाथ कांप रहे हैं, तुम लोग इतना लेट आए, इतना लेट आए, और हुआ क्या, निकाह के पेपर से साइन कराने के लिए जब दुल्हन पहुंची तो बाराती जो थे ना वो नको नक गुस्से में भरे हुए थे, दुल्हन इतनी लेट क्यों हो गई है।
0: अरे दुल्हन दूल्हा को तो माफ कर देना चाहिए इन दिनों में, मैं तो यही मानता हूँ, छोड़ दो बेचारे को,
1: कोई नहीं करता,
0: कर देना चाहिए।
1: अगर कोई बंदा मेरे ससुर जैसा हो ना, जो पाकिस्तानी शादी में 12 बजे पहुंचना था वो 11:30 पहुंचे हुए थे,
0: माशाल्लाह क्या पंचुअलिटी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: और क्या, उनको तो मैं बोलती हूँ माशाल्लाह रोबोटिक है, कहते हैं आर्मी में जॉब की है मैंने, अगर लाइफ में आर्मी का डिसिप्लिन हो तो लाइफ बहुत अच्छी चलती है।
0: ओके फिर तो टेंशन वाला सीन है, ठीक है मैन, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ देर में कहानी आएगी तो इंशाल्लाह सुनने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया मैन, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और एक आदमी मैसेज आया है, भाई आज कोई नॉस्टैल्जिक गाना चलना चाहिए, बिल्कुल चलेगा भाई, पहली अमन भाई ये मैंने भी नोटिस किया, किधर गया मैसेज, मैं एक मैसेज पढ़ने वाला था इंजीनियर साहब का, तो इंजीनियर फैजान कह रहे हैं कह रहे हैं मैं कतर में हमेशा अकेला ही रहा हूँ, कंपनी में, कंपनी की बस आती थी लेने के लिए डेली, मुझे मैनेजर ने कहा था कल कंस्ट्रक्शन साइट पर मीटिंग है, 9:30 सुबह पहुँच जाना, ऑफिस टाइमिंग 7:00 की थी, मैं उठा 8:30 पर था, फिर फौरन नहा धो के सीधा साइट पर गया, ऑफिस नहीं गया, 9:15 तक मैनेजर सेड आप लेट आए हो, मैंने कहा मैं स्टोर में चेकिंग के लिए गया था सर, खैर अब संभाल लिया, कोई इशू नहीं हुआ। ये तो आपकी चाल है इंजीनियर साहब, ये आपने दिमाग चलाया है अपना। तौफीक साहब वालेकुम अस्सलाम, देन मैसेज अस्सलाम वालेकुम मुबशिर आलम साहब, देन अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मुबारक आपको भी, मुबारक बिलेटेड ईद मुबारक मोहम्मद साहब, देन मैसेज अस्सलाम वालेकुम, कभी कभी कोई इशू नहीं हुआ, कोई कुछ ऐसा कि याद रहे, अच्छी बात है जावेद इकबाल साहब, जिनको नहीं याद रह रहा है, इनके साथ ऐसा किस्सा नहीं हुआ, बड़ी बात है। क्या भाई रात को ऑफिस में ही गुजारे क्या, क्यों रात में ऑफिस में क्यों गुजारूंगा मैं, अरे भाई इतना भी कोई टाइम का गैप है, स्टूडियो में रह रहे हैं आप, सुबह 107 के स्टूडियो में रह रहे हैं, समझा नहीं, वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, ये इतनी बहकी बहकी बात क्यों कर रहे हैं सब लोग मेरे साथ, क्या हो क्या भाई। अच्छा बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट ट्रैक, मतलब पहला ट्रैक इनफैक्ट, आज की कहानी बड़ी खास है क्योंकि आज मेरे लिए लास्ट मॉर्निंग शो, उसके बाद में इवनिंग में मिलूंगा, सो मॉर्निंग वालों आज जितने फ़ायदे उठाने शो के उठा लीजिए, फिर जब याद करेंगे हिचकी आएगी, बता रहा हूँ, मतलब मुझे आपको क्यों आएगी, टेक्निकली इमरान खान एम्पलीफायर 7 14 666 2107 पर आपको ही बताना है कि अभी नींद की वजह से मिस हुआ है कोई काम, लेट्स गो।

खान साढ़े 17 मिनट जी देखो अभी गुड इवनिंग निकलते रहेगा, गुड मॉर्निंग अभी कल मेरे साथ ही होगा, गुड मॉर्निंग निकलते रह जाएगा। एंड अस्सलामुअलैकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। मैं कह रहा था कभी कभी ऐसा होता ना नींद की वजह से आदमी कुछ चीज़ें भूल जाता रह जाती है। आज तो मुझे कमाल की किस्से सुनने को मिले। एक भाई बाकायदा एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास लेके सो गया, जहाज उड़ गया। एक भाई अपनी खुद की शादी में तैयार होने से पहले उनको नींद आ गई। देख रहे कहाँ से आई जनता। एक मैसेज आया असलान भट्ट साहब का, सलाम कबीर भाई, द शो इज रॉकिंग इज ऑलवेज, यू विल डेफिनेटली मिस योर चार्मिंग वॉइस एंड इलेक्ट्रीफाइंग लाफ्टर। भाई आपको बेहद बेहद मोहब्बत मेरे भाई। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि सुबह भाईचारा बहुत है, अभी बहन भी कह के गई हैं, भाईचारा है बहुत सारा है माशाल्लाह। एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरी जितने भी लोगों से बात होती है सुबह या फिर शाम में, वेन एवर इट हैपन्स, काफ़ी रॉ बात होती है, उसमें फॉर्मल बात नहीं होती। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। एंड असलान भट्ट साहब, थैंक यू सो मच भाई, आपको चार दिल भेज रहा हूँ, कबूल फरमाएं। एक मैसेज है, थैंक यू सो मच मेरे भाई, ये फैसल मिर्ज़ा भाई ने मैसेज किया। फैसल भाई बढ़िया डीप ला ली भाई, कहते हैं किसी नज़र लग गई भाई आपको, सोना बर्दाश्त नहीं हुआ भाई को। कह दिस इज़ लाइफ, नौकरी होती है, अपन की मर्जी नहीं चलती, रिमोट किसी और के हाथ में होता है, सब आपको मिस करेंगे। जजाक अल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देन मैसेज किया है प्रिंस भाई ने, वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है, क्या वकास, कौन वकास कह रहे हैं, वकास कब आएंगे, कौन वकास। एक मैसेज, गुड मॉर्निंग कबीर जाने, आज सोता ही रह गया और काम पर नहीं जा सका। And I texted my boss, not feeling well today and won't be able to attend work. ये मैसेज क्या है, तौकीर अहमद भट्ट साहब ने। ये लोगों को पता नहीं है कितनी बड़ी प्रिविलेज है, समझ रहे हैं आप, अपने बॉस को ओवर स्लेप्ट होने के बाद ये कह देना कि बॉस में बीमार था और उधर से आ जाए, इट इज़ ओके तौकीर, बेटा आराम करो। ये कितनी बड़ी प्रिविलेज है पता आपको, इतने सारे लोग जल रहे होंगे। एक भाई जो है मुझे कॉल भी करें, उनकी कॉल मिस हो गई है, उन्होंने बोला कि मुझे कॉल करें। एक सेकंड, मैं कॉल मिलांदा पाजी, एक सेकंड बस, लग गई है कॉल, उड़ा फोन तो चक्को पाजी। एक मैसेज है, इनके मामू का लड़का वकास। मुझे भी लग रहा है ये मामू के लड़के वकास की बात हो रही है, कहाँ है वकास, दिख नहीं रहा सुबह से। एक और मैसेज आ रहा है और इन्होंने कॉल नहीं उठाई है। मेरा भाई कॉल उठा लो, अभी आपने बोला कॉल करने को, मैंने कॉल करी, अब वो उठा नहीं रहे, एक मिनट के अंदर मुझसे नाराज़ हो गए, क्या बात है। एक मैसेज, सोने की वजह से तो सोना ही बंद हो गया है। टेंशन में नींद नहीं आती इफ़ अर्ली मॉर्निंग मीटिंग हो। भाई अगर मुझे मेल आ जाए ना कि सुबह सुबह मीटिंग है, मैं नहीं सो पाता, ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। जो आपने भी मैसेज किया ना, ये हमारे भाई हैं अफजल उस्मानी भाई, मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ। अगर सुबह मीटिंग का ईमेल आ गया और मैं शाम का शो कर रहा हूँ, मेरी रूह कांप जाती है भाई, मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरी किडनी मांग ली हो। रमेश यादव भाई, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक भाई ने मैसेज किया है, कबीर भाई मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता, आप अपने बॉस का नंबर दीजिए, मुझे बात करवाइए या ईमेल बताइए, मैं चाहता हूँ कि आप सुबह में ही रहें। अरे अरे अरे, इतनी क्रांति मत लिखिए भाई, थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है, जजाक अल्लाह। कबीर भाई स्टोरी कब स्टार्ट कर रहे हैं, 7:30 से 7:40 भाई, 7:30 क्योंकि 7:40 थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएगा, देन दूसरे आर में कहानी चली जाती है, सो कहानी में 10 मिनट के अंदर शुरू कर दूंगा, सो 7:30 ऑन द क्लॉक, ओके। ये एक और मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं क्या शाम में जाओ नहीं बर्दाश्त कर सकते, हाँ ना तला भाई कह रहे हैं तुम शाम में जाओ, मैं रोज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़।

देखिए मैं तला भाई का बनाता हूँ, तला भाई जो है जब मैं शाम के शो में चला जाऊंगा तो तला भाई का आप दूसरा रूप देखेंगे, ये बाकी शोज में जाएंगे और आप जनाब करके बात कर सुनाएंगे। जी जी जी हाँ जी, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैं क्या बताऊँ, ऐसी सारी उर्दू इनकी वहाँ पे खर्च हो जाती है। मेरे साथ जब ये बात करते हैं तो इनके अंदर का कराची वाला बाहर आता है एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट। अच्छी बात है, ये मिस करोगे बेटा तला, टुस के भागे रहोगे, मगरमच्छ के आंसू तो वैसे ही हैं आपके। खादिर अब्दुल्ला दी भाई वालेकुम अस्सलाम, एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, कल कहना ना गुड वाली मॉर्निंग। अब इवनिंग शो टाइम भाई, इवनिंग शो टाइम 5 से 7 बजे मेरा भाई, 5 से 7। ये सुदीप तो सर ने मैसेज, सुदीप तो सर एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ आपको, बहुत बढ़िया फोटो लग रही है माशाल्लाह, जिसने भी क्लिक करी है माशाल्लाह बहुत बढ़िया फोटो है आपकी। सुदीप तो सर के बाद एक मैसेज और आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कल से मेरी नींद कौन भगाएगा, आई एम गोना मिस यू मेरा भाई, थैंक यू सो मच। आज मुझे इतने सारे, ऐसा लग रहा है कि आज मुझे सारे के सारे लव लेटर्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच शेख इरफान भाई का मैसेज। इरफान भाई बढ़िया फोटो लगाई आपने मेरा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, दाढ़ी मेंटेन करना कोई आसान बात थोड़ी। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, स्टोरी टुडे गिव ब्रदर, वेट ब्रदर, क्या अच्छा मैं स्टोरी दूँ ऐसा कह रहे हो अभी में पहले कर भाई। एक और मैसेज था, इन्होंने लिखा था कॉल मी, पठान भाई आपने लिख दिया कॉल मी फिर आप चले गए, तो अभी बात इस चक्कर में नहीं हो पाई है। एक मैसेज है, 2001-2000 की बात है, 25 जुलाई, मिस्ड माय फ्लाइट इन फ्रांस एंड आई एम अलाइव। क्या बात कर रहे हो प्रिंस भाई, प्रिंस भाई मैं प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कॉल करूँ, प्लीज़ प्रिंस भाई प्लीज़ अलाउ मी ताकि आप ये किस्सा सुना सकें। एक मैंने, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ, अनीस भाई जामिया वाले, जामिया वालों दिल्ली में मिलो, हलीम बिरयानी खाएंगे दबागे। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, वालेकुम अस्सलाम अबू साद साहब, थैंक यू सो मच। तला भाई लिखते हैं भाई इसको लव लेटर नहीं दफ़ा करना बोलते हैं। देखो तला भाई, ये जो जलने के बाद जो धुआं उठता है उस धुएँ से पॉल्यूशन नहीं होता, तो ऐसा धुआँ चलेगा पर ज़्यादा हो जाए तो वो भी नुकसानदायक है ना, तो प्लीज़ इस बात का ज़रा ध्यान रखें, जलने से कोई ऐसा हो तो इलाज नहीं है तला भाई। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि 25 जुलाई को प्रिंस भाई ने मैसेज किया है 2000 में, अगर ये अपनी फ़्लाइट मिस ना करते तो दिक्कत हो जाती, बिकॉज ही मिस्ड हिज फ़्लाइट एंड उसी वजह से जिंदा है भाई साहब, ये तो किस्सा आपको बताना चाहिए प्रिंस भाई। एक नवेद भाई का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, 5 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस जा रहा हूँ, हम ऐसा लग रहा है कि आज भी घूमने जा रहा हूँ। मिस यू भाई, नवेद भाई थैंक यू सो मच। ये होता है जिनको, जिनके लंबा वीकेंड रहा है, हम तो आ रहे थे ऑफिस में, जिनके लंबे चौड़े वीकेंड रहे हैं और उसके बाद वो लोग ऑफिस में लौटे हैं, उन्हें सच में यही लग रहा होगा कि आज भी घूमने तो नहीं निकला मैं, है आज कहीं छुट्टी तो नहीं है, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। नवेद भाई अपने आप को चूटी काटते काटते पहुंचना ऑफिस में। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, 4-5 दिन बहुत मिस किया, लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम इब्रार भाई, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, जज़ाकल्लाह। ओके तो एक गाने के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कभी ज़्यादा नींद लेने की वजह से ऐसा हुआ है कि आपके मिस हो गया वो मामला, आए अगर ऐसा हो तो बताइएगा। बाय द वे इवनिंग वाला जो हमारा प्रोमो है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक गाने के बाद, रेडी हैं आप, बिकॉज हमने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, इट इज़ ऑब्वियसली अ रैप सॉन्ग लेकिन उसे थोड़ा सा हमने बहुत बहुत एक ट्विक दिया है, तो अगर आप इवनिंग का प्रोमो सुनने के लिए तैयार हैं, विच आई एम रियली एक्साइटेड टू मेक यू लिसन, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैसेज कीजिएगा 666-22-107 पर, क्योंकि बहुत टाइम से आपने रैप सुना भी नहीं है मुझसे, सो इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट इट इज़ कमिंग एक गाने के बाद। Yeah. Hey. Charge. 7:25. दोहा वाला कबीर आपके साथ।

0: बंटाई की पब्लिक, बंटाई के बाद अब हमारा भी सुन लीजिए. दिस इज प्रोमो विच वी क्रिएटेड. ये प्रोमो जो है ये शाम के शो के लिए. वैसे भी बहुत टाइम से आपने मुझसे रैप नहीं सुना था, तो आई होप आप तैयार हैं. प्लीज वॉल्यूम बढ़ा के सुनिएगा. बहुत मोहब्बत से बनाया है ये प्रोमो. यू रेडी? 3, 2, and 1.
1: हम भी वो हैं जो कभी

0: हाँ जी, ये था हमारे शाम का प्रोमो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। टाइमिंग बता दी आपको, दिस वाज, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ हमारे हमारे जो साउंड इंजीनियर हैं शहबाज को, उन्होंने इसको पूरी तरह से मिक्स किया है और मैंने लिखा है, मैंने इसको परफॉर्म किया है। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में एंड बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ किया है। अच्छा, एक मैसेज है सिद्रा बहन का, उन्होंने फेयरवेल मैसेज भेजा है। अरे थैंक यू सो मच बहन, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन थैंक यू फॉर मेकिंग आर मॉर्निंग, श्योरली गोइंग टू मिस दिस फ्रेश स्टार्ट विद सो मच फन एंड लाफ्टर। आपके साथ साथ विल मिस योर कॉन्वर्सेशन विद तलहा, नदीम एंड विमलेश भाई टू। तीनों को क्रेडिट जाता है, विमलेश भाई, नदीम भाई, तला भाई। लेकिन सो जल्दी जल्दी शाम में जाओ, जल्दी से वापस मॉर्निंग में आओ। अरे बकरीद बहुत अच्छी रही, हॉलीडेज कब शुरू हुए कब खत्म हुए पता नहीं लगा। ईदी भी मिली मियाँ, आपके शो पर वाउचर भी जीते। अच्छा माशाला, हाँ आई रिमेंबर येस्टरडे ओनली नो। लिखते हैं ओवर स्लीपिंग इत्मीनान वाली नींद हमारी भी है, आई नो वोंट वेक अप ऑन टाइम, तो मैं काम अधूरे छोड़ के सोती ही नहीं, पूरा काम खत्म करके ही सो जाती हूँ। थैंक यू सो मच बहन एंड फॉर दिस रियली स्वीट मैसेज, इट दिस रियली रियली मीन्स अ लॉट, और आप जानती हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। वैसे कबीर भाई, आपका भाई ऊपर सबसे ऊपर रैपर निकले, थैंक यू सो मच भाई, माशाल्लाह आप तो शाम में आए शाबाशी देंगे, शाबाशी देंगे। नदीम भाई थैंक यू सो मच, लिखते हैं वेरी नाइस, ओके जजाकल्ला, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान भाई ओके के भाई, यू योर रैप सॉन्ग इज टॉप नॉच, वो पूरा वॉज अ बॉम्ब, थैंक यू सो मच भाई। नावी भाई, बस नावी भाई नहीं, जेएसके भाई हमारा, थैंक यू सो मच भाई, चलता रहना चाहिए बस ऐसे ही, क्योंकि बहुत टाइम से प्रोमो सुनाया भी नहीं था आपको। सुदीप तो सर का वाओ परफेक्ट फॉर द परफेक्ट प्रोमो, थैंक यू सो मच भाई। एंड बिफोर आई प्रोसीड, आज की जो किस्सा है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आज का जो किस्सा है बहुत ढूंढ के लाया हूँ मैं, तराश के लाया हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितने भी किस्से आएंगे वो कल से शुरू होंगे, कल इवनिंग में कहानी आएगी, बट बिफोर दैट एक गाने के बाद सीधा। पर गाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको प्रोमो सुना देना चाहता हूँ शाम का, बिकॉज आई विल मीट यू नाउ कल से शाम के 5 बजे, एंड दिस इज द प्रोमो अगर आपने मिस कर दिया था, सो ये सुनिएगा एंड लेट मी नो योर फीडबैक।
1: हम भी वो हैं जो कभी

तो 974 इवनिंग नाम है, अब ड्राइव थ्रू नहीं होगा बिकॉज हमने सोचा कि व्हाई नॉट पुट कोड्स इन द शो क्रिएटिव पर्पस के लिए. इस गाने के बाद गुरु रंधावा ये कच्चल सीधा कहानी आ रही है, सो आप डॉट डॉट भेजिएगा सो दैट आई कैन सेंड यू लेटर ऑन 666-222-107.

मैं बस दो बड़े ही शानदार मैसेज मेरे पास आए, मैं उन्हें मिस नहीं कर सकता, मैं पढ़ देता हूँ। इनफैक्ट तीन है, एक मैसेज प्रोमो बेस्ट है, थैंक यू सो मच भाई, गर्दा उड़ा दिया मैसेज का, तला भाई ने, तला भाई थैंक यू। राणा भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, सुबह की हल्की हवा और एफएम 107 पर कबीर भाई का मजाक हो तारीफ वाला प्रोग्राम चल रहा हो तो आज हमारा आखिरी मॉर्निंग शो एक क्या चुभती हुई बात बन गई है। कल से शायद कुछ भी मिस ना हो मगर आज हम इसे हल्की मुस्कुराहट को याद रखेंगे जो ज़रा बेपरवाही के साथ आई है। अरे रे रे रे रे मेरा भाई, और सादिक भाई कह रहे हैं कि एफएम 107 की टीम ये सोच के आपको शाम में शिफ्ट कर देती है कि सुबह की टीम क्या शाम की टीआरपी इंक्रीज कर दें। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर बीइंग सो सो नाइस टू मी। प्रिंस भाई ने मैसेज किया है, भाई इन्होंने अपना किस्सा बताया, कह रहे हैं मैं अपने अंकल के साथ फ्रांस गया था ऑन अ ट्रिप, वहाँ मुझे एक स्ट्रीट पपी बहुत अच्छा लगा, मैं उसे होटल ले आया, अंकल को बहुत गुस्सा आया, मुझे वो पपी अपने साथ दोहा लाना था बट ही रिफ्यूज्ड, सो मैं फ्लाइट की टाइम पर टेरिस गार्डन में छुप गया सो गया। वी मिस दैट फ्लाइट बट मेरी खूब पिटाई हुई प्लेन क्रैश की न्यूज़ के बाद भी किसी ने मुझे थैंक्स नहीं कहा और सॉरी भी नहीं बोला, वेरी ट्रेजिक। अरे भाई आप इतने बड़े सेवियर बने उसके बाद आपकी फिर भी पिटाई हुई, नहीं अच्छी बात है, पिटना तो चाहिए, मैं भी दो हाथ साफ कर देता वैसे तो। एक मैसेज है, परफेक्ट प्रोमो परफेक्ट रैप, थैंक यू सो मच सर। ओके तो अब जो है मैं आज का किस्सा शुरू कर रहा हूँ एंड आई होप आप तैयार हैं। मैं भी एक टाइम रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँ वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बाकी 666-22-107 नंबर है और आज के जैसे मैंने किस्सा कहा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा खास है, वैसे तो हर कोई किस्से के बारे में ऐसे बोलता हूँ, मैं बहुत बुरा सेल्समैन हूँ नहीं। बस सुन लो भाई आप, इसके बाद तो फिर शाम में ही सुनने को मिलेगा आपको। तो जो लोग आज आ चुके हैं रिकॉर्डिंग ज़रा ऑन कर ली जाए। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस गाने का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, गाने किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है। इस केस स्टडी को करने के लिए मुझे ईद के तीसरे दिन को पूरी तरह लगाना पड़ा है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ इस मेहनत को ज़रूर सुनिएगा। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए मुझे कई साल पीछे नहीं जाना पड़ेगा। अमूमन होता है ना कि हमें बहुत साल पीछे जाना पड़ता है, वी हैव टू इमेजिन दैट वर्ल्ड 1800s 1900s, लेकिन आज का किस्सा सुनने के लिए चलते हैं जरा 2023 में, महज 3 साल पहले। इनफैक्ट एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 3 साल पहले ये किस्सा शुरू है, होता है 25 मई 2023 को। तो एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था जोंग यू जोंग। जोंग जो थी वो बुसान में रहती थी और अपने दादा दादी के साथ रहती थी। इस वक्त 25 मई 2023 को वो अपने कमरे में थी, उसके कमरे में एक छोटा सा बेड था, एक डेस्क थी, वहां पे लैंप था और वहाँ पे वो पढ़ाई कर रही थी। एक किताब उसके सामने रखी हुई थी जिसमें वो पूरी तरह से खोई हुई थी। जहाँ पे वो रहती थी बुसान, जिन्हें नहीं पता बता दूँ, बुसान सेकंड लार्जेस्ट सिटी है साउथ कोरिया की और बहुत शानदार है। बहरहाल तो डेस्क पे किताब थी और उसमें बिल्कुल सर झुकाए लैम्प की रोशनी में जोंग जो थी वो बस उसको रटने की कोशिश कर रही थी, वो तैयारी कर रही थी एक बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम की, बहुत नर्वस थी, पर वो जितनी भी कोशिश कर रही, जितना भी फोकस रखने की कोशिश कर रही थी सब फेल हो रहा था। शी कुड नॉट स्टडी प्रॉपरली। उसने सोचा रट लेती हूँ, फिर सोचा थोड़ा पढ़ लेती हूँ, फिर सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। शी ट्राइड एवरीथिंग लेकिन दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ रजिस्टर ही नहीं हो रहा, एकदम स्कैटर्ड ब्रेन। और इसीलिए क्योंकि वो पढ़ाई में इतनी ज़्यादा खास नहीं थी तो बहुत टाइम से ट्यूटर्स ढूंढ रही थी कि कोई ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने के लिए मिल जाए, और लगातार उसने ढूंढा लेकिन कोई अच्छा ट्यूटर मिल ही नहीं रहा, और इतना मुश्किल हो रहा था कि वो परेशान हो चुकी थी। उसे एक ऐप मिली जिसके जरिए उसने सोचा कि चलो ऐप के जरिए हो सकता है मिल जाए। एक ऐप है साउथ कोरिया में जो कि स्टूडेंट्स को, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को स्पेशली, ट्यूटर्स जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उनसे कनेक्ट करती है। क्योंकि इससे पहले उसने जब भी ढूंढा तो या तो जो पढ़ाने वाले हैं ट्यूशन वाले हैं उनका टाइम मैच नहीं होता, या वो अवेलेबल नहीं है, या जम नहीं रहे हैं, वाइब नहीं आ रही, क्योंकि आजकल तो बच्चों को पता ही आपको वाइब भी चाहिए होती है, तो बहुत मसले हो रहे थे। मगर इस ऐप के थ्रू
जो जोंग को मिल गई थी, जिसके जरिए वो ट्यूटर्स तलाश रही थी, उसमें वो फिर से लग गई। उसने फोन खोल के वापस चेक किया, लेकिन कोई नोटिफिकेशन ही नहीं था, उसकी रिक्वेस्ट पे कोई नहीं आया था। उसने इसी ऐप के जरिए 50-60 मरतबा ट्राई किया था कि कोई ट्यूटर मिल जाए, कोई हेल्प कर दे उसकी पढ़ाई में। उसका बहुत मेजर एग्जाम था 9th ग्रेड का, उसने ये बाकायदा सब कुछ अपलोड भी कर दिया था कि मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, मुझे हेल्प चाहिए, बट या तो कोई अवेलेबल नहीं है या इस ऐप के जरिए भी कोई गुड फिट नहीं मिल रहा है। अब इस रात जब वो डेस्क पे अपनी पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी और फोन साइड में रख दिया था, एकदम से डिस्ट्रैक्शन, वो जो फोन है उसका नोटिफिकेशन बज हुआ एकदम से। तो जब वो बजिंग आवाज आई, वो वाइब्रेशन की आवाज आई, तो उसने चाहकर ना चाहकर भी, क्योंकि अंदर बहुत कन्फ्लिक्शन थे उसके मन में कि क्या करे, उस कन्फ्लिक्शन के चलते उसने फोन उठाया और फोन उठा के नोटिफिकेशन देखा। इस बार जो नोटिफिकेशन था उसको देख के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। नोटिफिकेशन था उसी ऐप से, जिस ऐप के जरिए वो एक ट्यूटर ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए थी क्योंकि एक पोटेंशियल ट्यूशन पढ़ाने वाले ने मैसेज कर दिया था। मैसेज देख के उसे बड़ी खुश हुई, उसने प्रोफाइल खोली और जो प्रोफाइल खोली तो उसमें नाम था चे युन। चे युन जो थी वो 26 साल की लड़की थी, कॉलेज स्टूडेंट थी और फ्लुएंट रही इंग्लिश में, लाइक शी वॉज रियली रियली गुड इन इंग्लिश। तो उन्होंने ही रिप्लाई किया था इस ऐप के जरिए कि वो ट्यूशन देने के लिए तैयार है। चे युन ने बोला कि मैं अवेलेबल हूँ और कल के बाद कभी भी हम ट्यूशन शुरू कर सकते हैं। मगर एक मसला था, मसला ये था कि ट्यूशन देने को तो तैयार है चेयुन, लेकिन एक्सक्लूसिवली अपने अपार्टमेंट से, वो उस अपार्टमेंट से नहीं लेवा उन्होंने बोल दिया ना। और जो उनका अपार्टमेंट था वो कोई करीब नहीं था, तो मतलब जियोंग को अगर ट्यूशन के लिए जाना है तो उसे साउथ कोरिया के बिल्कुल नॉर्थ साइड में शहर की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि बहुत दूर है उसके लिए। और वो सोच रही थी कि अभी क्या करे, उसके दादा भी मानेंगे नहीं और इतना स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, मगर वो स्ट्रगल कर चुकी है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है। उसने कहा चलो मैं मना लूँगी। तो उसने जैसे तैसे जिद करके घर वालों को मनाया और फैसला किया कि वो जाएगी इतना दूर पढ़ने के लिए। सो शी इमीडिएटली स्टार्टेड पैकिंग, चलो भाई अब जो है मुझे वहीं जाके पढ़ना है। एंड ओके हो गया मामला। अब पहली मुलाकात होनी थी 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद 27 मई को जोंग जो थी वो इस कोने में साउथ कोरिया के पहुंची ट्यूटर चे युन के अपार्टमेंट के सामने, जो उन्होंने मैसेज करके बता दिया था ये मेरा अपार्टमेंट है। 1 घंटा लगा बस से ट्रैवल करने में, शी वॉज रियली रियली टायर्ड। जोंग जो थी उनके साथ बस्ता भी था, स्टडी मटेरियल था, जस्ट इन केस ज़रूरत पड़ जाए कुछ और भी पूछना हो। तो पूरी तैयारी के साथ जोंग पहुंची, दरवाजे पे नॉक किया अपार्टमेंट के दरवाजे पर, एंड सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स, चे युन ने दरवाज़ा खोला एंड शी वॉज स्माइलिंग राइट देयर। सामने देखा जोंग ने, क्या क्या बात है, प्रोफाइल पिक जैसी ही है, बिकॉज शी थॉट कि पता नहीं कौन होगा क्या होगा, बहुत डर लग रहा था ना कि 1 घंटा दूर ट्रैवल करे, किसी से मिलने जाना है वो भी ट्यूशन के लिए, क्या पता कौन क्या निकले। बट शी वॉज रियली हैप्पी, उन्होंने हाथ मिलाए, चाहिए उन्होंने कहा कि अंदर आ जाओ, वो अंदर गई। अंदर जैसी एंट्री ली जोंग ने, तो जोंग अपार्टमेंट को स्कैन कर रही थी, देखा कि छोटा सा अपार्टमेंट है, एक बेड है, बेड के साइड में सोफा पड़ा हुआ है सेम एरिया में, किचन और बाथरूम जो है वो उसी के इंस्टॉलेशन से एक तरीके का एक्सटेंशन है इन्हीं दोनों कमरे का, तो छोटा अपार्टमेंट है। पर जोंग वो स्माइलिंग क्योंकि बड़ा क्यूट सा अपार्टमेंट था ये, बहुत प्यार से रखा हुआ। तो जोंग शी स्टार्टेड स्माइलिंग, उसने अपना बैग जो था जो काफ़ी भारी बस्ता था वो साइड में रखा और चे उनके साथ बैठ गई। तो चे उनने बैठते के साथ ही बोला, अच्छा बताओ क्या, किस बारे में, कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो जोंग ने बताया कि मुझे, मेरा इंग्लिश एग्जाम है, प्लीज़ आई रियली नीड योर हेल्प, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने बोला चाहिए उन्होंने, या ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर, इनफैक्ट ये तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि मैं इसी चीज़ को पढ़ाती आई हूँ, एंड आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश, इनफैक्ट मेरी काफ़ी फ्लुएंसी है इसमें। तो चाहिए सुन के बड़ी खुश थी, अरे वाह माशाल्लाह। तो जे युंग ने एक्साइटमेंट में ये भी कहा कि चलो मैं जो हूं ना और भी किताबें लेके आई हूं, शुरू कर देते हैं पढ़ाई करना। तो जब चे युंग ने सुना कि अभी से सब कुछ शुरू, तो चे युंग ने बोला अरे रुको थोड़ा सा, जल्दी क्या है।
मैं बस पानी लेके आती हूँ, देन विल स्टार्ट योर स्टडीज। तो चेयून जो थी जिनका अपार्टमेंट था वो उठ के गई और पानी लेने के लिए किचन की तरफ गई। जेयूंग जो थी वो अभी बैठी हुई थी सोफे पे और अपने बैग से स्टडी मटेरियल निकाल रही थी, तैयारी शुरू कर रही थी। चंद घंटों के बाद जो हुआ मैं वहां ले चलता हूं आपको, देन आई विल कम बैक टू द स्टोरी। तो चंद घंटों के बाद एक टैक्सी ड्राइवर जो था वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बुसान इसी एरिया में घूम रहा था, धीरे धीरे अपनी टैक्सी को चला रहा था एक साइड वॉक के पास में, बिल्कुल फुटपाथ के पास में चिपकाते हुए धीरे धीरे, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं था, अब देर रात हो रही थी। उसने कहा चलो हो सकता है कोई पोटेंशियली मिल जाए, कोई कस्टमर ही मिल जाए, यू नेवर नो। तो उसने अपनी जो कैब की ऐप थी वो बंद करी और सोचा कि अगर कोई रास्ते में मिल गया तो मिल गया, वरना ठीक है। और ऐसे ही गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए उसकी नज़र जो पड़ी वो नज़र राइट हैंड साइड पे पड़ी, एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे। उसने देखा कि तकरीबन अपनी 20s में एक लड़की जो है वो नीचे खड़ी हुई है, और वो जो लड़की है उसके पास जो है एक ब्लैक सूटकेस है और वो जो है दूर से हाथ हिला रही है, मतलब कैब के लिए बुला रही है। तो उसने देखा कि वाह पोटेंशियल कस्टमर, और जो ये ड्राइवर साहब थे इन्होंने उसको फॉलो किया, उस तरफ चले गए। उन्होंने पूछा जी मैडम बताइए, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आप नेकडोंग रिवर चलेंगे क्या? तो ड्राइवर ने सोचा नेकडोंग रिवर, एकदम से घंटी बजी दिमाग में। उसने बोला कि ये मैडम काफ़ी दूर है, थोड़ा ज़्यादा किराया लगेगा, मतलब क्योंकि नाइट चार्जेस भी लगेंगे। एंड ही वॉज राइट, क्योंकि वो ड्राइवर भी खुद डरा हुआ था कि यार इस लड़की को इतनी रात नेकडोंग रिवर आखिर क्यों जाना है, क्योंकि एक तो ये जो रिवर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये बहुत शहर से बिल्कुल बाहर की तरफ है, बहुत बाहर की तरफ है, और इसको जाना क्यों है, मतलब डजंट मेक सेंस। पर उसे क्या, उसे पैसे बनाने, बिल तो बनेगा बढ़िया। तो उन्होंने कहा ठीक है

बैठ जाइए। तो बैठने से पहले वो जो ब्लैक सूट के साइज लड़की के पास, वो बड़ी ट्रंक की तरफ, डिग्गी की तरफ गाड़ी के, और ड्राइवर ने आउट ऑफ कर्टेसी पूछा, मैडम मैं हेल्प कर दूं आपकी? तो समझ, नहीं नहीं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप ट्रंक खोल दीजिए। तो उसने डिग्गी खोली, इन्होंने सूटकेस उठाया, सूटकेस गाड़ी में रखा, उसके बाद आके बैठ गई और फिर गाड़ी आगे बढ़ी। ये जो सफ़र था पूरा नॉकडाउन रिवर तक, एकदम लंबा सफ़र था एंड वेरी वेरी क्वाइट, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, वेरी वेरी साइलेंट। इवेंचुअली ये लोग पहुंच गए नॉकडाउन रिवर के एंट्री पॉइंट पर, और ये जो एंट्री पॉइंट था ये सेमी जंगल सॉर्ट ऑफ समझ लीजिए, सेमी फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पे पेड़ वेड़ हैं लेकिन ओपनिंग भी है, तो वहाँ पर ही लोग पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो ये लड़की गाड़ी से उतरी, उसने उसे जो जो बिल बना था वो बिल दिया, एंड देन आउट ऑफ हैबिट ड्राइवर ने फिर से पूछा, मैडम आपको मदद चाहिए क्या ट्रंक से सूटकेस निकालने के लिए? पर उसने बोला, नहीं नहीं इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूँगी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। और फिर उसने ट्रंक को ओपन किया, पॉप करके आवाज़ आई, ट्रंक खुला, और ये मैडम जो थी बिल देने के बाद वापस डिग्गी की तरफ गई, डिग्गी खोली, वहाँ से बैग बाहर निकाला एंड उसके बाद चलना शुरू कर दिया। जो ड्राइवर था, अमूमन क्या होता है, आप किसी को ड्रॉप करते हैं देन यू लीव, मगर ये जो कैब ड्राइवर थे, इन्होंने सोचा, नहीं यार कुछ तो बड़ा वियर्ड सा है, एक तो मिडनाइट है, रात का वक्त हो रहा है, आधी रात, और कुछ हो गया इसको तो क्या कौन संभालेगा बेचारी को? तो उसने कहा, मैं ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता, मैं कहीं साइड में पार्क कर देता हूँ इनकेस ज़रूरत पड़े। और उन्होंने उसे देखना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड वॉचिंग हर कि क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। और वो नोटिस कर रहे थे अपनी गाड़ी में बैठे हुए, उन्होंने नोटिस किया कि जो लड़की है वो मूव ही नहीं कर पा रही, चल ही नहीं पा रही है ठीक से। वो ये देखकर ड्राइवर साहब को उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या है, क्या हो गया इसको? एंड एक गट फीलिंग आती है ना आपके अंदर कि कुछ कुछ तो है यार, पता नहीं, समझ में नहीं आया लेकिन कुछ गड़बड़ है। और बहुत देर तक उन्होंने नोटिस किया, वो भारी से सूटकेस लेके चलने की कोशिश कर रही है, देखने लगे पर नथिंग हैपेंड। उसके बाद वो नजरों से एकदम ओझल हो गई, वहां से गायब हो गई। लेकिन जो कैब ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि यार मैं अपनी जगह से नहीं लूंगा, हो सकता है शील कम बैक और वो कैब ढूंढेगी तो कोई उसे मिलेगा नहीं, तो मैं यहीं उसका इंतजार कर लेता हूं। और वैसा ही हुआ, 20-25 मिनट बाद ये लड़की वापस आती हुई नजर आई, हाथों में इसके सूटकेस अभी भी था, मगर अब वो एकदम ठीक से चल पा रही थी, एकदम हल्का दिख रहा था सूटकेस दूर से भी, सो शी वॉज मूविंग फास्टर। ड्राइवर के दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ फेंकने आई थी यहां पे डेफिनेटली। इस बार ड्राइवर साहब ने सोचा कि मैं इसको वापस पिक तो नहीं करने वाला, मुझे लग रही है गड़बड़, एंड उन्होंने गाड़ी घुमाई और पुलिस को बता दिया। दूसरी तरफ ये लड़की जो नजर आई थी, ये ट्रेल पे आ चुकी थी और ये टैक्सी पकड़ने के लिए वहां पे खड़ी थी, कोई टैक्सी वहां से नहीं जा रही थी, ये ड्राइवर साहब ऑलरेडी डरे हुए थे तो उन्होंने अपनी हेडलाइट्स बंद की हुई थी। ये आई खड़ी हुई थी, अगली टैक्सी का इंतजार कर रही थी, सामने से इसे हेडलाइट्स, बिल्कुल ब्राइट हेडलाइट्स इसकी तरफ आती हुई नजर आई, तो उसे लगा कैब है, तो ये हाथ से वेव करने लगी। पर वो गाड़ी आके जब क्रूजर इसके पास एकदम रुकी तो उसे दिखा कि वो गाड़ी कोई टैक्सी नहीं है, वो पुलिस की गाड़ी है। ऑफिसर गाड़ी में से निकला और इधर उधर देखा और ये बोली, ऑफिसर मे आई हेल्प यू, क्योंकि मैं यहाँ पे कैब का वेट कर रही हूँ, एंड वाई आर यू हेयर? ऑफिसर ने बोला, मैडम पहले तो मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या करने आई हैं? और बहुत काम ली इस लड़की ने जवाब दिया, बहुत सुकून के साथ, शी सेड कुछ नहीं, मतलब मेरे घर के आसपास जो कूड़ेदान है वो भरे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कूड़ा फेंकने आई हूँ, प्रॉब्लम क्या है? तो ऑफिसर ने बोला, मैडम ये जो सूटकेस आपके हाथ में, सूटकेस दिखाई हमें, एंड शी कंटिन्यू टू स्टे काम, वो अभी भी उसे कुछ पैनिक नहीं हुआ, उस एकदम अंदर से शांत थी, उसने वो सूटकेस दिया, शी नॉडेड एंड सेड, ये लीजिए देख लीजिए। ऑफिसर ने सूटकेस लिया, अपना फ्लैशलाइट निकाली एंड सूटकेस को खोला, सूटकेस एकदम खाली था, एम्प्टी कंप्लीटली। फिर उसने फ्लैशलाइट से इस सूटकेस को देखने जब शुरू किया तो पुलिस वाले को दिखा कि पूरा का पूरा सूटकेस खून से बिल्कुल सोक्ड, एकदम जैसे होता ना कि जब

खून सूख जाता है तो हल्का सा ऑरेंजिश सा फील हो जाता है, वैसे ही वो रस्टिक कलर इसके अंदर पूरी तरह से आ चुका था। और ये औरत पूरी तैयारी के साथ आई थी अपने सारे जवाब लेकर। तो पुलिस ने पूछा, मैडम ये खून खून आपकी सूटकेस में कहाँ से आया ये? एंड ऑफिसर धीरे धीरे अपनी आवाज़ रेज कर रहा था, मगर ये औरत फिर भी एकदम काउंट डाउन थी। उसने बोला, ऑफिसर रिलैक्स रिलैक्स, जानवर था ठीक है, वो सड़ गया था, कहाँ फेंकती उसे मैं? तो यहाँ फेंकने, इतनी दूर आपको क्यों लगता है मैं शहर से आऊँगी, मैं इतनी दूर फेंकने के लिए आई थी। मगर पुलिस ने उसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया। एंड जब यकीन नहीं किया, इस लड़की को समझ में आ गया कि खेल खत्म हो चुका है। और ये लड़की जो एग्जाम देने के लिए आई थी, शी फेल्ड हर एग्जाम। ये लड़की थी जोंग योंग जोंग। जोंग जो थी वो कोई नाइन्थ क्लास की स्टूडेंट नहीं थी, वो एक 23 साल की 23-year-old लड़की थी जो नाइन्थ क्लास की बच्ची बनी फिर रही थी बुसान में। और उसका इंपॉर्टेंट टेस्ट, वो जो उस रात डेस्क पर किताब बिल्कुल सर झुका के पढ़ रही थी, वो इंपॉर्टेंट टेस्ट था एक क्राइम बुक। उसे चेक करना था कि क्या कोई परफेक्ट क्राइम कर सकता है क्या। उसने कई महीनों तक इसकी पढ़ाई करी, उसने क्राइम बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़पेपर्स, एवरीथिंग, जितना स्टडी मटेरियल वो पढ़ सकती थी उतना उसने पढ़ा। एंड शी डिसाइडेड कि मैं चेक करना चाहती हूं कि क्या दुनिया में एक परफेक्ट क्राइम किया जा सकता है। और इस 23 साल की, महज 23 साल की लड़की ने डिसाइड किया कि वो ये खुद करके चेक करना चाहती है। तो वो नाइन्थ ग्रेडर के तौर पर बन के गई। एंड देन वो जो गई थी इतना दूर शहर के कोने में चेयुन से मिलने के लिए, चेयुन जब अपने अपार्टमेंट किचन में गई थी पानी लेने के लिए, इसने स्टडी मटेरियल बोलकर अपने बैग से निकाला था एक अच्छा खासा नाइफ, अ लॉन्ग नाइफ। एंड चेयुन जब पानी लेने के लिए पानी लेकर वापस आई, जेयुन ने हमला किया एंड शी किल्ड हर। ये फुल प्रूफ प्लान होता और जेयुन जो थी वो कामयाब हो जाती अपने सो कॉल्ड टेस्ट में, बट दैट डिडंट हैपन। एंड जब पुलिस ने भी यकीन नहीं किया, शी गेव अप, स्टार्टेड क्राइंग, बट बहुत देर हो चुकी थी। एंड उनको सजा सुनाई गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। ये किस्सा महज 3 साल पहले का है। उनसे कई सारे सवाल जवाब पूछे गए तो उन्होंने बताया कि उनके दिमाग में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ने ऐसा असर दिखाया कि उन्हें लगने लगा कि ये गलती अगर ना की जाए तो एक परफेक्ट क्राइम कमिट किया जा सकता है। दैट्स व्हाट शी बिलीव्ड इन एंड शी वांटेड टू चेक। तो इसलिए इस कहानी को सुनाने का मकसद ये भी है, जो लोग आएंगे अभी मुझसे लड़ने के लिए कि अरे मोरल कहाँ है, मोरल कहाँ है, मोरल मत ढूंढिएगा, ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जितने बच्चे इनफैक्ट देखते हैं चीज़ों को, रील्स को, मैं ये नहीं कह रहा क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आर बैड, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज दिखाइए, इट इज़ गुड फॉर देम, दिमाग को कंज्यूम करने दीजिए, इट इज़ ओके। बट जो लोग रील्स की कॉन्टेंट को बहुत हल्का समझते हैं, इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन बिकॉज पीपल वॉन्ट टू टेस्ट थिंग्स दे आर नॉट रेडी फॉर। ओके, तो ये था आज का किस्सा। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। 666-22107 नंबर है, 666-22107। मुझे प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा कि आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। आई वुड लव टू हेयर इट फ्रॉम यू। आज वैसे भी जी एक और मॉर्निंग शो है जी, थोड़ा सा प्यार एक्स्ट्रा लुटा दिया जाए तो कोई गलत बात तो नहीं है, है नहीं? हाँ चलो जी, 666-22107। एपी टिलो बदला किंज समझ ना आवे।

हनी सिंह और रिपीट होता गाना भाई मेरे पास इतने सारे मैसेजेस है कहानी को लेकर एंड ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह आप लोग मुझे लिटरली होता है ना कि किसी बंदे को फेयरवेल देते हैं थैंक यू सो मच इतने प्यारे इतने क्या बताऊँ अब मुझे इमोशनल करना बहुत मुश्किल काम है घर वाले नहीं कर पाते तो आपने जिस हिसाब से मुझे मैसेजेस किए इतने सारे थैंक यू सो मच आई एम गोना रीड देम ऑल किसी एक मैसेज को नहीं छोड़ूंगा यकीन जानिए आई हैव सो मच रिस्पेक्ट एंड लव फॉर एवरीवन जिन्होंने इतने प्यार से मैसेजेस किए आज का जो किस्सा है उस पर भी आप रिस्पॉन्स जरूर जरूर कीजिएगा बिकॉज ये कहानी बड़ी ज़रूरी थी सुनाना तो मैंने कहा वाई नॉट लेट इस शेयर इट तो मैंने अपनी सारी अंग्रेजी इसमें खर्च कर दी है अब आपके ऊपर है जी 666-22-107 ठीक है जी जिंगल भी है हमारे धुरे तो इसने सबसे पहले चलाना पड़ेगा

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107. Time check.
1: आज 8:00 ऑलमोस्ट 2 मिनट 15 सेकंड में तो अपना कौन से किले खड़े कर देने। अस्सलाम वालेकुम, मैं जरा मैसेजेस पे आ जाता हूँ। बहुत बढ़िया मैसेज आए भाई साहब। अर्सनल भाई कह रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग 50-50 स्टोरी टेलिंग 100 out of 100, स्टोरी थ्रिल 50 out of 100, एंड आर लव फॉर इज 101%। कवर हो गया साहब, सब कुछ कवर हो गया। ईशान भाई वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एनिक भाई लिखा है, मोर स्केरी वाज़ द स्टेटमेंट जो मैंने लास्ट में दी ना, यू नॉट रेडी फॉर द मैसेज, बता रहा हूँ, पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट। लोग जो है ना रील्स को दिखा देते हैं कि बच्चा खा लेगा, बच्चों देखते देखते खा लो, बट वॉट यू आर डूइंग इट। मैं एक दिन, आपको याद होगा, एक हमारी जिन्होंने मैसेज किया था, एक बहन ने, वो मुझसे जब बहस कर रही थी वीडियो गेम्स को लेकर, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा वीडियो गेम्स से डेंजरस आर रील्स। वीडियो गेम्स एटलीस्ट आपके कॉग्निटिव माइंड को तो खोलते हैं, जो रील्स जो देख रहे हैं बच्चे, जो आपको लगता है कि वो नहीं देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, दैट इज़ फार मोर डेंजरस देन एनीथिंग एल्स। सो प्लीज़ एटलीस्ट अगर आपको पता लग गया दे आर वॉचिंग समथिंग विच दे शुड नॉट, टॉक टू देम, टेल देम अबाउट इट क्लियरली। क्योंकि अगर आप एक दूसरा रनिंग अराउंड द बुशेज वाला चीज लेंगे ना, इफ यू नॉट एक्सप्लेनिंग देम, देन देर इज अ प्रॉब्लम। फिर तो वो छुप छुपा के करेंगे भाई, ये तो आप खुद जानते हैं, आप तो खुद बच्चे रहे ना। एक मैसेज आया मोहम्मद अदनान भाई का, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत अच्छी स्टोरी थी अवेयरनेस के लिए। पेरेंट्स शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, भले ही किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे हो या रील्स में हो। किड्स आर इनडीड गेटिंग अग्रेसिव एंड बीइंग डिल्यूजनल दैट देयर एक्शंस डोंट हैव एनी कॉन्सिक्वेंसेस। एब्सोल्युटली राइट। और आगे लिखते हैं, वन साइड नोट, शाम में क्यों शिफ्ट हो रहे हो, डेली मॉर्निंग यूनिवर्सिटी जाते वक्त आपकी स्टोरी सुनता हूं मैं, फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच दान भाई, बहुत सारा प्यार आपको। भाई मैं शिफ्ट नहीं हो रहा भाई, मेरा सामान तो दोनों तरफ पड़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। ये कैसे बताऊँ, हाउ डू एक्सप्लेन दिस, दोनों ही घर अपने भाई, दोनों प्लॉट अपने ही हैं, आते जाते रहेंगे भाई, है ना। दोनों घर अपने ही, हमने ही लिए रखे। एक मस्जिद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। तो अब बहुत लेट हो गया इशाक भाई, पर ठीक है, अभी भी आपको ईद मुबारक। मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, विल मिस यू इन द मॉर्निंग, थैंक्स फॉर एंटरटेनिंग अस, द स्टोरी एंड नरेशन वाज ऑसम एज ऑलवेज, प्लीज शेयर टुडे स्टोरी, इंशाल्लाह विल लिसन टू यू इन द इवनिंग, लव यू भाई। लॉट्स ऑफ लव मेरा भाई, बहुत बहुत सारा प्यार नियाज भाई को, थैंक यू सो मच भाई। प्रिंस भाई ने मैसेज किया है, लिखते हैं, मोरल तो है भाई, आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट क्राइम स्टोरी एंड लेजेंडरी वॉइस दैट मेक्स माय डे एंड मेक्स स्टोरीज वेरी इंटरेस्टिंग, हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई फॉर ऑलवेज बीइंग सो काइंड टू मी एंड जेनरस विद योर मैसेजेस, थैंक यू। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, सादिक भाई ने मैसेज किया, सादिक भाई थैंक यू, या गुड स्टोरी, थैंक यू सो मच। अबू साद भाई, यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, देन मैसेज किया है अहमद भाई ने, अहमद भाई थैंक यू सो मच, नाइस स्टोरी। अमन भाई लिखा है, नदीम भाई लिखते हैं, पहले नदीम भाई कह रहे हैं, पहले लगा था कि वही निपट जाएगी, बट इसने तो निपटा दिया, ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। टुडे स्टोरी वेरी गुड, साउंड्स गुड, थैंक यू सो मच, साउंड गुड होना चाहिए। मोहम्मद आलम सिद्दीक भाई, सैयद फिरोज भाई ने मैसेज किया, डॉट लगा दिया है, वी विल मिस योर मॉर्निंग शो, थैंक यू सो मच, वेरी गुड लेसन, इंटरेस्टिंग स्टोरी टू बी लर्न, थैंक यू सो मच, really really means a lot to me. Zulkanan bhai keh rahe hain, story ended, ha baji kab ki end ho gayi story to, walaikum assalam. And then message hai ke assalam alaikum, aaj meri pyari beti ka birthday hai Anam Fatima, so please duaon ki guzarish hai, Sheikh Azhar from Hyderabad, Sheikh Azhar bhai ne message kiya, unki pyari si bitiya ka birthday, please sab duaen kare, aur kisi bhi bacche ka agar birthday mushtaq ki khabar nahi pahunchi hai, to main kahunga sabko bahut sari duaen, and Anam Fatima naam hai na, अनम को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटे। अगर आप सुन के मुझे समझ सकती हैं, उस उम्र में है, अब्बा को आज छोड़ना नहीं है, बढ़िया सा गिफ्ट एकदम लूट लेने का। एक मैसेज है कि आई नो यू विल कम टू द मॉर्निंग, ये सुबह का टाइम अच्छा था, है ना, आई एम नॉट रियली अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन सुबह आके फिर अच्छा लगने लग जाता है। उस्मान मोहम्मद भाई थैंक यू सो मच, दैट इज रियली सो स्वीट ऑफ यू, मिस्ड, आज कोई मरा नहीं भाई, स्वराज भाई कैसे भाई, टपका है ना भाई कुछ देर पहले काली में, क्या भाई नोटिस नहीं किया आप, कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, और जनाब खैरियत?
1: मैं तो एकदम ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे?
2: क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, बड़े भाई
1: बढ़िया है, कैसी गई भाई ईद?
2: सोते सोते गई है भाई, और कैसी जागी?
1: सोते सोते चली गई, बकरों ने नहीं उठाया कि उठ जा भाई आज के दिन तो?
2: ना ना भाई, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं करा यार। बाहरों की ईदें तो हम काम करने वालों की भाई ऐसी होती है कि सोते रहो, आराम से नमाज पढ़ के आओ,
1: हाँ।
2: जो मिलने वाले हैं मिलो, नहीं मिलने वाले हैं टाटा बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट।
1: तो कब को खुली आंख फिर?
2: हाँ खुली थी भाई साहब असर के बाद में।
1: असर के बाद में? बहुत जल्दी जग गए आप, क्यों आराम से उठते, फिर क्या दिक्कत थी?
2: नहीं मैं एक तो यार ये था ना कि कोई आप था नहीं घर पे भी, कोई नहीं था, सब गए थे, गए हुए थे बाहर।
1: अच्छा
2: तो आप काम वाम कुछ नहीं, फिर बाहर गर्मी ही तो देखते हो ना, निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। इससे तो बढ़िया कि अपना रूम बढ़िया भाई, एसी चलाओ, कंबल डालो।
1: सही है भाई, एक ही बंदा कतर में जी रहा है बताऊं आपको, वो आप हैं। ये तो मेरे समझ में आ गया। सही है
2: भाई, विद प्लेजर,
1: विद प्लेजर। अच्छा थैंक यू भाई, विद प्लेजर। थैंक यू सो मच मेरे भाई। आई डोंट नो कि आपने कहानी सुनी है ना सुनी है, बट मैसेज कर देना।
2: मैं सुबह के डर गया था यार, जब स्टार्ट हुई थी ना तो उसी टाइम पे मैं निकल गया सुबह के।
1: अब तो शाम में आएगा शो कल से, तो पता नहीं शाम में।
2: हाँ, मैं वो सुन लिया भाई, वो सुन लिया। माशाल्लाह प्रोमो भी भाई साहब आपका जबरदस्त है।
1: थैंक यू सो मच
2: यार, मैं तो बता रहा ना भाई, अपना भाई तो सुपर सुपर रैपर निकले। अरे भाई क्या तुम इधर बैठ के जा, इधर टाइम पर बात कर रहे।
1: अरे नहीं नहीं भाई, बट थैंक यू सो मच भाई, बहुत टाइम बाद प्रोमो ऐसा बनाने का मौका मिला ना, तो हमने कहा बच्चन साहब को भी लगाते हम जॉन से करो तो लाइन वॉइस।
2: सीरियसली कबीर भाई ट्राई करो, तुम्हारे यार अपने तुम्हारे सोशल मीडिया हैंडल हैंगे सब चीज हैंगे, तुम अपनी जो है ना भाई खुद रिकॉर्ड करो डालो यार, अच्छा खासा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।
1: थैंक यू सो मच भाई, आप इस मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
2: यार। यार मैं तो अपने आप को मानता हूँ कि मैं आलसी हूँ सोने के मामले में, मगर भाई तुम्हें किस चीज की आदत चल रही है?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, वर्किंग ऑन इट भाई। मैं बहुत आलस हो गया था
2: भाई साहब, जमाना हो क्या? सुन दो, नहीं नहीं भाई मैं
1: काम मुझे आप मुझे घर वाले भी ताले दे रहे तो सुनने वाले भी ताले दे रहे। नहीं नहीं, आई विल नॉट डिसअपॉइंट भाई, आई एम डन विद इट। बहुत हो गया, मेरा भी 1.5 साल से ऊपर हो गया मुझे ये कहानी अपने आप को सुनाते।
2: मैं मानता था कबीर भाई कि चलो आपका जो है माशाल्लाह, आपकी जो है ना टाइमिंग राइमिंग सब चीज जबरदस्त है, क्योंकि जब आप स्टोरी सुनाते हो ना माशाल्लाह, उसके लिए भी बहुत जो है ना टाइमिंग और राइमिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो माशाल्लाह आपने बहुत। मगर आज जो आपने अपना जो भाई प्रोमो जो लॉन्च किया ना, माशाल्लाह एक नंबर।
1: थैंक यू भाई, बहुत प्यार भाई को, थैंक यू सो मच भाई।
2: मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया तो यूट्यूब, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करो, बनाओ आराम से, छोटे छोटे बनाओ, मुश्किल नहीं है, ज्यादा लंबे बना तगड़े बनाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे बनाओ, डालो यूट्यूब पर।
1: इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह दुआ करें आलस छूट जाए मेरा भाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मतलब मजाक से।
2: आलस है किस चीज का वो तो पता चले, उसके लिए करेंगे तो
1: मुझे भी नहीं पता, ज्यादा ही लाड में आएगा। नहीं नहीं नहीं, काम होगा भाई।
2: नहीं यार कबीर भाई, यार इतना टैलेंट होने के बाद में वेस्ट कर रहा हूँ यार, मैं तो अपने आप को मानता था कि मैं तो किसी काम का हूँ ही नहीं।
1: अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, दुआ करें मेरे भाई, दुआ करें भाई, इंशाल्लाह नहीं, इस बार इस बार
2: डर इस बार डर पाले बड़े भाई। बस यार थोड़ी रिक्वेस्ट मान लो यार,
1: मान लो
2: क्यों तो भाई साहब, बिल्कुल घुटनों का वाला आ जा।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा भाई बहुत प्यार भाई, इंशाल्लाह जरूर भाई, इस बार नहीं, इस बार अल्लाह सच में छोड़ूंगा भाई, सच में प्रॉमिस यू, ये 1.5 साल वाला प्रॉमिस नहीं है, इस बार अपने आपसे प्रॉमिस किया, क्योंकि मैं खुद से भी थोड़ा सा निराश हो गया था इस बात पे कि 1.5 साल वेस्ट कर दिया।
2: हां ये चीज करो यार बड़े भाई, बस करो इंशाल्लाह, देखो अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा उस पे, क्योंकि आपका चाहने वाला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है भाई।
1: थैंक यू भाई,
2: इसके टेंशन मत लो, बिल्कुल
1: बिल्कुल प्यार भाई, भाई प्यार, थैंक यू सो मच भाई,
2: थैंक यू, ओके भाई,
1: ख्याल रखो मेरा भाई,
2: नहीं लेते जा, अल्लाह हाफिज
1: बड़े भाई, भाई अल्लाह हाफिज। इतनी मोहब्बत के बाद आलस तो छोड़ना पड़ेगा। एक मैसेज है डियर कबीर जी, मेरे भाई जी बोलिए, हुकुम कीजिए। अर्पण सांधु भाई थैंक यू सो मच मैसेज करने लगी। एक और मैसेज है, वी विल मिस यू इन द मॉर्निंग, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अस्सलाम वालेकुम प्लीज सेंड स्टोरी। एक थैंक यू सो मच, एक कह रहे हैं कबीर भाई क्या प्रोमो था, मैंने नहीं सुना। ओके प्रोमो कुछ नहीं था, शाम को कल से शो शुरू होगा 9:74 इवनिंग, पहले शो का नाम ड्राइव थ्रू हुआ करता था, बट कल से मैं आऊँगा शाम में 5 बजे, एंड शो का नाम हमने बदल दिया, इवनिंग 9:74 कर दिया। आई डोंट नो ये नाम आपको कैसा लगा है, बट मैंने कहा चलो क्यों ना कदर का कोड ही डाल दिया जाए। क्रिएटिविटी की हद दिख रहे हैं आप, तो प्रोमो को जिस तरीके का है मैं सुना रहा हूँ, जिन्होंने मिस कर दिया था सुन सकते हैं आप। सो 3, 2, and 1।
3: हम भी वो हैं जो कभी

0: हाँ तो ये है प्रोमो 5 से 7 कल से मुलाकात होगी आज मॉर्निंग से समझ गएंगे आप. इसके बाद मॉर्निंग में आने वाली हैं महविश और नाजिया दोनों के दोनों आपको मिलेंगी मॉर्निंग में कल से. सो एंजॉय द मॉर्निंग और याद आए तो इवनिंग की तरफ भी आ जाना कभी कभी. डू लेट मी नो ओके. एक गाने के बाद मिलते हैं. बाकी अमन भाई ने मैसेज किया है, क्या कह रहे हैं अमन भाई? Whatever you make, it'll be masterpiece as long as you will be there. Thank you so much, bhai. Bahut sara pyar. After you go, no FM anymore. Are emotional kar diya, bhai. Bhai, aap aise emotional mat karo, bhai. Please. Ek call aa rahi hai, uske baad gana. Assalamu alaikum.
1: Alaikum assalam, mere bhai.
0: Arey kaise hain, bhai sahab? Prince, bhai, aapki awaaz sunke aisa lagta hai ki.
1: Alhamdulillah, mere bhai.
0: ये जो आपने जहाज की कहानी सुनाई भाई साहब, आपकी एविएशन की स्टोरी मुझे सुनानी चाहिए. कमाल.
1: अरे यार भाई, पता है मेरी पिटाई क्यों हुई?
0: क्यों पिटाई हुई?
1: पिटाई नहीं होती थी, होने की वजह सिंपल सी है कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर ये पपी हम लोग नहीं ले जा रहे दुआ तो मैं फ्लाइट मिस करवाऊंगा.
0: तो एंड में कहां तक पहुंची कहानी? आप मतलब आप लेके आ पाए उसको, नहीं लेके आ पाए इतनी जिद करने के बाद?
1: नहीं, लेके आया मैं. 3 दिन लगे.
0: हाँ, अच्छा 3 दिन लगे लेकिन आप कामयाब रहे और फ्लाइट मिस कर दी. फ्लाइट की, फ्लाइट इसमें क्रैश वैश हो गई थी क्या?
1: हाँ.
0: अरे बाप रे बाप. भाई
1: तो मेरी पिटाई इसीलिए हुई कि मेरे अंकल ने मुझे कहा, एक तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं आए, दूसरी चीज तुमने मुझसे कहा था कि मैं फ्लाइट मिस करूंगा और तुम जब मुझे नहीं मिले तो मैंने टिकट कैंसिल करवा दी.
0: ओके.
1: तुम मुझे बिना बताए अगर गायब हो जाते तो मैं कंप्लेन करता, तुम्हें ढूंढता, टिकट कैंसिल नहीं करवाता. कुछ तो फायदा होता, प्लेन क्रैश होने का.
0: अरे भाई,
1: पब्लिक उसमें भी फायदा ढूंढ रही है.
0: अबे वो तो है भाई, इधर भी कुछ भी मिल जाए. पर आपको कहानी कैसे लगी है प्रिंस भाई? सबसे पहले तो ये बताएं, पहला सवाल तो यही है
1: भाई. माशाल्लाह मजे आ गए, लेकिन जो ट्विस्ट था ना बहुत ही बढ़िया था.
0: ट्विस्ट बढ़िया था ना? थैंक यू सो मच. मुझे पता था लोग दूसरी वाली भी शक कर रहे होंगे.
1: हाँ. ट्विस्ट था ना, बहुत ही बढ़िया था. और यूजुअली क्या है कबीर भाई, लोग आपसे पूछते हैं कि मॉरल क्या है स्टोरी में, मॉरल क्या है स्टोरी में, तो मुझे हर बात बताना पड़ता है कि मॉरल हर स्टोरी में होता है. हाँ. वो आपका नजरिया है कि आप देख किस तरह से रहे हो उसकी.
0: सारा खेल परसेप्शन का भाई, सारा खेल परसेप्शन का है. जैसे हम लोग कहते हैं ना, दूसरे के जूते में जाके एक बार जरा चल के देखो, समझ में आएगा कि कुछ भी रीजन हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि किसी क्रिमिनल की तरफ हमारा वो है सहानुभूति या सिंपैथी है, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू स्टोरीज फ्रॉम अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम, तो आपको समझ में आएगा. जैसे मैं उस दिन भी अभी कह रहा था ना, मैं मॉरल यही है कि लोग जो है ना उस सोच में है, ऑर्थोडॉक्स सोच में, कि वीडियो गेम्स आर रियली बैड बच्चों के लिए, बट दे नॉट अंडरस्टैंडिंग कि रील्स ज्यादा डेंजर है भाई. वो जिस तरीके से दिमाग को
1: कंज्यूम नहीं, नहीं, क्या लगता है कि नहीं भाई, बच्चों को पहले का जमाना बहुत ही बढ़िया था, उनको अभी भी वही लगता है कि वो वाले पता नहीं अजीब अजीब सी ख्यालात में रहते हैं.
0: राइट.
1: पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, या तो बहुत आगे निकल गए हैं, 30,000 बीच में चले गए हैं, या तो बहुत ही पीछे चल रहे हैं 1700 से.
0: तो इसलिए बिकॉज मैं देखता हूँ ना बच्चों, क्योंकि बच्चों के सामने कोई भी रील आ सकती है भाई, किसी भी किस्म की रील आ सकती है, आपका उस पर कोई काबू नहीं है. और हो सकता है आपको जब तक पता लगे जब तक साल बीत चुके होंगे. तो ये ऐसा भी होता है, मैंने देखा है. तो आई थिंक व्हाटएवर देयर वाचिंग,
1: पता चलता है जब कोई वीडियो ऐसा खतरनाक वाला वायरल हो जाए और किसी पड़ोसी से पता चलता है कि भाई आपके लड़के का वीडियो कोई लड़की का वीडियो इस तरह से वायरल हुआ है.
0: यस यस,
1: दिस अंदर जमीन निकल जाएगी.
0: एग्जैक्टली. एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस. जो लगता है ना कि बहुत ही ऐसे हल्के में ले लेते हैं लोग, देख खाना खिलाते खिलाते दिखा देते हैं
1: लोगों को, इसलिए बुरे लगने लगे हैं खासतौर से अम्मियों को, के वाले जो है अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपनी माओ से ज्यादा. लेकिन वो दिखाते नहीं है, दैट थिंग इज डिफरेंट. और बच्चा जो है वो उनसे जिद करके वो आईट्यून के वो कार्ड,
0: हाँ वो जो गिफ्ट कार्ड आते हैं, गिफ्ट कार्ड जो आते हैं
1: 110 और सम हाउ 300-350 समथिंग ऐसे गेम के गेम कार्ड आते हैं. तो वो वाले साहब से भाई फरमाइश की जाती है. हाँ. अम्मा को ऐसे लगता है कि भाई हमारे हिस्से के पैसे ये खा जा रहा है और हमारा काम कोई सुन नहीं रहा है, और अब्बू जो है इसके इसको बढ़ावा दे रहे हैं. तो भाई ऐसी बात नहीं है, जनरेशन गैप है हमारे और हमारे बच्चों के बीच में. तो काफी सारी चीजें बदल गई हैं जो हम खुद नहीं जानते.
0: राइट राइट. और लगता भी ऐसा ना कि हमें तो सब पता लग गया, वी आर वेरी फास्ट. पर ऐसा है नहीं, वो गैप में बहुत सारी चीजें होती हैं जो जानने की जरूरत होती है.

0: क्योंकि मेरे वालिद साहब मरहूम, उनका कहना यही था कि बेटा हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक भी कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं।
1: हाँ राइट राइट,
0: वही सेकेंड टाइम सेवियर बनाऊ मैं अपनी फैमिली का। लास्ट टाइम तो हम लोग ऐसे ही विजिट पे इंडिया गए थे, समहाउ एमपी गए थे, तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड भोजपुर, तो वहां पे पहाड़ वगैरह है, वहां अंदर घुसे थे। जब मेरी एज काफी छोटा था, मैं आई थिंक 8.5 ऐसा कुछ था, तो सब लोग एक पहाड़ पे चढ़ के एक गुफा के अंदर बैठ गए। वहां पे मुझे एक अजीब सी आवाज आई, मुझे कोई समथिंग क्रैक डाउन। तो फिर मैंने अपने जो भी रिलेटिव देने, मेरे वालिद साहब के सारे भाई और उनकी इकलौती एक बहन सब उसी गुफा में मेरे साथ बैठे थे। मैंने बोला तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, बच्चा था ना। फिर मेरे जो ताया है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अगर वो बोल रहे थे हम लोग जाते बाहर निकल के देख ही लेते हैं क्या आवाज कहाँ से आई है। जब हम लोग बाहर निकले विद इन 30 सेकेंड इज अ वेरी लेस टाइम, 30 सेकेंड वो गुफा अंदर से फूटी और उसमें से पानी फुल भर के निकला, सीधे नीचे नदी में गया, क्या पूरे पत्थर ही पत्थर थे। हाँ
1: ओके तो भाई
0: थैंकिंग वाले हमारे पास में कोई नहीं है। चलो हमारे किस्मत में था हम बच गए, किसी किसी को अल्लाह पाक दरिया बनाते हैं। आज इसको बनाया था कोई और भी बन सकता था। वाह भैया वाह, पूरा का पूरा खानदान बच गया और आप लोग अपनी किस्मत पे
1: भाई
0: पटाखे छोड़ रहे हो।
1: ये तो है कवाल किससे हो रहे हैं। प्रिंस भाई थैंक यू सो मच, आई होप कि आप शाम में भी वक्त निकालेंगे, कभी सुनने को मिले आपको। इंतजार रहेगा
0: भाई, कोशिश जरूर करूंगा,
1: बिल्कुल कोशिश जरूर कीजिएगा।
0: देखो आपकी भी कुछ जरूरतें हैं और मैं समझ सकता हूँ क्या आपके कुछ दिन के काम है जो आप निपटा सकेंगे सुबह में, और इवन आपको अर्ली मॉर्निंग उठना नहीं पड़ेगा।
1: उसको नींद कहते
0: हैं,
1: उसको नींद कहते हैं। अच्छा खासा, अच्छा खासा, अच्छा खासा, ट्रूली
0: आपको रेस्ट मिल जाएगा इवनिंग। हम लोग जब रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं उस वक्त दिल बस ये मचलता रहेगा, भाई कभी की आवाज सुने यार ये क्या हो गया है, भाई की आवाज नहीं सुन रहे, दिल लग ही नहीं रहे कि आज कुछ हुआ था।
1: वो तो कल से पता लगेगा इंशाल्लाह, कल से इफेक्ट आएगा। मैं इंतजार करूंगा।
0: टाइमिंग बता दीजिए प्लीज।
1: टाइमिंग 5 से 7 है भाईजान, 5 से 7 कल।
0: हाउ अबाउट द स्टोरी?
1: स्टोरी क्या मतलब, कल स्टोरी?
0: हाँ भाई कुछ ऐसी चीजें जो पब्लिक नहीं जानती है उसके ऊपर थोड़ी सी स्टोरी चाहता हूँ। रिक्वेस्ट है
1: जरूर जरूर,
0: सिंपल सी। आई वांट टू नो अबाउट द मंडेला इफेक्ट।
1: अच्छा ठीक है, डन डन डन डन, ये आपने अच्छा टॉपिक दिया मुझे, इनफैक्ट बहुत बढ़िया बात किया, डन डन डन। मैं इस पे तैयार
0: हूं, मैं समझता हूं कि बहुत ही कम लिसनर्स होंगे जिनको इस चीज के बारे में पता होगा।
1: डन डन डन,
0: सुनो अबाउट दैट।
1: एब्सोल्युटली डन, अच्छा टॉपिक दिया आपने इनफैक्ट। ठीक है, मंडेला इफेक्ट पे मैं तैयार करता हूं। थैंक यू सो मच,
0: थैंक्स टू 107
1: जज़ाकअल्लाह,
0: दैट ब्रिंग्स यू टू अस।
1: थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम। प्रिंस भाई के शब्दों के बाद एक मैसेज, भाई शाम का शो नहीं सुन पाऊंगा, स्टोरी जरूर सुनता हूँ, अपने बच्चों के साथ सुनता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम, कबीर भाई क्या चल रहा है? कबीर भाई सुबह हो चाहे शाम में हर टाइम आपको हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं गाड़ी वाले और जब बैठ के पूरा दिन घूमते हैं आपको रेडी सुनते हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, गाने के बाद मिल रहे हैं कतर से जुड़ी हुई खबरें और साथ में ट्रैफिक अपडेट अगर आप देना चाहें दे सकते हैं। बाय द वे दिस इज़ वन सॉन्ग दैट आई रियली लव, इनफैक्ट ये वाला जो मिक्स है बहुत बढ़िया लगता है मुझे, पता नहीं कुछ है इसमें। अमूमन रीमिक्सेस इतने अच्छे बनते नहीं हैं, लेकिन कुछ जो बने हैं इन इन दैट पीरियड अर्ली या लेट 2010 के आसपास, बेहतरीन भाई। ये यूरो मिक्स इतना कमाल का है ना। 8:20 गुड मॉर्निंग।

0: Gangsters gana Euromix. आप इत्तफाक देख रहे हैं, आज जो मैंने कहानी सुनाई है आपको, ये भी वो भी कोरिया की थी, और ये जो गाना, मतलब गाना तो नहीं, मूवी जो शूट हुई है वो 60% कोरिया में शूट हुई है। गैंगस्टर में एक सीन है जो मेरे ख्याल में ड्रोन शॉट है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर ऊपर का शॉट है। उसमें कंगना रनावत जो है वो एक रूफ पे बैठी हुई है, वहाँ पे साथ में इमरान हाशमी भी है। वो इतना सिंपल येट आइकॉनिक शॉट है जो पता नहीं क्यों बॉलीवुड यूज नहीं करता है वैसे शॉट सब। अब तो क्या होता है, सिंपल कैमरा ये लगा इस चेहरे पे, इस चेहरे पे, इसका डायलॉग, इसका डायलॉग। एंड मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा खून खोलता है क्योंकि मेरा मेन कोर्स फिल्म मेकिंग का था। बहरहाल कोई गल नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक कॉल आ रही है, सबसे पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, सब खैरियत?
0: अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। आपका नाम?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अहमद है।
0: जी अहमद भाई बताइए।
1: कुछ नहीं सर, मैं ऐसा रेडियो खोला, आप दिखते कि पहले कॉल कर लिया। क्या क्वेश्चन है, क्या
0: भाई
1: है, क्या
0: क्वेश्चन है, वोशन कुछ नहीं भाई, बहुत लेट जगे भाई, शो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कहानी भी हो चुकी, सवाल भी हो चुका भाई, कुछ नहीं आया। दुकान एकदम खाली, पैक कर रहे थे भाई, शटर गिराने वाले थे, अब आए आप।
1: आपने मेरे भाई आपकी आवाज तो सुन लिया ना।
0: थैंक यू सो मच भाई, आप बिल्कुल बॉलीवुड के जो लास्ट में पुलिस वाले आते ना, हाँ किधर है, किधर है, कौन है वो वाला सीन।
1: पुलिस तो हमेशा आखिरी में आते ना, तो बाद में जाते।
0: बिल्कुल लास्ट में है भाई, वैसे ही सीन हुआ ना भाई।
1: जी जी

0: टाइमिंग क्या है?
1: 5 से 7।
0: अच्छा 5 से 7 चलो इंशाल्लाह।
1: आखिरी में आना, 7:30 बजे आना, कल भी 7:30 बजे आना है ना। 5 से 7 पूछ तो लिए हो है?
0: आप तो टांग खींच रहे हमारे।
1: देखते हैं मेरे भाई, देखूंगा मैं कितना आओगे टाइम पे। पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो भाई बिल्कुल एकदम लास्ट में आए हैं पुल्स वाले की तरह। अब ज़रा मैं खबर, जब इन्होंने चांद की जिक्र कर दिया चांद का, तो बता दूं कि कतर के आसमान में ब्लू मून जो है वो दिखने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चांसेस क्या ये है, फिनोमिना जो आप विटनेस कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है। सो बशीर मरजूक नाम के एक एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट जो कि QSC से जुड़े हुए हैं, QCH सॉरी, और उन्होंने कहा है कि कतर में ब्लू मून विद योर नेकेड आई आप देख सकते हैं मून राइज ऑन संडे, मतलब संडे इवनिंग शाम को मून राइज जब होगा, और ये सुबह तक जब तक सूरज नहीं निकल आता मंडे का तब तक आप ब्लू मून देख सकते हैं कतर के आसमानों में। हाँ तो तैयार रहिए भाई, कतर कैलेंडर हाउस की तरफ से इन्फॉर्मेशन है इन केस यू वांट टू कैप्चर इट, आपकी क्वालिटी पर है, आप देख लीजिएगा अपना अपना। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट खबर जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंस को हाई हैंड हाइजीन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस को। इसमें जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ अक्रॉस द कंट्री लोगों तक पहुँचे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। इसमें फील्ड विजिट्स हैं, एजुकेशनल मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें हैंड हाइजीन की इंपॉर्टेंस है एंड काफ़ी कुछ है। एंड अवेयरनेस मैसेजेस डिस्प्ले भी किए जाएंगे डिजिटल स्क्रीन्स पर ताकि पेशेंट्स भी और साथ में विजिटर्स भी जो वेटिंग एरिया में हैं और साथ में जो डॉक्टर्स हैं नर्सेस हैं एवरीवन इज़ अवेयर एंड ऑन द सेम पेज। बाकी it is also available across the social media platform. तो एक मैसेज है, क्या मैसेज आया है भाई, पूरे आज इस खबरों में एक तरफ और आपका एक तरफ, बैकग्राउंड म्यूजिक भी पूरा कमाल का होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, रियली रियली मीन्स लॉट मेरा भाई मोहम्मद भाई। एकदम ऐसा है कि आपने वो जो है ना पेट भर के खिला दिया, वो वाला सीन है। थैंक यू सो मच। बाकी ट्रैफिक की अपडेट जरूर दीजिएगा, 666-22107 नंबर है, 666-22107 वेट करूंगा मैं हैं प्लीज। एंड एक गाना निकिता गांधी तनिष पाक चुके संगीत पाक थारिया ना जा 8:30 घड़ी में दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। गुड मॉर्निंग।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi se, desi.
3: Hawa ke jhonke aaj mausamon se toot gaye.
4: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। हर शाम 4 to 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: जिनके 5 दिन की छुट्टियां रही है ना, लॉन्ग वीकेंड वाले चेहरे देखिए आप इनके आज कैसे हैं। इनको लग रहा है कि घूमने के लिए निकले हैं ये। आधे रास्ते में जाने के बाद रियलाइज होता है ओहो ऑफिस जाना है। क्योंकि ये 5 दिन की छुट्टी अच्छी खासी होती है, और कतर में तो 2 दिन भी ऐसा लगता है अरे भाई साहब मैं कहाँ हूँ, क्या करना क्या है, ऑफिस है। तो 5 दिन तो लिटरली बहुत हो गए। तो अगर आप एक लॉन्ग वीकेंड के बाद जा रहे हैं अभी काम पर, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये पिकनिक कैसी जाने वाली है, जब क्योंकि ऑफिस में आज आपसे तो काम होगा नहीं होगा भाई। मशीन को जनरेटर को ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो देखा ना वो जो खींचते हैं वो जनरेटर को धड़ उसके बाद जनरेटर चालू होता है, वैसा ही है। तो संडे मंडे जाएगा, ट्यूसडे से काम पे लगेगा इंसान, फिर 2 दिन के बाद वीकेंड आ जाएगा। बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। एक कॉल आ रही है, उठा लेता हूँ सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कमाल भाई कैसे है मेरा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कमाल भाई।
1: दस 15 मिनट पहले लगाया मैं, बोला यार भाई रिकॉर्डिंग चल रही है कि कभी।
0: अरे क्यों रिकॉर्डिंग चलेगी मेरा भाई?
1: अरे भाई आप इवनिंग में आने वाले थे, मॉर्निंग में है।
0: अच्छा तो इवनिंग भाई कल से है, आज से नहीं है।
1: आज से नहीं है।
0: आज मतलब आज एक मॉर्निंग शो बचा था तो आज वो है, और फिर कल से इवनिंग है परमानेंटली।
1: और कैसी गई ईद भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह कमाल भाई, आप कैसे गई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अच्छी गई है।
0: तो
1: भाग दौड़ ज्यादा थी।
0: ओके
1: भाग दौड़ बहुत ज्यादा थी,
0: हो गई भाग दौड़ खत्म हो गई।
1: और आपका खत्म हो गई ना भाई? इवनिंग में बस खाली 2 मैसेज आपको कर पाया, सुन भी नहीं पाया। एक दिन एक मैसेज किया था, एक दिन दूसरा मैसेज बस।
0: अच्छा तो आप बताएं कमाल भाई कहानी कैसे लगी, मिस हो गई ना आपसे?
1: कहानी मिस भाई तो मैं तो कंफ्यूजिंग में था कि आप है ही नहीं।
0: अच्छा ठीक है,
1: मैं ही नहीं है। नहीं फादर पैसे बोला देखे कौन आया
0: है। नहीं नहीं मैं आपको जरूर भेजूंगा, डेफिनेटली जरूर भेजूंगा। ठीक है, और कमाल भाई बस एंजॉय कीजिए इंशाल्लाह। शाम में भी अगर आप सुनने का मौका मिले तो कभी मौका लगे तो ऐसे भूले भटके आ जाएगा। ठीक है,
1: हाँ कभी कभी भूले भटके आ सकते हैं।
0: डन कमाल
1: भटक गए तो आ जाएंगे। भूले नहीं भटक गए तो।
0: बस ठीक है इंशाल्लाह, शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो कमाल भाई के बाद दुनिया जो बाहर निकली है अल्जामिया स्ट्रीट की तरफ से, अगर आप जा रहे हैं अहमद बिन अली स्ट्रीट की तरफ ट्रैफिक मिलेगा, खलीफा स्ट्रीट साथ है इंटरसेक्शन की तरफ हल्का फुल्का ट्रैफिक है। बाकी ना जी अल कॉर्निश की तरफ जा रहे हैं, ये मजलिस अल तवान स्ट्रीट से होते हुए बेसिकली आप यहाँ से निकलेंगे, ये कौन सी जगह अपना वेस्ट वे, पूरा बढ़िया रास्ता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ सिग्नल के पास जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुशारिब की तरफ आ जाते हैं, इनफैक्ट वादिल मुशारिब स्ट्रीट की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका है। तो अगर आप अभी के अभी निकल गए तो ठीक है, आधे घंटे बाद आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पर आप निकल नहीं पाएंगे। रौदतुल खैर स्ट्रीट और बीरिंग रोड से आने वाले जनता ध्यान दे, इधर थोड़ा सा जाम है। सीरिंग रोड से अगर आप आ रहे हैं, सीरिंग रोड से कनेक्ट होंगे रौदतुल खैर की तरफ, तो उसके बाद आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। डी रिंग रोड पर ठीक ठाक है, मूविंग है मगर है यहाँ पे भी लगा हुआ। ई रिंग रोड और नजमा के आसपास हैं तो इंटरसेक्शन पे, बाकी एकदम क्लियर कट मामला है। सलवा रोड के पास रोड ट्रैफिक है, रमादा सिग्नल के पास ठीक है, इतना कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोले हो इतना ट्रैफिक कैसे जाऊँगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। यू कैन स्टिल गेट अवे विद इट, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कहीं ट्रैफिक मिल रहा है तो मुझे बता सकते हैं 666-22-107 पर। क्या क्या एक मैसेज है मेरे पास, कैन यू कॉल मी प्लीज, ऑफकोर्स आई कैन कॉल यू। एक मैसेज है, टुक वन ऑफ नाउ, हैव टू गो थ्रू 521 अनरीड ईमेल्स। हैं? अरे भाई साहब 521 ईमेल्स, मेरा भाई ये कितने दिनों में है? ये एक हफ्ते की ईमेल्स हैं ये आपके? अब बाप रे, ऑल द बेस्ट अरसलान भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। ये सब आप ही को ईमेल करते हैं, कंपनी ने बोला एचआर ने भी मेरे पास नहीं, अरसलान को भेज दो। तो भाई अरसलान भाई इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा हो रहा है मुझे। 521 मेल्स अगर मुझे आते ना मैं सर अपना मॉनिटर में मार चुका होता। बट ऑल द बेस्ट टू यू, ये आप ही कर सकते हैं, ऑल द बेस्ट। एंड अब ज़रा मैं कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आई। हाँ चलो रिंग तो गई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? 4-5 घंटे आपने शो करना है क्योंकि रात को मजा आता है कहानी सुनने में, आपसे बात करके 4-5 घंटे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: हाँ जी, क्या हाल है?
2: ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू?
0: मैं तो बढ़िया, मैं तो हाउ आर यू का मेरा तो आंसर हमेशा ही बढ़िया रहेगा। आप बताइए क्या सीन है भाई साहब?
2: ये कि आज मैंने छुट्टी की है माशाल्लाह, क्योंकि मेरे भाई ने भी पिछले हफ्ते एक छुट्टी की है।
0: अच्छा, तो ये कंपटीशन चल रहा है कि स्कूल
2: आज उसने की है? आज भी इसने छुट्टी की है। अब मैं सोचूंगी मैं कल की छुट्टी लूं या ना लूं, क्योंकि इसने शायद कल की भी ना छुट्टी देना हो। ये ऐसे ना चल रहा है, मैंने कहा चलो मैं बीच में छुट्टी ले लूंगा कहीं ना कहीं कुछ दिन।
0: अच्छा, तो ये छुट्टियों का कंपटीशन कर रहे हो क्या आपस में कि उसने छुट्टी ली तो मैं भी छुट्टी लूंगा स्कूल की? है
2: नहीं नहीं नहीं नहीं क्या होता है, अब इक्वल करते छुट्टी। अगर जैसे इसका जैसे मेरे भाई को छुट्टी करना होता तो मैं भी छुट्टी कर देता हूँ साल में।
0: अच्छा, ऐसा है, ये अलग टाइम टेबल है भाई, मेरे समझ के बाहर हो बेटा तुम। मेरे जो जो जो दुनिया है उसके अलग ऑर्बिट में रहते हो। और बताओ इतनी जल्दी क्यों उठे? जब छुट्टी ले ली थी तो सोते ही रहते, फिर उठे क्यों?
2: मेरी आंखें उठ गई अभी, कब उठी थी 7:45 बजे। मैं सोच रहा था चलो ये चला गया होगा। हाँ? मैं चलो उठ जाऊंगा, मैं इसको पिक करूंगा। मैंने देखा सोफे में ये लेता है, मैंने कहा कि ये क्या सो रहा है आज, ये है नहीं क्या? मैंने कहा अम्मा याद गया नहीं? कहते नहीं यार ये इतना देर से सोया। मैंने कहा हाँ ये इतना देर से सोया, ये भी मेरे तकरीबन 1:30 बजे के दौरान ही सोया, जितना मैं सोया था ना उसी वक्त ही।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद, सुबह सुबह कॉल करने के लिए। वापस हो जाओ
2: कबीर।
0: हाँ क्या
2: कबीर, मुझे तो ये खुशी है कि आप सामने आ रहे हो, लेकिन फजील को तो एक बार सुबह में मिल ले के आ दो यार।
0: क्यों फजील के पीछे क्यों पड़ो भाई? फजील से क्या क्या दिक्कत
2: यार? फजील यार फजील छुट्टियों में इतना अच्छा करता था, एक वो कैरेक्टर भी लेके आता था जो हर किसी को पसंद था।
0: हाँ आ जाएगा लेके भाई, उसके लिए बेचारे को सुबह क्यों उठा रहे हो ये बताओ? तो ये कैसी बात हुई?
2: उसकी तो हिम्मत होती थी, उसकी तो हिम्मत होती थी।
0: नहीं वो आए फजील, फजील सुनाई देंगे कितने बजे? मेरे ख्याल में 3 या 4 बजे, तो वो देख लेना इंशाल्लाह, वो सोशल मीडिया पे अपडेट हो जाएगा।
2: वेबसाइट नहीं अपडेट हुआ ना, तो इसलिए
0: हो जाएगा,
2: यही तो बात पे बोल रहा हूँ।
0: हो जाएगा हो जाएगा,
2: 3-4 बजे वहाँ क्या इतना स्पेशल होना है,
0: हो जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। पर थैंक यू सो मच मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी घरेलू बातें हम बाद में करेंगे। बढ़ते आगे ठीक है,
2: 15 मिनट
0: में एक ही बात नहीं कर सकता ना। थैंक यू सो मच मेरे भाई कॉल करने के लिए, पर शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और मोहम्मद की बात, एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, गुड मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग शो। जी भाई टुमारो इवनिंग शो, हीरो भाई का मैसेज है। एंड देन मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ शेयर द स्टोरी, सईद भाई का मैसेज, सईद भाई थैंक यू सो मच। एंड मेरा तो एक ही मैसेज है, ढांडा भाई का गाना चलेगा, ढांडा भाई का कहने कुछ देर गाना शुरू हो जाएगी, ढांडा आने वाला। आज ही 5 से 7 शो है, 5 क्यों बजा रहा हूँ मैं? फिलहाल 8:45, 8:45 हो रहे हैं। डाना नूनी वाला और एक्सवीर ग्रेवाल इश्क बावला। यस्टरडे इवनिंग में आप ही थे, मैं ही था भाई। क्या हो रहा है?

8:50 तो हो लिए। देखिए इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। नाज़िया बहन ने मैसेज किया है, आरजे नाज़िया हमारी लिसनर भी हैं। नाज़िया बहन लिखती हैं, 5 दिन की छुट्टी इस्तांबुल घूम कर आए, अब क्या ही काम करेंगे बहन, अब तो नहीं हो पाएगा काम, छुट्टी लो छुट्टी। खैर मेरा सुबह का जो वक्त है आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह आप कल से शाम में मिलेंगे, तो सीधा कल मुलाकात होगी शाम को 5 बजे से। वक्त बदल रहा है, बहुत सारे आरजेज आपको अलग अलग टाइमिंग्स में सुनाई देंगे, एंड कल से महविश और नाज़िया आपके साथ होंगी सुबह सुबह 6 बजे से, तो प्लीज़ उन्हें सुनिएगा, प्यार दीजिएगा। एंड कल शाम में मैं आ रहा हूँ, तो शाम की एंट्री के लिए तैयार हो जाइए। शाम में बहुत कुछ होने वाला है, शाम में भाई साहब कहानियों का टेम्पलेट थोड़ा सा बदलेगा, बट इंशाल्लाह यू विल लव इट। बट फॉर नाउ सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद है, यू नो। एंड आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, जाने के बाद मैं सीधा अपने प्रोमो भी आपको सुना दूंगा। एंड दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
0: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने के नाम मगफरत के हवाले से एक अहम दुआ है और इसमें मगफरत तलबी के काफ़ी सारे पहलू जिक्र किए गए हैं। दुआ की शुरुआत होती है कि अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा। अल्लाहुम्मा क़िनी शर नफ्सी, और आगे वअज़िमली अला अरशदि अम्री, और मेरे लिए मेरे तमाम कामों में सबसे बेहतर रास्ते पर अजीमत के साथ चलने की मजबूत इरादा अता फरमाओ ताकि मैं उस रास्ते पर मजबूती से चलूं। अब आते हैं मगफरत तलबे की तरफ। देखें यहाँ कितने पहलू बताए गए। अल्लाहुम्मग़फिरली मा असररत व मा अलनत, मेरे वो गुनाह भी माफ़ फरमा जो मैंने छुप कर किए, वो भी जो ज़ाहिर किए, वमा अख़्तअत व मा अमत, वो भी जो गलती से हुए और वो भी जो जान बूझ कर किए, वमा अलिमतु व मा जहिलतु, और वो भी जिन्हें मैं जानता हूँ और वो भी जिनसे मैं खुद लाइलम हूँ जाहिल हूँ। तो ये दुआ सामिन कराम इंसान की अंदरूनी असलाह की सबसे ताकतवर दुआओं में से है, क्योंकि ये तीन बुनियादी मसाइल को हल करती है। पहली बात तो यह कि शर्र नफ्स से हिफाजत, इंसान का सबसे

0: my weekly update. Aapka weekly dose of news and much more with RJ Server. Don't miss it. Don't miss it.
1: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुतालिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी सुबह घर से निकलते वक्त ऐसा हुआ है कि फोन वॉलेट की सब याद रहता है बट ब्रेकफास्ट रह जाता है और हम बोल देते हैं कोई बात नहीं लंच में कवर हो जाएगा. पर आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट के बारे में. और ये सच है कि ब्रेकफास्ट हम जो स्किप करते हैं ये बॉडी के साथ अनफेयर हो जाता है. रात भर सोने के बाद बॉडी फास्टिंग मोड में जाती है, एनर्जी लेवल्स लो होते हैं और ब्रेन को फ्यूल की जरूरत होती है. ब्रेकफास्ट का काम होता है बॉडी को मैसेज देना, गुड मॉर्निंग, अब काम शुरू हो सकता है. जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तो हमारी बॉडी इमरजेंसी मोड में चले जाती है, शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करने लगते हैं, फोकस कम हो जाता है और थोड़ी देर बाद एक्सट्रीम भूख लगने लगती है. वेल, इसका रिजल्ट क्या होता है? लंच के टाइम ओवर ईटिंग या फिर जंक की क्रेविंग. आपने नोटिस किया होगा जिस दिन ब्रेकफास्ट मिस होता है उस दिन पेशेंस थोड़ा कम होता है, छोटी बातें ज्यादा इरिटेटिंग लगती है. वेल, ये कोइंसिडेंस नहीं है. ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है क्लियर थिंकिंग के लिए. ब्रेकफास्ट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, ये मूड सेट होता है, दिन भर का आपका मूड सेट करता है. और ब्रेकफास्ट का मतलब हैवी पराठा, बटर, ये सब नहीं होता है. बड़ा सिंपल सा भी ब्रेकफास्ट आपका हो सकता है, जैसे आपने फ्रूट्स और नट्स ले लिए, दही फ्रूट्स ले लिए, एग्स खा लिए, पोहा, उपमा, ओट्स, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं. एक प्लेट ब्रेकफास्ट आपका पूरा दिन भर का मूड सेट कर देता है. वेल, इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप खा रहे हो. ब्रेकफास्ट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, एनर्जी लेवल स्टेबल रहते हैं और दिन भर फूड चॉइसेस भी बेटर होते हैं. तो जो लोग रेगुलरली ब्रेकफास्ट करते हैं वो दिन भर ज्यादा बैलेंस्ड फील करते हैं, उनकी एनर्जी क्रैश कम होती है. और एक और अच्छी बात, ब्रेकफास्ट की जो हैबिट है वो बॉडी को रूटीन सिखाती है. बॉडी को पता होता है कि कब फ्यूल मिलने वाला है तो उसे ज्यादा एफिशिएंटली काम करना है. अगर आप बोलते हो टाइम ही नहीं मिला तो अपने ब्रेकफास्ट को कॉम्प्लिकेट मत बनाइए. कभी कभी अगर आपने सिर्फ एक एप्पल खा लिया या ब्रेड पे पीनट बटर लगा के खा लिया या हैंडफुल ऑफ नट्स खा लिए, पानी पी लिया, इतना भी काफी होता है फॉर अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट. ज्यादा कुकिंग की जरूरत ही नहीं है, घर पे बनाना रख लीजिए, कोई फ्रूट रख लीजिए, ब्रेड बटर एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो. और अगर आपने उसमें एग ऐड कर लिया तो नथिंग लाइक इट, ये बन जाता है आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट. तो कल सुबह जब अलार्म बजे फोन चेक करने से पहले बॉडी को थोड़ा फ्यूल दीजिए, क्योंकि जब आप सुबह अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो तो बॉडी पूरा दिन आपका साथ देती है, एनर्जी के साथ, फोकस के साथ, अच्छे फ्लो के साथ. इसलिए याद रखिए, ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए. अपनी हेल्थ को गुड मॉर्निंग कहना है तो वो ब्रेकफास्ट के साथ करिए, क्योंकि तभी आपकी मॉर्निंग रियल में गुडी गुडी होंगी. एंड ऑलवेज रिमेम्बर, योर हेल्थ Matter.
1: FM 107 presents
0: Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
3: Qatar ka pehla desi radio station FM 107. Dil se desi.

करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान, टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान नाजमुल हुसैन शांतो। यहाँ दोस्तों नाजमुल हुसैन शांतो को पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर में खेला गया फर्स्ट टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। इसका रीजन ये रहा कि इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर किया और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में भी 50 प्लस स्कोर रन करके बांग्लादेश को एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन और आगे जाकर मैच जितवाने में मदद की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नाजमुल अपनी काम पर्सनालिटी और क्लासी बैटिंग स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। शांतो ने पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के लिए कई इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं और टीम को मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होने की वजह से वो क्रीज पर बहुत एलिगेंट नजर आते हैं और स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ अच्छी बैटिंग करते हैं। मीरपुर में इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स के प्रेशर के बावजूद उन्होंने पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की। उनकी सेंचुरी ने बांग्लादेश को ना सिर्फ मैच ही जितवाया बल्कि टेस्ट स्टेटस में अगर देखा जाए बांग्लादेश हैज रियली कम अप। और इसी में नाजमुल हुसैन शांतो या नाहिद राणा जैसे खिलाड़ी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को काफी मजबूत पोजिशन हासिल करने में मदद की। एक्सपर्ट्स ने उनके शॉट सिलेक्शन और टेम्परमेंट की खूब तारीफ की और कहा कि ये इनिंग्स उनके करियर की यादगार इनिंग्स में से एक है। नाजमुल हुसैन शांतो को बांग्लादेश क्रिकेट का फ्यूचर लीडर भी माना जाता है। उनकी कंसिस्टेंसी, लीडरशिप और डेडिकेशन नौजवान क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन है और फैंस को उम्मीद है कि वो आने वाले सालों में और भी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेगा। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
3: फ्रॉड अवेयरनेस।
4: आजकल आईडीज बन के बहुत बातें हो रही हैं। कई लोग आपके फेसबुक की डुप्लीकेट आईडीज बनाते हैं, कुछ फ्रेंड्स को ऐड करते हैं और फिर मैसेज करना शुरू। सलाम अलैकुम, मेरा नाम है वेद और आप सुन रहे हैं फ्रॉड अवेयरनेस। हाल ही में ये मेरे साथ भी हुआ। किसी ने मेरे नाम की फेक आईडी बना के मेरे कुछ गांव घर के दोस्तों को मैसेज किया कि मैं कहीं एयरपोर्ट में फंसा हुआ हूं और मैं कैश नहीं निकाल पा रहा हूं। एयरपोर्ट में फंसा हूं और मुझे कैश की जरूरत है, मैं घर आते ही वापस कर दूं। सिचुएशन ऐसी क्रिएट की कि जो मेरा गांव घर का दोस्त था उसे लगा ओह माय गॉड ये क्या हो गया, लेकिन उसे पता था ये बंदा कहीं फंस तो नहीं सकता है। उसने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, क्रॉस चेक किया। पहली चीज यहाँ पे क्रॉस चेक किया। उसने बोला तुम कहीं एयरपोर्ट में फंस हो क्या भाई? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो आराम से बैठा हूँ यहाँ पे। उसने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया और मैं बोला ये फेक है, इसको रिपोर्ट करो। तो इस तरीके से लोग सिचुएशन बना के आपके नाम पे पैसे आठ लेते हैं और लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपके लिए वो पेमेंट कर भी देते हैं। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी समझाएं कि किसी भी तरह की अगर ऐसी आईडी से आपको कभी मैसेज आता है तो एक बार क्रॉस चेक करना ना भूलें।
3: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अच्छा, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
3: हाँ, उसके लिए तो
2: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
3: वैसे वो तो देखो,
2: इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
3: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे।
0: प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में।
3: दोस्तों, कतर की खूबसूरती जो आज हम देख रहे हैं वो एक्चुअली आज की नहीं है, वो जमाने पहले की तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का ये शो कतर 101। और जमाने पहले की तैयारी से मतलब ये है कि कतर जो आज है, जो मेहनत कर रहा है, और कतर की इंडस्ट्री जो है वो आज की नहीं, वो बड़े जमाने पहले की है, जब कतर अपने आप को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए डाइविंग किया करता था। और इस शो में आज कतर 101 में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर अभी तक आपको कतर के लाइफस्टाइल से लेकर कतर के कस्टम के बारे में पता चला, कतर के ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में पता चला, लेकिन कतर कैसे जिंदा रहा करता था, कतर कैसे अपने आप को बेहतर ट्रेड के तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फिक्स कर चुका था। और ये एक लौता ऐसा मरकज़ था जहाँ पर हज़ारों लोग, लाखों लोग आते थे और ट्रेड किया करते थे, चाहे वो स्पाइस की ट्रेड हो, चाहे वो पर्ल की ट्रेड हो, चाहे वो कपड़ों की, या आम तौर पर यूरोप की तरफ जाने वाले ट्रेड करने वाले लोग हो, वो यहीं पर कतर में रुका करते थे। और आज हम इसी पर्ल के बारे में बात करेंगे। इन सब ट्रेड में एक ट्रेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था पर्ल, और आज हम उसी मोती के बारे में, पर्ल के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये जो कतर के लोग थे पर्ल डाइविंग किया करते थे, कौन से बोट में जाते थे, किस तरह की तैयारी होती थी, कैप्टन का काम क्या होता था, और वहाँ पर जो लोग थे वो खुशियाँ कैसे मनाते थे, पहले पर्ल के मिलने के बाद वो किस तरह से सेलिब्रेट करते थे, हर एक चीज़ आज आपको पता चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास शो को जिसका नाम है कतर 101। दोस्तों, आज हम लुसेल के स्काईस्क्रेपर्स और नियॉन लाइट्स को हटाकर इस कॉम की असली रूह को देखेंगे, मोती यानी कि द पर्ल। ऑयल की पहली बूंद मिलने से पहले कतर की पहचान गवास यानी कि गोताखोरों से थी। आज आप एक ऐसे दोहा का तस्वीर कीजिए जहां हॉरिजॉन पर बुर्ज दोहा नहीं बल्कि सैकड़ों लकड़ी की धाउज यानी कि कश्तियां नजर आती हैं, जो अक्सर हम दोहा कॉर्निश पर देखते हैं, जो अक्सर हम लुसेल में देखते हैं, जो अक्सर हम वकरा के बीच पर लोगों को बनाते हुए, बोट को या कहीं धाव को बनाते हुए देखते हैं, उसका आज आपको तस्वीर करना है। दोस्तों, हीरत यानी ऑयस्टर के बिस्तर की तरह निकल रही होती थी जब कोई बोट पर्ल की तलाश में निकलती थी, और उसमें काफ़ी लोग हुआ करते थे। और जब पर्ल डाइविंग के लिए जो बोट्स निकलती थी जिसमें काफ़ी लोग होते थे, वो एक्चुअली एक या दो बोट नहीं होती थी, उस वक्त कम से कम सैकड़ों बोट एक साथ हीरे की तलाश में यानी कि पर्ल की डाइविंग के लिए निकला करती थी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक थका देने वाली बहादुरी भरी जिंदगी थी जो सदियों तक चली। इस आधे घंटे में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अरेबियन गल्फ की गहराई से निकले एक छोटे से चमकदार मोती ने मॉडर्न कतर की बुनियाद रखी, जिसे हम आज प्यार करते हैं। हम उन गानों की बात करेंगे जो हौसला बनाए रखते थे। गाना, म्यूजिक, ये आज के जमाने का नहीं है, ये सदियों पुराना है, जहाँ पर ट्रेडिशनली, कल्चरली कुछ ऐसे सॉन्ग को इंक्लूड किया गया ताकि बोट में जो लोग हैं, जो बोट में बैठे लोग हैं, जो पर्ल डाइविंग करते हैं, जो गोताखोर हैं, उनको सेलिब्रेट किया जा सके, उनकी डाइविंग को और उनकी चीज़ों को, उनके जो हथियार हुआ करते थे उनके पास, उनको भी सेलिब्रेट किया जा सके। हम उन गानों की भी बात करेंगे जो हौसला बनाए रखते थे डाइवर्स कि जिस्म तोड़ मेहनत, और कैसे वो पर्ल डीएनए आज भी कतरी मेहमान नवाजी में मौजूद है। हमारे साथ रहिए जब हम ग्रेट पर्ल बैंक्स की हिस्ट्री में डाइव करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो धाव पर जिंदगी होती थी वो कैसी होती थी, पर्लिंग को समझने के लिए आपको बोट को समझना होगा। धाव एक तैरता हुआ शहर था एक्चुअली। आजकल की धाव ये फिर भी हम कहते हैं कि थोड़ी छोटी है, लेकिन उस वक्त की धाव थोड़ी और ज्यादा बड़ी और कैपेबल, तेज तूफानों में और तेज लहरों से लड़ने के लिए काबिल और कैपेबल थी। एक आम क्रू में एक नाखुदा यानी कि कैप्टन, गवास यानी कि डाइवर्स और साहिब यानी कि पुलर्स खींचने वाले जो है वो हुआ करते थे। डाइवर और पुलर का रिश्ता एक असली लाइफलाइन था। डाइवर 60 फीट नीचे जाते और सिर्फ एक नाक के क्लिप के साथ जो टर्टल शेल से बना होता था जिसे फतातिम कहते हैं, और पैरों पर लेड के वजन ताकि वो तेजी से फ्लोर तक पहुंच सके। उनके पास शायद 90 सेकंड हुआ करते थे, तकरीबन 1.5 मिनट, जिसमें वो डाइव करते थे, अपनी सांस रोकते थे ऑयस्टर को पकड़ने के लिए, और फिर जब वो ऊपर आते थे, इतना सब कुछ सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर अंदर। इससे पहले कि वो अपनी रस्सी को झटका दे, वो एक सिंगल झटका पुलर को बताता था कि मुझे अभी ऊपर खींचो वरना मैं दोबारा सांस नहीं ले पाऊंगा। गहराई में

0: जाना और गहराई के प्रेशर यानी कि पानी के प्रेशर को समझना, अपने पानी अपने ऊपर अपने बॉडी के ऊपर पानी के प्रेशर को लेना, ये बहुत बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हुआ करती थी। ये जिंदगी और मौत का डांस था जो दिन में 50 बार किया जाता था। वो खजूर, मछली और थोड़े से पानी पर गुजारा किया करते थे और लकड़ी के सख्त डेक पर सितारों के नीचे सोया करते थे। उस वक्त कोई गद्दा नहीं था। ये ब्रूटल था लेकिन इसने लोहे जैसी हिम्मत वाले मर्दों की कम्युनिटी बनाई। और अब नहम का संगीत समझेंगे। दोस्तों, समंदर के साउंडट्रैक की बात अगर हम करें तो 1800 में कोई रेडियो नहीं हुआ करता था, इसलिए उनके पास नहम होता था, लीड सिंगर होता था जो बोट पर सेल यानी कि बादबान के बाद उसकी आवाज सबसे जरूरी टूल हुआ करती थी। गाने जिन्हें फिजीरी कहा जाता था रिदमिक और गहरे होते थे जो लहरों की आवाज की नकल करते थे। नहम कॉल और रिस्पॉन्स लीड करता था ताकि मर्द भारी एंकर्स खींचते वक्त या मौजों के खिलाफ कश्ती चलाते वक्त रिदम में रहे। ये म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए नहीं था, ये एक नफसियाती दावा यानी कि साइकोलॉजिकल मेडिसिन भी थी। आज भी हम देखेंगे कि कई बार जब म्यूजिक तेज होता है तो हम म्यूजिक के साथ झूमते हैं। जब एक जगह पर बहुत ज्यादा म्यूजिक लवर इकट्ठा होते हैं और एक रिदम में गाना प्ले होता है तो सब एक रिदम में कूदते हैं। वो रिदम इस धाव में बेहद इंपॉर्टेंट था ताकि पुलर या फिर जो डाइवर्स होते हैं या फिर कश्ती को जो चलाने वाले होते हैं वो एक रिदम में रहें, वो एक पेज पर रहें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और म्यूजिक का काम बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए माना जाता था। ये मर्दों को डिस्पेयर यानी कि मायूसी में गिरने से बचाता था। उन 4 महीनों के दौरान जब वो अपने परिवार से दूर होते थे, अगर आज आप कतर का फिलहारमोनिक सुने तो आप इस कॉम्पोजिशंस में छुपी समुद्री धुने ये सुन सकते हैं। ये गल्फ की मैरिटाइम हिस्ट्री की एक यादगार और खूबसूरत विरासत है। एक जेम की इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है और मोती ही क्यों, ये बहुत से चीज़ें हैं यहाँ पर, और भी चीज़ें हैं काम करने के लिए जीवन या अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। हमने देखा है मुख्तलिफ तरीक़ों से जिया जा सकता था लेकिन मोती ही क्यों। दोस्तों, क्योंकि कतरी मोती दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। जैसे सोना होता है ना 21 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, तो इनमें यानी कि मोतियों में भी इसी तरह बेहतरीन उनकी जो क्वालिटी होती है, हर स्टेज पे क्वालिटी चेंज होती है। और ऐसे में कतर के जो मोती होते थे उन्हें बेहतरीन माना जाता था, उनकी वैल्यू ज़्यादा थी और उनको ट्रेड करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, उनकी ख़रीदारी करने के लिए लोग आते थे। तो बड़ा ज़रूरी था जो कतर के लोग थे वो कतर के मोती को लेकर ट्रेड करें, उन पर अपनी लाइफ पूरी गुजारते थे। गल्फ के नमकीन पानी के नीचे मौजूद जो मीठे पानी के या कहें चश्मों या फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स की वजह से इन स्वीट वाटर्स मोतियों में ऐसी चमक थी जिसके लिए पेरिस और लंदन के फैशन हाउस तड़पते थे। वो चाहते थे कि कतर के अगर पर्ल मिल जाए तो मज़ा आ जाए और उसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते थे। 1900 की शुरुआत में 1900 की शुरुआत में कतर की लगभग 50% मर्द की जो आबादी थी इस ट्रेड में शामिल थी। अलवकरा और अलखोर जैसे पूरे गांव सिर्फ पर्लिंग सीजन यानी कि गौस अल काबिर द बिग डाइव के लिए बनाए गए थे। हालांकि 1930s में इस इंडस्ट्री को एक बड़ा क्राइसिस झेलना पड़ा जब जापान ने कल्चर्ड पर्ल्स नकली मोती ईजाद किया और दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया। यह कतरी हिस्ट्री का एक बड़ा मोड़ था। जैसे ही मोती की इंडस्ट्री खत्म हुई, ऑयल मिल गया, ऐसा लगा जैसे समंदर ने पीछे हटकर जमीन को रिस्क देने का मौका दिया। और जैसे कि ये जो पर्ल है, ये जो मोती है इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही उस वक्त ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। और उस सदी में जब ऑयल मिला तो ये एक मोती का ही काम कर रहा था। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का मिलाप, आप पूछ सकते हैं कि क्या पर्लिंग मर चुकी है। जिस्मानी तौर पर अगर कहें तो हाँ, अब कोई गुजारे के लिए डाइव नहीं करता, लेकिन कल्चरली ये हर जगह है। शौक से, कल्चर से ये लोग, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो पर्ल के लिए डाइव करते हैं। आर्किटेक्चर को देखिए, द पर्ल कतर आइलैंड मोतियों की एक माला की शक्ल में बना है। अब आपको पता चलेगा कि द पर्ल आइलैंड जो है या द पर्ल कतर आइलैंड जो है वो क्यों इस तरह से बना है कि ये मोतियों की माला जैसी लगती है। इसीलिए क्योंकि कतर की जो हिस्ट्री है वो पर्ल पर रही है। नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़ौदा का मशहूर पर्ल कारपेट भी है जिसमें 1,500,000 नेचुरल गल्फ पर्ल्स लगे हैं। इससे भी जरूरी पर्लिंग की वैल्यूज, सब्र, रेजिलियंस और मजलिस, ये सब मिलकर कतर के कल्चर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, स्पिरिट वाला बनाते हैं। कतरी लाइफस्टाइल की बुनियाद है ये। जब एक कतरी आज आपकी इतनी शिद्दत और दरिया दिली से खातिरदारी करता है तो ये उस हिस्ट्री से आता है जहां सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता था कि धाव पर आपके बगल में खड़ा आदमी कैसा है। गवास स्पिरिट ही वजह है कि कतर इतनी तेजी से एक ग्लोबल लीडर बना। अब जरा हेरिटेज को संभालने का कॉन्सेप्ट, इसे भी समझते हैं। अगर आप इसे आज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको सूक वाकिफ जाना पड़ेगा। आपको वहां आज भी पर्ल मर्चेंट्स मिलेंगे जो एक दाना यानी कि सबसे परफेक्ट मोती और एक जीवान के बीच फर्क बता सकते हैं। नौजवानों के लिए हर साल पर्ल डाइविंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं ताकि ये स्किल्स लोग भूल ना जाए। गवर्नमेंट हीरत यानी ऑयस्टर बेड्स को इन्वायरमेंटल प्रिजर्व्स के तौर पर प्रोटेक्ट भी करती है। जो लोग इसे खुद देखना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं सनसेट के वक्त धाव हार्बर जाने की एडवाइस दूंगा उनको। जब सूरज डूबता है तो वेस्ट बे के स्काई स्क्रेपर्स के सामने उन लकड़ी की बोट्स का साया कतर के परफेक्ट मेटाफर है। एक ऐसा देश जिसका सर फ्यूचर में है लेकिन दिल अपने माजी यानी कि पास्ट के टर्कोइज पानी में गहरा डूबा हुआ है। दोस्तों, जब हम इस पल के बारे में बात करते हैं तो एक पल के लिए सोचें कि दोहा की हर सड़क उन गोताखोरों के पसीने से बनी है। मोती ने कतर को ग्लोबल ट्रेड का पहला स्वाद चखाया। इस पेनिनसुला को इंडिया, यूरोप और उससे आगे के मार्केट से जोड़ा। इसने एक कौम को सिखाया कि मुश्किल तरीन हालात में कैसे जिंदा रहना है और गहराई में खूबसूरती कैसे ढूंढनी है। अगली बार जब आपको मोती दिखे तो उसे सिर्फ ज्वेलरी का टुकड़ा न समझें, एक डाइवर, एक पुलर और एक गाने की कहानी को भी देखें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम असली जिंदगी के मनाजिर के बारे में बात करेंगे और गौसल कब्र यानी कि बड़े गोते की बात करेंगे FM 107 पे, और डिटेल्स में पता करेंगे कि जब भी आप पर्ल एरा के कुछ चीज़ों के बारे में सुने या फिर धाव के आसपास जाएं तो क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब धाव से रिलेटेड, पर्ल से रिलेटेड किसी कल्चरल या ट्रेडिशनल चीज़ों के पास रहें तो कैसे आपको बिहेव करना है। वेल, एक छोटा सा ब्रेक FM 107 पे और जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर हम बात करेंगे। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: Excuse me, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
0: उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
0: वैसे वो तो
1: और
0: देखो,
1: इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
0: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, ये खास शो आप सुन रहे हैं कतर 101, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज पर्ल के बारे में। समंदर में गहराई में गोता लगाएंगे तो वहां पर आपको पर्ल मिलेंगे और उस पर्ल में आपको एहसास होगा कि कतर का फ्यूचर कैसे छुपा हुआ था। एक ज़माना था जब यहाँ पर ऑयल नहीं था, जब लोग जीने के लिए, ज़िंदगी को गुजारने के लिए अलखोर से, अलवकरा से पर्ल ढूंढने के लिए निकला करते थे, डाइव किया करते थे, गहराई में कूदा करते थे पानी के, और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक पानी के अंदर रहते थे, नाक में क्लिप लगा कर जाते थे, पानी का भयंकर प्रेशर होता था और वहाँ से एक खूबसूरत चमकदार मोती लाया करते थे। और ये मोती इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे मोती तो बहुत सारे थे, हर जगह मोती ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो कतर के, जो गल्फ़ के मोती थे वो लंदन के शहरों में, पेरिस के शहरों में बहुत खूबसूरत माने जाते थे और उनकी जो क्वालिटी थी वो लाजवाब थी, इसलिए लोग दूर दूर से कतर में ख़रीदने आते थे। और इसी कहानी में धाव का भी धाव की भी एंट्री है, इसी कहानी में म्यूजिक की भी एंट्री है, और इसी कहानी में कैप्टन के साथ साथ जो डीप डाइवर्स हैं उनकी भी एंट्री है, जहां पर म्यूजिक के साथ कश्ती को चलाना,

म्यूजिक के साथ एंटरटेन के साथ साथ और रिदम को पकड़ने की बात भी हमने समझी। तो FM 107 पे जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि असली जिंदगी का मनाजिर क्या है। तस्वीर कीजिए कि दोहा का जो साहिल है जहां खवातीन और बच्चे सफेद स्कार्फ लहराए खड़े हैं और हिफाजत की दुआएं गा रहे हैं। मर्द 4 महीने तक अब वापस नहीं आएंगे। ये समंदर के बीच जाने वाले हैं, बहुत गहराई में। आज के जमाने के जो धाव हैं ये थोड़ा तेज चलते हैं। उस जमाने के धाव में कोई मशीन नहीं थी। उस वक्त जो अवेलेबल लोग होते थे, जो धाव चलाने वाले लोग होते थे, वो अपने हाथों से उस धाव को धीरे धीरे समंदर में लेकर जाते थे और ऐसी जगह रुकते थे जहां पर पर्ल मिल सके। और समंदर की उस जगह को ढूंढना जहां पर पर्ल छुपा होगा, ये भी एक अलग तरह का चैलेंज था। तो दोस्तों, 4 महीने के लिए वापस नहीं आना, इस वजह से एक अनोखा सोशल सिस्टम बना जहां औरतों ने पूरा घर और पैसों को संभाला, जिससे कतरी खवातीन में मजबूत लीडरशिप की विरासत पैदा हुई। और फिर दाना की खोज। जब कोई होताखोर एक दाना यानी कि सबसे नायाब मोती ढूंढ लेता, तो नखुदा यानी कि कैप्टन एक खास झंडा लहराकर जश्न मनाता था। पूरे क्रू को एक्स्ट्रा खाना या कॉफी मिला करती थी। ये सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, बल्कि पूरी बोट की खुशी थी, जो उन मर्दों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ती थी। पल अरा की कुछ ऐसी भी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें और आपको समझने के लिए, ना खुदा की इज्जत करना। देखिए दोस्तों, कई बार आपको हो सकता है कि ऐसी जगह पर आप खड़े हों जहां कोई कैप्टन अपनी दांव के पास खड़ा हो। आज भी लोग गहराई में अपने कल्चर को, कतर के कल्चर को बचाने के लिए जाते हैं और वहां पर डाइव करते हैं। उसमें आपको कैप्टन दिखेगा। जब भी आपको कैप्टन दिखे या फिर आप दांव में बैठे हैं, तो कैप्टन की बात आखिरी कानून हुआ करती थी और आपको भी ऐसे ही मानना चाहिए। एक छोटी बोट पर 30 से 50 मर्दों के बीच डिसिप्लिन ही उन्हें किसी फसाद या मुसीबत से चाय करती थी। मोती ना छुपाना, ये उस जमाने का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल हुआ करता था। अगर कोई गोताखोर मोती छुपाते हुए पकड़ा गया, तो उसे पूरे शहर में शर्मिंदा किया जाता था और हमेशा के लिए इस काम से बैन कर दिया जाता था। सोचिए, 4 महीनों के लिए कई लोग एक साथ समंदर में धाव से बहुत लंबे वक्त तक के लिए अपने फैमिली से दूर हैं और एक गोताखोर के दिमाग में ये बात आती है कि जब उसे डीप डाइव करते हुए एक मोती मिल जाए, तो उस मोती को वो छुपा ले, उस मोती को वो लोगों से ना बांटे। ऐसे में जो 4 महीने से दूर हैं, उनके प्रॉफिट में, उनके खानदानों में, उनके पास जो पैसे हुआ करते थे या उनके जो घर वाले हैं, उनकी फैमिली कैसे चलेगी। एक मोती की इम्पोर्टेंस उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और कई बार लालच में अगर कोई शख्स ऐसा कर दे, तो उसे फिर बैन कर दिया जाता था। परिवार की मदद। जो लोग जमीन पर होते थे, उनका फर्ज था कि वो उन गोताखोरों के पीछे रह गए घर वालों को या घर वालों का भी ख्याल रखें। अगर किसी के घर खजूर या पानी या खाने की चीजें कम हो जाएं, तो पड़ोसी बिना मांगे ही उन्हें प्रोवाइड किया करते थे। सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा शख्स या फिर आप अपने घर से, अपने परिवार से 4 से 6 महीने के लिए दूर हैं और ऐसे में आपके घर में खाने की प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो आप पहले तैयारी करके जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर कोई ऐसी परेशानी आ जाए जहां पर खाने पीने की चीज़ें ना हो, तो फैमिली की मदद करने के लिए लोग जो हैं अगल बगल हुआ करते थे, नेबर्स हुआ करते थे। उस वक्त पूरा एक गांव एक दूसरे को जाना करता था। जो डाइवर्स होते थे, उनके फैमिलीज को समझाया जाता था। जो धाव का कैप्टन होता था, उनको समझाया जाता था, उनमें बातचीत हुआ करती थी। और आज हालांकि ऐसा नहीं, आज हम लोगों को उस तरह से नहीं जानते हैं, उस करीब से नहीं जानते जिस करीब से उस वक्त एक दूसरे को जाना जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं सईब और गवास यानी कि अदब और सोशल नॉर्म्स के बारे में। डाइवर और रस्सी खींचने वाले के बीच एक मुकद्दस भरोसा होता था। वो अक्सर समंदर के भाई बन जाते थे और ये दोस्ती उनके नस्लों तक चलती थी। और फिर सब्र और बर्दाश्त। मर्दों से उम्मीद की जाती थी कि वो शदीद प्यास और गर्मी को बिना शिकायत बर्दाश्त करें। दर्द या डर दिखाना मर्दाना अदब के खिलाफ समझा जाता था। कमी में भी सखावत, ये धाव में रहते हुए एक ऐसी बात बन गई जो बहुत लंबे वक्त तक इंसानों के बीच चली, खास तौर पे कतर के।

इस खूबसूरत मुल्क में। अगर किसी बोट पर पानी कम भी होता, तब भी अगर रास्ते में कोई दूसरी बोट मदद मांगती तो उन्हें अपना हिस्सा देना ही पड़ता था। यानी सहरा का कानून था, ये डेजर्ट का लॉ था। आज के कतर में ये बात दिखती है, जहाँ किसी मेहमान को भूखा नहीं जाने दिया जाता। और कहीं पर भी अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको पानी की बोतल दी जाती है। किसी भी आप दावत में जाएंगे, आप बैठेंगे तो आपको कहवा, पानी, खजूर, ये 3 से 4 चीज़ आपके सामने सबसे पहले रखी जाती है। एज अ स्नैक नहीं, एज अ वो जेस्चर जो जमानों पहले अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से कतर के लोगों ने सीखा, और कतर के DNA में ये बात आ गई कि लोगों को सबसे पहले पानी और चीज़ों से नवाजा जाए जब वो किसी के घर आए या फिर दुकान पे या कहीं पर भी जाएं जहां पर वो पहली बार गए हैं या इंसान पहली बार गए। मॉडर्न कल्चरल के बारे में अगर हम बात करें, नकली और असली में फर्क समझना, कतर में आज भी कुदरती समुद्री मोती यानी कि नेचुरल और फैक्ट्री में बने कल्चर्ड मोतियों में बड़ा फर्क रखा जाता है। लोकल्स के साथ बात करते वक्त हमेशा नेचुरल पर्ल्स की ही तारीफ करें, क्योंकि जब भी आप कल्चर्ड यानी कि फेक बने फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे तो आपको कतर की सखाफत या कतर के लोगों से मुख्तलिफ होकर देखा जाएगा। दोस्तों, ऑयल से पहले की जो इकोनॉमी थी, 1940 से पहले कतर ज़िरात यानी कि एग्रीकल्चर की ज़मीन नहीं थी, मिट्टी नमकीन थी और बारिश बहुत कम। लोग टर्कोइज पानियों की तरफ देखते थे। हर गर्मियों में जून से सितंबर तक शहर मर्दों से खाली हो जाते थे। डाइवर्स की इज्जत उनके ख़ानदान के नाम से नहीं बल्कि उसके सांस रोकने की ताकत और बहादुरी से होती थी। तो आज के ज़माने में हम लोगों को देखते हैं कि उनके पास पैसे कितने हैं, उनके पास घर कैसा है, उनके पास कार कैसी है, लेकिन उस ज़माने में उन डाइवर्स के घरों की इज्जत ऐसे नापी जाती थी कि उनके पास यानी कि डाइवर्स के पास सांस रोकने की ताकत और बहादुरी कितनी है। वो जब अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं, वो जब तेज तूफान में वहां जाते हैं यानी कि समंदर में जाते हैं तो कैसे उन रात में जहां अंधेरा है, लाइट नहीं है और तेज तूफानों का सामना करना, उन सब के बीच रहते हुए कैसे वो डाइवर अपने साथ होने वाले तकलीफों को छुपाता है और ऐसे ही उनके खानदानों की इज्जत हुआ करती थी। और फिर ज़मीन के कैप्टन जो मर्द समंदर पर होते थे, कतरी औरतें ज़मीन की कैप्टन बन जाती थीं। 4 महीने तक जो निज़ाम होता था वो औरतों के निज़ाम वाला कहा जाता था। वो पैसे संभालती थीं, बच्चों की परवरिश करती थीं और जायदाद की हिफाजत किया करती थीं। यही वजह है कि आज भी कतरी ख़वातीनें ख़ानदान की बुनियाद और रिवायत की मुहाफिज यानी कि गार्डियंस भी मानी जाती हैं। दोस्तों, जब भी पर्ल डाइवर्स डाइव करते तो शार्क का ख़तरा, जानवर का ख़तरा, जान का ख़तरा और तेज़ तूफान का ख़तरा हमेशा बना रहता था। लेकिन इन सबसे बढ़कर खतरा था डेथ साइकिल का। सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ शार्क या पानी का प्रेशर नहीं बल्कि पैसा था। क्रेडिट सिस्टम को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर गोताखोरों की अपनी बोट नहीं होती थी, वो उधार पर काम किया करते थे। कैप्टन यानी कि नाखुदा उन्हें थोड़ा एडवांस यानी कि सलफ देता था ताकि मर्दों के पीछे उनका परिवार खाने को खा सके। एक जुआ, ये गैम्बल था। अगर सीजन बुरा गया और कोई बड़े मोती नहीं मिले तो डाइवर समर के एंड में कर्ज में डूब जाया करते थे। इसका मतलब था कि अगले साल भी उसे उसी कैप्टन के लिए काम करना पड़ेगा। ये नस्लों तक चलने वाला कर्ज था जिसे सिर्फ वही तोड़ सकता था जिसकी किस्मत में कोई सबसे चमकदार सफेद मोती निकल आए। जिंदगी का मुहाफिज, हर डाइवर का एक साहब यानी कि रस्सी खींचने वाला होता था। जब डाइवर 20 मीटर नीचे होता तो उसकी जान उस आदमी के हाथ में होती जो ऊपर रस्सी पकड़े खड़ा है। अगर साहब का ध्यान 30 सेकंड के लिए भी भटका तो डाइवर डूब सकता था। इस वजह से एक डाइवर और उसका पुलर पूरी जिंदगी साथ काम करते थे। वो भाइयों से भी ज्यादा करीब हो जाते थे। आज भी कतरी कल्चर में वफादारी, लॉयल्टी सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है, क्योंकि सदियों तक उनकी जान उनकी रस्सी पकड़ने वाले पर ही टिकी थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो FM 107 पे कतर 101 पे, जहां पर हमने बताया कतर के जो डाइवर्स होते थे, जो कैप्टन होते थे, जो धाव होती थी कैसे काम करती थी, बहुत गहरे समंदर में जाना, शार्क का डर, तेज तूफान का डर, बोट के पलट जाने का डर, लेकिन इन सब के बीच साहिब और जो डाइवर होते हैं उनमें मोहब्बत, उनमें काम को करने की लगन, और कैसे वो काफ़ी नीचे 20-20 मीटर नीचे जाते और डाइवर्स

जो हैं वो मोतियों को ढूंढते और अपने घर का कर्ज उतारते, और जब इस दौरान यानी कि 4 महीने तक ये धाव लेकर जो डाइवर्स हैं समंदर के बीच में हुआ करते थे, उस दौरान औरतें जो हैं

0: जैसे कि 30 साल की उम्र तक कान के पर्दे जो हैं वो डाइवर्स के फट जाया करते थे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हर साल साल ब साल जो है वो समंदर में जाया करते थे और जो प्रेशर होता था उसकी वजह से वो कान के पर्दे फट जाया करते थे। और इससे एक सबक, एक कल्चरल लेसन मिला कि अपने बुजुर्गों के लिए इज्जत करना जिन्होंने अपनी सेहत को कुर्बान किया। उस वक्त जो बच्चे रह जाते थे उन 4 महीनों के दौरान, वो बच्चों को पता था कि उनके अब्बा जान या फिर उनके जो फादर या फिर उनके जो भाई हैं वो डीप डाइव के लिए समंदर में जाते हैं, और फिर कुछ सालों बाद उनके कान की आवाज़ धीरे धीरे, यानी कि कान के सुनने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाया करती थी। एक और स्ट्रगल था, वो था हंगर। हर डाइव के बाद सिर्फ 3 खजूर और 1 घूंट पानी। पता नहीं दोस्तों हमें और आपको कितना पता है, एक्चुअली डाइविंग के बाद सबसे ज़्यादा भूख लगती है। हमारी भूख जो है समंदर में जब डाइव करें या तैरते हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमारी भूख बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मुश्किल थी वो थी हर डाइव के बाद सिर्फ 3 खजूर और 1 घूंट पानी। लेकिन इससे सबक मिला, कल्चरल लेसन जो है वो आज भी हमारे कतरी भाइयों में है। वो है, आज कतर में दावत इतनी बड़ी और जनरस होती है कि आज भी लोग मेहमान नवाजी की कदर करते हैं और खुश होते हैं। और फिर फियर, सॉफिश और शार्क का हमेशा खतरा बना रहता था। एक ये सबसे बड़ा प्रेशर जो डाइवर्स था उनके लिए था सब्र, यानी कि इससे जो कल्चर या फिर सबक मिला वो था सब्र का, बहादुरी वाला इंतज़ार। उसकी शुरुआत यहीं से हुई। उसके अलावा कर्ज, ये भी एक प्रेशर था, एक पुराने एडवांस को चुकाने के लिए सालों काम करना, फिर इससे सबक मिला फेयर ट्रेड और एक दूसरे की मदद की अहमियत। ये कल्चर हमारे आज जो कतर के भाइयों में, हम लोगों में भी जो धीरे धीरे आ रहा है, वो सिर्फ इन डाइवर्स की वजह से ही हम तक पहुँच रहा है। तो इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए शो को लेकर, एक नए जज्बे को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर, जहां पर हम कतर 101 में बात करेंगे इन्हीं तरह के कस्टम, लाइफस्टाइल, कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: Anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
5: हेलो,
6: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
5: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
7: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
3: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check.
2: हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 11:02।
1: यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस। आफ्टरनून
1: एक्सप्रेस तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
3: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। राइट गाइस, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे। सरवर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं उस शो में जिसका नाम है आफ्टरनून एक्सप्रेस, और हम कह सकते हैं कि ये अब इस सीजन का इट्स अ फाइनल एपिसोड। तो आज हम जो है वो आपको सेलिब्रेट करने वाले हैं, आई मीन अपने लिसनर्स को, जिसने इस शो को इतना मेमोरेबल हम दोनों के लिए बना दिया। आपका बहुत ही कमाल का कंट्रीब्यूशन रहा थ्रू आउट। आज हम जो है इट्स जस्ट गोना बी अ रीकैप, हल्की फुल्की बात करेंगे, आफ्टरनून एक्सप्रेस के जो बेस्ट मोमेंट्स हैं उन्हें याद करेंगे, और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं आपके लिए कौन कौन से सेगमेंट्स थे वो बहुत ही मेमोरेबल रहेंगे या हैं तो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। द नंबर्स आर लाइक 666-222-107 और फिर कॉल करने के लिए नंबर है 4434377।
2: बिल्कुल सही भाई। और नाजिया क्या हालचाल है, कैसी रही ये तो बताइए कि ईद कैसी रही? इतने दिन जान छूटी रही आपकी मुझसे, कैसा रहा, कैसे गुजरे आपके दिन?
4: अल्लाह
2: तेरा शुक्र रहा। चलिए ये तो एक तरफ से अल्लाह का शुक्र रहा, बट ईद के सारे दिन क्या किया, कुर्बानी वगैरह के बाद क्या किया और क्या खास रहा?
4: मैंने यहाँ पे नहीं की, अच्छा बताया।

0: कि कुर्बानी तो खैर इंडिया में वहीं पर घर पे हुई
1: अच्छा
0: लेकिन हां यहां पर मैंने जो ना भरपूर तरीके से सुबह दोपहर शाम दावतें उड़ाई सुबह दोपहर शाम
1: क्या कहने
0: तो मतलब जितनी जो भी मुझे मिल रही थी तो इस तरह से मेरी जो है ना बहुत हैक्टिक रही बट वेरी नाइस
1: चलिए भाई उम्मीद करते हैं
0: कॉलर भी जुड़ गए सर्वर यहां
1: पे कि हमारे सब तमाम कॉलर्स की भी ईद अच्छी रही होगी इंशाल्लाह ताला
0: इंशाल्लाह
1: और क्यों ही नहीं होती
0: और ईद पे तो हम मिले कॉलर से मेरा मतलब है हम लोगों का
1: मुलाकात हुई बिल्कुल मुलाकात
0: हुई कुछ कॉलर्स के साथ हम जुड़े तो वो तो खैर अपने आप में और कुछ कॉलर ऐसे जो मुझे ढूंढते पहुंचे रात
1: वाह वाह वाह वाह क्या कहने
0: तो करीम शाह जी थे
1: उन्होंने
0: कहा कि हम आपको आफ्टरनून में ढूंढ रहे हैं बट यू आर हियर तो चलिए फाइनली आज जो है इट्स वेरी लास्ट एपिसोड ऑफ आफ्टरनून एक्सप्रेस तो आज हम जो है बेस्ट मोमेंट्स और हमारे जो बेस्ट सेगमेंट्स थे जो हमारे और आपके लिए यादगार बने मोमेंट्स उन पर बात करने वाले हैं एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हेलो
2: Hello, assalam
1: o alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, kaun hai hamare saath?
2: Noor. Guzar gayi, koi salam tak bhi nahi pucha. Jab pata chala jisse kaha ki denge tumhare liye jaan, pata chala ki wo to abhi tak SMS tak bhi nahi kiya.
0: Aap se mukhatib hain Zarwar Mirza. आपने ने जान देने के बाद जान नहीं देते हैं कभी किसी के लिए जान ले सकते हैं ये बात इन्होंने कहा मैंने रखी है अपने लिए ऑप्शन ओपन है देंगे नहीं बहरहाल एसएमएस का जवाब दे सकते थे आप
2: को बस हम ईद में जुड़ नहीं पाए हम खुद बिजी थे हरपुर में गए थे मौज मस्ती करने के लिए
0: वाह
2: अच्छे से किए
0: वाह भाई वाह चलिए मुझे बड़ी खुशी है कि अब आप जो है ना धीरे धीरे खुद को टाइम दे रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं सारी चीजें तो बिल्कुल हमारी भी बहुत अच्छी रही और आपने तो बताया कि आपकी बहुत अच्छी रही
2: फोटो भी शेयर करेंगे हम फोटो
0: जरूर जरूर राइट राइट राइट बिल्कुल
2: जुदा होने वाले इसलिए सोच रहे कि मैं कैसे जाऊं ना जाऊं
1: किसी ने तो मेरा दिल का हाल बताया किसी ने तो दिल का हाल बयान किया नूर
0: जी सरवर भाई जो है वो इसी टाइम पर है वो नहीं जा रहे हैं
1: नहीं वो जुदाई की बात कर रहे हैं आपसे जुदाई की बात कर रहे हैं नाजिया जी वो
0: अल्लाह तेरा
1: प्रोग्राम से हाँ तो वो आपकी आप तो आपके लिए है ही खुशखबरी मगर वो मेरी तरफ से बयान कर रहे हैं हकीकत को
0: नहीं वो ये वो समझ रहे हैं आप भी जा रहे हैं बेचारे को मैंने कहा क्लियर कर दो
2: आपके लिए एक शायरी है दोनों के लिए
1: एक शायरी है भाई
2: कि हर फूल गुलाब नहीं होता और हर नशा शराब नहीं होता समझे
1: हाँ बिल्कुल हाँ हाँ आगे आगे अगला अगला अगला अगला
2: हर फूल नहीं होता
1: हाँ नहीं होता नहीं होता
2: हाँ करने वाले में फाइ इंसानों हर लड़का कहीं बेवफा नहीं होता
1: नाजे सुनिए मेरी तरफ से हर लड़का बेवफा नहीं होता आखिरी लाइन ले लेते हैं बाकी जरा मसले हो जाएंगे मगर आप सुनिए ये बात जो आप सुबह से रात तक तोहमतें लगाती फिरती हैं मेरे ऊपर नादिया जी
0: सर मिर्जा आपको क्या लग रहा है मैं इतनी दावतें खा रही हूँ मैं मतलब फ्री हूँ तोहमतें लगाने के लिए
1: नहीं मतलब फ्री से मतलब नहीं है मगर फिर भी नूर भाई हैं के गए
0: अच्छा नूर जी हमें ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई नूर जी हमें आप ये बताइए आपको हम आपने हमें सुना आफ्टरनून एक्सप्रेस में इतने टाइम तक ऑलमोस्ट 4-5 महीने चार महीने तो चलो कर लो रमजान का हटा दे तो 4 महीने तकरीबन
1: आफ्टरनून की बात करें उससे पहले एनर्जी आर भी था तो वो शायद 5 महीने का टाइम था जिसमें बीच में ईद वगैरह भी आई तो बहरहाल चलिए कह लेते हैं कि 8-9-10 महीने आप हमारे और
0: नहीं,
1: नहीं,
0: इसी आफ्टरनून की हम बात करें
1: अच्छा चलिए
0: जनवरी से जो स्टार्ट हुआ कौन सा आपके लिए सबसे यादगार पल था वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अभी भी आपके जहन में है तरोताजा आफ्टरनून एक्सप्रेस को लेकर
2: जो आप और जो शायद रमजान के मौसम में भारत से दो या कैसे कोई प्रोग्राम करते थे आप दोनों वो प्रोग्राम मुझे बहुत
0: नूर जी मजा आ गया मेरा श्रुति का उसका कह रहे वो मुझे मस्त
1: मैंने कहा यार मैं कब था यार
2: सरवर भाई तो मैं कह रहा हूँ एक प्रोग्राम में सुना था ईद का एक दिन पहले से उसमें इतने मासूम हो गए थे मतलब एक और मिस्ट्रेस नाम मुफ्ती साहब थे, तो सवाल जवाब करता था कुर्बानी के ऊपर।
1: मैंने कोशिश करी उनको अपनी तरह बनाने की, मगर वो बोले कि नहीं भाई नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। लिहाजा
2: वो मैसेज भी किया था सर और भाई के लिए कि आप हर प्रोग्राम में फिट बैठते हैं, ऐसे लग रहे कोई गलती नहीं किया, ऐसे चुपचाप बैठे हुए थे।
1: शरीफ आदमी हूँ मैं, ये तो नाजिया जी का मानना नहीं है। नूर जी जो जग जाहिर उन्होंने गलत मेरी छवि कर रखी है, मैं यकीन जानिए मैं शरीफ आदमी हूँ।
0: ये 5 मिनट के लिए होते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो हो जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ऐसा रहता है रहता है चलता है।
1: अच्छा ये तो आपने
0: इन्होंने आफ्टरनून के वाला सब सारी बात की, आफ्टरनून पे नहीं आई है, चलिए ये तो सारे शोज अलग-अलग बता दिए,
1: दूसरी बातें कर दी हमारा।
0: अरे कम से कम आप अपनी शायरी ही बताते जो आप हम लोग के लिए सुबह सुबह पेश करते
1: हैं। 6 महीने से आप शायरी पढ़ते फिर रहे हैं हमारे साथ साथ। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो अरसा गुजरा है नाजिया और मेरे साथ आपका 4-6 महीने का इस प्रोग्राम में, तो इसकी कोई याद ऐसी है जो शेयर करना चाहते हैं या कुछ ऐसा याद रह गया हो आपको?
2: तो याद यही है कि बस आप दोनों का
0: कह रहे मुझे याद कुछ
2: प्रोग्राम सुन के बस जो भी थकावट था जो भी टेंशन था काम का टाइम में वो सब भूल के
0: शाम के टाइम
2: दूर हो जाता था थकावट, मतलब इतना हंसाते थे आप दोनों बस।
0: जो आप छाए
1: हंसाते थे निकल लिए
0: और शाम के वक्त
1: नहीं रहे
0: हम सुबह और दोपहर तक शाम के वक्त जो आप छाते।
1: क्या शेर सुनाया नूर भाई, क्या शेर सुनाया।
0: और हमें आपके हवाले से ना सबसे अच्छे आपकी शायरी याद है,
1: आपकी शायरी याद है, आपकी बातें याद है हर एक फर्द की। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी जुड़ते रहिए। नादिया से आपकी मुलाकात इंशाल्लाह कल सुबह 6 बजे होगी और मैं इंशाल्लाह 11 बजे आपको यहीं मिलूंगा।
0: राइट
2: जी,
1: नाजिया जी ना, नहीं नहीं नाजिया जी सुबह में आ रही है, वो खिलाफ तवक्को है ना कि नाजिया और सुबह, ओ माय गॉड OMG निकल रहा है।
0: जी नहीं OMG नहीं LOL हो जाएगा आपका। मैं सुबह
1: कबीर भाई को शाम में, कबीर भाई को शाम में कर दिया है।
2: कबीर भाई आपका एक रोज बहुत मतलब की चर्चा चला रहा था कि कभी भी फोन करना उसके प्रोग्राम में, एक कोई टॉपिक सुनाया था वो मतलब इंसान का ऐसा था 2018 का टॉपिक, वो सबको कह रहा था कि बस फोन करना तो बस करो भाई से पूछना रे रे रे तुम जिंदा है बहुत आपका
1: सही ऐसे ही हैं वो बेचारे,
0: वो भी यही
1: वो स्क्रू ढूंढना पड़ता है उनका मुझे कभी कभार, फिर टाइट करता हूँ मैं। ये नादिया और कबीर भाई दोनों के स्क्रू जो हैं वो वक्तन मुझे टाइट करने पड़ते हैं।
0: आप एक बार सही से क्यों नहीं टाइट करते?
1: अब पाना लाना पड़ेगा उसके लिए एक्चुअली। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई, मोहब्बत आपकी बहुत ज्यादा नवाजिश, इंशाल्लाह कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा
0: इंशाल्लाह।
1: अल्लाह हाफिज।
0: Alright, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए। हेलो।
3: हाँ जी
1: शाह जी, गावा जी की हाल चाल है?
3: बहुत बढ़िया जी, तुसी दसो ते नाजिया जी तुसी दसो तो आटा की हाल चाल।
0: बढ़िया
1: हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और कैसी रही ईद, कैसे गुजरे ये दिन गावा भाई?
3: दिन तो सर तकरीबन आपके साथ में ही गुजरे हैं सर।
1: क्या बात है,
0: ये सही जवाब था।
1: हमारे साथ ही उतरे
3: साथ यारों दोस्तों के साथ डिजिटली।
0: नाइस, तो आपने खूब भरपूर तरीके से ईद एंजॉय की। कहाँ कहाँ गए आप
3: जी? मैडम एक दिन तो गए थे अबू सिद्रा मॉल में।
0: अच्छा ठीक है,
3: तो वहाँ पे शो था। एक दिन कटारा में गए थे।
0: नाइस,
3: तो एक दिन दोस्तों के पास।
0: गुड, फिर भी एक दिन बच रहा है, 4 दिन थी छुट्टी तो।
3: बस काम भी जरूरी है मैडम, आपको पता है।
1: पूरे वक्त छुट्टी पे था, 5 दिन इतनी तफरी काटी है मैंने।
0: वही तो मैं कह रही हूँ, पूरे दिन हम छुट्टी पे रहे। 5
3: सरोवर भाई तफरी से एक बात याद आ गई
1: जी।
3: नाजिया जी ने एक शो में जिक्र किया था आपके किसी खासम खास का।
1: मेरे किसी खासम खास का? अच्छा
3: खास का, तो मैं भी वही सोच रहा था की अगर खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, सरवर गाबा और आप, वो गैस करो कौन हो सकता है। नाजिया जी ने जिक्र किया था उसका एक बार आपके शो में।
1: यार याद करना मुश्किल हो पा रहा है। हमारी तरफ के हैं या
0: आपकी तरफ के
1: कॉलर लिसनर हैं हमारे?
3: नहीं नहीं नहीं, कॉलर लिसनर में से नहीं है कोई।
1: तो फिर मतलब हम आरजे की बात कर रहे हैं?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, चलो मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ आप क्यों इतना जहन पे जोर डाल रहे हो। सर्वर भाई, सर्वर भाई कसम से यार खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, सर्वर, गाबा और खजेंद्र प्रसाद।
1: कहाँ से निकाल के लाए भाई, वाह वाह वाह वाह,
0: अरे वाह क्या याद दिलाया गाबा जी।
1: ये बात ये बात तो सही है,
0: आपके दोस्त हाँ वो तो बहुत मिस कर रहे होंगे, आप मिले नहीं है इस बार?
1: नहीं मैं अभी तक नहीं जा पाया गर्मियों में, जबकि उन्होंने कहा था भाई आना जरा ईद वगैरह,
0: रुद्र काली भी आपको याद कर रहे
1: हैं, ईद वगैरह पे आना, मगर मैं जा नहीं पाया।
0: अब मौका निकाल के जरूर ये जाएंगे मिलने, आपने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सेट किया है और ये डेफिनेटली जाएंगे मिलने। और आपके कहने से याद भी आ गया कि हम लोगों ने शो में इसकी बात की थी जब ये जस्ट लैंड हुए थे दोनों।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी तो सर्वर भाई यही आपसे रिक्वेस्ट है, रुद्रा काली जी के लिए कोई गिफ्ट भी लेके जाए।
1: हाय हाय, वो तो इंतजार में बैठी है हर बार लेके मेरे लिए। अरे रुद्र नहीं है खाली, वो भी है ना हमारे
0: खगेंद्र।
1: नहीं नहीं नहीं, ये तो है हमारे दो और मेहमान जो चाइना से आए हुए हैं, सुरैया और सुहेल। हाय हाय हाय, सुरैया तो हू बहू नादिया की चबाहट है भाई, मैंने देखा अगर, अरे मैंने कहा नादिया यार, मैंने खुद से, अरे मैंने कहा तो सुरैया बैठी है भाई, बहुत शबाद नादिया, यकीन जानिए आपसे।
0: भाई सेम गोज विद यू,
1: मैं तो खगेंद्र
0: आपको देखते
1: मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे कहना चाहिए कॉपी है, क्लोनिंग है एक तरीके से
0: बिल्कुल,
1: मगर सुरैया ओ हो इतनी ज्यादा शबाहत आपसे, इतनी ज्यादा, बस वो स्कार्फ में नहीं थी, मैंने कहा स्कार्फ भी पहन लो, ज्यादा मिलने लगोगे उनसे। बहरहाल याद कर रही थी आपको बहुत, तो गाबा भाई ने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। गाबा भाई और कुछ शेयर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आज?
3: जी बिल्कुल सर्वर भाई, आज आप थोड़ी सी ठंड रखो बस,
1: थोड़ी सी ठंड,
3: बातें बहुत होंगी आज, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा सबर रखो।
1: ओके ओके,
3: तो मैं नाजिया जी सिर्फ आपके एक शो की बात नहीं करना चाहता।
1: वाह,
3: मेरे को लग रहा है आप दोनों तकरीबन पिछले एक साल से शो कर रहे हो,
1: करीब करीब
3: पहले वाले भी दो शोज गए हैं आपके, मेरे को नाम नहीं अभी याद आ रहा उनका,
1: वो एनर्जी आर था उसमें, ईद पे भी थे सब मिला मलूक, अगर देख लिया जाए तो सही। ओके,
3: वो देखा जाए नाजिया जी मेरे ख्याल से पूरे एक साल में 12 या 13 मौसम तब्दील होते हैं, उनकी जो गिनती है 12 या 13 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
1: मैं गर्मी सर्दी लगा के चल रहा है सब,
3: गर्मी सर्दी बारिश जो भी होता है, हेल स्टॉर्म सब कुछ मिला के 12 या 13 होते हैं सर।
0: सर्वर पतझड़ ही देखते हैं
3: जी, पतझड़, हाँ
0: ये से आगे बढ़े
3: ये लोगों को झड़ते हुए ही देखना
1: ओके
0: एंजॉय करते हैं।
3: तो क्या देखो सर्वर भाई पहले दिन से जैसे आपका प्रोग्राम सुना ना, उसके साथ में देखिए कितने मौसम तब्दील हुए कतर में भी, तो अभी दोबारा फिर वापस गर्मी आ चुकी है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है भाई मौसम चले गए आ गए, ऋतुएं बदल गया चले गया, मगर आप लोगों का प्रोग्राम है जो डे वन से लेके अब तक स्टेबल रहा है सर, उसका रीजन ये
1: भी थे, हमें सुनते भी थे डेली,
0: वही आज आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग।
3: जी बिल्कुल सर्वर भाई, उसका रीजन ये है ना, मैंने शोज बहुत सारे सुने हैं मोस्टली, तो मैंने आप दोनों को ही सुना है रेगुलर, तो मेरे को नहीं लगता सर आपके एक भी सेगमेंट में, शो तो दूर की बात है, एक भी सेगमेंट में कोई बंदा आप दोनों की वजह से नाराज होके गया होगा।
1: अल्लाह तेरा शुक्र,
0: बस हम दोनों एक दूसरे से कभी भी राजी नहीं रहे, ये अलग बात,
1: ये तो वो खुद कह रहे हैं ये बात, तो उन्होंने इसलिए लिसनर्स की बात करी पहले
0: बेचारे
3: जी। और सर्वर जी यकीन मानिए नाजिया जी ने ये जो दो प्रोग्राम किए थे ना फुटबॉल से रिलेटेड,
1: फुटबॉल से रिलेटेड,
3: अंडर 17 और अरब कप, तो उस प्रोग्राम में सर मेरे ज्ञान में फुटबॉल को लेके इतनी वृद्धि हुई है ना सर,
1: क्या बात है,
3: मेरे को 1% भी नहीं मालूम था सर फुटबॉल
1: क्या होती है।
3: उन हाँ जी उन दो या ढाई महीनों के दरमियान नाजिया जी ने इतनी ज्ञान की बारिश की है ना फुटबॉल के लिए,
1: वाह वाह, कि मेसी रोनाल्डो ने कॉल किया बाकायदा भाई समझने के लिए, ये वाला जो मसला था ये जरा समझा दीजिए ताकि हम अपनी कुछ बेहतरी कर सके, तो ये भी हुआ इस दौरान का भाई, मैं आपको बताऊं
3: जी बिल्कुल, नाजिया जी ने और आप दोनों ने ड्यूरिंग योर ऑल शोज आप दोनों ने इतनी ज्ञान की बारिश की है ना सर, कसम से सर दिल झूम उठा,
1: थैंक यू सो मच गावा भाई,
0: थैंक यू जी, थैंक यू,
1: तो मोहब्बत है आपकी, आपने हमें एक्सेप्ट किया और हमें सुना, हमें बर्दाश्त किया, तमाम लोगों के लिए कहेंगे हम ये,
0: बिल्कुल
1: मोहब्बत है आप लोगों की, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ कहना चाहते हैं गावा?

0: जी सर्वर भाई देखो, एक तो हर बंदे का अपना अपना नेचर होता है, ठीक है ना
1: जी।
0: और प्रोग्राम को बैलेंस करने में आप दोनों का क्या रोल है? देखिए आप जो हैं, आप सर बहुत लाइटली लेते हैं चीजों को।
1: कितनी बातें सुना लो, जूते मार लो, चप्पलें मार लो।
2: सर मैंने कब
1: मारी? मैंने आपका नाम लिया, देखिए फिर वही बेमारे की तौबा, मैंने तो नाम ही नहीं लिया भाई। जी गाबा भाई,
0: सबसे ज्यादा सर्वर भाई आपके शो में सीखने को मेरे को मिला है ना,
1: बर्दाश्त करना
0: नाजिया जी से
1: जब्त करना। मुझसे तो आपने यही सीखा है कि बर्दाश्त किसको कहते हैं।
0: सर बर्दाश्त करना और खुश रहना।
1: चलो अल्लाह तेरा शुक्र है, बर्दाश्त कर लफ्ज तो आया। ओके,
0: खुश रहना और नाजिया जी से।
1: नाजिया जी से बहुत कुछ सीखा मैंने, सीखा चूटियां लेना, बातें सुनाना, तंज करना, बेइज्जती करना।
2: बताइए ये मैं कुछ बोल नहीं रही, आप
1: मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी। गाबा भाई कुछ और कहेंगे अभी, देखिए। हाँ गाबा भाई बोलिए।
2: वो अच्छे आदमी हो, आपकी तरह
0: नहीं। छुट्टियां लेने वाली बात से एग्री नहीं करूंगा।
1: छुट्टियां
0: क्योंकि भाई आपने छुट्टियां लेने से बोला ना नाजिया जी।
1: नहीं छुट्टियां नहीं, मैंने कहा चुटकियां पिंचिंग
2: और ऐसा लगा चूटियां लेना।
1: हाँ वही
2: मैंने कहा, बताओ ये भी मिल रही है चूटियां लेना।
1: हाँ नहीं तो वो सुरैया की जरूरत है, सुरैया आजकल चूटियों पे ही तो है, तो मैंने कहा शायद उसको देख के आप भी कुछ सीख रही हो।
0: जी सर्वर भाई, तो मैंने जो मेन चीज सीखी है ना नाजिया जी से,
1: जी
0: टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मेंटल हेल्थ पे जो इन्होंने बात की है ना।
1: अच्छा।
0: कोई भी साइकी से रिलेटेड इशू हो, जब ये कंक्लूड करती थी ना उस इश्यू को सर, उसमें बहुत कुछ होता था सर।
1: क्या बात है,
0: जिंदगी में काम आने वाली चीज है, अगर आपने एक चीज भी या एक भी नुक्ता पकड़ लिया ना सर,
1: क्या बात है,
0: ये जिंदगी में बहुत काम आने वाले।
1: यही हासिल वसूल भी है भाई मेरे, कि किसी तरीके से कोई ना कोई कोई भी चीज लेके चला जाए और उसको फायदा हो जाए, यही कोशिश रहती है।
2: बिल्कुल।
1: तो
0: सर्वर भाई चलो मैं लास्ट में बस एक बात ही कहना चाहता हूँ, सिद्धू पाजी का सॉन्ग है ईस्ट साइड फ्लो।
1: अच्छा।
0: तो उसकी एक लाइन बहुत फेमस है, अभी घरे बैठ के गल्ला नहीं मारिया, कम करके दिखाया, घरे बैठ के मारिया नहीं गल्ला। तो मैं जब आप दोनों की सर एनर्जी देखता हूँ, आप दोनों का शो में कॉम्बिनेशन देखता हूँ, तो मेरे को सर वो लाइन की याद आ जाती है।
1: ओके क्या बात है, चलिए तो मोटिवेट हुए।
2: क्यों, और हम शायद इस गाने को सुन के फौरन लगाते भी हैं। सिद्धू मूसेवाले का बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है।
1: चलिए ठीक है, बिल्कुल
0: ठीक है नाजिया जी,
2: थैंक यू भाई,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी बातों का।
0: जी लास्ट में सर यही दुआ रहेगी, देखिए सर हम लोग तो बोलते हैं अभी शो का एंड हो गया, पर मेरे ख्याल से ये एंड नहीं, ये नए चैप्टर की शुरुआत है।
2: वाह क्या बात है, दैट्स ट्रू एंड नाइस।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
2: बिल्कुल ये नए
1: चैप्टर। टेक केयर गाबा भाई, थैंक यू सो मच
2: एंड रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है गाबा जी जैसे लोग, मतलब कितने पॉजिटिव है सर्वर। उन्होंने हमसे कहा कि सीखा और हमें लगता है हमने उनसे बहुत कुछ सीखा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: लाइफ में तमीज क्या है सर, मेरे साथ आपसे मुखातिब हूं।
1: मैंने तो बहुत सीखी है, मतलब सीखने को मिली मुझे हमारे
2: शाना, पॉजिटिव रहना, अच्छा बोलना।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने, कुछ मैसेजेस हैं वो शेयर कर लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले। ओके सलाम कहते हैं, दोस्त हैं यहाँ पे या कहती हैं। ओके जरा हालत साफ करके, सलाम नाजिया मैम एंड मिर्जा भाई, आप सबको ईद मुबारक। सुरजीत है हमारे साथ, आपको भी सुरजीत भाई ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके साथ हर शो अच्छा लगता है सर, अगर वो सीरियस हो या कॉमेडी शो, आपके साथ हर शो अच्छा लगता है, आप कर सकते हैं हर्ष और हम देखेंगे आपको अब, अगर जहाँ भी हम देखेंगे हम तो आपके बगैर नहीं रह सकते सर। ये मुझसे बात हो रही ना, मेरे ख्याल में अरबाज खान है तजाक यहाँ पर, और बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत नवाजिश। यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड मॉर्निंग नाजिया जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? वेलकम टू आफ्टरनून एक्सप्रेस, संडे मॉर्निंग सबको विश करते हैं। कह रहे हैं मुझे आप दोनों के वो स्पेशल मोमेंट्स जिनमें आप दोनों की नोक झोंक और सरवर भाई की स्कार्जिम विद हिज फैंस सभी याद हैं।
2: नाइस,
1: बस हंस के हम सब लोट पोट हो जाते थे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यादगार लम्हे, इन में से एक याद को चुनना बहुत ही मुश्किल है। रियली आई विल मिस दिस जोड़ी, नंबर वन ऑफ उर्दू FM।
2: थैंक यू जी,
1: और उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों फिर से लौट आए किसी और शो में ऑन पब्लिक डिमांड इंशाल्लाह। यूसुफ भाई
2: इंशाल्लाह, जरूर जरूर, चेंजेस तो देखिए होते ही रहते हैं, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और इंशाल्लाह हर चेंज बेहतरी के लिए और फिर वापस भी हो सकते हैं. सो यू नेवर नो. बट या थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज.
1: अस्सलामुअलैकुम सौरभ भाई. नाजिया मैम कैसे हैं आप दोनों?
2: वालेकुम अस्सलाम.
1: गुड मॉर्निंग. वेरी नाइस शो आफ्टरनून एक्सप्रेस. नाजिया मैम आप कहाँ कहाँ से जान बचा के भागोगी? पहले काकी से जान बचाई,
2: वही ना?
1: अब सरवर भाई से. चार दिन के लिए महविश के साथ भी जा रही हैं. अच्छा दिन भी याद है मुमताज भाई हमारे साथ.
2: कैसे पता? चार
1: दिन से आप दोनों को सलाम. आप दोनों आलू की तरह हैं. कभी रहो प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम हो उसमें चांद चांद लगा देते हैं, चाहे जो भी हो. मुमताज अहमद भाई हमारे साथ,
2: बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और बिल्कुल सही कहा, मैं एग्जैक्टली चार दिन के लिए हूँ, फिर मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली आऊंगी. कम
1: सात को जा रही है नाजिया?
2: नहीं मैं तो जा ही रही हूँ, बट व्हेन आई एम कमिंग बैक ऑन 17th.
1: नाजिया जी और सरवर जी को गुड मॉर्निंग. एफएम 107 की सुपर स्टार जोड़ी नाजिया और सरवर जी, ईद मुबारक हो आप दोनों को. रमेश यादव साहब यहाँ हमारे साथ,
2: मुबारक जी आपको भी. ईद मुबारक हो
1: मेरे भाई. हम जैसे कौन पूछते. अच्छा ये मैं पढ़ लूंगा.
2: आपने तो बिल्कुल बैंड बजा रखी
1: है. मैं वाकई आप देखिए जरा सा. चलिए भाई तो यहाँ पर अब नाजिया कुछ पढ़ रही हैं, तो क्या कहती है नाजिया जी, ब्रेक की तरफ
2: ब्रेक ले लेते हैं. यस
1: ऑल राइट देन, आइए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज. और पहला ट्रैक यहाँ पर आप लोगों के लिए. ओहो

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।

0: और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, मुफीद साबित होंगी। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से
1: देसी। You are listening to Afternoon Express. Afternoon Express. तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
2: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। राइट गाइज, वेलकम बैक। आप सुन रहे शो आफ्टरनून एक्सप्रेस, सरवर और नाजिया हम दोनों आपके साथ है 11:40 ऑन द क्लॉक। और आज है आफ्टरनून एक्सप्रेस का हमारा लास्ट एपिसोड, तो बस हम छोटी छोटी हल्की फुल्की बातें आपसे कर रहे हैं कि पूरे सीजन, आई मीन पूरे सीजन लाइक चार महीने कह लेते हैं, चलिए
3: बिल्कुल सीजन,
1: एक महीने तो रमजान में निकले, तो वो चार महीने जो कुछ हमने किया, जिस तरह के सेगमेंट्स रहे, जिस तरह का आपका हमारे साथ जो है वो इंटरेक्शन रहा, वो सारी मेमोरीज या कोई खास मेमोरी है इस शो के हवाले से, तो वो आप हमारे साथ जरूर।
3: और भाई ईद कैसी रही ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्या किया ईद, कहाँ कैसे गुजारी, कुछ लोगों ने
1: सर्वर सबसे अच्छी चीज याद है इस शो के बारे में कि जो बेस्ट चीज होती थी वो ये होती थी सर्वर मिर्जा के हवाले से कि ये लाइफ में कभी भी प्रेप शीट इन्होंने चेक नहीं की होती थी। और मुझे याद है कि एक डेट इन्होंने आराम से चेंज कर ली।
3: चलो अच्छा, कोई सुन नहीं रहा।
1: बेस्ट पार्ट इस शो का ये रहा है कि सरवर मिर्जा जो थे वो हमेशा एक रॉन्ग टॉपिक के साथ आते थे, या तो ये पहले का ले लेते थे या बाद का उठा के लाते थे, और डेट ये कभी भी माशाल्लाह उन्होंने सही से नहीं देखी है, ये इनका रिकॉर्ड।
3: आदाब आदाब, माशाल्लाह लगा के। हमेशा आपने तारीफ ही करी है तो मैं आज भी वही एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: मुझे वाकई तारीफ करने का दिल चाह गया, मैं बताऊँ इस शो की हाइलाइट्स।
3: वालेकुम सलाम।
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: क्या बोलते
4: हो, अखरोट है
1: कि खत्म हो गए? अखरोट है, ये बैठे तो हैं भाई, आपसे मुखाते हैं कुछ कहना,
3: मुझे खिलाने के लिए तो पूछ रहे हो।
1: अच्छा, मैंने कहा पूछ रहे अखरोट भाई है कि खत्म निकल लिए। अच्छा, आपको खिलाना चाहते हैं, रमजान में कह रहे शीर तो खत्म हो गई, अखरोट आपको खिलाएंगे।
3: अरे हैं कौन हमारे साथ ये तो बताइए,
4: नाम
3: नसीम भाई।
4: ईद मुबारक।
3: ईद मुबारक नसीम भाई,
1: आप ही है नसीम भाई?
3: यही यही
1: नहीं हो नहीं सकता, वही है आप नसीम,
3: यही है यही है नसीम। कैसे है नसीम भाई?
1: मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये वही वाले।
3: तबीयत वगैरह सब ठीक, कैसी गुजरी आपकी ईद?
1: नहीं, पहले नाम कंफर्म करना।
3: मैं नहीं बताऊंगा, कह तो रहे हैं वो।
1: अच्छा, ये तो मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बताऊंगा।
3: कह रहा नसीम, मैं नहीं बताऊंगा।
1: आपका नाम क्या है?
3: मैं नहीं बताऊंगा।
1: सर्वर आप चुप हो जाएंगे।
3: मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
1: वो भूलने वाले थे आपने उनको गलत तरीके से। मैंने प्ले भाई, आप अपना नाम नहीं बताना चाहते?
3: नहीं, मैं कुछ नहीं।
1: क्यों जवाब दे रहे हैं? मैं जिससे पूछ रही हूँ वो तो दे जवाब, नहीं बताना चाहते आप? नसीम जी आप ही हैं?
3: यही है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
1: फाइनली आज आप आए तो आवाज तो हमने सुनी।
3: ये भी एक अच्छी बात रही,
1: बहुत बड़ी बात
3: कि आज आए तो सही।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, आप
3: नसीम भाई हमारे साथ जुड़े रहे, बातें करते रहे, हमें सुनाते रहे, और कह रहे थे मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
1: मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
4: देर से आए मगर आए तो सही।
1: ये बात तो है। चलिए, फाइनली लास्ट शो में आपने एंट्री तो की, हमें बड़ी खुशी है कि हम फाइनली आज आपकी आवाज़ सुन पाए, क्योंकि हमेशा मैसेज के थ्रू तो आप कनेक्ट होते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसा बोल के तीखा और कहते थे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये भी आपकी खूबी है, तो खैर ये जारी रखिएगा। सरवर मिर्जा आपको मिलेंगे 11 बजे, जितना चाहिए मिर्चीदार बोलिएगा।
3: और सुबह ना आए हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई?
1: सुबह सुबह मीठा,
3: हाँ सुबह आ रही है, 6 बजे से 9 बजे तक आपके साथ रहेंगी मैडम।
4: लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि पता नहीं अमिताभ बहन के साथ फिर किसका पॉपकॉर्न बनेगा दोनों में,
1: अमिताभ बहन के साथ? नहीं, मैं तो महवेश बहन के साथ हूँ भाई।
4: वही
3: महवेश, महवेश बहन के साथ। नहीं,
1: मैं महवेश बहन का बहुत एहतराम करती हूँ।
3: अमिताभ के साथ, अमिताभ अकेले ही शो कर रही है।

0: नहीं है जी।
1: कम से कम पॉपकॉर्न बनने से तो बचेंगे।
2: पॉपकॉर्न बनने से अमिता बहन बचेंगे?
0: मतलब दिमाग का पॉपकॉर्न बना देती हैं आप, शायद ये कहना चाह रहे होंगे। एज यूजुअल इसको ऐसे ही समझ लेते
2: हैं। भाई वो सही कहते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो नहीं बोलते ना वही सही है आपके लिए।
0: भाई बात होना चाहिए। भाई कैसी रही ईद ये बताइए, कहाँ गुजारी और कैसी गुजरी?
1: बस हमारी ईद तो रूम से गाड़ी से रूम,
0: रूम से गाड़ी, गाड़ी से रूम। अच्छा जी चलिए,
2: रूम में भी गाड़ी से जाते हैं
0: तो
1: रूम से गाड़ी, गाड़ी खत्म तो रूम में, रूम से खत्म तो गाड़ी।
0: क्या बात है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी ही गुजरी होगी इंशाल्लाह ताला। और कुछ शेयर करना चाहते हैं नसीम भाई?
1: बस आज कुछ नहीं है,
0: आज कुछ नहीं है। चलिए बस दुआओं में याद
2: रखिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह कि फाइनली आप आए, जुड़े। आपने हमने कॉल
0: जाने से पहले आपने नादिया जी से बात कर ली, ये बड़ा अच्छा किया।
2: हाँ एटलीस्ट मैं आपकी आवाज जो है अब जहन में रखूंगी अपने।
0: चलिए नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यस
0: तो भाई ये था नसीम भाई हमारे साथ। आइए अब कुछ वेदर का हाल जान लेते हैं, और बिल्कुल हमें कुछ मैसेजेस भी हैं वो भी हम शेयर करेंगे। तो फिलहाल भाई कतर ने इशू की है मरीन वार्निंग्स, और ये कहा है कि अगले हफ्ते तक मामला जो है वो ऐसे ही रहने वाला है, तो ज़रा एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये वार्निंग्स हमें इशू करी हैं, और सभी को एडवाइस किया है जो बीच गोयर्स हैं या जितने भी लोग इस वक्त बीच वगैरह के पास जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में मुबतला हैं, तो सब ज़रा इस बात का ख्याल रखें कि भाई लहरें जो हैं वो काफ़ी हाई हो सकती हैं, ऊंची हो सकती हैं, और वहीं हवाएं जो हैं वो तेज़ चल सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप बीच वगैरह की एक्टिविटीज़ में हैं, जा रहे हैं, पानी के आसपास हैं, तो बस ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंज जो है वो 2 से 6 फीट तक है, और जो ओकेजनली 8 फीट तक भी जा सकती है। तो इसीलिए सभी से कहा गया है कि भाई ज़रा सा ख्याल करें। मीनवाइल ये भी बताया गया है कि जो अब वेदर कंडीशन है वो गर्म रहने वाली है, जो टेम्परेचर है वो गर्म ही रहने वाला है, और गर्म से ज़्यादा गर्म की तरफ जाने वाला है, हॉट टू वेरी हॉट कंडीशंस जो हैं वो रहने वाली हैं। जैसा कि कल 43 या 44 के दरमियान रहा टेम्परेचर, तो आगे ये बढ़ भी सकता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम सबको पता ही है कि भाई पानी पीना है और अपने आप को धूप से बचाना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं जो हमें फ़ायदा भी पहुँचाएँ और जिनसे हमें गर्मी कम लगे और परेशानी भी ना हो, और वहीं हमें पानी वगैरह जो भी ड्रिंक्स वगैरह है, मशरूबात है, उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब आप घर से बाहर निकलें तो पानी वगैरह लेकर निकलिए अपने साथ, और वो तमाम लोग जो हमारे मोटर बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, भाई हमारे जो मोहब्बतें एक दूसरे की तरफ लेके जाते हैं और पहुंचाते हैं घर से घर, तो वो भी बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखें कि पानी
2: से घर।
0: बिल्कुल
2: घर घर
0: घर घर या घर से घर, तो आप पानी का ख्याल रखें, वो बॉटल वगैरह लेके निकलें आप भी अपने साथ और पानी ले लिया करें। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे कि जब कभी आपके पास ये भाई आते हैं और कोई जो मोहब्बत भरा ये बॉक्स या पैकेट आपके पास लेके आते हैं जो आपने खुद ख्वाहिश करी है, तो लिहाजा उनको एक पानी की बोतल देने का ख्याल कीजिए। इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी खैर होगी, आपके लिए भी इसके अंदर खैर होगी। तो इस बात की ज़रा सा आदत बना लें तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ वही नहीं, कोई भी घर से बाहर आ रहा है, कोई भी आपके गेट पे आया, घर पे आया, तो उसको पानी ज़रूर ऑफर करें, इंशाल्लाह ताला खैर होगी।
2: सर्वर आप मेरे घर आइए, एक बॉटल में तो कुछ होगा नहीं, मैंने
0: पानी के लिए नाजिया
2: मैंने मश्क तैयार किया सर।
0: नादिया पानी मंगा लेंगे कि भैया आ रहे हो घर, पानी लेते आना जरा सा, 4-6 बॉटलें हमारे पास कम पड़ गई हैं, तो और पीते पी भी लो भैया, आ गए
2: में क्या होगा,
0: ये पी रहे तो ले आए तो पी भी लो भैया, आप क्या करें,
2: पीते हुए आओ,
0: पीते हुए
2: जो लाए हो वो तो हम ही रखेंगे, आप अपना पी के आइए।
0: मैं हिज्जे कर रहा हूँ मैसेज की।
2: तुमने अजीब साइलेंस आपने क्रिएट किया, लोग सोच रहे क्या चल रहा है
0: यार। मैं इनका मैसेज असल में समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं नाम तो ले लेता हूँ भाई का, और यहाँ पर ये बैठे हुए सीखों में कबाब लगा के नूर मोहम्मद है हमारे साथ, नूर मोहम्मद। अच्छा। मंसूर भाई, और
2: जो हमारे साथ कॉल पे जुड़े हुए
0: नूर भाई से हमारी बात हो गई है, तो फिर तो हम समझ ही गए। तो कबाब का फोटो हमने देख लिया ऑलरेडी, बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पर एक फोटो भेजा है, वॉइस नोट भेजा है, सर हम आपको ही सुनते हैं सारे दिन, FM 107 ऑन रहता है
2: पूरे दिन।

0: बोलते हैं सर्वर।
1: ये कौन है हमारे साथ?
0: सही पहचाना है।
1: अरबाज खान है हमारे साथ।
0: अरबाज जी आपने बिल्कुल सही बचा, पूरे दिन ये बोलते हैं भाई।
1: अच्छा यहाँ पर कोई एक स्टिकर भेजा है हमें और सैड है बहुत ज्यादा गलबन आपके यहाँ से जाने से। हसन एंड हुसैन है जो नाम जो लिखा हुआ है और ये स्टिकर भेजा है उन्होंने, जरा सा इस वक्त सैड है।
0: अच्छा।
1: तो भाई बिल्कुल सैड मत हुई है, इंशाल्लाह ताला नाजिया आपको सुबह मिलेंगी ही और इंशाल्लाह दोपहर में या इस वक्त कह लीजिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। तो ये कुछ हाल अहवाल अभी तक का वेदर का और बाकी चीजों का। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बेहतरीन सा सॉन्ग अजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में। शाहरुख खान और काजोल इस गाने में, बड़ा ही प्यारा गाना बनाया भी दर्शाया भी, उतने ही अच्छे इसके बोल भी। एंजॉय कीजिए गेरुआ, सुनते रहिए FM 107।
0: दिल सी देसी।

0: दोस्तों इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम और जरूरी नंबर है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें फौरन मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो हमेशा हमारी मदद के लिए दस्तयाब हो तो हम खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 का मतलब है कि अगर आप किसी भी खौफनाक या खतरनाक हालत में फंस गए हैं तो आप सिर्फ इस नंबर पर कॉल करके फौरन मदद हासिल कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 की अहमियत को हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। जब भी आपको मदद की जरूरत हो आपको बस ये नंबर डायल करना होता है। इस नंबर से आप बहुत सी मुश्किलात से निकल सकते हैं और आपकी जानो माल को नुकसान से बचाया जा सकता है। और याद रखिए, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ हर किस्म के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसीज, नेचुरल डिजास्टर्स और कोई खौफनाक सिचुएशन जो आपके लिए खतरा बन सके। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट गाइज, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 12:03।
2: यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस। आफ्टरनून
2: एक्सप्रेस, तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
3: सुबह 11 से दोपहर के 1 तक
2: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: हाँ जी, वेलकम बैक अहलन व सहलन, खुश आमदीद। बिल्कुल कुछ मैसेजेस यहाँ पर, उसके बाद नादिया के पास भी अपडेट है। और ओके, अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? आप जा रहे हो?
1: हम दोनों खैरियत से। अरे भाई, सरवर भाई हैं
4: तुसी ना जाओ?
1: नहीं जा रहे, आपने जैसे ही कहा रुक गए।
4: नहीं मतलब
1: आप कहेंगे मैं खाना खा के ही जाऊंगा।
4: आपसे भी मुखातिब हैं नादिया जी, सरफराज भाई हैं और कहते हैं नादिया जी आप भी मत जाइए, इसी प्रोग्राम में रहिए। सरफराज भाई कह सके ना इनका

0: गेट पास निकलवा लेते और बुला लेते है नाजिया जी, क्या कहती है? ओके, कहते हैं नाजिया जी आदाब, कहाँ जा रही हैं हमें छोड़ के? सरवर जी आदाब, ये है मियां कैसर। नाजिया बताइए कहाँ जा रही हैं आप मियां कैसर को छोड़ के?
1: घूमने घामने
0: फिर भी बता दीजिए।
1: सुबह निकल रही हूँ, सुबह सुबह जा रही हूँ भाई। मैं मॉर्निंग में आ गई हूँ अब, और सुबह 6 बजे आपको जरूर सुनना है मुझे और महवेश को, ठीक है? बस 4 दिन के लिए हूँ, फिर मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। मैं अपनी अलग खुशी में चल रही हूँ। मिर्जा बेग, आप?
0: मैं हिज्ज कर रहा था, एक शेर आ गया है। तेरी खुशी ही मेरी खुशी थी, चले क्यों गए?
1: है बेग,
0: मेरी हालात, मेरे हालात देख, मजनू भी हमें मजनू कहते हैं। ओए, ओए, ओए। क्या मतलब हुआ इस बात का, जरा समझाइएगा
1: ना। मतलब ये कि हाथी भी आपको देख के, क्या हाथी
0: क्या
1: वो याद कर रहे हैं आपको दोनों।
0: अस्सलाम वालेकुम भाई, बिलेटेड ईद मुबारक। और संडे
1: मुबारक थी
0: 24 मई, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और आज की ये सारी भाई भेजो।
1: अच्छा, ये मुझे कबीर भाई के
0: कबीर
1: लिए है।
0: का है, हाँ नहीं आया, देखिए 12:05 पे, मगर मुझे लगता है ये स्टोरी मांग रहे हैं कबीर से। वसीम सईद, वसीम भाई वालेकुम अस्सलाम, जवाब मैं दे देता हूँ, और
1: अब आप आपका, शाम में सुनिएगा,
0: आपका मैसेज भी पहुंचा दूंगा मैं। अगर कबीर सुन रहे हैं हमें तो याद रखें भाई, आपको सारी 5-6 दिन की स्टोरी भेजनी है, इतनी हमारे आपके बीच दोस्ती ताल्लुकात नहीं है।
1: मुझे लगता है आपके पास तो 10 दिन की स्टोरीज है अपनी।
0: आए हाय,
1: तो भेज दीजिए फॉरवर्ड।
0: क्या बात बताई आपने। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, कैसे हैं आप? और आज बिल्कुल मैं इसी के ऊपर आ रहा था। आज फाइनल्स है, और बेहतरीन आईपीएल का फाइनल है एक्चुअली। नादिया ने मेरी शक्ल देखी एकदम, कि ये क्या कह रहा हूँ
1: मैं। नहीं, मैं इसलिए कि बच्चे फॉलो करते हैं।
0: हाँ, आईपीएल का फाइनल है आज, आरसीबी और जीटी के दरमियान बड़ा मैच होने वाला है भाई। दोनों ही तरफ से बेहतरीन मैच देखने के मिलेगा, और आज कतर टाइम 5 बजे से इंशाल्लाह ताला ये फाइनल शुरू होगा। बिल्कुल हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और जितनी दोनों टीम्स बड़ी ही मेहनत करके आई हैं यहाँ पर, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर टीम वैसी रहने वाली है जो अभी मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता है कि लास्ट टाइम या लास्ट आर चेंजेस हों कुछ। कोहली ओपनिंग कर रहे हैं, अय्यर उनके साथ हैं जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा, और वहीं पार्टिकल और कप्तान पाटीदार एक दूसरे के आगे पीछे आते हुए, और फिर जाहिर बात है पांड्या होंगे वहां, टिम डेविड होंगे, शर्मा जी होंगे, तो अब देखते हैं कि क्या होगा। और वहीं बॉलिंग में हेजलवुड हैं, भुवनेश्वर हैं, डफी हैं, रासिक हैं, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, और वहीं शेफर्ड जिनको एक तरीके से तुरुप के इक्के की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इम्पैक्ट में लाया जाता है। और फिर गुजरात टाइटन की भी बात करें तो भाई साई सुदर्शन, कप्तान गिल साहब इस वक्त अपनी फॉर्म में पूरे तरीके से, और फिर बटलर, सिंधु, सुंदर, वॉशिंगटन साहब को कैसे भूल सकते हैं। वहीं उसके बाद आएंगे होल्डर और तिवथिया, उसके बाद राशिद खान भी मौजूद हैं, रबादा हैं, सिराज का बल्ला तो खैर भूल ही जाइए, हाँ मगर बॉलिंग में बहुत कमाल कर रहे हैं भाई सिराज, और फिर प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये टीम अभी तक की तो यही दिख रही है, अब जो भी होगा अंदर कौन आएगा, बाहर कौन जाएगा, इम्पैक्ट में क्या रहने वाला है, उम्मीद करते हैं कि भाई खैरियत से हो जाए। बारिश वगैरह के भी इम्कान मुझे नहीं दिख रहे हैं अपडेट में, तो अब देखेंगे कि आगे आज क्या होता है। हाँ,
1: मैं कौन सी टीम को सपोर्ट कर
0: रहा हूं? नहीं यार, नाजिया अच्छा पूछा आपने, आरसीबी की ही टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं।
1: सेम टू सेम, हालांकि कहीं भी हम सेम टू सेम होते नहीं किसी चॉइस, मतलब किसी
0: कम से कम सपोर्ट
1: पॉइंट
0: तो
1: पे। हाँ, सपोर्ट यहाँ पर आपका तो सपोर्ट अगर है तो जाहिर है पल्ला भारी होगा।
0: चलिए भाई नादिया जी, ये भी बात रही तो ये कुछ होने वाला है आपसे थोड़ी देर में, शाम की मशगूलियत सभी की हो गई है। यहाँ पे हमें कॉल आ रही है व्हाट्सएप के नंबर पे, तो हम बता दें कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 443-443-77 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और वहीं व्हाट्सएप भेजने के लिए नंबर है 666-2-107 पे आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, और कॉल करने के लिए कहना चाहे तो कह भी सकते हैं। जाहिर है एकदम ईद से निकले हैं आज, काफी लोगों का पहला दिन है मशगूलियत का, तो वो भी अपनी अपनी मसरूफियात में है।
1: सो जब तक आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कॉल करनी है नहीं करनी, एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। और मक्का से बहुत ही अहम खबर, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने तस्दीक की है कि इस साल हज का जो पूरा सीजन रहा, किसी भी वबा या फिर हेल्थ इश्यूज किसी तरह के कोई नहीं हुए, पूरी तरह से महफूज रहा। आपको बताएं कि मिनिस्ट्री के एक बयान के मुताबिक जो कि कल जारी किया गया है, कि पूरे हज के दौरान हुज्जाज की सेहत का खास ख्याल रखा और वो स्टेबल रही, जबकि दुनिया भर में मुख्तलिफ वबा और हेल्थ चैलेंजेस सामने आ गए थे, जिनमें खास करके इबोला की बात की गई और हंता वायरस, लेकिन

0: इन दोनों को ही क्लोजली मॉनिटर किया गया और किसी तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं है, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है. और पूरी सिचुएशन जो है वो सऊदी अथॉरिटी ने कहा कि हमने अच्छे से जो है वो हैंडल की, कोई कैजुअलिटी और कोई मिसहैप भी इस साल नहीं हुआ. मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि किसी भी किस्म का किसी को कोई भी शक शुबा था तो फौरन ही उन्हें हेल्थ केयर, जो भी जो हेल्थ सपोर्ट सिस्टम दिया जाना चाहिए फौरन दिया गया. और मजीद ये भी बताया गया है कि हेल्थ सिस्टम 24 घंटे जो था वो फाल रहा, जहां प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड और तेज रिस्पॉन्स लगातार टीम की तरफ जारी रहे. वेल, अथॉरिटीज ने नेशनल और इंटरनेशनल इदारों के साथ तावुन को भी मजबूत बनाया ताकि किसी भी मुमकिन खतरात को फौरन उनका मुकाबला किया जा सके. यानी ऑल टुगेदर इस साल जो था हज वो काफी पुरसुकून रहा और सारे इंतजाम अपनी जगह बिल्कुल सही फॉल हुए.
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स नाइस.
1: तो भाई बिल्कुल सही, और जैसा कि बताया नादिया ने, सब खैर से रहा अल्हम्दुलिल्लाह, यही हम एक्सपेक्ट और दुआ भी करते हैं. आइए यहां पे हमारे साथ कोई जुड़ भी गया है. अस्सलाम वालेकुम.
2: अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
2: कैसा है आप? सब ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों खैरियत से. आप कैसे हैं?
1: ईद मुबारक. ईद
0: मुबारक भाई जी, आपको भी.
1: कौन है हमारे साथ?
2: मैं मोहम्मद अबू सादिक, बांग्लादेश में.
0: अबू सादिक जी बांग्लादेश से,
1: कैसी रही अबू सादिक साहब ईद आपकी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
1: अच्छा रही. अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए बहुत अच्छी बात है. जी हम लोग
2: भी हर
1: टाइम सुनते हैं. चलिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, आगे भी इंशाल्लाह ताला हमारे साथ कनेक्ट होते रहिएगा अबू सादिक भाई.
2: आप लोग आईपीएल का बात किया, हमने आईपीएल तो एक भी मैच भी नहीं देखा, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत देखता है लेकिन आईपीएल नहीं देखा.
1: अच्छा नहीं देखा, चलिए तो फिर आज फाइनल है तो आज देख लीजिएगा अगर दिल चाहे. आप
2: नहीं देखेगा भाई? अच्छा, हमारा मुस्ताफिज को बात दिया पॉलिटिकल ये के लिए, इसीलिए नहीं देख रहा.
1: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए भाई अपनी अपनी चॉइस है और कोई बात नहीं, बस एफएम 107 के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह उसमें भी आपका वक्त अच्छा गुजरेगा, हमें पूरी उम्मीद है.
2: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तो ये साहब अबू सादिक साहब हमारे साथ, और यहाँ पर हमें कुछ कॉल करने के लिए मैसेज, तो मैं एक एक करके आगे बढ़ रहा हूँ और देखता हूँ कि हमारे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं.
0: हेलो,
1: अभी सिग्नल पे है, सिग्नल खुलते ही मेरे ख्याल में तशरीफ ले आएंगे. नहीं हो पा रहा, अभी भी नहीं हो पा रहे क्योंकि अब पीछे से कॉल आ रही है तो मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी. भाई हमने 8249 जिनके नंबर में आखिर में हमने कोशिश तो करी कि आपको कनेक्ट कर सके मगर कनेक्ट कर नहीं पाए. यहाँ पर हमारे साथ कोई और. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम, कैसे है? ठीक ठाक
1: अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे हैं भाई? ईद मुबारक. कौन है हमारे साथ?
3: मुबारक आप लोगों को भी मुबारक. मैं मुदस्सिर बात कर
1: रहा हूं. मुदस्सिर भाई, मुदस्सिर भाई क्या बात है भाई. उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी ईद गुजरी होगी.
3: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी, लेकिन आपको बहुत मिस किया.
1: अरे क्यों, तो बता देते वक्त पे मुझे, मैं पहुंच जाता था मुदस्सिर भाई.
3: आपका कांटेक्ट कलम भर नहीं था वो. कल मैंने कबीर भाई को फोन किया था कि मिर्जा साहब को बोलो कि आ जाए,
1: और मेरी दावत भी खा गया ये आदमी, बताया ही नहीं उसने मुझे.
3: तुम्हारा आदमी क्या है ना, तुम्हारे लिए हमने तीन किस्म के बारबेक्यू किया था.
1: और भाई तीन तरीके के?
3: जी जी, वो एक बकरी का था, एक गाय का था, एक शेफ का था. मैंने कहा हमारा मिर्जा साहब नहीं है.
1: अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो आपकी मोहब्बत है. वैसे जो फ्रीजर में रखा हुआ है इंशाल्लाह ताला उसमें से दो तीन पुड़िया ले जाऊंगा मैं, फिक्र मत करिए.
3: फ्रीजर में तो नहीं है.
1: अच्छा नहीं है,
3: फ्रीजर में तो हम नहीं रखे हैं.
1: अच्छा सब निपटा दिया अभी तक, चलिए अच्छी बात है. अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई, और आपकी मोहब्बत का भी बहुत बहुत शुक्रिया.
3: जी नाजिया मैम कैसी है?
1: नाजिया मैम बहुत अच्छी है.
0: ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से?
3: ओ तो कल बोल रहा था कि नाजिया मैम की तबीयत खराब है, आप कैसे हैं? ठीक है?
0: हाँ अभी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह.
3: अच्छा अच्छा बात. और मिर्जा साहब?
1: अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ.
3: ईद कैसे गुजरी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी सर, आप लोगों के साथ गुजरी पहली तो, और जितना वक्त मिला घर वालों के साथ गुजारने में, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ गुजारने में कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा मिल सकें, बट फिर भी जाहिर बातें शिकायतें रह जाती हैं और मुलाकातें रह जाती हैं, तो ऐसा कुछ रहा सर.
3: तो कल या कम से आप इसी टाइम पे ना मेरे साथ?
1: जी मैं इसी टाइम पे हूँ सर। नाजिया जी जो हैं वो सुबह 6 बजे इंशाल्लाह मिलेंगी आपको।
3: 6 बजे महवेश के साथ है।
1: 6 बजे महवेश के साथ हैं। जी बिल्कुल
3: जी जी जी।
0: तशरीफ
1: लाइएगा, आपका इंतजार रहेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू जी, अल्लाह
1: हाफिज। तो भाई अब इन बातचीत और वक्त रहते आगे बढ़ते हैं। अंकित तिवारी, अरिजीत सिंह एक साथ ना। यूजुअली कंफ्यूजन हो जाता है कि अंकित ने इस गाने में कहाँ काम किया है भाई। तो ये जो लाप ले रहे हैं अंकित ही ले रहे हैं। और अब आएंगे अरिजीत। एंजॉय कीजिए बहुत ही जबरदस्त सा ट्रैक, दिल चीज तुझे दे दी। FM 107 पे आफ्टरनून एक्सप्रेस जारी है। सरवर और नाजी आपके साथ दिल से।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन
2: लाइव अपडेट्स बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट
1: गेम ऑन
2: वॉल्यूम अप
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर एक बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 दिल से दिल

0: You are listening to
1: Afternoon Express. Afternoon Express. Afternoon Express.
0: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
1: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
0: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी Alright guys, welcome back. आप सुन रहे शो आफ्टरनून एक्सप्रेस 12:23 ऑन द क्लॉक और हम वापस आफ्टरनून में आ चुके हैं एंड यस आज एकदम हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत चल रही है. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं आफ्टरनून एक्सप्रेस की आपकी कोई मेमोरी है या फिर सर्वर भाई को कुछ आप अच्छा सा विश करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं.
2: बिल्कुल
0: आप हमारे साथ बाद इनकी सेहत की दुआएं अगर आप मांग रहे हैं चाह रहे हैं कि इनकी सेहत ठीक रहे तो वो भी आप आके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके इनसे कह सकते हैं.
2: तो भाई फरमाते हैं या अर्ज किया है

0: की राहों में मुस्कुराते रहो, गम के बादल आए तो भी गुनगुनाते रहो, मंजिलें खुद कदम चूम लेंगी एक दिन, बस उम्मीद का चिराग दिल में जलाते रहो। उसके बाद कहते हैं कि लफ्ज कम हो तो खामोशी भी बोलती है, दिल सच्चा हो तो हर बात कबूल होती है, नसीब से मिलते हैं कुछ खास लोग दुनिया में, वरना मुलाकात तो रोज हजारों से होती है। क्या कहने मजहर खान यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हुए हैं नाजिया, और आपके लिए ये प्यारी जबरदस्ती जो शायरी है वो लेके आए। शहजादा सलीम हमारे साथ जुड़ गए, कॉल आ रही थी हम उठा नहीं पाए, मगर यहाँ पर कोई वॉइस नोट भेजा है तो इंशाल्लाह ताला हम सुनेंगे शहजादा भाई, और अगर आपके पास टाइम मिले तो जरूर हमारे साथ कनेक्ट होइए। यहाँ पर दो और लोगों को हमने कॉल करने की कोशिश करी जो हमारे साथ कनेक्टेड थे, आज इत्तेफाकन लाइन बिल्कुल फ्री है तो कॉल नहीं उठा पाए। बहरहाल तो नादिया जी ये कुछ यहाँ पर सिलसिला जारी होता हुआ, नादिया जी कुछ आप अपडेट के हवाले से नहीं, मैं कुछ शायरी पढ़ दूं अगर आप कहें, जो इस वक्त गुजरा और अब आपको भागना, मेरा मतलब है कि अलविदा लेना है, उसके हवाले से तो अर्ज किया है नादिया जी के बड़े मशहूर शायर की शायरी मेरी नहीं है कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना ही है तो झगड़ा क्यों करें हम, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्में दूरी कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम, और ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं है। नादिया जी ये आपके लिए खास तौर पर, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं है, वफादारी का दावा क्यों करें हम, वफा इखलास कुर्बानी मोहब्बत अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम, और हमारी ही ये आपकी तरफ से मुझे नादिया जी, अच्छा। के हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम और तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना ही है तो झगड़ा क्यों करें हम।
1: जबरदस्त, बहुत ही अच्छी शायरी आपकी।
0: चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया नादिया जी, आपको ये एक छोटी सी शायरी पसंद आई और आपने किसी बात पे तो कहा कि भाई बहुत अच्छी शायरी। यहाँ पर कुछ और मैसेज
1: शायर के लिए कहा है आपके पहुँचाने,
0: ये देखिए क्यों जब ही कहूँ टेढ़े टेढ़े क्यों ओढ़ रहे थे, ये वही वाला हो गया मसला। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: कैसे हैं आप, क्या नाम है भाई, चराग दिल आप बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चराग दिल साहब ये लिखा हुआ है, अमूमन नाम कुछ और होगा। हाँ जाहिर बात है, पंच लाइन जो लिख देते हैं। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कौन है हमारे साथ?
2: मुबारक आप दोनों को,
0: ईद मुबारक मेरे भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, कैसी गुजरी ईद?
2: अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों की दुआओं से फजलो करम से बहुत अच्छी गुजरी, आप बुजुर्गों की दुआ है।
1: सरवर आपसे मुखातिब, आप बुजुर्ग की दुआ है।
0: क्या कह रहे हैं भाई, चलिए आपने भी बुजुर्ग बना दिया मुझे।
2: सर्वर भाई अभी आपने जो मतलब पोयम बोली है नादिया आप ही के लिए, ठीक है,
1: बोली है
2: नादिया आप ही वीकेंड पे जा रही है और अभी आम का सीजन है, इसका क्या मतलब आप दोनों पड़ोसी है तो वो आपके घर आम पहुंचा देंगे, इसलिए आपने ये पोयम बोला है।
0: हम और पड़ोसी,
1: अरे इंडिया की बात कर रहे हैं आप, अलीगढ़ में,
2: इंडिया में
1: कुछ तो इनके पास तो ना बादाम है ना अखरोट है,
0: फिर भी यार इंडिया में भी
1: छिलके खाइए कुछ।
0: हाँ खैर पड़ोसी, हाँ नादिया का घर मुझसे मेरे ख्याल में 5 मिनट दूरी पे तो है, मुझे ऐसा लगता है 5 भी नहीं शायद 4 मिनट, अगर स्कूटी है तो 4 मिनट,
1: गाड़ी है तो कम से कम 5,
0: गाड़ी है तो 1 मिनट और
1: गलियों से निकलना
0: मुझे, एक और पकड़ के चलिए 5 मिनट की दूरी पे तो है। चलिए साहब तो आम के बहाने से ही सही, चलिए कुछ तो रिश्तेदारी
1: सही कहा। नहीं मैम मैं दुश्मनी निभाऊंगी, आम नहीं लाऊंगी।
0: आपको चाहिए मंगवा दूं?
1: आपको चाहिए मंगवा दो, पहले अपना तो जुगाड़ करिए, आपके खुद लाले पड़े आम, आम के
0: भाई
2: अरे हो गया
0: आम का सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन आम
1: अरे एक और अच्छी बात यह है कि सर्वर भाई ने तय किया मैं बिल्कुल ऐसे सीजन में जाऊंगा जो सीधा यहाँ से उतरा और आम के ठेले पे लैंड हुआ, ये इनकी लैंडिंग आप अभी देखिएगा।
0: मतलब मैं खुद आम

0: उम्र के नाम नहीं पूछे जाते, दिल से दिल को।
1: मेरा भाई कैसा, पैसा ही पैसा, बहुत ही खूब,
2: बहुत ही खूब, बहुत जबरदस्त।
1: और कुछ शेयर करना चाहते
0: हैं? मैं कल शो था, मतलब नादिया आपी का शो था, लेकिन नादिया आपी आई नहीं, उनकी तबीयत खराब थी शायद।
1: अच्छा नादिया, आपने कल बोल मार दिया था, मुझे तो यही नहीं पता। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप ड्यूटी करके और मुझे बता भी नहीं रही है भाई। वाह,
2: नहीं कल मेरी वाकई तबीयत खराब थी।
1: क्या कहने भाई, तो बताया नहीं ये फैजल, आपने बताया मुझे, ये बता ही नहीं रही कि मैं गायब थी कल ड्यूटी से। मैं बार बार सोच रहा हूँ ये लोग क्यों कह रहे हैं तबीयत खराब थी, तबीयत खराब थी, अब पता चला जाके। वाह,
2: मेरी तबीयत वाकई खराब थी, लेकिन मेरे पास गुंजाइश ही नहीं थी कि मैं एक दिन से ऊपर छुट्टी करूँ, क्योंकि काम बहुत है। तो बस यस।
1: अच्छा नादिया, कैसी तबीयत आपकी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल में वाकई एडमिट थी।
1: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे यार, तो आप मुझे बुला लेती, मुझे
2: आपकी वजह से तो मैं एडमिट हुई।
1: मुझे देख के आप वही हॉस्पिटल के बेड से उठ के भागती हो, चल गए कि यहाँ भी आ गया,
2: तभी तो नहीं बताया।
0: अरे तरुण भाई, आप मिलने जाते तो नादिया आपकी का खून और उबाल,
2: वही तो इसीलिए तो मैंने
1: तो उबाल, खून उबाल मारता तो फिर बढ़ जाता ना उससे। भाई काम हर तरीके से आना चाहिए, उससे ही सही।
0: ब्लड प्रेशर वाली मशीन एक्सपोर्ट हो जाती तो
1: अच्छी लाए साहब, अच्छी लाए। चलिए भाई फैजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी प्यारी प्यारी बातों का। इंशाल्लाह ताला कल फिर हमारे साथ जुड़िएगा, आपका इंतजार रहेगा।
2: इंशाल्लाह,
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच।
2: अल्लाह
1: हाफिज, ईद मुबारक मेरे भाई,
2: मुबारक।
1: तो भाई ये थे सैयद फैजल साहब हमारे साथ। यहाँ पर कुछ मैसेजेस और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, कैसे हैं आप? दोनों का प्रोग्राम बहुत प्यारा लगता है। अदनान है हमारे साथ,
2: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और सरवर भाई लगता था कह सकते हैं सुनेंगे ही सुनेंगे।
1: नादिया क्या करना है अदनान को ये बता दीजिए,
2: क्या करना है? मतलब
1: आपको प्यारा लगता था आप कह सकते हैं अदनान, क्योंकि अब हमारे कल से इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम चेंज हो रहे हैं। और ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे FM 107 की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज www.urduradio.qa। यहाँ पर जाके आपको तमाम नए प्रोग्राम्स के हवाले से मालूमात हासिल हो जाएगी। कौन से आरजे किस वक्त कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। मजीद ये कि आपको ये भी सुनने के लिए मिल जाता है जो प्रोग्राम हुए हैं, क्योंकि जो लास्ट कुछ 10-11 प्रोग्राम हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं आपको वहां पे मिल जाती हैं। एपिसोड जो हैं, गए हुए एपिसोड जो हैं, वो आप वहां पे जाके हमारे साथ कनेक्ट होके सुन भी सकते हैं, अगर किसी का कोई एपिसोड वगैरह मिस हो गया है तो। बाकी ये कि आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़िए, हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एक्स पे, टिकटॉक पे, हर जगह आपके लिए हाजिर खदमत है। और हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो भाई ये कुछ हाल अहवाल, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और वापस आने के बाद चर्चा जो है वो जारी रहेगी। देवनेगी और नेहा का कड़ 9 से 12 इंडिया की जी ट्रैक आफ्टरनून एक्सप्रेस में सर्वनाथ जी आपके साथ दिल से
2: दिल से।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार।

0: Alright guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो आफ्टरनून एक्सप्रेस सर्वर नाजी हम दोनों आपके साथ हैं 12:44 ऑन द क्लॉक एंड यस वी आर बैक. आज कहने को तो ईद के बाद हम लोग छुट्टी के बाद आते हैं तो एक मूड भी ऐसा होता है कि बस लग रहा होता है कि चलो एक और दिन मिल जाए छुट्टी, एक दो दिन और मिल जाए छुट्टी तो क्या ही बात है. लेकिन ऐसा हो
1: नादिया, दो दो चार चार दिन की छुट्टियां लेकर आप आ रही हैं और आप फिर भी छुट्टी के
0: सबसे ज्यादा
1: कर रही हैं.
0: छुट्टी ली है वो आपने?
1: कहां मैंने कौन सी छुट्टी ली बताइएगा जरा, किस दिन मैं एब्सेंट रहा हूं?
0: आप ये बताइए किस दिन आप प्रेजेंट रहे हैं?
1: मैं पूरे वक्त प्रेजेंट, हर वक्त प्रेजेंट, हर

0: जगह प्रेजेंट रहा हूँ,
1: लेकिन हम मेंटली तो आउट रहते हैं।
0: वो उससे क्या मतलब, वो छुट्टी में थोड़ी काउंट होगा।
1: ऐसे प्रेजेंट होने से क्या फायदा?
0: नहीं, चलिए मैं वो भी मान ले, मैं वो भी मान रहा हूँ, मगर उसको क्या फर्क पड़ता है, मैं हूँ तो सही फिजिकली।
1: मगर सब कुछ रॉन्ग जा रहा है ना, इसलिए तो रहना आपका मेंटली फिजिकली दोनों इम्पोर्टेंट है। खैर, आपकी बात समझ में नहीं आएगी, आपके साथ आपकी अकल भी
0: छुट्टी पे गई है। चलिए तो यहाँ पर एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर कुछ अपडेट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम,
2: ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो।
0: अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक।
2: क्या हाल
0: चाल है? कैसे हैं? ईद मुबारक हो बहुत बहुत।
2: आपको भी बहुत बहुत
0: खैर मुबारक। ईद कैसी गुजरी आपकी?
2: ये हमारे जवाब अभी से पूछे जा रहे हैं।
1: आपके सवाल ही आपको धराते जा रहे
0: हैं। उवैस भाई,
2: हमारे सवाल चले।
0: सुना,
2: अल्लाह का शुक्र है, आज पहचान गए?
0: पहचान तो हम आपको बहुत पहले गए थे। मेरे कहने का मतलब ये, अभी जब कॉल आई है तो पहचान गया था मैं आपको, कॉल के साथ ही ना दिया, क्या समझिए आप? उमेश भाई ऐसे थोड़ी है, उनको बहुत पहले से पहचान लिया जाए।
2: नहीं, आप बहुत पहले से पहचान गए होंगे।
1: नहीं, ये कह रहे हैं मैं खूब पहचानता हूँ आपको, बहुत पहचानता हूँ।
2: नहीं नहीं, कहने का अंदाज जो था इनका, वो कुछ अलग ही था।
0: अरे नहीं, उमेश साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब कॉल आपकी शुरू हुई है तो मैं आपको पहचान गया था, लगे हाथों ये। और सुनाइए कि क्या हाल चाल है, कैसी रही ईद आपकी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया।
0: कुछ नया ताजा जो हुआ, कोई ऐसी यादगार बात जो हो, अपार्ट फ्रॉम बिरयानी और कोरमे खाने के अलावा कुछ हुआ है तो बताइए।
1: हाँ, खास इन्होंने आलू की सब्जी खाई।
2: किसने?
0: क्या अल्लाह से तौबा कीजिए, कैसी बातें कर रही ये अपनी बात?
2: नहीं
1: नहीं
2: नहीं,
1: मिर्जा साहब ने इतना खाया नॉनवेज खाया, कह लेंगे अब मुझे सिर्फ आलू और दाल दो मूंग की।
0: अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, इन्होंने आलू खाया हो, ये क्या बात हुई भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
1: ये चखते हैं
0: पल्ले घर मंगनी, ये मैं खेला करता था, मुझे याद है। मगर ये आलू मैंने कभी नहीं, मतलब कभी छोड़ा हो ऐसा नहीं है। आलू तो मैं खुद एक आलू हूँ, मतलब कहने का ये है कि
1: नहीं भा लगा,
0: आलू हर जगह फिट हो जाता है ना, कहने का मकसद ये है। ओएस भाई,
1: ये तो खीर में, अरे ये तो खीर में भी आलू डालते हैं।
0: अच्छा, तो कुछ खास ये तो
2: बिरयानी जब बनी थी तो याद आई थी आपकी।
0: आए है। और फिर ये कि फिर तेरा याद भी गई है वाला शेर हो गया।
1: नहीं, याद आई थी, फिर इन्होंने खा लिया, फिर याद गई।
0: कहने के अब कौन,
2: फिर याद आई, खा लिया या चली गई।
0: क्या कहने, क्या शेर सुनाया है।
1: मुझे भी सरवर मिर्जा की याद आई, मूंग की दाल पे।
0: सबको याद आ रही है, बस खाना देख के।
1: और फिर मैंने वो मूंग की दाल,
0: और उसके बाद खुद सूद दे रहे हैं, और उसके बाद याद भी जा रही है। वाह वाह वाह वाह, ये कौन सी रिश्तेदारी है भाई, कौन सी दोस्ती है, जहाँ पूछा भी नहीं जा रहा, खाली याद किया जा रहा।
1: जब मीठा खा रही थी, फिर खाली पतीला देखा, फिर आपकी याद आई, बहुत आई, फिर
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: ज्यादा बढ़िया
0: नादिया जी, आपकी मोहब्बत का एज यूजुअल। तो चलिए भाई, शुएब भाई, नहीं मेरा मतलब ये है कि मास भाई, अच्छा उवैस भाई की जो ईद है बहुत अच्छा।
2: फादर का नाम ले रहे हैं आप मेरे।
0: अच्छा, ऐसा है क्या? मास साहब यही नाम है
2: जी,
0: मास नाम है उनका,
1: शुएब नाम है?
2: नहीं, शुएब।
0: अच्छा, माशाल्लाह शुएब साहब भाई, उनको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, और अल्लाह ताला उनको सेहतियाब रखे।
2: वो नहीं है,
0: अल्लाह ताला उनको बड़ी रहमत करे और अल्लाह ताला मगफरत फरमाए भाई। लोग रहते हैं और भाई यही, ये बड़ी अच्छी बात याद आ गई कि ये दुआ है कि जो इस साल साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला खैर आफियत से अगले साल भी साथ हों। कुछ लोग छूट जाते हैं।

0: कुछ दोस्त छूट जाते हैं, कुछ रिश्तेदार छूट जाते हैं, कुछ अपने छूट जाते हैं, मगर ये है कि यादें रह जाती हैं। और याद ऐसे वक्त पे आती है जब कुछ त्योहार हो, कुछ फेस्टिवल हो, आप मतलब वही खाने पीने के टाइम पे, तब जैसे आप लोगों को मेरी याद है बीच में। हेलो
1: आवाज चली गई
0: अजी। हाँ
1: हेलो
0: हेलो। अरे यार मैं इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ, आप कह रहे आवाज चली गई, याद हो गई।
2: अच्छी चीजों पे आवाज सही गई। अब
0: वैसे भाई हैं कि गए निकल लिए अच्छा मैं इस पे आ रहा था कि जैसे इस बार आपने हमें ईद पे मिस किया, हो सकता है अगली बार आप वाकई मिस करें। उन्होंने ये बात ही नहीं सुनी, वो चले गए।
2: मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखता हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ आपकी फर्जी बात।
0: चलिए भाई, तो अब वक्त भी हुआ जाता है, यहाँ पर कुछ मैसेजेस और उसके बाद कुछ अपडेट नाजिया शेयर करेंगी।
2: बिल्कुल।
0: कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई, कैसे हैं आप दोनों, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी
2: इंशाल्लाह।
0: चलिए नाजिया ने इंशाल्लाह लगा दिया, ये भी एक कीर्तिमान स्थापित होता हुआ। आज दो दो कॉल आ रही हैं, अब चलते चलते हमें हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं गलत खोल दिया इधर, अस्सलाम वालेकुम।
2: आज आप बिल्कुल मेंटली आउट हैं
0: सर। एक्चुअली खुशी का ठिकाना नहीं रहा ना कि
2: इंशाल्लाह दिमाग भी ठिकाने पे नहीं
0: है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
2: कौन है हमारे साथ?
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो वालेकुम सलाम।
0: हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? हेलो
1: एक सेकंड भैया, ए भैया जरा माइक चेक करो जरा, आवाज बराबर।
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: जी जी जी, अभी अभी
0: आ रही। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, क्या हाल चाल है, खैरियत? ईद मुबारक।
1: ईद मुबारक सरवर भाई। अरे आप कहाँ थे चार दिन, में सुना ही नहीं आपको।
0: हाँ मुझे मालूम है, आपको भी यही हुआ होगा, बिरयानी बकरे कोरमे देख के मेरी याद आई होगी, उसके बाद वो याद भी
1: नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: अच्छा इसमें इतनी भी नहीं आई, माजरत, बड़ी शर्मिंदगी हुई, इतनी भी नहीं आई कह रहे हैं।
1: सरोवर भाई मैं आपको डेली सुन रहा था, मगर आपकी लाइन इतनी बिजी जा रही थी कि हम गरीबों को टाइम नहीं मिला के।
0: बहुत बिजी जा रही थी, वाकई बिजी जा रही थी, इतना खाया है हमने।
1: अरे
0: अच्छा लाइन की बात कर
1: रहा
0: जी
1: ना
0: जी।
1: आपकी कॉल बिजी जा रही थी के मतलब अमिता जी और आपने तो मिलके लोगों को जिता ही दिया इतना इतना
0: है ना। देखिए ये आप भी विनर बने मेरे ख्याल में, आसिफ भाई हैं
2: बने हैं
1: जी जी बना, बस मगर एक ही टाइम बन सकता ना भाई।
2: ये हुआ है।
0: ओके तो चलिए भाई सभी, ये भी हम मुबारकबाद देने लगे आते हैं जो हमारे यहाँ विनर्स रहे ईद पे। और जिन लोगों को नहीं पता है तो हम बता दें कि भाई हमेशा की तरह हज़्ब रिवायत हम लोगों ने माशाल्लाह से खूब विनर बनाए ईद पे। हमारे प्रोग्राम्स के अंदर कॉम्पिटिशन्स थे और उसमें लोगों ने बड़ा लाभ उठाया और वो जीते भी कूपन, जिसमें आसिफ भाई एक हैं विनर उनमें से।
2: सही।
0: तो आसिफ भाई क्या तैयारियां हैं, इंशाल्लाह ताला जब वो मिल जाएगा कूपन आपको तो क्या सोचा है, मतलब मेरे अलावा किस किस को साथ में लेके
1: जाएं? मतलब कूपन का मतलब क्या है मेरे को अभी तक समझा नहीं पाया। मैं जीत तो गया, बाकी मुझे मालूम नहीं क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा या क्या मिलेगा।
2: अब बताइए
0: जीते क्या है आप?
2: कुछ तो
1: जीते। मैं तो कबीर भाई के शो में जीता।
0: कबीर भाई क्या बांट रहे थे अब ये पता चले पहले तो मुझे।
2: कोई रेस्टोरेंट का वाउचर था,
1: रेस्टोरेंट का वाउचर बांट रहे थे।
0: रेस्टोरेंट तो हमने भी दिया था।
2: तो बस 500 कतरी रियाल का आप खाना खा सकते हैं।
0: बताइए
1: खाना 500 रियाल का कतरी रियाल खाना कौन खाएगा?
0: बिल्कुल
2: करा लीजिएगा
0: आप, साथ में लेके चलिए।
1: अकेले
2: 1000 का खाएंगे खाना, आप और मैं क्या करेंगे?
0: और देना पड़ेंगे नहीं, आप दोनों को जिप्स और 500 देना पड़ेगा,
2: बर्तन धोएंगे।
0: हाँ भाई प्लेट वगैरह भी तो साफ करनी होंगी, उसके बाद ये वो कौन करेगा?
2: आप खा के निकलेंगे।
0: हाँ बिल्कुल, मैं तो अल्लाह हाफिज़ कर दूंगा।
2: हाँ
1: अच्छा अच्छा सरोवर भाई ठीक है, टेंशन नहीं है, फिर तो मैं एक काम करूंगा, मेरे साथ में है 3-4 जन। अच्छा भाई सरोवर भाई एक बात और है। मेरा दोस्त पूछ रहा था कि सरोवर भाई कैसे हैं?
0: अच्छा कौन है दोस्त, क्या नाम है, उनका नाम बताइए।
2: बताइए अच्छे नहीं है क्यों आप शर्मा रहे हैं?
1: नहीं जी नाजिया बहन वो पूछ के चले गया, वो सुना पहले बहुत देर तक भाई को सुना बाद में हंस हंस के वो बोलता मेरा पेट दुख रहा है भाई, सबर भाई तो इतना हंसा रहा है बैठे बैठे
0: तो थे,
1: क्या हो गया?
0: थे कौन, नाम तो बताइए, नाम तो होगा उनका।
1: ओ उसका नाम जमील था, जमील
0: जमील भाई। तो चलिए भाई जमील भाई से भी किसी वक्त में बात करवाइए। जमील भाई ऐसा नहीं है मैं बात कर लेता हूँ सभी से, आपसे भी बात कर लूंगा। जमील भाई कह रहे हैं इनसे कैसे बात करूँ। चलिए भाई आसिफ भाई, उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजरी हो और इंशाल्लाह ताला आप जो इनाम जीते हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। अब वक्त हुआ जाता है कि हम आपसे इजाजत ले लें आज के लिए, इंशाल्लाह ताला कल मैं यहीं मिलूंगा आपको। नाजिया जी।

0: आपको मॉर्निंग 6 बजे मिलेंगे
1: तो जरूर आपको कनेक्ट होना मॉर्निंग में। हाँ जी
2: नाज़िबेन
1: जी जी भाई
2: सलाम अलैकुम मुबारक आपको
1: बड़ी जल्दी
2: ध्यान नहीं दिया मैं
1: बड़ी जल्दी आपका ध्यान इधर है
2: अमिता जी क्योंकि मैं 2-3 दिन से मैं अमिता जी को सुन रहा था ना साथ में तो मैं कंफ्यूज हो गया अमिता जी या नाज़िया बेन अभी बराबर याद आया कह रहे तो अपनी नाज़िया बेन एक दिन
0: ये रात में 8 से 10 का प्रोग्राम था फजील और नाज़िया का एक साथ तो शायद आप नहीं सुन पाए
1: सुना
0: भी भी किया अच्छा ये कबीर भाई के उसमें बने थे
1: मैंने कॉल किया
0: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है सही 11 बजे
1: भी जुड़ना है आपको मॉर्निंग में ठीक है
0: इंशाल्लाह आपसे भी
1: सो
0: मच अल्लाह
1: ऑलराइट दोस्तों अब जाते जाते क्या ही बताऊं मैं
0: भाई यहाँ पर कुछ कॉल भी आ रही हैं मगर अब अब टाइम हो गया है तो हम इजाजत भी ले लेते हैं और इसी ख्वाहिश के साथ नेक ख्वाहिशात के साथ के इंशाल्लाह आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी और FM 107 अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता ही रहता है कि आप लोगों का अच्छा टाइम गुजरे आपको अच्छी मालूमात हासिल हो और वहीं आप लोगों की जिंदगियों में भी बेहतरी कहीं ना कहीं से आए इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ते हुए इसी अच्छे नोट के साथ आपसे इजाजत लेते हैं नाज़िया जी आपसे भी इजाजत लेता हूं उम्मीद करता हूं कि आप कहा सुना माफ करेंगी इंशाल्लाह ताला और आगे मुलाकात तो आपसे होती रहेगी नाज़िया जी
1: इंशाल्लाह जी
0: अपना बहुत सारा ख्याल रखिए नाज़िया जी दुआओं में याद रखिए चलिए तो भाई आप ही लोगों से यही कहना है कि इंशाल्लाह कल मुझसे आपकी ही मुलाकात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए देखते सुनते रहिए FM 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने के नाम मगफरत के हवाले से एक अहम दुआ है और इसमें मगफरत तलबी के काफ़ी सारे पहलू जिक्र किए गए हैं। दुआ की शुरुआत होती है कि अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा। अल्लाहुम्मा किनी शर नफ्सी, और आगे वाजिमली अला अरशदी अम्री, और मेरे लिए मेरे तमाम कामों में सबसे बेहतर रास्ते पर अजीमत के साथ चलने की मजबूत इरादा अता फरमाओ ताकि मैं उस रास्ते पर मजबूती से चलूं। अब आते हैं मगफरत तलब की तरफ। देखें यहाँ कितने पहलू बताए गए। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली मा असररत व मा अलनत, मेरे वो गुनाह भी माफ़ फरमा जो मैंने छुप कर किए, वो भी जो ज़ाहिर किए, वमा अख़्तअत व मा अमदत, वो भी जो गलती से हुए और वो भी जो जान बूझ कर किए, वमा अलिमत व मा जहिलत, और वो भी जिन्हें मैं जानता हूँ और वो भी जिनसे मैं खुद लाइलम हूँ जाहिल हूँ। तो ये दुआ सामिन कराम इंसान की अंदरूनी असलाह की सबसे ताकतवर दुआओं में से है, क्योंकि ये तीन बुनियादी मसाइल को हल करती है। पहली बात तो यह कि शर्र नफ्स से हिफाजत। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गोया के नफ्स है, चूँकि दूसरे दुश्मनों को तो वो देखने में से पहचानता है, अपने नफ्स को तो वो कहाँ पहचाने। बड़े से बड़े लोग भी अपने नफ्स की गुलामी करते हैं, नफ्स के ख्वाहिशात के ताबेदार बन जाते हैं। तो नफ्स का शर ये बहुत ही भयानक होती है, तो इससे हिफाजत तलब की गई है। अल्लाहुम्मा क़िनी शर्र नफ्सी, इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि नफ्स तो भाई बुराई का हुक्म देता है, जैसे कि कुरान में है, नफ्स लम्मारतुन बिस्सू, नफ्स ख्वाहिशात में धकेलता है, गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, इबादत से सुस्ती पैदा करता है। तो हमें जो है ना अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए सबसे पहले दुआ करना चाहिए कि अल्लाह मुझे खुद अपने नफ्स से बचा। अल्लाहुम्मा क़िनी शर्र नफ्सी, तो ये बहुत बसीरत की बात है। बसीरत वाले जो होते हैं ना वो समझते हैं कि इंसान जो है ना अक्सर बेशतर दुश्मन बाहर ढूंढता है, हालांकि सबसे ख़तरनाक दुश्मन घर के अंदर बैठा हुआ उसका खुद अपना नफ्स है।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी नोटिस किया है जब तक हेल्थ ठीक होती है ना हम उसे काफी लाइटली लेते हैं जैसे वो हमेशा साथ रहेगी और जैसे ही बॉडी या माइंड थोड़ा सिग्नल देता है तब अचानक याद आता है ओ सेहत भी एक चीज होती है सच तो ये है कि आपकी हेल्थ सही में काफी ज्यादा मैटर करती है जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं लेकिन इसको प्रायोरिटी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जब सब कुछ ऑलरेडी बिगड़ चुका होता है तब हम इसे प्रायोरिटी पे लाते हैं जैसे पहले शायद हम भी अच्छा खाना नहीं खाएंगे जंक फूड की तरफ आकर्षित रहेंगे बट जैसे ही हमारी हेल्थ डिटोरिएट होने लगती है वैसे ही हम स्विच करते हैं टू डाइटिंग हेल्दी ईटिंग जो एक्चुअली एक लाइफस्टाइल होना चाहिए हम काम के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं डेडलाइंस मीट कर लेते हैं पर जब बात खुद पे आती है तब हम कहते हैं ये पार्क की वॉक ना कल से स्टार्ट करूंगा जिम अगले महीने से पक्का करता हूं हेल्थ बाद में पर ये हेल्थ बाद में वाला टॉपिक नहीं है सेहत वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी जिंदगी खड़ी होती है आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो अगर रात को चैन की नींद आपको नहीं आ रही है गड़बड़ लग रही है पेट में दिल की धड़कनें बढ़ रही है दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे हैं आप भले कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखो लाइफ में कितने ही ज्यादा सक्सेसफुल क्यों ना रहो सक्सेस हमेशा अधूरी लगेगी अगर आपका बॉडी आपके साथ नहीं है तो और हेल्थ सिर्फ बीमारी का नाम नहीं होना नहीं होता है वो एक एहसास होता है जब सुबह उठकर आपको लगता है कि आज का दिन बढ़िया अच्छा जाने वाला है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हेल्थ वो इत्मीनान है जब दिल और दिमाग दोनों थोड़ा सा साथ दे रहे हो रिसर्च ये भी कहती है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस पुअर स्लीप और सेल्फ निग्लेक्ट बॉडी को खामोशी से अफेक्ट करते हैं कोई लाउड अलार्म नहीं बजता बस धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है पेशेंस घटते जाता है आप ज्यादा चिड़चिड़ा जाएंगे और आपको लगेगा कि ये तो काफी नॉर्मल है सभी तो ऐसे जीते हैं पर सच तो ये है कि ये एक नॉर्मल लाइफ नहीं ये एक एग्जॉस्टेड लाइफ है अपनी हेल्थ को इग्नोर करना डेडिकेशन ना होना तो थोड़ी मेहरबानी खुद पे कीजिए और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए और जब आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो ना तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं आपके पेरेंट्स हो आपका पार्टनर हो आपके फ्रेंड्स हो इनफैक्ट प्रोफेशनली भी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं टू बी अ बेटर ह्यूमन इसलिए याद रखिए हेल्थ कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है हेल्थ वो बेस है जिसके बिना बाकी सब शेकी हो जाता है तो आज सिर्फ इतना याद रखिए काम इंपॉर्टेंट है लोग इंपॉर्टेंट है सपने इंपॉर्टेंट है लेकिन आपकी सेहत उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप ठीक होते हो तभी जिंदगी ठीक लगती है और हाँ योर हेल्थ ट्रूली मैटर
0: योर हेल्थ मैटर योर हेल्थ

नाजबुल हुसैन शांतो। या दोस्तों, नाजबुल हुसैन शांतो को पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर में खेला गया फर्स्ट टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। इसका रीजन ये रहा कि इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर किया और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में भी 50 प्लस स्कोर रन करके बांग्लादेश को एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन और आगे जाकर मैच जितवाने में मदद की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नाजमुल अपनी काम पर्सनालिटी और क्लासी बैटिंग स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। शांतो ने पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के लिए कई इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं और टीम को मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होने की वजह से वो क्रीज पर बहुत एलिगेंट नजर आते हैं और स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ अच्छी बैटिंग करते हैं। मीरपुर में इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स के प्रेशर के बावजूद उन्होंने पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की। उनकी सेंचुरी ने बांग्लादेश को ना सिर्फ मैच ही जितवाया बल्कि टेस्ट स्टेटस में अगर देखा जाए बांग्लादेश हैज रियली कम अप। और इसी में नाजमुल हुसैन शांतो या नाहिद राणा जैसे खिलाड़ी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को काफी मजबूत पोजीशन हासिल करने में मदद की। एक्सपर्ट्स ने उनके शॉट सिलेक्शन और टेम्परमेंट की खूब तारीफ की और कहा कि ये इनिंग्स उनके करियर की यादगार इनिंग्स में से एक है। नाजमुल हुसैन शांतो को बांग्लादेश क्रिकेट का फ्यूचर लीडर भी माना जाता है। उनकी कंसिस्टेंसी, लीडरशिप और डेडिकेशन नौजवान क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन है और फैंस को उम्मीद है कि वो आने वाले सालों में और भी बड़ी कामयाबियां हासिल करेगा। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीर और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Values are values। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल आर वैल्यूज। दोस्तों आज इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूं एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे। शायद ये लाइन आपने पहले सुन रखी हो कि डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन मोटिवेशन। कैसे? चलिए इसी कैसे को जो है वो आज एक्सप्लोर करते हैं। आजकल हम अक्सर ये सुनते हैं कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशनल वीडियोस, स्पीचेस, कोटेशंस, हम थोड़ी देर के लिए तो ये सब सुन के एनर्जेटिक बन जाते हैं, मगर असल जिंदगी में मोटिवेशन ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, डिसिप्लिन वो आदत है जो इंसान को बिना किसी जज्बाती फीलिंग के भी किसी भी तरह का काम करने पर मजबूर करती है। मोटिवेशन अक्सर इमोशंस पर डिपेंड करती है। जब हम खुश या इंस्पायर्ड फील करते हैं तो काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन जब हम थके हो, मूड ख़राब हो या मसाइल का सामना हो तब मोटिवेशन गायब हो जाता है। ऐसे वक्त में अगर सिर्फ मोटिवेशन पर ही डिपेंड किया जाए तो शायद हम अपना काम छोड़ देते हैं या शायद उसे अच्छे से कर नहीं पाए। डिसिप्लिन यहाँ काम आता है। डिसिप्लिन सिखाता है कि चाहे दिल करे या ना करे, काम तब भी

0: धीरे वो काम आदत बन जाती है। जब काम आदत बन जाए तो मोटिवेशन की जरूरत कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट को देखिए, एग्जाम के करीब अगर मोटिवेशन आता है तो वो पूरे दिन पढ़ने का प्लान बना लेता है, लेकिन रोज रोज पढ़ना मुश्किल लगता है। अगर वही स्टूडेंट डिसिप्लिन फॉलो करे और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत बना ले तो एग्जाम के वक्त टेंशन कम होगी और परफॉर्मेंस 100% बेहतर होगी। यही फर्क है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में। इसी तरह फिटनेस के मामले में भी हम देख सकते हैं, जिम ज्वाइन करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए, नए कपड़े चाहिए, कुछ और सामान चाहिए, लेकिन कुछ हफ्ते बाद जब रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलते तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ रोज वर्कआउट करते रहते हैं वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन एक साइलेंट पावर है, ये शोर नहीं मचाता लेकिन काम पूरा करता है। मोटिवेशन आता है और जाता है, लेकिन डिसिप्लिन अगर एक बार डेवलप हो जाए तो जिंदगी भर साथ निभाता है। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो हर रोज वो काम डिसिप्लिन वे में कर रहे होते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। आखिर में कहना गलत नहीं होगा कि मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको आगे लेकर जाता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि असल कामयाबी डिसिप्लिन से ही मिलती है। जब आ जाए डिसिप्लिन तो मोटिवेट होने में कोई हर्ज नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब मैं नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों आपसे इजाजत लेंगे इस वादे के साथ कि देखते और सुनते रहना है आपको FM 107। कहते हुए दिल से डीसी,
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से डीसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: क्या हो रहा है भाई, टाइम क्या हो रहा है इस वक्त? हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हो रहे हैं दोपहर के 1:31, यानी इट्स टाइम फॉर,
4: आप सुन रहे हैं
5: द सुपर किड शो।

0: सारे सुपर किड्स, क्या हाल चाल है? हाँ जनाब, आपकी एफ और अमिता आ चुकी है द सुपर किड्स शो लेकर। आई शुड टेल यू कि ये हमारे सीजन का आखिरी एपिसोड है द सुपर किड्स शो, और कल से कुछ नए नए शोज आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। तो सारे बच्चा पार्टी जहाँ कहीं भी हो, जल्दी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। यस, यू कैन टेक्स्ट अस 666-22107 पर, 666-22107, या फिर आप फोन मिला सकते हो 443-443-77 पर। आई रिपीट द नंबर 443-443-77 पर। हाँ जी, वैसे ईद की छुट्टियाँ बड़ी मजे की गई हैं भाई, मेरी तो बहुत ही अल्टीमेट गई हैं। हर दिन दावतें दावतें और दावतें, और उसके बाद आपसे मुलाकातें भी हो रही थी एवरी डे। लेकिन आपने कैसी ईद मनाई, क्या क्या किया, कितनी ईदी मिली, कितनी शरारतें की, और अब क्या कर रहे हो? स्कूल से घर जा रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो, या फिर ईद की छुट्टी आपने एक्सटेंड कर ली, एक लंबी छुट्टी ले ली, क्या कर रहे हो? जो भी कर रहे हो हमसे जुड़ जाओ, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी बातें भाई। द सुपर के शो हमारा 1:30 बजे से शुरू हुआ है और 3 बजे तक चलने वाला है। यहाँ पर कुछ मज़े के आपके लिए कॉन्टेस्ट है, कुछ फन फैक्ट्स हैं, कुछ मज़े की बातें हैं, और आज हम बेसिकली बात करेंगे कि ये जो टाइम होता है ना, जब लंबी छुट्टियाँ हो जाती हैं, कभी कभी तो हम बहुत इन्जॉय करते हैं, कभी कभी बोरियत भी हो जाती है, तो बोरियत को कैसे दूर करते हैं? वैसे भी बच्चा पार्टी, कुछ दिन के बाद आपके समर वेकेशंस भी हो जाएंगे, सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि हम अपने बोर्डम को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इस पर डिटेल बातें करेंगे। तो यू कैन टेक्स्ट अस ऑन 666-22107 अगर आप जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप कॉल करें 443-443-77 पर। लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तब तक आप सोचें कि क्या करना है। अच्छा, ब्रेक पे जाएं या ना जाएं, अभी हमें थोड़ा विराम लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे साथ कोई जुड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन जुड़ गया हमारे साथ?
1: अहमद।
0: अहमद, हाउ आर यू?
1: गुड
0: गुड। अहमद, ये वही अहमद है ना जो हमारे साथ अभी ईद के दिनों में जुड़े थे?
1: नहीं
0: नहीं, ये कौन से अहमद है? अहमद, अपना पूरा नाम बताओ।
1: मैं अहमद अब्बासी।
0: ओ अहमद अब्बासी, तो ये बताएं, स्कूल से घर आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या घर आ चुके हैं?
1: घर आया हूँ।
0: ओके ओके। सो ये अहमद कितने साल के हैं?
1: 11 साल
0: के अहमद। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो ये बता दो कि अभी ये ईद की छुट्टियां कैसी गुजरी?
1: अच्छी थी, बाहर गया था।
0: बाहर कहाँ गए थे इतनी गर्मी में?
1: जंगल जोन।
0: ओ हो हो भाई साहब, तो बच्चा फुल लॉन एंजॉय करके आया है। हाँ, अरे कुछ तो बता दो अहमद, शांत हो गए एकदम से?
1: नहीं
0: नहीं नहीं नहीं। तो अहमद, ईदी कितनी मिली है बताओ?
1: ईदी तो नहीं मिलती।
0: ईदी नहीं मिलती? 11 साल की उम्र के बाद ईदी नहीं मिलती, ऐसा क्यों?
1: वो दूसरी ईद पे मिलती है।
0: अच्छा, यहाँ पर हमने अभी इन दिनों ईद के दिनों में पूछा तो काफी सारे बच्चों ने ईदी उनको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो कोई नहीं। अच्छा, अभी आपको इसमें ईदी नहीं मिली, कोई तोहफा कुछ? अच्छा, कैसे एंजॉय करी, चलो ये बताओ, ईद कैसे एंजॉय की, क्या क्या किया, मतलब बाहर जाने के अलावा, व्हाट डिड यू डू?
1: फैमिली के साथ खेला।
0: एंड क्या खेला?
1: लूडो।
0: लूडो का प्रेमी है ये? ओके, तो लूडो में फिर जीते कि नहीं जीते?
1: कभी कभी जीतता हूँ।
0: कभी कभी जीतते हैं, ठीक है। तो इस बार आपके घर में कौन सी स्पेशल चीज थी जो बनी और सबने बहुत एंजॉय की, लाइक फूड की बात कर रही हूँ मैं?

0: मामा ने डिजर्ट बनाया था.
1: हाँ, और डिजर्ट क्या, शीर खुरमा?
0: नहीं, वो कोई कस्टर्ड चॉकलेट वाला.
1: ओहो, कस्टर्ड चॉकलेट खाई गई है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये टोटल टोटल आपकी ईद की छुट्टियां बड़ी मजे की निकली है ना?
0: जी.
1: क्या बात है, थैंक गॉड. अच्छा ये तो बता दो अभी कि आगे की क्या प्लानिंग है. अभी कुछ दिन में समर वेकेशंस आएंगी हम, और आज हमारा सुपर किस शो का आखिरी एपिसोड है. सो हम बेसिकली बात करें ना अहमद, कि कभी कभी ना बोरियत हो जाती है. सो बोरियत अगर होती है लाइफ में, तो आप कैसे उसे ओवरकम करते हो, क्या करते हो उस टाइम पे?
0: बाहर खेलता हूँ या फैमिली के साथ खेलता हूँ.
1: मतलब इंडोर गेम्स खेलते हैं.
0: जी,
1: वेरी गुड. वैसे हम ये सवाल आज इसलिए पूछ रहे हैं अहमद, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं ना, और कई सारे लोग भी हैं, कि जब बोर्डम होता है ना, तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि करना क्या है. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इफ यू कीप टेलिंग अस कि भाई जब हम बोर होते हैं तो हम ये कर लेते हैं, एंड वी मेक इट मोर प्रोडक्टिव. तो जब आप जब बोर हो रहे होते हो, यू प्ले गेम्स इनडोर्स या फिर आउटडोर्स, जो भी आपको पसंद होता है, एंड आफ्टर दैट हाउ यू फील?
0: हैप्पी.
1: माशाल्लाह, क्या बात है. चलो बहुत बढ़िया, ये जान के तो मज़ा आया हमको कि आपको खुश खुश फील होता है. वैसे पता है, जब मैं बोर होती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी बहन के साथ ना चेस खेलती हूँ. आई रियली लव दैट. आप चेस खेलते हो?
0: नहीं खेलने आती.
1: कोई नहीं, आ जाएगी आपकी एज में. धीरे धीरे आप सीखोगे ना, यू विल कम टू नो. एंड बड़ा ब्रेनी गेम है, और जब भी आप खेलते हो ना, तो माइंड बिल्कुल लाइक यू नो, इतने आप ऑक्यूपाइड होते हो कि उसके बाद बोर हो ही नहीं सकते. सो जस्ट ट्राई सम टाइम. ओके
0: ओके
1: ओके. सो अहमद, आज हम ना कुछ पजल्स लेकर आए हैं. वुड यू लाइक टू प्ले?
0: जी.
1: ओके, तो आपके लिए पजल है, अब आपको सॉल्व करना है. देखते हैं कि आप कितने पजल्स आज सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास एक मिनट का टाइम होगा. ठीक है?
0: Okay.
1: And your time starts now. Okay, tell me. I can fly without wings and cry without eyes. Wherever I go, darkness follows. Who am I? Aapke options hain, a bat, a cloud, an owl.
0: Cloud?
1: Okay, that's right. Another question. I am an iceberg. Most of me is hidden. How much of an iceberg is usually underwater? Half, about 90%, only 10%.
0: 10%.
1: Are you sure about that?
0: Ada?
1: ऐसे तो आप सारे जवाब दे दोगे. Come on, tell me. 90%. No, it's 90%. Okay. So anyway, another one is, what has 1,000 needles but cannot sew a single button? Options, a cactus, porcupine, a pine tree.
0: Question kya tha?
1: Question hai ki what has 1,000 needles but cannot sew a single button? A cactus, a porcupine, a pine tree.
0: Cactus.
1: Cactus, 1,000 needles है और वो सीव नहीं कर सकता. Are you sure?
0: Porcupine के पास भी है.
1: Absolutely. So porcupine is the right answer. And here आपका time खत्म होता है. So मान के चले कि तीन सवालों के आपने थोड़े थोड़े आधे आधे जवाब दिए, तो टोटल आपका स्कोर मैं बना देती हूँ 2.5.
0: ठीक है.
1: सो 2.5 का आपका स्कोर हुआ है, विच इज़ वेरी गुड स्कोर. मतलब तीन सवालों में अगर 2.5 आपने जीत लिया, सो इट्स नाइस वन. सो लेट्स सी कि अभी नेक्स्ट स्कोरर कौन होता है, और क्या वो 2.5 से ज्यादा स्कोर कर पाता है. ओके अहमद.
0: ओके.
1: सो अहमद, टुडे इज द लास्ट एपिसोड ऑफ द सुपर किड शो. बिफोर यू लीव, कोई मैसेज देना चाहेंगे?
0: ऐसे नहीं होएगा?
1: होगा होगा, इसका सेकेंड सीजन आएगा. यस. तो अभी कुछ कहेंगे आप? एनीथिंग दैट वुड यू लाइक टू से?
0: अल्लाह हाफिज.
1: ओके अहमद, अल्लाह हाफिज. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे. ओके, अल्लाह हाफिज डियर. अल्लाह हाफिज. दैट्स सो स्वीट ऑफ अहमद कि मैं क्या बोलूं, आखिरी शो है तो अल्लाह हाफिज ही बोलता हूँ. ऑलराइट, अभी हमारे साथ कोई और भी जुड़ रहे हैं, इनसे करते हैं बात. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
1: ओहो, वालेकुम अस्सलाम. भाई कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ? मोहम्मद शहजादा, आई एम परफेक्टली फाइन. आप थोड़ा सा स्पीकर के नजदीक आएंगे क्योंकि आपकी आवाज बड़ी दूर से आ रही है. हाँ जी मोहम्मद, बताए तो फोन के नजदीक तो आ जाओ. अच्छा कैसे हो ये बताओ.
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ. और अभी कहाँ घर जा रहे हैं?
2: जी
1: आहा, क्या बात है, ये तो परफेक्ट टाइम होता है जब आपकी हमारी मुलाकात होती है. वैसे मोहम्मद आपकी एज क्या है?
2: मैं 11 इयर्स की हूँ.
1: अरे अच्छा, क्या बात है, आप 11 इयर्स के हैं, वेरी नाइस. सो अभी बताएं ईद के दिनों में क्या क्या मस्ती करी है?
2: ईद के दिन में पहले दिन में हम लोग वहाँ बाहर गए थे.
1: हाँ.
2: फिर उसके बाद हमने बहुत सारे मजे किए थे.
1: हाँ.
2: उसके बाद फिर हम लोग घर आने के बाद फिर मैं थोड़ा सा गेम खेला था.
1: हाँ.
2: फिर उसके बाद फिर मैं जाके सो गया था. फिर नेक्स्ट डे पर मैंने अपने फ्रेंड के घर गया था.
1: हाँ.
2: फिर मैं अपने कजन के घर गया था. एंड फिर मैंने वहाँ पर बहुत सारे एंजॉय किया था. एंड इतना मजा आया था इस सीट पर.
1: हाँ.
2: बहुत मजा आया था.
1: हाँ. क्या बात है मोहम्मद, आपने तो पूरी लिस्ट बता दी. ईद मतलब बहुत ही मजे की एंजॉय करी, मतलब घर पे एंजॉय किया, दोस्तों के पास एंजॉय किया, एक्टिविटीज कर डाली. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो भी इस ईद में कोई एक चीज जो आपको ऐसी लगी कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इसमें, वो कौन सी थी?
2: वो था जब मैंने अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सब लोग के साथ गैदरिंग सब लोग खुश करे, एंजॉय करे.
1: हाँ.
2: वो मुझे वाला मोमेंट बहुत अच्छा लगा था.
1: माशाल्लाह,
2: इट्स वेरी नाइस टू स्पेंड फैमिली एंड
1: क्योंकि आम दिनों में उनके साथ उतना वक्त नहीं बिता पाते. सो यू रियली हैड अ गुड टाइम एंड आई एम सो ग्लैड टू नो दैट आपने बहुत इंजॉय किया. अच्छा ये बताओ ईदी मिली कि नहीं मिली?
2: नहीं, ईदी नहीं मिला था, बट इट्स ओके. बस मुझे
1: बहुत सारे बच्चों से पूछा आपको ईदी मिली कि नहीं, सबको ईदी मिली. तो मैंने कहा चलो ठीक है. वेरी नाइस, ये तो बहुत ही बड़ा दिल है आपका. वेरी नाइस मोहम्मद, सो सो ग्लैड टू टॉक टू यू. अच्छा मोहम्मद अब ये बता दो कि हम आज बेसिकली बात कर रहे हैं बोर्डम से रिलेटेड, कि ना कभी कभी बोर्डम हो ही जाता है, बोरियत हो जाती है लाइफ में, छोटे बच्चों को भी होती है. तो अब बोर्डम को कैसे दूर करते हो ये बताओ.
2: बोर्डम कैसे दूर करते हो? मैं ऐसे एक्टिविटीज करते हो जैसे ऐसे जैसे प्लेइंग और ऐसे कुछ करे ऐसे ना.
1: हाँ.
2: टॉकिंग पेपर से.
1: हाँ.
2: मैं कुछ बनाते पेपर प्लेन एंड थोड़ा सा एक्सरसाइज और गेम्स और ऐसे अपने. मेरे पास एक छोटे सिस्टर है.
1: हाँ.
2: मैं उसके साथ खेलते समटाइम्स चर्च के साथ.
1: Wow, that's so nice. वेरी नाइस. आपने बहुत सारी लिस्ट बता दी कि एक्टिविटीज कर लो, मैं पेपर प्लेन बना लेता हूँ, अपनी छोटी बहन के साथ खेल लेता हूँ. अच्छा अगर मैं थोड़ा सा बोर हो रही हूँ तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए?
2: अगर अगर आप बोर हो के मैं आपको सजेस्ट कर दूँ तो आप क्राफ्ट कर ले और आप ऐसी रिलैक्स और ऐसे कुछ वो कर ले.
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच मोहम्मद. मैं अब इस चीज का ख्याल रखूंगी. आपने जो सजेशन दिया है ना, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं इस पर अमल करूंगी. ओके अच्छा मोहम्मद अब जल्दी से अपन पजल वाला गेम खेलें.
2: ओके
1: सो 1 मिनट का टाइम होगा. अभी आपके पहले हमारे साथ हमारे लिसनर थे, उन्होंने 2.5 का स्कोर किया है 1 मिनट में और अब देखते हैं कि आप कितना स्कोर करते हैं. ऑलराइट ओके.

0: and your time starts now. Okay, tell me, what has a neck but no head? Your options are bottle, shirt, both A and B.
1: Bottle.
0: Bottle. And shirt?
1: Shirt, maybe.
0: Yes, maybe. It's also a right answer. Okay, second question for you. What has many words but never speaks? A book, radio, a parrot?
1: Book.
0: Very good. Okay, another one. What runs but never walks and has a bed but never sleeps? Your options are car, river, dog.
1: River.
0: Very nice, very nice. Okay, now tell me. I have cities but no houses, mountains but no trees, water and water but no fish. What am I? Painting, map or globe?
1: Globe.
0: Very, very nice. आपने चार का स्कोर कर लिया है. That is so nice.
1: थैंक यू
0: मोहम्मद, इज लवली. अच्छा मोहम्मद, हमारा ये जो द सुपर किड्स शो है, ये आज इसका लास्ट एपिसोड है. कल से हम नया शो लेकर आएंगे आपके लिए. सो बिफोर यू लीव, एनी मैसेज? यस प्लीज से.
1: नेवर गिव अप एंड टू बी सक्सेसफुल. नेवर गिव अप.
0: How sweet is that? And definitely, जब आप give up नहीं करते हो ना, तब जिंदगी बड़ी खूबसूरत और आसान होती है. So मोहम्मद, thank you so much. अच्छा मोहम्मद, ये बताओ, आपको थोड़ा सा adventure पसंद है क्या?
1: जी, मुझे बहुत adventures बहुत पसंद है मुझे.
0: अच्छा, very good. तो हम ना कल से नया शो लेकर आ रहे हैं, escape room, और वो मेरा शो रहेगा, यानी कि मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ. एंड इसमें ना मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगी, क्लोज दूंगी, एंड यू हैव टू उस सिचुएशन को आपको पार करके एस्केप करना है. सो कल भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? 1:30 पर.
1: ओके,
0: 1:30
1: पर.
0: यस यस मोहम्मद. चले, थैंक यू सो मच मोहम्मद फॉर बीइंग विद अस. अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे.
1: अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे. बाय
0: बाय बाय. That's so lovely. मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, अरे तो सुपर किस शो का आखिरी एपिसोड है. हाँ हाँ, सुपर किस शो का इस सीजन का आखिरी एपिसोड है. इसका अभी नेक्स्ट सीजन आएगा तो फिर आप जुड़िएगा, है ना. लेकिन अभी कल से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एस्केप रूम, जो कि एडवेंचरस शो है, और वो बच्चे बड़ों सबके लिए है, ठीक है. वहाँ पर कोई सिचुएशन होगी, आपको क्लूज दिए जाएंगे, और सिचुएशन को पार करके आपको एस्केप करना है. सो वी विल टेल यू ऑल. तो आप कल मेरे साथ 1:30 बजे जुड़ सकते हैं. Don't forget, okay? और अभी हमारे साथ कौन जुड़ रहा है, आइए जरा इनसे भी बात कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. ओके, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन है भाई?
2: अमायरा.
0: हाउ आर यू?
2: I'm good.
0: I'm so happy to see you. I mean to hear you. Oh my God, ये हाँ हाँ जो आया है. समायरा, कैसी हो? पहले तो ये बता दो.
2: मैं ठीक हूँ.
0: आप ठीक हो? ठीक हो या बहुत अच्छी हो?
2: बहुत.
0: माशाल्लाह, that's so nice. समायरा, ईद कैसे मनाई?
2: बहुत मजे.
0: हाँ, तुम मजे में क्या क्या कर लिया ये तो बता दो.
2: पहले दिन में तो मुझे खूब सारे
0: चॉकलेट. सब क्या हुआ?
2: खूब सारे चॉकलेट्स
0: मिली. हाउ स्वीट इज दैट. तो ये जो खूब सारी चॉकलेट्स थी, आपने अकेले खाई?
2: नहीं.
0: हाँ, फिर क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ वहाँ कि नहीं?
2: मम्मा, पापा और भाई को दिया.
0: ओह, सो स्वीट इज दैट. और मेरे लिए कुछ रखी? वो भी खा ली?
2: बची हुई है थोड़ी
0: थोड़ी. बची हुई है? ठीक है ठीक है. तो थोड़ी थोड़ी बची हुई है ना, वो थोड़ी थोड़ी आप मेरे नाम से खा लेना, ओके? हाँ, क्या करोगी?
2: सबके रैपर में ए लिख
0: दूंगी. सबके रैपर? अरे वाह भाई साहब, दैट्स सो नाइस. ठीक है, सबके रैपर में ए लिख देना. हाँ, आ हाँ, क्या बात है. थैंक यू सो मच अमायरा.
2: सेकंड रैपर और मेरे नए कॉन्सेप्ट का लेटर भी एम है।
0: ओहो, ये तो सुपर हो गया।
2: मतलब एम के बाद
0: अब
2: फिर से ए है।
0: ओहो, तो चलो अपन हाई फाई कर लेते हैं, ए एम के लिए हाई फाई कर लेते हैं, ठीक है? डिजिटल हाई फाई हवा में। अच्छा अच्छा मायरा, ये तो बता दो, ईद में आपको चॉकलेट्स मिली और कोई गिफ्ट मिला?
2: हाँ, जब वो एक पैकेट मिला था वो गिफ्ट से।
0: हाँ,
2: गिफ्ट भरा।
0: हम्म,
2: उसमें था बलदना का स्ट्रॉबेरी मिल्क।
0: हम्म,
2: और
0: चिप्स। हम्म,
2: और बबल।
0: ओहो, मतलब बहुत सारी चीजें मिली है आपको, मतलब स्ट्रॉबेरी मिल्क मिला, कुछ स्नैक्स मिले, लाइक गुड वन। अच्छा खाते पीते आपका ईद गई?
2: हाँ,
0: अरे माशाल्लाह, ईद ही मिली है आपको। अच्छा, वेरी गुड। बता सकती हो कितनी मिली? हेलो, यस अमायरा, ईदी कितनी मिली है? चलो फिर बढ़िया है, आपको ईदी भी मिली। टचवुड टचवुड। हाँ हाँ, वेरी नाइस। सो फुल ऑन आपने ना हाँ करते हुए सब कुछ कर लिया। हाँ, अच्छा ये तो बताओ हमारा, आज हम बात कर रहे हैं कि जब बोरियत होती है ना कभी कभी लाइफ में, तो क्या करना चाहिए? तो बच्चे क्या करते हैं वो अपना बता रहे हैं हमको, आप बताओ आप क्या करती हैं? अभी तो हमें मोहम्मद ने काफ़ी सारी सजेशन भी दी कि देखो अमिता, अगर आप यू नो बोर होती हो तो आप ये सारी चीज़ें करो, तो फिर अमायरा क्या करती हैं जब बोर होती हैं? तो
2: थर्ड ईद में ना हम कटारा गए थे।
0: हाँ हाँ,
2: तो मुझे ना एक गिफ्ट मिला था वो शेक से।
0: अच्छा,
2: वो फिर उसमें गिफ्ट खोला उसका रैपर, वहाँ ही खोल दिया था कटारा में।
0: हाँ,
2: पता चला कि मेरा एक छोटू सा बेबी है।
0: ओह, छोटू सा बेबी आपका।
2: हाँ।
0: अच्छा, तो वो बेबी कैसे दिखता है?
2: बहुत क्यूट।
0: हाउ स्वीट इज दैट। अच्छा मायरा, ये तो बता दो, आपने गिफ्ट भी बता दिया हमको, ईद कैसे मनाई ये भी बता दिया।
2: हाँ हाँ, अनायरा है।
0: अमायरा के बाद अनायरा, माशाल्लाह, दैट्स सो स्वीट। अच्छा मायरा, ये तो बताओ, कभी बोर्डम होती है? कभी बोर होते हो?
2: हाँ।
0: होते हो तो क्या करते हो? ड्राइंग बनाते हो, मम्मा से बात करते हो, क्या करते हो?
2: पहले मैं अपने स्कूटर में बैठी रहती हूँ।
0: स्कूटर में बैठे
2: तो
0: रहती
2: हूँ। हाँ, वो कलरिंग का वो देख के।
0: हाँ,
2: वो ड्राइंग बुक लेकर।
0: हाँ जी,
2: पेंसिल इरेजर तो साथ में रहता है।
0: हाँ जी,
2: उससे ड्रॉ करके कलर करके मम्मा को दिखाने चली जाती किचन में।
0: हाउ स्वीट इज दैट। तब ज्यादातर क्या ड्रॉ करते हो?
2: सीनरी।
0: क्या?
2: सीनरी।
0: सीनरी, ओहो, मतलब सीनरी जिसमें समुंदर होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं, कुछ इस तरह की चीजें।
2: क्या करती हूँ?
0: हाँ,
2: पहले वो हाउस बना देती हूँ।
0: हाँ,
2: फिर उसके बाद में थोड़ा सा साइड में ट्री बना।
0: हाँ,
2: उसके अंदर मैंगो।
0: हम्म, और
2: ऊपर एक सन और क्लाउड और टू बर्ड।
0: क्या बात है भाई, मतलब पूरी, मतलब पूरा का पूरा सीन ही है भाई, बहुत सुंदर। वेरी गुड वेरी गुड। कभी हमको ये पिक्चर्स भेजना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? और हाँ, मुझे एकदम से याद आया मायरा, लास्ट टाइम आप बात कर रहे थे ना कि आपका कोई चैनल भी है, तो मैंने कहा था कि आप व्हाट्सएप पे शेयर करना। सो अगर अभी कॉल के बाद आप शेयर कर सकते हो तो शेयर करना, क्योंकि हमें मैसेजेस पे बहुत लोगों ने पूछा था कि मायरा का जो ये चैनल है हमसे भी शेयर करें, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करना, ठीक है?
2: हाँ,
0: सफा को भेज दे। सफा एक्चुअली छुट्टी में है ना, तो मैं अभी यहाँ पर शो कर रही हूँ, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है अगर आप भेज सकें, 666-22-107 नंबर है ना। यस, इस पर आप अगर अभी भेज दें, सफा को भी भेज दें और मुझको भी भेज दें, तो यहाँ पर हम फिर बाकी से भी शेयर कर लेंगे, ठीक है?
2: हाँ,

0: ओके डन है, तो चलो इसी बात पे पजल गेम खेल लें।
1: जी
0: आ जाओ फिर। क्या
1: उसमें क्या करना?
0: उसमें ये होगा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको ऑप्शंस दूंगी और फिर आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है।
1: ओके
0: हाँ, रिडल्स पजल रिडल्स एक ही होते हैं बाबा।
1: तुम रिडल्स पूछेंगी और ऑप्शंस के साथ?
0: यस यस, ऑप्शंस के साथ रिडल्स पूछूंगी। ठीक है ओके, तो फिर हम आपको 1 मिनट का टाइम भी देंगे। सो अब हम शुरू करते हैं आपके साथ अब। ओके टेल मी, व्हाट गोज अप बट नेवर कम्स बैक डाउन। आपके ऑप्शंस हैं एयरप्लेन, योर एज, रॉकेट। ओके सेकंड क्वेश्चन, व्हाट गेट्स वेटर द मोर इट ड्राइज। आपके ऑप्शंस हैं स्पॉन्ज, टॉवल, हेयर। ओके टाइम लिया आपने। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट बिलोंग्स टू यू बट एवरीवन एल्स यूजेस इट मोर देन यू डू। शूज, टॉयज, योर नेम। ऑल राइट, वेरी गुड। सो आपने अमायरा 3 का स्कोर किया है। मुझे लगता है आप 4 का भी कर सकते थे, थोड़ा सा आप रुक के सोच के आपने जवाब दिया, उस दौरान अगर आप कर लेते तो 4 भी हो जाता। कोई नहीं, यू डिड अ गुड जॉब अमायरा। सो बिफोर यू लीव, कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ ठीक है, आप मुझसे एक्चुअली शेयर कर लो क्योंकि वो इजी होगा मेरे लिए, और आप लिंक शेयर करोगे ना तो जब मुझे कोई पूछेगा ना कि अमायरा का चैनल कौन सा है तो मैं वो लिंक शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा कर लोगे आप? ठीक है, हाँ बता दो। ठीक है, सो अनायरा से अनायरू, और हमारे साथ है अमायरा। अमायरा कल से हम नया शो लेकर आ रहे हैं एस्केप रूम 1:30 बजे से, ठीक है? सो आप भी हमसे जुड़ सकते हो तो जरूर जुड़ना। ओके
1: तो मैं मम्मा को कह रही थी, हाँ उसमें तो मैं प्रो हूँ।
0: उसमें क्या?
1: उसमें
0: आप प्रो। ओहो भाई साहब, आप प्रो हैं एस्केप रूम में। ओके डन है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे? ठीक है, हाँ बोले बोले। देखो जरा, भागने के लिए प्रो है तो ठीक है, फिर अभी जो सिचुएशंस दूंगी ना मैं कल, उसमें आपको भागना ही है उस सिचुएशन से दूर। सो लेट्स सी कि आप कैसा गेम खेलोगे। आप हमें फटाफट मैसेज करना उसमें जैसे मैं सवाल पूछूंगी, ठीक है? ओके तो चलो अभी फिर अमायरा, अल्लाह हाफिज, अपना दिन अच्छे से बिताना। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये थी हमारी प्यारी सी अमायरा, जिन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो प्रो हूँ भागने में। हाँ तो एस्केप रूम के कोई भी सवाल पूछ लो, मैं बस चुटकियों में सॉल्व करूंगी, ठीक है? सो ये सब भी हम करेंगे कल। फिलहाल अभी हमारे साथ कोई और भी जुड़ रहा है, आइए जरा इनसे बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाय हाय, इतनी क्यूट सी आवाज, कौन जुड़ गया हमारे साथ?
2: नहयान।
0: फिर से कहें डियर।
2: नहयान
0: जुड़े हैं। ओके नहयान जी, आप बताएं फिर क्या क्या एज है डियर आपकी? नहयान की एज क्या है, एज क्या है आपकी?
2: एज
0: हाँ जी
2: 10
0: है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो नहयान फिर कैसे कैसे गुजरा आपका आज का दिन, ईद कैसे गुजरी, थोड़ा बताएं हमको।
2: गुजरी थी और आज का दिन भी बस सही था।
0: बस सही था, क्यों क्या हुआ? अच्छा नहीं गया, बस सही क्यों गया?
2: हमने बहुत ज्यादा काम किया था आज।
0: ओ तो क्या क्या काम कर लिया, लाइक पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कुछ और?
2: हमने लिटरेसी में 180 वर्ड्स लिखे थे स्टोरी के लिए।
0: हाँ
2: और उर्दू लेसन जब हमारा होया था, हमने बहुत ज्यादा सेंटेंसेस लिखे थे और फिर फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल किया था.
0: तो काफी काफी मेहनत करी है आज आपने. सो चलो ठीक है, ये मेहनत थोड़ी करते रहना चाहिए, है कि नहीं? और अच्छा मुझे ये बताएं, हाँ क्या कह रहे हैं?
2: हमने न्यूमेरेसी में यूनिट टेस्ट किया था.
0: अच्छा यूनिट टेस्ट भी हुआ था, तो किस किस तरह गुजरा आपका यूनिट टेस्ट? वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा ये बताएं कि अभी कुछ दिनों के बाद मतलब जून एंड में आपके समर वेकेशन स्टार्ट होंगे, राइट?
2: जी.
0: तो अभी इस दौरान कोई एग्जाम्स वगैरह है?
2: जी.
0: अच्छा तो कब से लाइक एग्जाम्स है आपके?
2: मुझे नहीं पता.
0: अच्छा अभी टाइम टेबल नहीं आया, चले कोई नहीं. अच्छा ये बता दे, हम लोग आज बातें कर रहे हैं कि भाई अगर थोड़ा सा बोरियत होता है ना तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो आप जब कभी बोर होते हो तो आप क्या करते हो?
2: मैं बस जाता हूँ फिर क्रिकेट बॉल से खेल लेता हूँ.
0: क्रिकेट बॉल से खेल लेते हैं, मतलब आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, कैसे करते हैं?
2: अपने अपने भाई और पापा के साथ.
0: हाउ स्वीट इज दैट. तो आपके भाई छोटे हैं बड़े हैं आपसे?
2: मुझसे बड़े हैं.
0: वेरी गुड वेरी गुड. सो क्रिकेट आपका बोर्डम से बाहर निकलने का तरीका है, राइट?
2: जी.
0: अच्छा अगर कभी कभी सपोज क्रिकेट नहीं खेल पा रहे तब फिर क्या करते हैं आप?
2: टीवी.
0: हाय टीवी. सो टीवी में आपका फेवरेट क्या है, लाइक कार्टून्स वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं, या क्या पसंद है आपको?
2: मैं देखता हूँ एक वो चैनल है यूट्यूब का नाम.
0: हाँ हाँ, तो उसकी वीडियोस आप देखते हैं. ओके ओके नॉट बैड. अच्छा ये तो बता दीजिए, आपने भी सारी टिप्स हमको दे दी, देखो हम क्रिकेट भी खेल लेते हैं, कुछ टीवी भी देख लेते हैं. अच्छा कोई टिप आप मुझे दोगे? जैसे कभी कभी ना मुझे बोरियत हो जाती है, अभी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि आप कुछ एक्टिविटीज़ कर लें, कुछ ड्राइंग कर लें. आप मुझे बताओ अमिता को क्या करना चाहिए अगर वो बोर हो रही है, कोई सजेशन देना चाहते हो? कुछ भी जो आपको लगता है मुझे कर लेना चाहिए. फिजिकल एक्टिविटी तो आपका ब्रेन सही हो जाता है. चले मैंने ना अपनी लिस्ट में ये लिख लिया है, एंड डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई दिस. ओके ओके थैंक यू सो मच. अच्छा ये बताओ हम यहाँ पर पजल्स खेल रहे हैं, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट?
2: Yes.
0: Okay, so 1 minute का टाइम हम सबको दे रहे हैं, आपको भी 1 minute का टाइम मिलेगा, and let's see आप कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं. All right?
2: Okay.
0: Okay, dear, so your time starts now. Okay, tell me, what has many teeth but cannot bite anything? Your options are shark, comb, zipper.
2: Shark, comb, या फिर zipper.
0: Yes.
2: Zipper.
0: Do you think zipper?
2: Yes.
0: It has many teeth but cannot bite anything. Okay, okay. Right answer. Now tell me, what has a thumb and 4 fingers but is not alive? Your options are skeleton, glove and robot.
2: Can you say the third one again?
0: Okay. Robot.
2: Robot?
0: Mm-hmm. What has a thumb and 4 fingers but is not alive? Skeleton, a glove, a robot. Come on.
2: Glove?
0: Yes, exactly. You're right. Okay. The last question.
2: मुझे लगा आप कह रही थी globe.
0: Ah, globe. No, it's a glove. Okay. Now, I have a neck but no head. And 2 arms, but no hands. What am I? Your options? Bottle, shirt, sweater.
2: Shirt.
0: Oh, bhai sahab. Ekdam shirt pe aake jo itne serious note pe bola hai na aapne. Maza hi aa gaya. So, 3 ka score kiya hai aapne. Congratulations. Okay, dear. Before you leave, koi message dena chahenge? हाँ जी बोले ना.
2: Never give up.
0: Very nice. ये तो सबसे thoughtful message है. तो आप भी ऐसे ही करते हैं जब कभी life में कहीं कोई situation आती है तो आप give up नहीं करते?
2: नहीं.
0: You always try, right?
2: Yes.
0: दैट्स सो नाइस एंड सो काइंड ऑफ यू जो आपने इतने प्यारे मैसेज दिया, अमिता को सजेशन दी. एंड यस, कल से हम न्यू शो लेकर आ रहे हैं एस्केप रूम, सो डू पार्टिसिपेट इन दैट. ओके
2: ओके
0: ऑल राइट डियर, हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ. So, बड़े ही अडोरेबल हमारे साथ लिसनर्स जुड़ते जा रहे हैं और सजेशंस बड़े क्यूट क्यूट हैं इनके कि भाई देखो, अगर बोर्डम हो रहा है ना तो या तो ड्राइंग करो या कोई एक्टिविटीज़ करो, चाहे इंडोर्स हो चाहे आउटडोर्स हो. वैसे आई नो कि टेम्परेचर अभी 40 पार हो रहा है, बट अगर आउटडोर भी जा रहे हो देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखो. और टाइम ज़रा ज़रूर चेक करो कि भाई अगर बाहर जा रहे हैं तो वो टाइम सही है कि नहीं. सो यस बच्चा पार्टी, आई सिंपली से कि आज हमारे द सुपर के शो का आखिरी एपिसोड है, बट डजंट मीन कि ये शो खत्म हो रहा है. इसका नेक्स्ट सीजन जब आएगा डेफिनेटली यू कैन एंजॉय द शो अगेन. कल से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एडवेंचरस शो, दैट इज एस्केप रूम, विच इज अ गेम शो जहां पर आपको कुछ सिचुएशन दिए जाएंगे, कुछ क्लूज दिए जाएंगे, आपको सिचुएशन को सॉल्व करना है. और 1:30 बजे से ये शो होगा तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. फिलहाल के लिए हमारा नंबर याद रखें 666-222-107, 666-222-107. इस पर आप मैसेज करें, कॉल करने के लिए 443-443-77 पर आप कॉल कर सकते हैं. और कुछ लिसनर्स हमें कॉल कर रहे हैं तो हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप फिर से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को कंटिन्यू कर सकते हैं. अच्छा, कोई और जुड़ गया, मुझे लगता है आज बच्चा पार्टी मुझे ब्रेक नहीं लेने देंगी, तो कोई नहीं, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम, हाउ आर यू मिता?
0: आई एम परफेक्टली फाइन, हु इज विद मी?
3: अहमद.
0: मुझे लग ही रहा था अहमद, आई एम सो ग्लैड कि आपका फोन आया. कैसे हो आप?
3: Alhamdulillah, it was nice. Alhamdulillah, it was nice. Four days was great, but the fourth day we didn't went outside, which was yesterday. So we went to Katara, and then after that we went to a mall. Then in the last day we went only to a mall. Then that's it. We were planning to go to a park, but then we didn't went because the next day was my father's duty. So
0: But that's a good one. You actually almost you enjoyed the Eid every place you went, huh?
3: Yes.
0: Okay. So tell me, Ahmed, like what was the best moment? आपका ये पूरी ईद में ना जो आपको बहुत अच्छा लगा.
3: It was maybe the second day, because the second day हमने fireworks भी वहाँ enjoy किया था कतारा में, साथ में कैसे भी था. और बस third day मुझे यानी बहुत अनोखा लग गया था कि मुझे थोड़ा अजीब लग गया था ना एंड में कि वो सारा दर्शन जो था वो खत्म हो गया. पहले दिन में मुझे अच्छा लगा था कि वो क्या साथ में बहुत पहले दिन की वो आकवत है ना जिसमें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए. But लेकिन the most I liked was also the second one. The most fun was the second day.
0: Wow, that's so because so nice.
3: Yes, because वो ऐसा लगता है ना, it acts like a weekend.
0: Yeah.
3: कि fireworks भी हो रहा है, साथ में बहुत rush हो रहा है, साथ में mall भी में भी rush है. हम बहुत time से भी वहाँ mall में हैं, वो पास में है, तो इसलिए.
0: Wow, Ahmed, I'm really feeling like कि मुझे ना एक पिक्चर सामने दिख रही है कि ऐसा हुआ, सेकंड डे हमने ये किया. Very well said. So Ahmed, खाने पीने में क्या enjoy किया ये बताओ. मतलब अभी पूरी ईद में जब मैं शो कर रही थी ना, so हर किसी से मैं सवाल पूछ रही थी, so everybody was telling that we loved kaleji fry, we loved biryani. So what was your favorite dish?
3: मैंने ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद आई एट लाइक सुबह में हमने दोपहर में तो किसा तो मंगवा लिया था, बस फिर बाद में हमने फिर क्या कहते फिर हमने कई इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी गए थे. देन ऑन द सेकंड डे हमने भी फास्ट फूड खा लिया था, जैसे लाइक सम चिकन या फिर ऐसे. और एंड देन ऑन द थर्ड डे हम फिर भी बाहर का खाना खा लेते थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह मेरे खाने की आजादी के लिए वो मटन की अब मैं अब उसमें वापस आ गया हूँ.
0: मुझे बड़ा मजा आया द मोमेंट यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. सो आई जस्ट विश कि आपको इस तरह की ईद हमेशा मिले एंड यू रियली हैव अ वंडरफुल ईद इवन अपकमिंग ईद है ना. सो अहमद आई वॉन्ट टू नो कि अभी मैं बच्चों से पूछ रही हूँ कि बोर्डम, क्योंकि यू नो बोर्डम ऐसी चीज है जो लंबी छुट्टियों में आता है एंड ऑब्वियसली समर वेकेशंस आर क्लोज एंड जब ये चीज होती है लाइक बोरियत होती है, सो व्हाट वुड यू रेकन क्या करना चाहिए और व्हाट डू यू डू?
3: बोर्डम का मतलब होता है कि यानी घर में रहना बहुत टाइम के लिए. यू देख लो ना कि मोबाइल में आपका स्क्रीन है. तो इवन मेरी मम्मा भी कहती हैं कि पूरा दिन में बोर होता हूँ तो आप कम से कम बाहर खेलो, घूमा करो और सब कुछ ऐसे वैसे. तो इसलिए तो ये आपका बोर्डम जो होता है ना, दिस कैन क्योर बाय गोइंग आउटसाइड दूसरे मनाने के साथ. और ये यानी अगर प्ले एरिया जाना है या फिर कुछ स्विंग लेने या फिर कुछ भी, अगर बारिश का भी इवन होता है ना तो आप यू कैन इवन एक्सपीरियंस द रेन आउटसाइड. आप बाहर चले दो, इवन जब भी बारिश होती है ना तो मैं पक्का बाहर चले ही जाता हूँ. तो इसलिए सो दिस इज वन वे टू क्योर योर बोर्डम. लाइक बट सेकंड, इफ यू डोंट वांट टू वर्क देन आप अपने बच्चों, सॉरी अगर आप अपने भाई बहनों को अगर आपके पास भाई बहन है, जैसे मेरा भाई है छोटा है, वो भी मैं उसके साथ खेलता हूँ और आपने भी खेलना है ना तो आप खेल सकते हैं.
0: अच्छा ठीक है, मैं सारी चीजें ट्राई करूंगी है ना. एंड बारिश का आपने जिक्र किया, मैं दो मिनट के लिए ना खो गई एकदम से, मुझे लगा हाय बारिश कब होगी. जब कतर में बारिश होती है. हाँ टेल मी टेल मी.
3: आई जस्ट मुझे भी पता चला यू हैव अ न्यू प्रोग्राम स्टार्टिंग टुमारो.
0: सॉरी व्हाट यू सेइंग? कल से नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है. हम एस्केप रूम ये शो लेकर आ रहे हैं, सो वहाँ पर वील गिव सम सिचुएशंस एंड क्लूज.
3: या तो कोई प्राइजेस होंगे यानी, क्योंकि पिछले साल आपने किया था, बट इस साल क्या है?
0: दिस आई विल टेल यू टुमारो. This you'll come to know tomorrow because I will also get to know something very कहते हैं ना कि ये secret है.
3: Secret हाँ, mystery है.
0: Yes, but yes, show is there and shout outs will be there and let's see, क्योंकि it's totally adventurous. कुछ ना कुछ situation होंगी, clues होंगे and simple clues होंगे so that most of the people can participate and let's see how it goes, है ना? So definitely Ahmed, अगर आप free होंगे do listen and do connect with us. क्या कहते हैं?
3: नहीं नहीं, I am free 1:30 to 2:30.
0: माशाल्लाह, that's fantastic Ahmed. अच्छा चलो Ahmed, इसी बात पे अपन एक छोटा सा puzzle game खेल लें.
3: Okay.
0: Okay, so we'll start your time now. Okay, tell me, which of these animals is the only one that cannot jump? Okay, elephant, rhino, hippo.
3: Elephant.
0: Okay, it's right. Second question, how many hearts does an octopus have? 1, 2, 3.
3: Hearts.
0: Yes, hearts.
3: Okay,
0: it's right. Then third question, which bird has eyes that are larger than its brain? Your options, owl, ostrich, eagle.
3: The first one.
0: Okay, think again. Which bird has eyes that are larger than its entire brain? Owl, ostrich, eagle.
3: Owl?
0: No. Come on.
3: Okay, no, ostrich.
0: Okay, it's ostrich. Yeah, second option is completely right. Absolutely. So, Ahmed, that's the 3 score. And thank you so much. You really like amazing. आपसे बात करके बड़ा मजा आता है हमेशा, कुछ मजे की बातें करते हो आप. एंड ऐसा लगता है ना जब आप बातें करते हो तो पूरा आंखों के सामने ना पिक्चर दिखने लगती है. So that's a compliment for you. सहमत, द सुपर किस शो का ये जो सीजन है ये खत्म हो रहा है, सो बिफोर यू लीव व्हाट वुड यू लाइक टू से?
3: आजकल आज सब सारे बच्चे कह रहे हैं नेवर गिव अप, सो प्लीज नेवर गिव अप. देखो ना अल्हम्दुलिल्लाह अनदर सीजन विल कम. दूसरा सीजन कब आएगा?
0: आएगा आएगा इंशाल्लाह, जल्द आएगा, सेम टाइम पर ही आएगा जब ये शो चल रहा था.
3: जो लोग बच्चे जो रो रहे हैं प्लीज ना रोइएगा, क्योंकि कल कुछ और बड़ा आ रहा है. कल से कुछ बड़ा आने वाला है, समर आके लिए आ रहा है. कल से समर हमारा सेंटर शुरू हो रहा है, तो प्लीज
0: That's really nice, Ahmed. मतलब ये आपने कह दिया कि देखो हमारी हमारा ख्याल रखा जा रहा है तो रेडियो हमारा ख्याल रखता है, तो प्लीज ऐसे ना करें. That's very cool, Ahmed. It's always lovely talking to you. Have a wonderful day ahead. Bye bye. Allah Hafiz. तो ये थे हमारे साथ अहमद, जो कि बड़े मज़े की बातें कह गए. एंड आई रियली लव टॉकिंग टू हिम एंड लव टॉकिंग टू एवरीबॉडी. तो सारे बच्चा पार्टी, हमारे सारे सुपर किड्स, आपका ये सुपर किड्स का जो टैग है ना कोई नहीं छीन सकता. एंड फॉर श्योर इसका सेकेंड सीजन, आई मीन इट वॉज अ सेकेंड सीजन, आई गेस थर्ड सीजन भी आएगा. तो आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, है ना, और FM 107 सुनते रहें, क्योंकि हम हर किसी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते ही हैं. और कल 1:30 बजे You'll have another show, that is Escape Room, so उस पर भी आप enjoy कर सकते हैं. फिलहाल अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम वापस आएंगे एंड डेफिनेटली आपसे बातें कर सकते हैं. और आज का बड़ा सिंपल सवाल है बच्चा पार्टी की, जब आप बोर होते हो तो आप क्या करते हो, कैसे अपने बोरियत को दूर करते हो? सिर्फ आई एम आस्किंग दिस क्योंकि हो सकता है आपकी बातें सुनकर, आपके मैसेजेस देखकर, आपके सजेशन सुनकर जिसे कोई आइडिया नहीं है उसे भी कुछ आइडिया आ जाए और वो भी अपने बोर्डम को दूर कर सके. इट्स सिंपल एज दैट. तो आप इसका जवाब दे सकते हैं 6622107 पर, 6622107, या आप हमें कॉल करें 4434377 पर. एंड राइट नाउ अरिजीत सिंह की एंट्री हो गई है, सो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग. डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल

0: wake up. Summer mornings पर you need to wake up. सुनिए हर संडे से थर्सडे सुबह 6 बजे से समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया और महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पे दिल से देसी.
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का. आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान. बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है. आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं
2: द सुपर किड शो।

So yes, हमारे सुपर किड्स, क्या हाल चाल है? हाँ जी, मैं हूँ आपकी एफ और अमिता. इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 2:29 एंड रियली टेम्परेचर्स 40 पार चला गया है. और सच में ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाय हाय, एक हल्की सी छोटी सी नींद आ जाए, छोटा नैप ले लिया जाए तो क्या हाल है. वैसे एक बड़ा मज़े का फन फैक्ट है, मुझे एकदम से याद आया कि जैसे हम जानते हैं ना कि पोलार बेयर वगैरह जो विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, एकदम हाइबरनेशन जिसको कहते हैं, लंबी स्लीप, ऐसे ही कुछ एनिमल्स ना समर स्लीप्स पर भी चाहते हैं और छोटे छोटे कभी कभी नैप्स भी ले लेते हैं. पता है कौन? जैसे ये कि हमारा डेजर्ट टॉर्टोइस हुआ, ठीक है, कुछ फ्रॉग्स होते हैं, कुछ क्रोकोडाइल्स होते हैं, ताकि वो थोड़ा सा अपने बॉडी का पानी बचा सकें और अपने आप को थोड़ा कूल रख सकें. तो ये बताओ बच्चा पार्टी, आप में से कितने लोग ऐसी छोटी छोटी समर नैप्स लेते हो या समर स्लीप पसंद करते हो? डेफिनेटली यू कैन शेयर विद मी. 666-22107 इज आर नंबर, 666-22107 इस पर मैसेज कर सकते हो या फोन में ला लो भाई, 443-443-77 इज आर कॉल इन नंबर. अच्छा, आज हम बातें कर रहे थे कि बोर्डम है भाई. बोर्डम ना कभी भी हो जाता है, और जब ये होता है तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि करना क्या है. एंड दैट्स वाई मैंने आज हमारे सुपर किड से कहा कि आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपका क्या इजी वे आउट है बोर्डम को दूर करने का, या

0: स्क्रेपर बना लेता हूँ. अच्छा स्काई स्क्रेपर, वो पर कैसे बनाते हो उमर, थोड़ा सा और बताते तो बड़ा मज़ा आता. अच्छा यहाँ पर खालिद का मैसेज है कि अमिता मुझे ना फुटबॉल बहुत पसंद है, तो मैंने अपने बाबा से कहा है कि एक रूम में ना थोड़ा सा एरिया मुझे दे दो फुटबॉल का, अगर मैं आउटडोर्स नहीं जा सकता हूँ तो मैं घर में ही थोड़ा सा ना फुटबॉल प्रैक्टिस कर लेता हूँ. खालिद नॉट बैड. मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आई कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे आज सारे बच्चा पार्टी ने कहा नेवर गिव अप नेवर गिव अप नेवर गिव अप, इट्स लाइक ये जब वो सीन होता है ना कि सिचुएशन बड़ी चेंज हो गई है, गर्मी हो गई है, समर्स आ गए हैं, और फिर उसमें अरे क्या करें, अब बाहर जाए नहीं जाए. सो सिंपली खालिद सिंपली सेट कि भाई मेरे को एक रूम का कोना दे दो, वहाँ मैं अपनी फुटबॉल ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ. मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहेंगी तो बंदा बोर नहीं होगा. गुड जॉब. अच्छा यहाँ पर नौरा मुझे लिखती हैं कि अमिता जब मैं बोर होती हूँ आई मेक श्योर कि मैं अपनी जो बड़े घर के उनको मैसेजेस करूँ, तो मैसेजेस की जगह मैं उनके लिए ना एक लेटर लिखती हूँ. दैट्स नाइस. ओके आगे क्या लिखा है, आई राइट अ लेटर टू माई ग्रैंड मदर एंड और मैं पिक्चर्स बनाती हूँ, मतलब जो भी मुझे ड्राइंग आती है और लिखती हैं ब्रैकेट में फ्लावर्स बर्ड्स ऐसे इस तरह से. नौरा दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू इंडीड. यू नो कभी किसी के लिए सबसे बड़ा तोहफा कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं होती, कभी कभी फीलिंग्स होती हैं, और फीलिंग्स जब आपके हाथों से निकल कर शब्दों तक आती हैं दैट्स रियली नाइस. सो नौरा ये ट्राई करती हैं कि अपनी ग्रैंड माँ को वो लेटर्स लिखें. That's very nice. तो बोर्डम हो या ना हो, मैं कहूँ कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ना हमें लेटर्स ज़रूर लिखने चाहिए, एंड इफ़ वी आर गुड एट ड्राइंग सो हमें ग्रीटिंग कार्ड्स भी देने चाहिए. बट क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी वैल्यू आज भी सारे मटीरियलिस्टिक तोहफों से भी ज़्यादा है. यस आयशा मुझे लिखती है एंड शी इज़ 5 years old, कहती है कि मैं अपनी जब मैं बोर होती हूँ, ओके बोर होने के बाद का लिखा है कि मैं अपनी मम की हाई हील्स पहन कर अपने टेडी बेयर के सामने ना फैशन शो करती हूँ. ये बच्चा बड़ा फैशनिस्टा है. जैसे मुझे भी याद है कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते थे जब छोटे थे ना, तो मम्मी की चुनरी होती थी या उनकी साड़ी होती थी, तो कभी अगर बेड पे रखी है तो हम उसको ऐसे अपने ऊपर डाल के ना खेलते थे कूदते थे, और कभी कभी बड़ा परफॉर्मेंस दे रहे होते थे, और हमारी मम्मा भी देख के सोचती थी मम्मी मतलब चल क्या रहा है, बच्चे कर क्या रहे हैं. तो ये होता था हमारे यहाँ. वेल यहाँ पर जायद का मैसेज है एंड इज सेइंग कि अमिता मुझे मैप्स ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, सो आई ट्राई कि मैं कतर का मैप हो या फिर किसी कंट्री का मैप हो बिना देखे ड्रॉ करता हूँ. एंड बिना देखे एज इन जो कि हम रेफरेंस के लिए हमेशा देख लेते हैं ना अपनी बुक्स वगैरह, वो उसको बिना देखे ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई डू जब मैं बोर हो रहा होता हूँ. जैद दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम पास. मुझे लगता है कि हर बच्चा अपने एक दूसरे से डिफरेंट है, और जो जिसमें भी इंटरेस्टेड है उसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे पहली चीज़ बोर्डम जैसी चीज़ नहीं रहती, सेकेंड आपकी स्किल्स और भी ज़्यादा बढ़ते जाती हैं. इनफैक्ट एक साइंटिफिक टर्म है, नॉट अ टर्म एक्चुअली एक वर्ड है, मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बोर्डम जब भी हमारे माइंड में आता है ना, एक क्लिक होता है कि अरे मैं बोर हो रहा हूँ या बोर हो रही हूँ, वो इंडिकेशन होता है कि आप अपना जो फोकस है वो किसी और चीज़ में ना शिफ्ट कर लें, क्योंकि उस टाइम पर आपका ब्रेन 4 गुना ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प कर सकता है, 4 गुना ज़्यादा चीज़ों पर फोकस कर सकता है. इसी बात पे कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, आइए ज़रा इनसे भी बात कर लें. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये किड्स शो चल रहा है, सो डोंट माइंड, अभी कल से बड़ों के लिए भी शो होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हैं. ओके ऑलराइट. मैंने कहा कि दिस इज अ किड्स शो, तो यहाँ पर सिर्फ अभी बच्चों की ही बातें हो पाएंगी. ओके
1: अच्छा
0: ओके जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू. हाँ जी, तो अभी हमारे साथ बड़े भी जुड़ना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि कल 1:30 बजे से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ. हम आपके लिए एस्केप रूम शो लेकर आ रहे हैं जिसमें बच्चे बड़े सब आ सकते हैं, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है. यू बच्चों के शो में अभी अगर किसी बड़े का कॉल आएगा तो थोड़ा सा हम बात नहीं कर पाएंगे, तो माजरत चाहते हैं. ठीक है, चलिए इसी बात पर हम मैसेजेस की तरफ रुख करते हैं. हमें रयान का मैसेज है जो कि कहते हैं कि मैं अपने घर घर पे ही जो घर के जो चादर होते हैं उससे घर बनाता हूँ. ओके, कैसे बनाते हैं लाइक कुछ बताते हैं और बोलते हैं, फिर हम भाई बहन उसमें इंजॉय कर रहे होते हैं. ओके, आए जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ रेयान, आप घर एज इन टेंट बनाते हैं घर पे और उसके बाद आप भाई बहन इंजॉय करते हैं. वैसे ये हमने बहुत किया हुआ है. आई डोंट नो आप में से कितने बच्चे ये

जानते हैं खटिया, खटिया डू यू अंडरस्टैंड, इट्स लाइक अ बेड ओनली, और ये हमारी साइड बड़ा चलता है, तो हम इसे उल्टा करके इस पे चादर वगैरह फंसा के टेंट बनाते थे और हम तीन भाई बहन उसमें जाके इंजॉय करते थे. तो ये हमारा समर वेकेशन का जो बो टाइम होता था ना, उसको बोर्डम को पास करने का टाइम था. ऑलराइट, हया 10 ईयर्स की है और कहती है कि अमिता जब दोस्तों के साथ खेलना होता है तब वो अलग बात है, लेकिन हम भाई बहनों ने जब भी हम बोर होते हैं हम एक सीक्रेट लैंग्वेज बनाते हैं. हाय हाय, ये बड़ा क्रिएटिव सा लग रहा है. तो कहती है सीक्रेट लैंग्वेज बनाते हैं और उस पर फिर हम लोग बात करते हैं, हमको बहुत मज़ा आता है. वेरी गुड हया, ये तो कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव हो गया. हाँ, बल यहाँ पर जेनी का मैसेज है, वो कहती है कि अमिता मेरा फेवरेट बोर्डम को पास करने का टाइम जब होता है तो मैं क्या करती हूँ, पेपर के एयरप्लेन्स बनाती हूँ. पेपर एयरप्लेन्स, वाओ क्या कह दिया आपने, इट्स रियली नॉस्टैल्जिक फॉर मी. सो पेपर एयरप्लेन्स बनाती हैं और उड़ाती हैं. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सिर्फ उड़ाती हैं, घर के भाई बहनों को और घर के लोगों को परेशान करती है, क्योंकि कई बार ना ये होता है कि छोटे बच्चे ऐसे प्लेन बना के ना एक दूसरे को एक दूसरे पे प्लेन उड़ा रहे होते, परेशान कर रहे होते. सो व्हाट यू डू जेनी. वेल, यहाँ पर हमारे ये बड़े मज़े मज़े के मैसेजेस आए हुए हैं. एंड बच्चा पार्टी जो भी हमें सुन रहे हैं, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सजेस्ट अस कि यू नो अगर बोर्डम हो तो कैसे उसे पास किया जाए, कैसे कुछ प्रोडक्टिव किया जाए या मज़े का किया जाए जिससे यू नो आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए, तो आप बिल्कुल हमें मैसेज करें 6622107 पर, 6622107, एंड आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं 4434377 पर. एंड ऑन दिस नोट, एक म्यूजिक तो बनता है भाई, एक छोटा सा ब्रेक तो हो जाए. हाय, शानदार गाना, एंजॉय द सॉन्ग एंड स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आप

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देश।

क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी। आप सुन रहे हैं
2: द सुपर किड शो।

Yes, my dear super kids, kya haal chaal hai? Well, literally, आज का एपिसोड हमारा बड़ा कमाल कर रहा है एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्लैड कि आप सब हमारे साथ जुड़ते रहे एंड यू नो नॉन स्टॉप आपने मैसेजेस किए, बातें की एंड यू मेक श्योर कि लाइक यू नो हमारा ये जो शो है बड़ा कमाल कर रहे हैं. क्या कहते हो बच्चा पार्टी? वैसे आज हमने पूछा था कि देखो बोर अगर हो रहे हो ना तो बोर्डम को दूर कैसे करना है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई. और अभी भी हमारे पास कुछ मज़े के मैसेजेस हैं. सो सैफ कहते हैं कि अमिता, जब भी मैं बोर होता हूँ तो मेरी जो टेक्स्ट बुक्स है, जो चैप्टर्स मुझे समझ में नहीं आते, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको थोड़ा सा रीड कर सकूँ. सैफ, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे बोर्डम में यू नो पढ़ाई करें. बट एटलीस्ट यू मेक श्योर कि अगर मेरे पास कुछ टाइम है और मेरा दिल कहीं और नहीं लग रहा तो मैं कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करूँ, विच इज़ रियली नाइस. एंड वन लास्ट मैसेज दैट इज़ फ्रॉम अली एंड ही सेइंग कि अमिता, जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मुझे ड्रॉइंग्स हमेशा मोटिवेट करती हैं, और जब मैं ड्रॉइंग करता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ की ड्रॉइंग हो, आई रियली फील गुड और मेरा बोर्डम दूर हो जाता है. देखो, ये सारी बातों से, मैसेजेस से, कॉल से एक चीज़ तो हम सबको समझ में आई कि ये जो बोर्डम होता है ना, ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो कि हमारे माइंड को ये बताता है कि सुनो सुनो, अब कुछ करने का टाइम है. माना कि अब आपका दिल कहीं नहीं लग रहा है, सो लेट्स शिफ्ट आवर अटेंशन और हम कुछ और करते हैं. और तभी हमें इतने सारे जवाब मिले कि हम ड्रॉइंग कर लेते हैं, हम एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, हम अपने बच्चों के साथ खेल लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. बहुत सारी लिस्ट आ जाती है. वैसे कुछ बड़े हैं जो हमें मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि अमिता, ये द सुपर किस शो का ये जो सीज़न ख़त्म हो रहा है, क्या इसके अलावा भी नया सीज़न आएगा, और जो कल शो हो रहा है क्या वो सिर्फ बच्चों के लिए? ओके, सो लेट मी टेल यू कि द सुपर किड्स शो का जो नया सीज़न है वो भी आएगा. एंड डेफिनेटली आप FM 107 से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा. तो सारे बच्चा पार्टी बिल्कुल दिल छोटा ना करें, यू विल गेट योर शो बैक और आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे. एंड हाँ, इस समर सीज़न में आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एडवेंचर शो, दैट इज़ द एस्केप रूम, और ये बच्चे बड़े हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है? और सिंपल होगा, यहाँ पे कोई ना कोई सिचुएशन होगी, जैसा कि नाम है शो का, कुछ क्लूज दिए जाएंगे. I'm sure बच्चा पार्टी तो सबसे पहले जीतेंगे बिकॉज वो हर एक पजल्स को सॉल्व कर लेते हैं. सो इजी पजल्स, इजी क्लूज, इजी रिडल्स आपके लिए रखे जाएंगे ताकि आप उन्हें सॉल्व करें और उस पर्टिकुलर सिचुएशन से एस्केप कर जाए. सो हाँ, ये शो बड़ा कमाल का होगा, 1.5 से 2.5 के बीच होगा. इसे मैं लेकर आ रही हूं, तो कल से जुड़ना ना भूले. और अभी के लिए क्या करना है? अभी के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, और समर स्ट्रोक से, यू कहें हीट स्ट्रोक से बचना है, ठीक है? और आप हमसे जुड़ सकते हैं FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और आपकी आर जमीता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. फिलहाल के लिए मैं कहूँगी, अब मुझे दीजिए इजाज़त. अब आपकी मेरी मुलाकात होगी कल ठीक 1:30 बजे ब्रांड न्यू शो एस्केप रूम में, ठीक है? तो चलें, अल्लाह हाफिज़ कर लें. और इसी बात पे ये गाना आपके नाम. इंजॉय करें FM 107 पर दिल से देसी.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کے عادی، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: سائنس کین بی فن؟ نا، سائنس ول بی فن، کیونکہ ایکسپیریمنٹس ہوں گے تبھی تو تھیوریز فیکٹس بنیں گی، ہے نا؟ تو بس دنیا بدلتے دیکھیے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم کریں گے فن سائنس ایکسپیریمنٹ دوہا والے کبیر کے ساتھ، ایک ایزی اینڈ سیف انوائرمنٹ میں. سنیے اور دیکھیے ہمارے ساتھ یہ خاص شو جونیئر سائنٹسٹ، صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیکھیے
5: جونیئر سائنٹسٹ. نک نک نک نک، آپ دروازے کٹکھٹانے کی میں ایکچولی فیل نہیں دے پا رہا ہوں، آئی ٹوٹلی گیٹ اٹ، مگر آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. شو کا آغاز ہونے والا ہے، دس از پروبیبلی دا لاسٹ ایپیسوڈ آف جونیئر سائنٹسٹ، ایپیسوڈ 17. میں ابھی آج میں بڑھیا سے کاؤنٹنگ کر کے آیا ہوں. میں ہوں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ، اینڈ تمام جونیئر سائنٹسٹ کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے بھی ایکسپیریمنٹ سنے، سراہے. انفیکٹ ایک ہے ہماری بہن ناز، انہوں نے بھی میسج کیا، انہوں نے بتایا کہ درشی ایبسلیوٹلی لائکڈ اٹ، ان کو یہ ایپیسوڈ بڑا اچھا لگا. انفیکٹ خود ایک ڈاکٹر ہیں، انہیں یہ لگا کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. او مائی گاڈ، کہاں جا کے چھپوں میں؟ بٹ لیٹ می ٹیل یو، یہ سائنس مجھے کیوں سمجھ میں آئی اتنی آسانی سے جبکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں؟ بیکاز مجھے یہ سمجھ میں آ گیا ہے، کریک کرنا آ گیا کہ اگر سائنس کو بہت ہی آسانی سے بتایا جائے، جہاں پر سائنس جو ہے وہ کھیل لگنے لگ جائے، جہاں پہ وہ ایک میجک ٹرک لگنے لگ جائے، تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اینڈ دیٹ از اے فیکٹ. سو جونیئر سائنٹسٹ، ویلکم ٹو دا شو. میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ، اگین آئی ایم ٹیلنگ یو، بیکاز کچھ لوگ ابھی بھی آئے ہوں گے، لاسٹ ایپیسوڈ میں جوائن کیا ہوگا، بولیں یہ کیا چل رہا ہے. تو ہم یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹس جو گھر میں کیے جا سکتے ہیں ہلکی سی سپرویژن کے ساتھ، یا پھر سپرویژن کا یہ جگہ تو چاہیے بھی نہیں ہوتی. بٹ نند لیس، ایف ایم 107 قطر، ایف ایم 107 قطر اس نام سے ہم ہر جگہ موجود ہیں. پلیز ہمارے پیجز پہ آئیے، وہاں پہ اپڈیٹس بھی لیجیے، تمام چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ مجھے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں دوہا والا کبیر. اینڈ آج جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ اس کا نام ہی بڑا زبردست ہے، کچھ زیادہ ہی خاص ہے، اور اس لیے ایکسپیریمنٹ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ہم جانیں گے ایک ایسی سائنس ٹرک کے بارے میں جو جہاز کو اڑاتی ہے، فٹ بال کو کرو کرواتی ہے، اور شارک اٹین کو چپکا دیتی ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کانسیپٹ کا نام ہے برنولیز پرنسپل. آئی ہوپ آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ رائٹ. پلیز جتنے سائنسدان ہیں معاف کرنا، کانسیپٹ سمجھ گیا، نام یہی ہے نا، برنولیز پرنسپل. اف آئی ایم ناٹ رانگ، ایکسنٹ کے ساتھ تھوڑا زیادہ کول لگتا ہے، انفیکٹ نام تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، بٹ دا آئیڈیا بہائنڈ اٹ، دا ہول پرنسپل از ویری ویری سمپل. آج کا گولڈن رول آپ کو یاد رکھنا ہے، جب ہوا تیز چلتی ہے پریشر کم ہو جاتا ہے. ویری سمپل، یہ آج کا مین ہیڈ لائنر کہہ لیجیے، فنڈا کہہ لیجیے، گولڈن رول، تھم رول، وچ ایور وے یو وانٹ ٹو پٹ اٹ، بٹ جب ہوا تیز چلتی ہے تو پریشر کم ہو جاتا ہے. ویری سمپل. اور آج شو کے آخر تک آپ سمجھ جائیں گے کہ ہر جگہ سائنس نظر آتی ہے، ایوری ویئر. تو سب سے پہلے سوال سے شروع کروں گا. کبھی آپ نے کار کی ونڈو ہلکی سی کھولی اور ہوا اچانک سے اندر آنے لگتی ہے، ارے بند کرو کھڑکی بھائی، होता है ना ऐसा, जरा सी की खिड़की खोली और हवा अचानक से अंदर आने लगी, या कभी ट्रेन जो है पास से पास खड़ी है और हवा आपको खींचती हुई महसूस होती है कि भाई पास से एकदम से गुजरी और लगा रे ट्रेन साथ में ले जाएगी क्या, या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, या फिर फैन के नीचे पेपर हिलता हुआ देखा है, अब ये मत कहना ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्या एग्जाम्पल, आई नो बट इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, पंखा ऊपर चल रहा है नीचे जो है कागज हिल रहा है, ये सब रैंडमली नहीं होता है। अगर कोई बच्चा आपसे पूछ ले ऐसा क्यों हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, हवा से चल रहा है, ये बोलेंगे ना आप, बट देयर इज साइंस बिहाइंड, ये सब रैंडम नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी साइंस है और साइंस हमेशा हमारे आसपास रहती है। आप जब स्ट्रॉ से जूस पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जब आप परफ्यूम से स्प्रे करते हैं, जब आप क्रिकेट बॉल को स्विंग करवाते हैं, है ना, हर जगह हवा और प्रेशर का गेम चल रहा है हैंड टू हैंड, और यही खासियत है आज के एक्सपेरिमेंट की। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रेशर क्या है, वो वाला प्रेशर नहीं जो हर रोज ऑफिस और स्कूल में है, वो तो रहेगा, दैट विल स्टे, पर हमें ये समझने की जरूरत है कि साइंटिफिकली ये प्रेशर क्या है। प्रेशर मतलब एक पुश करने की एक ताकत, धक्का देने की ताकत, ज्यादा प्रेशर ज्यादा पुश, कम प्रेशर कम पुश, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप भीड़ में खड़े हुए और सब लोग आपको धक्का दें तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ दो लोग हों तो प्रेशर कम होगा। अब हवा भी पुश करती है ना आपको, ये तो मैंने एग्जाम्पल जो दिया मुंबई वाले समझ पाएंगे, इससे पहले वाला खड़े हुए पीछे से भीड़ आई लोकल ट्रेन में चढ़ा दिया ये जो है धक्का देकर चढ़ा दिया, दो लोग थोड़ी चढ़ाते हैं, दो लोग तो कभी मेट्रो में सॉरी मुंबई लोकल के सामने मिलेंगे भी नहीं आपको। अच्छा अब हवा भी पुश करती है, हवा इनविजिबल है लेकिन उसका प्रेशर होता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा मेन साइंस आइडिया, जब हवा तेज चलती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है और जब हवा स्लो चलती है तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इस सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, थोड़ा अजीब सा ही कॉन्सेप्ट है, अक्सर हम सोचते हैं कि तेज चीज ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन बर्नौलीज ने डिस्कवर किया कि फास्ट मूविंग एयर एक्चुअली कम प्रेशर बनाती है, समझ रहे हैं आप, सोचने वाली बात है ये, एंड ये इतने इजी येट कॉम्प्लेक्स आइडिया पर है कि मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में बिफोर टेलिंग यू मैंने बर्नौलीज की पूरी जिंदगी छान ली, मैंने ये आदमी कह क्या रहा है, तो ये सब कुछ पता लगा मुझे एंड आई एम रियली फैसिनेटेड बाय इट। आप जरा एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। आपको चाहिए सिर्फ एक पेपर स्ट्रिप, नथिंग एल्स, खत्म हो गई बात, है ना, सुपरविजन चाहिए ही नहीं, जो कह रहा है लाओ मैं मदद कर दूं उनसे कहेगा नहीं प्लीज कर लूंगा या कर लूंगी, तो आपको चाहिए सिर्फ एक पेपर स्ट्रिप, पेपर को लिप्स के पीछे पकड़ो ताकि वो नीचे लटक रहा हो, समझ गया, पेपर पकड़ लेते ना आप कई मतलब ऐसे मजाक मजाक में, आज साइंस के लिए करना है आपने। अब गेस करो, अगर आप पेपर के ऊपर हवा ब्लो करो तो पेपर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मैसेज करिए 666-22107 पर। मीनवाइल यू कैन जस्ट टेक्स्ट एंड लेट मी नो। मोस्ट लोग क्या बोलेंगे बताएं, मोस्ट लोग बोलेंगे कि भाई पेपर के ऊपर हवा ब्लो करोगे तो पेपर नीचे जाएगा, लेकिन साइंस सरप्राइज देने वाली है। अब जेंटली हवा ब्लो करो, क्या होगा, पेपर ऊपर उठ जाएगा। वाओ, ये कैसे हुआ, ये बर्नौली भाई ने करवाया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पेपर के ऊपर हवा तेज चल रही थी, तेज हवा कम प्रेशर, पेपर के नीचे हवा स्लो थी, स्लो हवा ज्यादा प्रेशर, नीचे वाले प्रेशर ने पेपर को पुश करके ऊपर उठा दिया, समझ रहे हैं आप, ये बिल्कुल देसी तरीके समझा रहा हूं, इससे ज्यादा आसान तरीका कुछ है नहीं, ऐसे अगर मुझे मैं समझा सकता स्कूल के टाइम पे तो आज मैं साइंस का स्टूडेंट होता, बट नॉनदलेस अगर मैं साइंस का स्टूडेंट होता तो मैं शायद अभी आपको ये नहीं बता रहा होता, सो विन विन, तो यहां पर मैं आपको आके ये समझा पा रहा हूं बिकॉज लकीली आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ चैप्टर्स इन साइंस और ये जब एक्सपेरिमेंट पढ़ भी रहा था मैंने कहा व्हाई नॉट गिव यू मोर एंड मोर एग्जांपल्स, और मुझे बड़ा मजा आ रहा था इसके बारे में पढ़ते हुए। इसी प्रिंसिपल की वजह से आपको बताऊं जो आज हम पढ़ रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पे हवाई जहाज उड़ते हैं भाई साहब, जी हाँ, हवाई जहाज कैसे उड़े, इसी ये जहाज को यही तो प्रिंसिपल उड़वा रहा है, तो प्लेन के विंग्स स्पेशली कर्व्ड होते हैं, देखे ना जहाज उड़ रहा है उसके विंग्स जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, विंग के ऊपर हवा चलती है नीचे हवा स्लो चलती है, देखिए एविएशन के मामले में बहुत कहानी सुनाई है मैंने, बहुत तेज उस मामले में, तो ऊपर प्रेशर कम हो जाता है ना, और नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, नीचे वाली हवा प्लेन को ऊपर पुश करती है और प्लेन आसमान में उड़ जाता है। अब सोचो अगर बर्नौलीज़ प्रिंसिपल ना होता तो एयरप्लेन्स भी कहाँ होते। भाई ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए डायनेमिक्स तैयार किया था, तो अल्लाह ताला ने बहुत लोगों के जरिए ये चीज़ें हम तक पहुँचाई हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज। तो ये बर्नौलीज़ का प्रिंसिपल नहीं होता तो जहाज की जो विंग्स का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से उन्हें बनाया जाता है, उसमें दिक्कत आ सकती थी, मगर दिस इज हाउ इट इज। अब एक क्विज कर लेते हैं, क्योंकि बिकॉज क्विज से क्या होता है थोड़ा दिमाग ज्यादा खुलता है ना। तो सवाल नंबर वन, फास्ट हवा में प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, जवाब है कम प्रेशर हो। फास्ट हवा, तेज हवा, यानी कि कम प्रेशर। अब सवाल नंबर दो, जल्दी देना, आपको तीन चार सेकंड नहीं दूंगा बस मैं। हाँ, प्लेन को ऊपर क्या पुश करता है? बिल्कुल सही जवाब आपके मन में आ रहा है, सही जवाब आ रहा है, बोल दो। सही जवाब है नीचे वाली हायर प्रेशर एयर, वो प्लेन को ऊपर की तरफ पुश करती है, इसीलिए जहाज इजीली 33,000, 34,000 और 40,000 तक पहुंच जाता है। इतना आसान जहाज पे ये जो प्रिंसिपल लगाया जाता है, तो इट बिकम्स इजियर फॉर द प्लेन टू फ्लाई। अब एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बिकॉज देन इट विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ईजी। दो पेपर स्ट्रिप्स लीजिए, उनको साइड बाई साइड पकड़ लीजिए, ठीक है? आपने दो पेपर की स्ट्रिप्स ले ली, साइड बाय साइड पकड़ लिया, बीच में थोड़ा गैप रखो, थोड़ा सा गैप। अब आपको गेसिंग गेम खेलना, अगर बीच में आपने हवा ब्लो करी तो पेपर्स दूर हो जाएंगे या पास आ जाएंगे? देखो मोस्टली लोग जो बोलेंगे, मैं बता देता हूं, मोस्टली लोग बोलेंगे दूर हो जाएंगे, लेकिन जरा भाई साहब फूंक मार के तो देखो, ब्लो करोगे ना तो पेपर्स पास आ जाएंगे। Yes, that is the most fascinating thing about this experiment. Beach ki hawa fast thi. Fast hawa, yani ki low pressure. Lagatar humko isliye bata raha hu because yahi hai iska pura principle. To fast hawa, low pressure. Bahar wali hawa slow thi. Slow hawa equals to higher pressure. Outside pressure ne paper ko andar ki taraf push kar diya. और ये कमाल का एक्सपेरिमेंट आपके सामने। और बच्चों अगर तुम मुझे सुन रहे हो, लिटरली ये वाला एक्सपेरिमेंट ना आप कीजिए, बड़ों के सामने कीजिए, बड़ों को हैरान करिए, परेशान कर दीजिए, उनसे भी वाला क्विज खेलिए, वो समझेंगे अरे ये क्या हो गया हमारी लड़की को कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है इतनी जबरदस्त। एंड बड़ों से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट्स आप भी इनके साथ करें, जैसे लाइक अ फन एक्टिविटी विद देम, एंड क्या पता आपके घर में कोई ऐसा साइंटिस्ट निकल जाए जो बिल्कुल आंधी मचा दे, समझ रहे हैं आप? तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आपका भी दिमाग खोलते हैं, एंड यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं भी अगर ये शो नहीं कर रहा था तो मुझे भी इसके बारे में इतना नहीं पता लगता, बट आई गॉट टू नो अबाउट दिस बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट आई डिड फॉर द शो। सो ये जो है ना, ये साथ में एक्टिविटीज करने से दिमाग खुलता है, ना सिर्फ दिमाग खुलता है, वोकैबुलरी आती है, चीज़ों के बारे में पता लगता है, प्रिंसिपल समझ में आते हैं कौन सी चीज़ किस चीज़ पे काम करती है। एंड आप बोलेंगे ये मेरे किसी काम की नहीं, मुझे तो जहाज उड़ाना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट दैट, हम लोग हिस्ट्री भी तो पढ़ते हैं। आप कौन सी हिस्ट्री हमारे, मतलब आप पुरानी हिस्ट्री, जब पुरानी हिस्ट्री, हिस्ट्री पुरानी होती है, क्या कर रहा हूँ मैं, आप पीछे जब वक्त में झांकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ के सामान को यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको कुछ बहुत ही जिंदगी बदल जाएगी, बट इट ओपन्स अप योर माइंड। ये बिल्कुल वैसा ही है साइंस, जब आप पढ़ते हैं ईजिली समझते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट कभी जिंदगी में रहे हों या ना रहे हों, बट काइंड ऑफ ओपन्स योर ब्रेन, आपको चीज़ें समझ में आती है, अच्छा ये यूँ हो रहा है, ओह ओके, एंड इट जस्ट हेल्प्स। ये आपकी ब्रेन के लिए एक्सरसाइज है, और जो बच्चे इन एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब जरा रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं ऑन द सेम प्रिंसिपल। फुटबॉल का जो कर्व होता है, फुटबॉल प्लेयर्स जब बॉल को स्पिन देते हैं एक, तो एक साइड हवा फास्ट मूव करती है, राइट, और दूसरी साइड स्लो। प्रेशर डिफरेंस बॉल को कर्व देता है। अब बॉल की एक ही साइड, जैसे चांद की दो, डार्क और लाइट, वॉट एवर मानी जाना चाहता, मगर आप समझिए जब आप स्पिन कराते हैं फुटबॉल में, किक करी एंड द बॉल इज स्पिनिंग, देन एक साइड पे क्या हुआ, फास्ट मूव करी, स्पिन दिया गया उसको, दूसरी साइड जो स्लो गई, तो ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस है ये बॉल को कर्व करा देता है। अगेन द सेम प्रिंसिपल। अब एक और देसी एग्जाम्पल देता हूँ। वो है क्रिकेट की बॉल। जब आप स्विंगर्स को देखते हैं जो बॉल स्विंग कराते हैं, क्रिकेट में फास्ट बॉल स्विंग कराना आसान बात नहीं, मगर कराने का जो तरीका है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बॉल की एक साइड स्मूथ होती है, दूसरी रफ होती है। एक साइड हवा तेज मूव करती है, दूसरी साइड स्लो मूव करती है, और बॉल हवा में ही मुड़ जाती है। ये देखने में कितना मैजिकल लगता है, आपको देखा है कि कभी आपने स्लो मोशन में देखा किसी को बॉलिंग करते हुए? सो व्हेन यू सी समबडी बॉलिंग, आप एक बार स्लो मो देखिएगा, बहुत सारे आपको दिख जाएंगे स्लो मोस इंटरनेट पे जाके, जब आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार देखने में कितना मैजिकल लगता है, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, है ना। तो इसी तरीके से बॉल भी स्विंग होती है। अब एक बहुत ही घरेलू एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये है शार कर्टन का। कभी शार लेते वक्त कर्टन चिपक जाता है एकदम से, लगता है अरे भाई छोड़ो मुझे, ये कितना इरिटेटिंग होता है। नहीं पर फास्ट मूविंग एयर इनसाइड द शार क्रिएट्स लो प्रेशर, वेरी सिंपल। आउटसाइड जो प्रेशर है वो कर्टन को अंदर की तरफ खींच लेता है, एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंस। अब आ जाते हैं परफ्यूम स्प्रे पे। ये जो परफ्यूम स्प्रेज होते हैं ये भी सेम मैकेनिक्स पे, सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। परफ्यूम बॉटल में जब आप प्रेस करते हैं, फास्ट एयर लिक्विड को ऊपर खींच लेती है, इसलिए स्प्रे बाहर निकलता है। ये अगर कोई बच्चा आपसे पूछ ले, बड़ों से कह रहा हूं, कोई पूछ ले ये पापा ये बटन दबाने से कैसे स्प्रे बाहर है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपने बहुत भारी भरकम जवाब देना है बच्चों को, बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटे, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो परफ्यूम की बॉटल में जब आप प्रेस करते हैं तो फास्ट एयर लिक्विड को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, इसलिए स्प्रे बाहर आता है। सेम एक्सपेरिमेंट, सेम एग्जाम्पल, सेम प्रिंसिपल एक्चुअली वर्क्स विद द चिमनीज। चिमनीज देखिए, किचन में चिमनी स्मोक को बाहर कैसे निकाल रही है, कैसे निकाल रही है? ये तो नहीं कह रही बाहर निकल जाओ मेरे घर से। फास्ट मूविंग हॉट एयर अपवर्ड जाती है, राइट? ये हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पहले भी जाना था। फास्ट मूविंग हॉट एयर अपवर्ड जाती है, प्रेशर चेंज होता है, स्मोक को खींच लेता है, एंड दैट्स हाउ चिमनीज वर्क। ये इतना कोई भारी भरकम नहीं है, समझना मुश्किल, पर जब चीजें आती हैं पढ़ाई में अप्लाई होती हैं, जो लोग साइंस को लेकर आगे बढ़ेंगे उनके काम आएगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मेरी कहानी सुनाने की आदत है तो मैं एक कहानी आज आपको सुना देता हूँ। एक छोटी सी चिड़िया थी, ठीक है, उसने कबीर से पूछा हम चिड़िया फ्लाई कैसे करते। कबीर ने बोला तुम्हारे विंग्स हवा को स्मार्ट तरीके से मूव करते हैं, और तो क्या है, विंग्स के ऊपर हवा तेज और नीचे स्लो होती होगी, और प्रेशर तुम्हें स्काई में उठा देता होगा। चिड़िया ने कबीर के लिए ताली बजाई। समझ गए ना आप कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सेम एक्सपेरिमेंट है, बट आई जस्ट वांटेड टू हैव फन विद, बिकॉज साइंस इज एक्चुअली फन, इट मेक्स अ लॉट ऑफ स्टफ इजीयर। फन फैक्ट, फॉर्मूला 1 जो रेसिंग कार्स होती है ना, वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल को ही यूज करती है जनाब। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स भी इसी साइंस से, इसी प्रिंसिपल से लिफ्ट होते हैं, जो लिफ्ट बनती है ना घूमने से, वरना कैसे घूमेंगे वो, घूमने से क्या उड़ जाएंगे। बट इट क्रिएट्स दैट थिंग, और वो ब्लेड्स जब मूव करते हैं तो प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल की बेसिस पर ही वो उड़ते हैं। फन फैक्ट नंबर 3 भी देता हूँ, इवन जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको एक बहुत शानदार दो रियल की कहानी सुनाई, बर्ड्स भी अननोइंगली, अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह, उन्हें भी इसी प्रिंसिपल पे उड़ाया है, उड़ने की ताकत दी है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आप लगातार घरों में कर सकते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल को बताने का इससे आसान तरीका नहीं। कुछ अगर फन एक्टिविटीज करनी तो मैं एक आध बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक पढ़ा था पिंग पोंग बॉल का, तो हेयर ड्रायर आपने ऑन किया, समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, हेयर ड्रायर आपने ऑन किया, पिंग पोंग बॉल को हवा में रखो भाई, उस टाइम बॉल हवा में फ्लोट करेगी, एंड इट लुक्स लाइक अ मैजिक, है ना, ये इट रियली लुक्स लाइक अ मैजिक। पिंग पोंग बॉल जो हवा में ऐसे फ्लोट करती रहेगी अगर आप जो है पिंग पोंग बॉल पे हेयर ड्रायर ऑन कर लेंगे। बलून एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, अनदर ग्रेट एग्जाम्पल। दो बलून को लटका दो, बीच में हवा ब्लो करो, बलून पास में आ जाएंगे। दैट इज हाउ इट वर्क्स। स्ट्रॉ और पेपर का एग्जांपल भी यही है, एक स्ट्रॉ से पेपर को ऊपर ब्लो करो, पेपर लिफ्ट हो जाता है। ये तो स्कूलों में सबने किया है, स्पेशली 90s वालों ने, तो ये जेन जी को समझा दीजिएगा, आई डोंट नो इफ दे आर डूइंग इट इन स्कूल, ये करना चाहिए बेटे, ये आपके मतलब का है, ये आप करें, बहुत प्यारा जो है एक्सपेरिमेंट है ये, एंड डेली लाइफ में ये सेम प्रिंसिपल कई जगहों पे नजर आता है, सिर्फ क्लासरूम में नहीं है, साइंस आपके फैन में है, स्पोर्ट्स में है, जहाजों में है, सांस लेने है, परफ्यूम में है, इवन आपकी स्कूल बस की खिड़की में भी। जरा आप रिपीट कर लेते हैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, फास्ट एयर, लो प्रेशर, स्लो एयर, हाई प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस अगर होगा एक ही ऑब्जेक्ट में तो उसी की वजह से मूवमेंट क्रिएट होती है। जैसे हमने क्रिकेट का एग्जांपल लिया, व्हेन यू थ्रो बॉल यू वांट टू स्विंग द बॉल, तो उसके एक साइड पे लो प्रेशर, एक साइड पे हाई प्रेशर, फास्ट एयर, स्लो एयर, एंड यू गेट द आइडिया राइट। तो वो जो डिफरेंस है वो बॉल को स्विंग करवाता है। आप इसी को हम जितना भी हमने अभी पढ़ा इसी सब इन्हीं सब चीजों को कहते हैं एक एक प्रिंसिपल पे काम करना, और वो प्रिंसिपल है बर्नौलीज प्रिंसिपल। एक आखिरी चैलेंज है रेडी, लेकिन रेडी होने से पहले अगेन सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar FM107 Qatar। देखिए एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे, इनफैक्ट हमारी बात भी जारी रहेगी। ये लास्ट एपिसोड है, इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ जिस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करते आए हैं, कई मरतबा आपने स्टोरीज में टैग किया है, कई मरतबा आपने मैसेजेस किए, एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी। एक मैम थी नाज, वो उन्होंने भी मुझे मैसेज किया पर्सनली, उन्होंने बोला यू नो आई फेल्ट के ऐसे शोज होने चाहिए, एंड शी रियली लाइक द शो, एंड बच्चे जब टैग करते हैं, मैसेज करते हैं, रियली लव्ड इट, रियली लव्ड इट। सो प्लीज़ ये एक्सपेरिमेंट जब आप घर में करें, स्टोरीज बनाएं एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये पूरे एक्सपेरिमेंट की विच एवर वे यू वांट, बट प्लीज प्लीज प्लीज डू टैग अस FM107 Qatar FM107 Qatar। और जो बड़े लोग हैं, माँ बाप हैं, बड़े भाई बहन हैं, प्लीज़ ये अपने छोटों के साथ एक्सपेरिमेंट करना, ये एक अच्छा अच्छा बॉन्डिंग टाइम भी है आप लोगों के लिए, एंड ऑल्सो इट गिव्स यू काइंड ऑफ नॉलेज। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट्स करने मजा आएगा, एंड ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते, 2-4-5 मिनट सर तो क्या ही है? हार्मलेस चीज़ें बताता हूँ बिल्कुल मैं, और कई एक्सपेरिमेंट में तो कोई भी क्या कहते हैं उसको, अरे वो क्या होता है, सुपरविजन, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमने आधे से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ऐसे किए हैं जिसमें सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। बट मेन मुद्दे की बात, इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके आपका कौन सा फेवरेट रहा, आई वुड लव टू नो। 17 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमने, इतने सारे, विच वन वॉज योर फेवरेट? मेरा फेवरेट मैं शो में शाम में बता दूंगा 1 जून से, तो जब शायद अभी शो सुन रहे हैं तो तारीख आगे बढ़ गई होगी, आई डोंट नो विच डेट यू लिसनिंग टू दिस शो, बट जब आप शाम में सुनेंगे मुझे तो आई विल लेट यू नो कि कौन सा एक्सपेरिमेंट मेरा फेवरेट है। वैसे मुझे एक वो वाला एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा लगा था जिसमें हमने जो है ना वो ग्लिटर्स और ऑयल का और वाटर का इस्तेमाल किया था, आई रियली लाइक्ड इट। मैंने उसका वीडियो भी देखा, मुझे बड़ा मजा आया वो एक्सपेरिमेंट, मेरा मन करिए कि मैं भी घर पर करूँगा। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो आप कर सकते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑन द अदर हैंड जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि इसको आप सीधा सीधा रट लेंगे, सीधा सीधा याद हो जाएगा, आई नो किताबों में भी आएगा, जो लोग अभी स्कूल में हैं या कॉलेज में इसी के अराउंड उनके सब्जेक्ट्स हैं, आई वुड नॉट नो दैट, मगर स्कूल का मुझे पता है। तो जब भी एक्सपेरिमेंट सामने आएगा, इट देयर आर हंड्रेड्स इफ नॉट क्या कहते हैं easier ways to understand this concept, and Bernoulli's principle is very very easy. अगर मेरे समझ में आ सकता तो आपके तो आ ही जाएगा। Basically, last revision, fast air, तेज हवा चलेगी तो low pressure होगा। अमूमन लोग सोचते हैं कि तेज हवा मतलब तेज प्रेशर, ऐसा नहीं है, इसका ठीक उल्टा है। तो आपको अगर याद रखना है ना तो उससे आसान तरीका नहीं है। फास्ट एयर फास्ट नहीं, फास्ट फास्ट एक साथ नहीं आएगा, फास्ट एयर लो प्रेशर, स्लो एयर हाई प्रेशर, ऑपोजिट सोचने का, वही है बर्नौलीज प्रिंसिपल। और वे पूछे इस प्रिंसिपल का काम क्या है तो उनको बताना बेटे जहाज उड़ा है, जहाज ऊपर देख रहे हो, एक्सपेक्ट वो देखो उससे आए हो तुम, तो जहाज भी इसी प्रिंसिपल पर उड़ता है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो लास्ट चैलेंज, ओके, प्लेन क्यों फ्लाई करते हैं, शो शार कर्टन जो है वो क्यों एकदम चिपक जाते हैं, या फुटबॉल कर्व क्यों होती है, इसका आंसर आप अगर दे पा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद में, मुबारक हो, आप ऑफिशियली एक जूनियर साइंटिस्ट बन चुके हैं, रियली रियली प्राउड ऑफ यू। देखो आज हमने सीख लिया कि हवा इनविजिबल जरूर है, प्रेशर भी कौन सा दिखता है हमें, मगर चेहरे पे दिखता है चेहरे पे दिखता है। एनीवे इसके लिए सो हवा हालांकि इनविजिबल है लेकिन उसकी पावर अमेजिंग है ना। बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें बताता है कि जब हवा तेज चल जाएगी प्रेशर गिर जाएगा, सिंपल साइंस, बड़ा सा मैजिक। ये एक्सपेरिमेंट्स आप घर पे ट्राई करें, दोस्तों को दिखाएं. एंड पता है क्या फायदा क्या है एक्सपेरिमेंट्स का, जब एक्सपेरिमेंट्स को आप आगे रखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और यू विल टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, साथ साथ अपने टीचर्स के साथ भी शेयर किया करें, बिकॉज ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स रियली रियली मैटर. बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट स्कूल में बन जाते हैं, हमने हमारे टाइम पे बनाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बनाए, बट वी डिड नॉट फोकस ऑन इट. आप लोगों ने फोकस किया तो बहुत अच्छी बात है, हमने नहीं किया. और आप पढ़ाई करते हुए लगता है कि अरे बहुत ही फैसिनेटिंग था. तो पढ़ाई को आसान बनाने का तरीका ही, यू हैव टू अंडरस्टैंड साइंस इन अ वेरी नैरेटिव वे. मैं ब्रेकडाउन करके बताता हूँ, आई नो मैं ध्यान दे रहा हूँ, मल्ले लो ये ज्ञान सच में काम आएगा, ये मेरे काम आ रहा है इतना बड़ा होने के बाद. तो बेसिकली जब कितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल देम, इन सबको जब आप एक नैरेटिव की तरह पढ़ते हैं, सीखते हैं, विदाउट यूजिंग वो भारी भरकम वर्ड, तो ये ज़्यादा जल्दी आपके दिमाग को मेमोराइज हो जाता है. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. बहुत सारे बच्चे बहुत हैवी हैवी टर्मिनोलॉजी भी याद कर लेते हैं, ऑब्वियसली वो एग्जाम्स में भी उन्हें डिफाइन करना होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. पर टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ एनी प्रिंसिपल या फिर कॉन्सेप्ट, यू हैव टू हैव अ माइंड जहाँ पर आप दूसरी किताबों को भी, और आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यू नो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या कुछ नहीं है, आप उन एक्सपेरिमेंट्स को जब आप देखेंगे वीडियोज के जरिए या ऑडियो के जरिए, यू विल अंडरस्टैंड मोर. मेरी भी एक कोशिश है कि उन्हीं चीज़ों से, उन वीडियो से, उन ऑडियो से सब कुछ निकाल के एक एक बेसिकली एक क्या कहते हैं उसको, घुट्टी बनाई जाए और आपको पिलाई जाए, ताकि ये आपको आसान से आसान शब्दों में समझ आ जाए. एंड ऐसे हमने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो बर्नौलीज़ एक्सपेरिमेंट हो, चाहे बॉयंसी हो, चाहे वेलोसिटी हो, वेलोसिटी हमने किया, हमने फ्रिक्शन किया, ये सारी की सारी चीज़ें समझना बहुत आसान है. एंड इन केस यू हैव एनीथिंग टू से, आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट्स हैं दैट यू वांट टू शेयर, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं. हो सकता है नेक्स्ट सीजन में भी कोई अलग शो हो जो इसके इसी बेसिस पे हो, सो वी वुड लव टू नो दैट फ्रॉम यू एज वेल. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, जस्ट डू लेट मी नो कि आपके पास ऐसा कुछ है, तो मोर एंड मोर यू शुड Tell us and let us know. So ये junior scientist का एपिसोड अगर आपने सुन लिया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. जैसे मैंने कहा, मुझे भी ढूंढ सकते हैं, एंड अगर एक्सपेरिमेंट करें तो बताइएगा. इसमें मैंने कार विंडो एग्जाम्पल दे दिया आपको, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल. एक और देसी एग्जाम्पल देना तो सुन लो भाई, एक दे के जाता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में अटका रहेगा वरना. बर्नौलीज प्रिंसिपल का मैं एक और पढ़ा था, जब कार बहुत तेज चल रही होती है ना, आपने खिड़की को हल्का से नीचे किया, तो कभी कभी क्या होता है, बाहर कागज चले गए, दुपट्टा बाहर की तरफ से ऐसा लगता है खींच ले गया कोई. ऐसा क्यों हो रहा है, कार के बाहर हवा बहुत फास्ट कर रही है. फास्ट हवा का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट सोचने का, फास्ट हवा लो प्रेशर, कार के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए चीजें बाहर की तरफ मूव करेंगी. ये मैं आपको मेरे दिल में रहता है देसी एक्सपेरिमेंट, मुझे कहना था ये, बिना कहे घर नहीं जा पाता मैं. वैसे ही फास्ट मूविंग बसेस और ट्रेन्स करती हैं हमारे साथ जब साइड में से निकल जाती हैं. एंड तूफान या स्टॉर्म, जो तूफान आते हैं या स्टॉर्म कह लीजिए, ये कभी घर की छत पे उड़ते आपने देखा आते हुए, बड़े अच्छे नज़ारे होते हैं इनके, उतने डेंजर भी लगते हैं. जब तूफान आता है वक्त, जो आपकी रूफ होती है, टेरेस होती है, हवा बहुत तेज चलती है, ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, अंदर जो हवा है घर के प्रेशर ज्यादा होता है, और अंदर की हवा रूफ को ऊपर की तरफ पुश करती है, और इसी बेसिस पे मेरे देसी भाई बहनों चल उड़ती है पतंग. तो पतंग के उड़ने का भी सेम ही तो फॉर्मेट है, पतंग हवा में कैसे उड़ रही है, क्यों आपने कन्नी अच्छी बांधी है कि उसको ऊपर उड़ाया, ना ना ना, पतंग के ऊपर और नीचे हवा डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही है, ये वही है क्रिकेट बॉल को फेंका है ना, तो प्रेशर डिफरेंस लिफ्ट क्रिएट करता है, इसी वजह से पतंग आसमान में रहती है. पर ये ज्ञान किसी पतंगबाज को मत दीजिएगा, बोलेगा अच्छा अच्छा हमको सिखा लिया, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू पतंग भी इसी प्रिंसिपल पर उड़ती है, एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ये बर्नौलीज कॉन्सेप्ट. इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि बर्नौलीज के बारे में भी पढ़िएगा, विल गेट टू नो मोर. तो ये हेयर ड्रायर और बॉल वाला एक्सपेरिमेंट मुझे पता है बहुत सारे बच्चे करने वाले हैं, डू इट. एक हेयर ड्रायर की हवा, पिंग पोंग बॉल उसके सामने रख दीजिए, और हवा में बॉल जो है डांस करेगी आपके लिए. तो दिस यू कैन डू, एंड आई नो यू वांट टू ट्राई इट सो बैडली, तो ये आप कर ही लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर ज़रूर कीजिएगा. तो ये था जूनियर साइंटिस्ट. इफ यू हैव एनीथिंग टू से आप मैसेजेस में भी कर सकते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ लिए जाएंगे इंशाल्लाह. मैसेजेस का रिप्लाई बाद में आ जाएगा, बट डेफिनेटली विल रीड देम ऑल. एंड फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. आपसे ज्यादा चाहूंगा, दिस वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ जूनियर साइंटिस्ट. इंशाल्लाह अगर कोई और सीजन आया या कोई और शो आया साइंस से जुड़ा हुआ, वुड लव टू बी विद यू अगेन. बट फॉर नाउ मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मास्टरम
4: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर. दिल से देखिए.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर. दिल से देसी.
6: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है. मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे

0: FM 107. Time check. Time check. Assalamualaikum और good evening. आप सुन रहे हैं FM 107 पे शो Dear Family with RJ महवश खान. और इस वक्त हुआ है 4:02, मेरा आपका साथ रहना है 5 बजे तक. और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को खूब अच्छे से इंजॉय करें होंगे. ईद भी आपकी काफी अच्छी गुजरी होगी और सब कुछ बिल्कुल एकदम से सेट रहा होगा मामला. और आज आप इस वक्त मौजूद होंगे क्योंकि आज हमारी ये है आखिरी एपिसोड और आज के बाद फिर आपसे मुलाकात होनी है हमारी सुबह सुबह अलल सुबह. तो इंशाल्लाह ताला कल सब सुबह सवेरे मुलाकात होगी और आज लास्ट शो है इस सिलसिले का डियर फैमिली का. तो यहाँ पे ये सफ़र तमाम होता है इंशाल्लाह ताला. किसी और वक्त में, किसी और स्लॉट में, किसी और सीज़न में हम आपसे दोबारा शायद इस टाइम पर मिल सकें. लेकिन खैर, पर्सनली मुझे काफ़ी मज़ा आया, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया इस वक्त को. वक्त ऐसा होता था कि मतलब ना आप थोड़ा सा इस वक्त में बंदा थोड़ी सी मुझे लगता है कि एनर्जी आ जाती है आपके ना, शाम का वक्त है तो मौसम शुरू में मुझे बड़ा अच्छा मिला तकरीबन. और फिर लोग बहुत अच्छे मिले जिनका मैंने पहले भी तस्करा किया था कि काफ़ी सारे जो न्यू लिसनर्स हैं वो ऐड हुए और वो शामिल हुए. काफ़ी नई नई आवाज़ों को जाना, उनको पहचाना, उन लोगों की राय शामिल होती रही शो में. तो ओवरऑल मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा डियर फैमिली का, जबकि मैं बिल्कुल भी जो सच्ची बात है एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. मुझे लग रहा था कि फैमिली फैमिली फैमिली कितना ही हम फैमिली के ऊपर बात कर लेंगे, कितना हो सकता है, कैसे चलेगा आखिर ये शो, मेरे दिमाग में ये अंदेशे थे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से, आप लोग पार्टिसिपेट करते रहे, अच्छी अच्छी अपनी मुख्तलिफ तरह की राय लाते रहे, हर तरह का एक रंग आता रहा, तो उसकी वजह से माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा एक मेमोरेबल शो मेरे हिसाब से गया. मतलब मुझे याद रहेगा, किसी और को रहे ना रहे. आज का क्या सिलसिला है तो मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ. वो हमेशा हमारे जो इसी प्रोग्राम के दौरान मिले हमें कॉलर अली रज़ा, और वो हमेशा बोलते थे ये आपको आपके शो का नाम होना चाहिए कहानी घर घर की. तो मैंने सोचा चलो लास्ट एपिसोड ना थोड़ी सी इसी तरह की होनी चाहिए, हम इसी को यही कह देंगे कि आज कहानी घर घर की जो है ना वो वाइंड अप हो रहा है. हमने इसमें इस शो में तकरीबन मतलब हर तरह के घर के मसले को सॉल्व किया है और मुख्तलिफ घरों की जो है ना हमें चीज़ें भी पता चली हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या बातें होती हैं. तो आज हमारा यही है कहानी घर घर की, और आप बता सकते हैं कि कहानियाँ क्या होती हैं आखिर घर घर की. पहले कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: जी करीम भाई, क्या हाल चाल है आपके?
1: अल्लाह से राजी हैं, आप कैसे हो, सब ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. आप बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी?
1: मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह से राजी है, सब ठीक है, शुक्र है खुदा का.
0: जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त. अच्छा जी, तो आज है हमारी लास्ट मतलब जो है ना एपिसोड इस शो की.
1: जी जी जी, मैं सुन रहा था और यकीनन बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि काफी सारे नए बंदे जुड़े. में मुझे कभी कभी चांस, बस कोशिश कर रहा था, बस किस्मती नहीं मिलता था चांस.
0: जी जी,
1: बातें कभी कभी सुन लेता था, जाहिर है थोड़े मसरूफियात भी थे. तो अभी जैसे मैं निकला हूँ तो मैंने कहा पहले रेडो ऑन करो, टाइम देखा तो 4:02 बज रहे थे. मैंने कहा चलो बैंक के साथ बात हो जाएगी.
0: अच्छा कि आपने कॉल किया.
1: तो
0: जी जी,
1: एक बार फिर ईद मुबारक. अल्लाह ताला आपके सारे जितने भी अच्छे काम है अल्लाह कबूल फरमाए अपने घर में, और हमारे जितने भी लिस्नर है, जितने भी लोग है जिन्होंने भी कॉल की या सुन रहे हैं, सबको ईद मुबारक.
0: बहुत बहुत शुक्रिया करीम भाई. और कुछ कहना चाहेंगे?
1: कहने के लिए बस यही है, जो ईद जो आया और इसका सबसे बड़ा पैगाम यही है कि देखो ना, हमारे नबी लोग अपने बच्चे की कुर्बानी तक तैयार थे, उन्होंने चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. बस जो अल्लाह ने कहा उन्होंने खुद वो एक्सेप्ट किया, उसके बच्चों ने भी एक्सेप्ट किया. इससे सिर्फ हमें ये चीज बताया जा रहा है कि ये जो हमारा जो इस्लाम है, दीन है, ये अमन का पैगाम है, ये बख्शने वाला है, माफ कर देने वाला है. तो कोशिश यही है कि इसमें बंदा खुशियां भी बांटे, जिस ये नाराजगियां ये चीजें ये नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में. जब हम अपने आप को मसलन ऐसा थे, एक इंसान, इस्लाम तो दूर की बात है, एक अच्छा इंसान अगर हो वो भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता. तो मैं, मेरे कहने का मकसद यही है, मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि बख्शना सीखो, कोई आपको तकलीफ दे तो भी बख्श दो. और अगर किसी के साथ नाराजगी है, पहले से ही आपको नाराज कर चुका है, बख्श दो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो अपनी फैमिली में भी हो सकता है, बाहर का बंदा भी हो सकता है. यानी हर बंदा अगर ये चीज अपने आप में लाए ना, बख्शना सीखे, जिसने तकलीफ दी बोलो बस खैर है, माफ कर दिया, खुद भी सेहतमंद रहेगा, खुश भी रहेगा वही भी, और यही असल इस्लाम है और यही असल इंसानियत है.
2: सही हो गया.
1: तो कहने के लिए बहुत कुछ है, ये तीन चार बातें मैंने सही समझे इसलिए आपके साथ शेयर किए मैंने.
0: चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया करीम भाई, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है अब, लेकिन सुबह में बात होगी आपसे, ठीक है?
1: इंशाल्लाह. सुबह कितने बजे आप आएंगे?
0: सुबह 6 to 9.
1: 6 to 9
0: जी, 6 to 9.
1: अच्छा, वेद भाई का टाइम पकड़ लिया.
0: जी जी बिल्कुल. सुबह 6 to 9 मुलाकात होगी. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़. रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर करीम भाई, और इसके साथ देखते हैं कि कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: हेलो. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात.
0: जी, क्या हाल चाल है आपके?
3: जी अल्लाह करम, आप कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक,
3: अल्हम्दुलिल्लाह. हम सबको अपनी जुबान
0: से जी जी, आप
3: काफी अरसे के बाद आपसे
0: आसिफ बात कर रहे हैं.
3: जी बेशक.
0: मैं अच्छा, पता है क्या, मैंने 2-4 दफा मतलब जो ना आपका जिक्र भी किया, मुझे थोड़ी सी तशवीश भी थी आपकी, वो आप समझ गए होंगे किस वजह से, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह चले, आपसे आपकी आवाज़ सुनी ना तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा. अल्हम्दुलिल्लाह.
3: दरअसल बात ये थी कि मेरा जो है जॉब अंदर में था, एयरबेस के अंदर में.
0: जी जी जी जी.
3: तो 28 फरवरी से लेकर के टिल आज तक मैं जो है पे था.
0: हाँ हाँ, सही.
3: और
0: सही.
3: पहले भी मैंने आपको बताया था कि घर में सिर्फ एक ही रेडियो चलता है.
0: जी जी जी
3: जी जी. तो दूसरे किसी रेडियो की गुंजाइश होती ही नहीं है.
0: हाँ.
3: तो आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से जो है वापस अपने जॉब पे गए हैं.
0: अच्छा,
3: तो बस ये वापसी का वक्त हमारा है.
0: सही,
3: तो मैंने
0: सही.
3: बोला आज जो है अपनी बहन से बात कर लिया जाए. और
0: जबरदस्त, मुझे सीरियसली मतलब काफी दिमाग में था कि यार मतलब किससे पूछूं, कोई और है भी नहीं लिंक में, लेकिन एक आपकी फिक्र थी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपसे बात हो गई. गुड, जबरदस्त. और आज हमारा आखिरी शो भी है.
3: वही तो, मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा कि आज आपका आखिरी शो है.
0: जी, आज आखिरी है क्योंकि अब हम सुबह 6 बजे से आ जाया करेंगे.
3: अच्छा, विवेद भाई की जगह पे आप आ रही हैं?
0: हाँ, मतलब मैं और नाजिया होंगे, और अभी बीच में अच्छा, कबीर कर रहा था. जी, तो बस ये बदलता रहता है.
3: ड्राइव थ्रू चल रहा था करीब भाई का. जी
0: जी जी जी, जी. तो ऐसा है.
3: कोई बात नहीं, अल्लाह हम सबों को अपनी जुबान में रखे और दुआ में शामिल रखे आप.
0: जबरदस्त. और आपसे इंशाल्लाह ताला अगर सुबह में आप जा रहे होते हैं सुबह 6 बजे के करीब, तो जरूर कॉल कीजिएगा.
3: इंशाल्लाह मैं 6 बजे आपसे जरूर जो है रब्ता करूंगा. कल से है ना?
0: जी जी, कल से.
3: बेशक बेशक, मैं रब्ता करूंगा. बस आपसे ये इल्तिजा है कि दुआ में हमेशा शामिल रखे.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
3: मुसलमानों को अल्लाह अपनी रहमान में रखे.
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, आप दुआओं में शामिल हैं. और तकरीबन ना मेरे जहन में हर हमारे प्रोग्राम में शामिल होने वाले जितने लोग होते हैं वो रहते हैं. कोई नहीं आ रहा हो या जो कुछ भी हो, तो वो जहन में होता है कि मतलब वो कहाँ है. तो आपकी जैसी मैंने आवाज़ सुनी ना, मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट मतलब बहुत अरसे से कर रही थी, लेकिन वही ये मसरूफियत थोड़ी सी हो जाती है इस तरह की.
3: चलिए जी, बेशक बेशक,
0: शामिल रहिएगा इंशाल्लाह ताला. सुबह में भी आपसे बात करते रहेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा आसिफ साहब, ठीक है?
3: आप भी अपना ख्याल रखिए. चलिए, अल्लाह हाफिज़.
0: अल्लाह हाफिज़. थैंक यू जी.
3: अल्लाह
0: हाफिज़. रही जी, तो हमारे साथ अच्छा हुआ, बड़ा जबरदस्त हो गया कि शुरू में हमारे साथ होते थे हमारे कॉलर, और आज भी इनसे बात हो गई आखिरी शो में, तो ये बहुत अच्छी हो गई बात. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम सलाम, कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रहे हैं?
4: मुदस्सिर बात कर रहा हूँ.
0: जी मुदस्सिर, ठीक ठाक हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ईद मुबारक.
0: आपको भी ईद मुबारक. कैसी गुजरी आपकी?
4: मुबारक. अल्हम्दुलिल्लाह, ईद बहुत अच्छा गुजरी. और आपकी कैसी गुजरी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र कि अच्छी गुजरी.
4: अच्छा, मैंने सोचा कि आज फोन करेगा तो फिर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा फोन करने का.
0: अच्छा, सुबह 6 to 9 क्या मसरूफियत होती है आपकी?
4: मेरा जो काम का शेड्यूल है वो 12 o'clock है.
0: अच्छा, 12 से शुरू होता है आपका?
4: जी जी, मेरा भी कल से 12 o'clock से स्टार्ट हो जाता है.
0: सही सही. तो सुबह में आप सो रहे होंगे फिर?
4: तो लाजिम सो रहे हैं, तो रात को 1 to 2 o'clock काम होता रहेगा.
0: ओह अच्छा अच्छा, सही सही.
4: तो उस टाइम तो लाजिम सो रहे होंगे.
0: ठीक,
4: फिर भी हम कोशिश करेंगे कि शेड्यूल चेंज करेंगे.
0: चलें, कभी अगर मौका मिले इजीली तो फिर आप जरूर कॉल कर लीजिएगा, वरना भाई नींद पूरी कीजिएगा, वो भी बहुत जरूरी है.
4: जी जी जी, वो तो बहुत जरूरी है.
0: हाँ बिल्कुल ऐसा ही.
4: बस थोड़ा गर्मी आ रही है ना, तो इसकी वजह से ये काम का जो शेड्यूल में डोल है ये चेंज हो रही है।
0: सही सही।
4: कभी ये ईद दिन हमारा ईद की छुट्टी था, ईद का दिन का, तो बस ये तो अच्छा वो अच्छा दिन तो अच्छा गुजरा। गर्मी भी थोड़ा कम थी था ईद में।
0: ऐसे ही है।
4: जी
0: जी जी।
4: और
0: अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह
4: ठीक।
0: जी जी
4: अल्लाह का शुक्र। चलो ठीक है, सही है।
0: चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई आपकी कॉल का।
4: अल्लाह
0: जी। तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स आ गए और अब हम बढ़ते हैं एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ।

और इसीलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा।

हाय कि दिल धड़के उमर की उठा कड़कती कमा कातिल अदा जालिम हया।

0: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: राइट वेलकम बैक आप सुन रहे हैं डियर फैमिली विद आरजे महविश खान और मैं आपके साथ एक दफा फिर से मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं आप हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पे और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे इस वक्त देखते हैं मैसेज आपका तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु क्या हाल है नींद का क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है और मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु गुड इवनिंग और होप आप अच्छे होंगे कैसे आप पहले पूछा था वेलकम टू द शो डियर फैमिली दिल से देसी हैप्पी संडे इवनिंग और ईद की छुट्टियां कैसी गुजरी ईद की छुट्टियां कब थी भाई जो छुट्टियों का जिक्र कर रहे हैं आप हमारी मतलब ईद अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियां उठे हैं ईद की छुट्टियां तो हमें जुमे हफ्ते को मिलेगी अब इंशाल्लाह और कहते हैं कि आपको ईद मुबारक का विश नहीं भेज सका ईद शोज के दौरान सॉरी आपको फैमिली को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक बाकी जो आपने लिखा है पढ़ती हूँ उससे पहले हम कॉलर को ले लेते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो आए और चले गए चले जी तो कोई मसला नहीं हम मैसेज पहले कंप्लीट करते हैं अच्छा जी तो कह रहे हैं कि मावा जी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है कि डियर फैमिली का आज लास्ट एपिसोड है बहुत ही खूबसूरत शो बहुत ही ज़बरदस्त शो मिस्ड इट और उम्मीद करता हूँ कि समर के बाद फिर से सीज़न 2 के साथ वापस आएंगे इंशाल्लाह वैसे मुझे भी पर्सनली बहुत मज़ा आया सीरियसली और अगर होता है तो इंशाल्लाह क्या ही बात है ये लेकिन कुछ कह ही नहीं जा सकता कि हम लोग कब आएंगे मतलब किस वक्त में आएंगे सितंबर में तो उसका कुछ आइडिया तो नहीं है लेकिन अगर हो तो अच्छा है मज़ा रहेगा और इसके साथ ही एक बात और आप कहीं भी और किसी भी शो में रहेंगे शो हिट रहेगा उतना ही अच्छा उतना ही खूबसूरत इंशाल्लाह और मैं तो इंशाल्लाह आपको सुबह सुनूंगा फ्रॉम 8 एएम से क्योंकि मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है चलें फिर हम इंशाल्लाह आपका वेट करेंगे मोहम्मद यूसुफ और इसके साथ ही जी एक भाई है हमारे वो पूछ रहे हैं अच्छा इसके लिए ना आप ऑफिस कॉन्टेक्ट कीजिएगा नाम आपका मैं देख लेती हूँ क्या है ताकि आप समझ जाएँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ उम्मुल लिखा हुआ है तो आप प्लीज़ ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर लीजिए इसके साथ ही जी मुमताज़ अहमद हैं और कहते हैं अस्सलामुअलैकुम महावश खान मैम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप बताएं मुमताज़ आप कैसे हैं अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशहाल रखे आमीन और महावश मैम आप चाहे इवनिंग में रहो चाहे मॉर्निंग में आपके साथ रहेंगे मैम आपका हर प्रोग्राम सुनता हूँ सिर्फ कॉल नहीं करता हूँ मुमताज़ बहुत बहुत शुक्रिया बस आप साथ रहें कभी कभी मैसेज कर दिया करें तो अच्छा लगता है जी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं भाई और जल्दी जल्दी कॉल कीजिए अच्छा हमारा बिल्कुल लास्ट एपिसोड है इसके बाद फिर आपसे सुबह में ही मुलाकात होनी है और हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो सुबह में नहीं पाए जाते हो मतलब वो सो रहे होते हो तो जो जो लोग हैं ख़ास तौर पे मतलब जो इस शो के दरमियान रहे मैं चाह रही हूँ कि उन सब की तो ज़रूर कॉल आए और कुछ लोगों की काफ़ी दिन से कॉल नहीं आई है तो उनकी तो आज ज़रूर कॉल आनी चाहिए तो मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का आप लोग जल्दी से कॉल मिलाने की कोशिश करें और जब तक कोई कॉल आती है जब तक हम एक और म्यूज़िकल नंबर सुन लेते हैं

0: Right. Welcome back. आप सुन रहे हैं 107 FM, Dear Family, और हमारे साथ हैं कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: जी अस्सलाम वालेकुम महबीर जी, आपका स्वागत है एफएम 107 पे. दिल से देसी कही है, क्या हाल चाल है आपके?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. आप बताएं भाई, आपका कैसा रहा? आपने मेरा तो स्वागत कर दिया, मैं आपको भी स्वागत मतलब आपका भी कर लेती हूँ.
1: एकदम परफेक्ट है ना बहन?
0: हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल परफेक्ट.
1: तो नौकरी पक्की समझो?
0: हाँ हाँ समझ लीजिए.
1: चलो ठीक है बहन, तो भी बताइए कैसा रहा आपका ईद का त्योहार, कैसे गुजारा आपने, कितने बकरे खाए?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बकरा तो हमने ऐसे कोई बकरे नहीं खाए. क्योंकि हम उनमें शुमार होते हैं जो ईद के दिन भी जो है ना वो मटन या फिर बीफ इतना खाने के बजाय चिकन ही खा रहे होते हैं.
1: अच्छा, मतलब तुम मेरे कैटेगरी में आते हो.
0: आप भी उसी कैटेगरी में?
1: जी जी, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ.
0: सही
1: करेंगे, मुदीर हमारा मौजूद नहीं रहता ना, घर में भाग जाता है.
0: अच्छा अच्छा. नहीं नहीं, हम बेसिकली होता क्या ना, ईद के दिनों में घर पे ठहरना जरा कम ही होता है, तो फिर ये होता है कि ये जो चीजें ना ये बाद में करनी है हमने, अब वीकेंड वगैरह पे कुछ. हाँ, क्योंकि वो शो करना है, फिर बाहर कहीं जाना है, तो उस तरह का नहीं घर पे हो पाता सिलसिला.
1: आज आपने जो गाना चलाया राहत फतेह अली खान का, पहली बार मेरे को राहत फतेह अली खान के गाने में इतना मेरे को वो फील हुआ.
0: क्या फील हुआ?
1: वीडियो बना बता दिया आपने. सोलम तारी की आवाज आ रही थी.
0: हाँ नहीं, ये बेसिकली ओएसटी था ना. अच्छा अच्छा. और बताएं भाई, आसिफ आपके कैसे गुजरे दिन? आपने मतलब जो है कहाँ कहाँ घूमे कि नहीं घूमे?
1: जी नहीं, कहीं भी नहीं, बस एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से आया.
0: अच्छा अच्छा.
1: लगातार का दिन गया 2 से 3 बार बस.
0: अच्छा अच्छा, ये सिलसिला रहा, उधर ही जाना होता रहा बस.
1: हाँ, बाकी और कुछ, क्योंकि दोनों भी जो थे मेरे सरपंच जी वो दोनों चले गए थे सफर.
0: हाँ सही, दर्पण मतलब फ्रेंड्स राइट?
1: जी जी जी, मतलब
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, सही सही सही सही.
1: तो वो लोग चले गए घूमने फिरने, तो हम तो आजाद हो गए, फिर तो मस्त रूम पे सोए खाए पिए.
0: सही. अच्छा, दर्पण फ्रेंड है तो मित्रों क्या है?
1: नहीं, सरपंच यानी
0: सरपंच. अच्छा, सरपंच बोला आपने. ओके ओके, मुझे लगा दर्पण बोला है.
1: नहीं नहीं, दर्पण नहीं, सरपंच हमारे सरपंच जी.
0: अच्छा, वो क्या
1: सरपंच कहता हूँ.
0: अच्छा अच्छा.
1: एक दिन अपने मुदीर को मैं बोला सरपंच जी, बोलता हूँ वो मेरे को बोलता हूँ क्या हो गया?
0: अच्छा,
1: सरपंच जी मेरे को जाना है घर पे. तो बोलता है सरपंच क्या होता है? सरपंच माने सर आपको मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ बहुत सारी. तो बोलता नहीं, ऐसी रिस्पेक्ट कर दो मेरे को. तो नाम समझ में नहीं आया एक्चुअली.
0: सही सही, ठीक वो होता है ना.
1: जी बहन, और क्या हाल चाल आपके?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बिल्कुल ठीक ठाक. बस आज लास्ट एपिसोड है हमारी इस वक्त की, तो थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा कुछ मतलब वो
1: आज सबके दिन अलग अलग लग रहे हैं. सुबह सुबह कबीर भाई आ गए.
0: हाँ, सुबह तो वो होते ही हैं, कबीर तो हो ही रहे थे, लेकिन अब कल से वो शाम में होंगे, तो वो आज सुबह खुशी खुशी गए होंगे वापसी में ना, या फिर सुबह नहीं आना कल से.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: हाँ, तो कल से वो इंशाल्लाह आपको शाम में मिलेंगे, मैं और नाजिया आपको सुबह में मिलेंगे.
1: हाँ जी, सुबह सुबह में फिर आप लोगों को सुनना पड़ेगा ना बहन.
0: हाँ, हमें सुनना पड़ेगा, मजबूरी है. कोई और चारा नहीं है भाई.
1: जी जी, तुम बोल दिया दिल की.
0: ऐसी ऐसी ऐसी, आपकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है. ये सिलसिला है. और भाई, तो फिर इंशाल्लाह कल से अब कितने बजे, सुबह कितने बजे हो जाती है आपकी, पहले ये तो बताएं.
1: मेरी 6 o'clock जिस टाइम पे.
0: गुड, जबरदस्त जबरदस्त.
1: सेम टाइम पे फिर 6 o'clock से जो मेरा वेकअप टाइम होता है, क्लोज टाइम सीधा रात में 11 बजे.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, 6 से 11 मुस्तकिल जागते रहते हैं.
1: जी जी, धंधा है.
0: क्या बात है, जबरदस्त.
1: कस्टमर आते ही रहते, जाते ही रहते.
0: चलें जी, गुड हो गया ये तो, जबरदस्त जबरदस्त. चलें, तो आप तो मतलब कोई शो मिस ही नहीं करते होंगे ना?
1: मैं शो मिस मतलब कैसा है, मैडम जब बैठती है हमारे गाड़ी में तो वो कैसा उनका मिजाज थोड़ा कुरान शरीफ लगा के सुनती है. तो उसके बाद में फिर हमारा मिजाज कैसा है मालूम, कुछ है नहीं काम धंधे, तो फिर उसके बाद में बस यही गाड़ी में जब तक है तो एफएम चलता है.
0: चलें, गुड हो गया, जबरदस्त. तो चलें, हम आपका वेट करेंगे सुबह सुबह कि आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा. ठीक है,
1: सुबह आप कहानी सुनाओगे कि नहीं? कहानी
0: नहीं, कहानी कहाँ सुनाएंगे हम, कहानियाँ नहीं सुना पाते।
1: कबीर भाई को बोलना पड़ेगा भाई।
0: हाँ, कबीर भाई को बोलेंगे रिकॉर्ड करके भेज दें। अच्छा है,
1: अच्छा है। आप सुबह में आएंगे तो अच्छा रहेगा।
0: हाँ, देखते हैं अब इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वही है कि जब कोई भी चीज़ नई नई शुरू हो रही होती है ना, तो उस पर कन्फ्यूजन होती है, उस पर पता नहीं होता कैसे चलेगा, एडजस्ट होते होते टाइम लगता है। तो अभी देखिए, अल्लाह इंशाल्लाह मालिक है कि अल्लाह ताला कुछ बेहतर करवा ही दे, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह से।
1: बिल्कुल बहन, बिल्कुल बिल्कुल, आपको अल्लाह पाक हमेशा हिम्मत दे, ताकत दे,
0: इंशाल्लाह आमीन। चलें भाई, तो फिर अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर आप कल से सुबह में मिलते हैं, ठीक है?
1: इंशाल्लाह जरूर।
0: थैंक यू जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा आप भी अपना आसिफ जी। तो हमारे साथ भाई हमारे कॉलर थे, और आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि जितने भी हमारे कॉलर सब लोग जुड़े रहे, सब लोग ज़रूर कॉल करें। आज लास्ट एपिसोड है, और कहानी घर घर की टॉपिक, अभी मुझे कोई पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कि मेरे जहन में था कि लास्ट एपिसोड है ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ भारी भरकम टॉपिक नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ बस एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है आज के शो को, तो इसीलिए हमने ये कहानी घर घर की रखा। अच्छा जी, अगर वैसे देखा जाए तो हमने, चूंकि पूरे फैमिली के जितने भी मैटर्स हैं, भाई बहन इधर उधर, हमने सब चीज़ों को ही तकरीबन कवर किया, तो ये है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत सारी बेहतरी आएंगी घरों में, और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: जी। हमें आपके साथ क्या हाल है भाई?

0: एक ही घर हो तो ऐसा.
1: तो इसका एंडिंग ये रहेगा,
0: एक
1: घर होते ऐसा 107
0: के साथ. ओए होए होए, क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त.
1: और इंशाल्लाह मॉर्निंग में तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह, क्योंकि अपना तो मॉर्निंग का शेड्यूल है ड्यूटी वगैरह का. और अभी तो गर्मी की वजह से जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें भी ड्यूटी चेंजिंग होती है ना, तो जो 6 बजे जाने वाले रहते हैं वो सुबह 4 बजे जाएंगे, और भी उनको 10 बजे ब्रेक मिलेगा, फिर 3 बजे आगे वापस जाएंगे शाम को आएंगे. तो इसी तरह से इंशाल्लाह हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा पहले जैसा ही. और कुछ और नया नया कुछ अच्छा अच्छा
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या रहता है इंशाल्लाह. बस दुआ में याद रखिएगा आप कि अच्छा चला जाए इंशाल्लाह.
1: जी जी जी, कुछ गेम वगैरह ऐसे जो आपके
0: हाँ, वो
1: जो
0: तो होगा से? वो होगा हाँ, गेम तो होगा.
1: आपका प्रोग्राम था ना पहले
0: जी, गुड मॉर्निंग,
1: आते थे पार्टिसिपेटिंग का के बात का ऐसा कुछ सारे कुछ सब लोग पार्टिसिपेट करते थे और फिर लिस्ट भी वोट करते थे, बड़ा मजा आता था.
0: हाँ वो तो खैर मतलब एक अलग ही मतलब पूरा दौर गुजरा है. अब देखें अब क्योंकि उस फॉर्म से निकले हुए मुझे काफी अरसा हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं परेशान हूँ कि अब देखें कैसा रहता है. और मुझे लग रहा है शहर सलीम निकल गए, कहीं चले गए, वो अचानक से कॉल कट हो गई उनकी. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी कैसे हाल चाल है आपके?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये से बात कर रहा हूं.
0: जी मैं समझ गई थी कि आप यूसुफ बात कर रहे हैं. क्या हाल है, कैसी गुजरी आपकी ईद?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस लास्ट एपिसोड था तो थोड़ा बात कर लेने.
0: जी नहीं बिल्कुल आपने अच्छा किया कि कॉल कर ली. और यूसुफ आप बताएं कि कैसा रहा, आपको कैसा लगा डियर फैमिली?
2: वो तो मेरा हमेशा ये अच्छा ही लगा है, मैंने हमेशा तारीफ की है. शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया भाई.
2: और मुझे उम्मीद है मामी जी आप जहाँ भी रहेंगे जिस शो में रहेंगे इंशाल्लाह
0: बस दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा क्योंकि बहुत अरसा हो गया ना, 3 घंटे का शो भी नहीं किया मैंने बहुत अरसे से.
2: जी और मैं वही पूछने वाला था कि क्या ये टॉपिक बेस्ड होगा या क्या कॉन्सेप्ट क्या होगा शो?
0: अच्छा बेसिकली कॉन्सेप्ट हाँ मॉर्निंग शो बेसिकली वही होता है कि न्यूज अपडेट्स वगैरह होती है, फिर उसमें हम गेम भी रखेंगे क्योंकि मॉर्निंग में होता है, और फिर उसके साथ ही एक हमारा टॉपिक भी रहेगा बीच में, और कुछ मतलब अच्छे खासे सेगमेंट्स हैं, कितने 11 कुछ सेगमेंट्स हैं, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें इंशाल्लाह ताला, कुछ नाश्ते वगैरह के भी हवाले से बात होगी सुबह सुबह, तो ये काफ़ी कुछ है उसमें. हाँ
2: जी इंशाल्लाह 8 बजे से तो मैं सुनने जाई, और आप इतना परेशान भी मत है इंशाल्लाह कामयाबी जरूर.
0: बस दुआ कीजिएगा क्योंकि वो थोड़ी सी एक ना हर दफा में नर्वसनेस होती है मुझे.
2: नहीं आप तो पहले 10 साल पहले तो शो कर चुकी है ना, सुबह का शो तो बहुत ही तब पहले था, नए नहीं थे तब तो हम लोग सुनते थे नया दिन नया शो कुछ.
0: जी जी हर दिन नया दिन जी, और फिर गुड मॉर्निंग कतर. जी जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग कतर
2: वो भी मैंने सुना है.
0: जी जी
2: इंशाल्लाह हो जाएगा
0: इंशाल्लाह.
2: लास्ट एपिसोड का थोड़ा बात करना चाह रहा था इसलिए.
0: चलें बहुत अच्छा किया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा यूसुफ, और थैंक्स अ लॉट हमेशा साथ रहने का, सपोर्ट करने का, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू
2: जी, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम सलाम रही जी. तो हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ, और इसके साथ ही एक और हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कि कौन है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं
0: आप? अल्हम्दुलिल्लाह नीका, आप कैसी हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: ईद मुबारक.
3: आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक.
0: और कैसा भाई, क्या चल रहा है इस वक्त?
3: क्या चल रहा है, आपको कॉल कर रही हूँ.
0: और कहानी घर घर की आप परेशान हो गई थी, ये क्या टॉपिक है? ये बेसिकली मुझे हर दफा ना हंसी आ रही होती थी, अली रजा जब भी बोल रहे होते थे कि वाकई मतलब वो बोल रहे होते थे यार आप तो बिल्कुल ही कोई मतलब ना इस पूरी के पूरे शो में फुप्पो बनी हुई है, आपको सबके घरों की बड़ी फिक्रें होती हैं, तो मैंने कहा चलो आखिर में ना यही वाला नाम रखते हैं फॉर फन.
3: यार पप्पो तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, मैं तो कहती हूँ बड़ी अच्छी होती है.
0: हाँ सही बात है,
3: मेरी तो पुप्पियाँ बहुत ही अच्छी थी.
0: मेरी भी पुप्पियाँ बहुत अच्छी हैं. और जो ये भी बिल्ला वजह की बात है, ये फुप्पियों को बहुत फिक्र होती है, सब फुप्पियों को फिक्र नहीं होती, हमारी फुप्पियों को तो कोई ऐसी फिक्र नहीं होती थी हमारी, मतलब कोई नेगेटिव वे में नेगेटिव वे में फिक्र नहीं होती थी उनको, बल्कि हमेशा मतलब मुझे सीरियसली अगर मैं देखूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों का एक अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन हमारी मेरी फुप्पियाँ मेरे लिए जितनी ज़्यादा कंसर्न रही हैं, इवन मतलब क्योंकि मेरी फुप्पियों के जो बच्चे हैं ना वो तकरीबन इतने हैं जितनी मेरी खालाएं वगैरह हैं, मतलब वो बड़े हैं, तो मेरी चचा और मेरी जो फुप्पो की बेटी है ना एक, वो दोनों सेम एज के हैं, मतलब वो चचा उनसे छोटे थे तो, और फुप्पो की बेटी जो है वो काफ़ी बड़ी हैं, तो वो उन लोगों का बिहेवियर हमारे साथ ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ खास तौर पे, कि अभी जैसे यहाँ पे हालात ख़राब हुए थे सब कुछ, तो बड़ी मतलब परेशान और

0: और बेटा बेटा करके, क्योंकि हम लोगों में एज डिफरेंस अच्छा खासा है, तो वो इस तरह उनके बच्चे भी उतने ही कंसर्न रहते हैं जितनी पहले मेरी फुप्पियाँ कंसर्न होती थी।
1: ऐसा ही मैं विश, जैसे आप बता रही ना तो मुझे अपना टाइम याद आ रहा है। मेरी अम्मी भी ऐसे ही था कि मेरी पुप्पो जो है, जो हमारे पास होती थी वहाँ इस्लामाबाद में, तो उनके बच्चे भी, मेरी अम्मी और उनकी बड़ी बेटी का जो है एज डिफरेंस बहुत कम था, 5 साल का। तो ऐसे ही वो मेरी पुप्पो, माशाल्लाह मेरी सारी पुप्पो बहुत अच्छी थी, तो मुझे रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में बहुत अच्छे मिले हैं, जो भी मिला है, दोस्त मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं, पुपियाँ चाचे ताए सब, मतलब सब ही लोग मुझे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह के ससुराल भी अच्छा मिला लकीली। नहीं तो लोग होते हैं ना, अक्सर बात होती है तो उसमें लोग कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ससुराल अच्छा मिलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ससुराल भी अच्छा। लेकिन काफी लोगों से जो सुना है कि बहुत से लोगों के साथ, देखें पांचों उंगलियां मैरिज बराबर नहीं होती
0: और वो हर बंदे की ना एक अलग तरीके की बात होती है, और मैं समझ रही हूँ आप ये बात क्यों कर रही हैं जो अंदाजा हो रहा है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि वैसे मैं, मतलब मैं एक वैसे ही तस्करा कर लूँ कि हम जब भी कोई खातून अगर ये इस हवाले से बात कर रही होती है कि ससुराल भी ये मामला होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ही हवाले से बात कर रहे हों। हम एक ऑब्जर्वेशन होती है उसके हवाले से बात कर रहे होते हैं, कहीं पे किसी के साथ कुछ देखते हैं तो उसके हवाले से बात कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली मतलब उसका बिल्कुल भी ये पर्पस नहीं है किसी को बुरा साबित करना या कुछ भी। लेकिन बेहतरी की गुंजाइश ना हर रिश्ते में होती है, उसमें इंसान को अपने आप को भी खड़ा करना चाहिए कि भाई हमारे क्या मामलात हैं, क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। और इवन मतलब खासतौर पे बात की जाए ना अनिका, इस वक्त मेरी आपकी, तो एक हम लोगों का वो वाला फेज़ अब आ गया है कि जहाँ पे हमने काफ़ी हद तक ये मामलात होते हैं ना शादीशुदा ज़िंदगी के, तो ये शुरू के 3-5 साल 7 साल इस इतना अरसा होता है जिसमें अगर किसी को सरप्रेस भी किया जा रहा है ना तो इतना ही किया जाता है यूजली। उसके बाद से वक्त चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा ये, तो वक्त बदल जाता है, फिर उसके बाद इंसान की अपनी एक वो शुरू हो जाती है कि अब हमारी जर्नी है कि कुछ अरसे के बाद हमने उस जगह पे खड़ा होना है जिस चीज़ को हम तनकीद अगर उसके ऊपर कर रहे हैं, तनकीद बराए मतलब जो है ना वो क्या कहना चाहिए, बेहतरी इस्लाह के तौर पे अगर हम तनकीद करें, तो कल हम उस जगह पे हम खड़े होंगे। तो हम बेसिकली अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, ये नहीं कि हम किसी और के ऊपर उंगली उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि यही चीज़ होनी चाहिए। बहरहाल आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, घर घर की कहानी, घर घर की जो होनी चाहिए वो प्यार मोहब्बत में ही होनी चाहिए।
0: Exactly.
1: लेकिन इंसान अपने, अगर बहुत सी जगहों पर होता है ना, जैसे भी मैं बात कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिश्ते अच्छे मिले, तो कुछ जगहों पर होता है जहाँ पर नहीं अच्छे लोगों को मिलते। तो हर इंसान को, मैं हूँ या आप है, हमें पता है अपने हक का पता होता है, हमारा क्या हक बनता है, हमें अपने फराइज का पता नहीं होता।
0: एग्जैक्टली,
1: जहाँ पर इंसान को अपने फराइज का पता चल जाए ना, वहाँ पर से बेहतरी शुरू हो जाती है,
0: हमारे फराइज
1: क्या है।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली।
1: अब हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा फला रिश्ते का मुझ पर क्या हक बनता है, ठीक है, मैं हक तो मुझे पता है कि अच्छा मैंने हक देना कहाँ है, मतलब मेरे फराइज कहाँ है। अगर आप, सॉरी एक्चुअली थोड़ा मेरा गला
0: पड़ी, मसला नहीं,
1: अगर आपको अपने वो भी पता चल जाए ना कि फराइज कि मुझ पर लोगों का क्या हक बनता है, तो ये वहाँ पर आसानी हो जाती है।
0: Exactly. और फिर दूसरी एक और चीज़, कल ही जैसे ना रात में मेरी अपनी बहन से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि मतलब कोई होता है, आपको पता है हर जगह पे कोई एक ना एक इस तरह का करेक्टर होता है, तो वो बेसिकली ये बता रही थी कि उसके हस्बैंड के कोई दोस्त हैं जो हर वक्त ना मतलब उनको अपनी बीवी से शिकायतें रहती हैं, बहुत शिकायतें रहती हैं, और वो मतलब अगर जैसे समझाने की कोशिश उनको करें तो वो आगे से उस पर कह रहे थे कि नहीं देखो मतलब मेरी अम्मी अगर नहीं है खुश या कोई इस किस्म का मामला है तो फिर बताओ, मतलब फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी अम्मी, अपनी अम्मी के खिलाफ तो नहीं जा सकता ना। तो उस पर उसने कहा हाँ ये बात तो सही है, तो मेरी बहन कह रही थी कि नहीं आपको क्या पता कि मतलब उनकी अम्मी बिल्कुल बिल्कुल ठीक होंगी। अब ठीक है अगर हमारे घर पर इस किस्म का कोई मसला नहीं है, मैं उस चीज़ को नहीं फेस करी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं दूसरों को बैठ के ये जज करती रहूं, ये बोलती रहूं कि नहीं उसके साथ मसला है। हमें पता है क्या कोशिश करनी चाहिए कि जहां पे हमें लग रहा हो कि किसी के दरमियान कोई मसला चल रहा है, तो वहां पे हम ये कोशिश करें कि आप घर के मसलों को सुलझाओ, बजाय इसके कि हाँ नहीं ये बात तो गलत करती, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था तुम्हारी बीवी को, या ऐसा तो नहीं करना चाहिए था तुम्हारे शौहर को। उनको बल्कि ये समझाना चाहिए कि भाई गलती दोनों तरफ से हो सकती है, दोनों तरफ इंसान है।
1: ऐसा ही होना चाहिए मैं विश. और घर के बड़े ही होते हैं जो मतलब घर को जोड़ के रखते हैं, और अगर बाहर कोई इंसान बात कर रहा है तो अच्छा और मुखलिस दोस्त वो ही होता है जो अच्छा मशवरा दे और घर को जोड़ सके,
0: जोड़ सके.
1: देखें जरूरी नहीं है, ये हर मर्द को लगता है. अब मैं हूँ, मैं अपने बच्चे की बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, मैं विश आपके बच्चे की भी होगी, ठीक है. अब वो उसके सामने कोई उसकी माँ की बुराई करेगा उसको डेफिनेटली बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना. तो ये हर मर्द में होता है कि उसे अपनी माँ ठीक और आने वाली जो बीवी होती है वो गलत लगती है. लेकिन बीवी गलत नहीं होती है, उसको अकल के साथ समझ के साथ चलना चाहिए.
0: बिल्कुल ऐसे
1: ही. अपनी बहन की एक अलग जगह होती है. देखिए बीवी भी आपके लिए सब छोड़ के आती है, तो घर में नया फर्ज जो आता है घर, देखिए रिश्ते पीछे से सारे चले आ रहे होते हैं. बहन होती है, भाई होता है, माँ होती है, बाप होता है और भाई होता है. यही होता है ना अपने घर में. मेरे घर में भी यही है. अब बाहर का कौन बंदा आएगा, मेरी भाभी आएगी या फिर मैं कहीं भाभी बन के जाऊंगी, ऐसा ही होगा ना.
0: बिल्कुल ऐसे ही.
1: जो नया बंदा आता है मैविश उसको स्पेस देनी होती है,
0: स्पेस देनी होती है,
1: समझना होता है.
0: एग्जैक्टली. और अगर आपके सामने ना, मैं फिर वही वाली बात कर रही हूँ कि अगर आपसे कोई कभी भी किसी और की बात कर रहा होता है, शिकायत कर रहा होता है, तो उस वक्त उसकी उसकी क्या ख्वाहिश होती है कि आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएं,
1: सुने.
0: या फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर जहाँ पे बंदे ने एक बाइस पाला हुआ है ना, तो वो ये चाह रहा होगा कि आप उसकी हाँ में हाँ भी मिलाएं. लेकिन अगर आप वाकई उसका भला चाहते हैं तो आप उसको समझाने की कोशिश करें, ये नहीं कि आप मामले को और ज्यादा बढ़ाएं.
1: जी बिल्कुल. अच्छा मैम, जहाँ से मैंने दर्ज लिया ना, ग्रेजुएट करने के बाद एक छोटा सा हमारा हुआ था, तो हमारी जो टीचर थी उन्होंने कहा कि कहीं पर भी कभी भी आपको कोई फैसला करना हो ना, तो वहाँ पर अपने आप को रखकर फैसला कीजिएगा.
0: बिल्कुल जबरदस्त.
1: पता है हम लोग सोचते हैं अच्छा ये वो ठीक कह रहा है वो, आप सिचुएशन देखो क्या है. अगर मैं वहाँ हूँ तो मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव रहें और दूसरे को भी पॉजिटिव जो है वो अपनी मतलब जो भी आपकी थिंकिंग है आप उस तक दें, उसको पहुंचाएं. और पॉजिटिव मैं समझती हूँ हर चीज़ को रखना चाहिए, ये नहीं कि नेगेटिविटी को आप जो है वो प्रमोट करते जाएं कि ये गलत होगा ये गलत होगा, आप उसको गलत गाइड करेंगे तो आगे. यहाँ पर मेरे सामने एक केस ऐसा हुआ ना, बाद में सब ठीक हो गया. मेरे हस्बैंड वाइफ की डिवोर्स तक होगी मैरिज, बाद में वापस उन्होंने फिर निकाह किया. फायदा क्या हुआ उस चीज का, सब फ्रेंड्स ने कह दिया नहीं भाई वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है. मैं, मेरे साथ उसकी दोस्ती थी, मैंने कहा, मैंने आखिरी टाइम तक मैं विश कोशिश की मैंने उसके हस्बैंड को, जबकि मेरी उसके साथ इतनी सलाम दुआ भी नहीं थी उनसे, उन भाई से. मैंने उनको घर बुलाया और उन्हें कहा, मैंने कहा आप उसे भाई आप फिर सोच लें, ये वक्त वापस नहीं आता. लेकिन उन्होंने नहीं, मुझे सब कह रहे हैं मेरे भाई, मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करती हैं. मैंने कहा ठीक है, माँ की रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, लेकिन आप फिर सोच लें. फाइनली डिवोर्स दे दी. 1.5 साल के बाद एहसास हुआ कि नहीं मैंने गलत किया. बाद में पछताने से क्या होता है मैरिज, कुछ भी
0: सही
1: नहीं
0: बात है. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात है. तो वाकई मतलब हमारी अपने तौर पे कोशिश हर जगह पे ये होनी चाहिए कि हम चीजों को जोड़ के रखें, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है.
1: बिल्कुल, घर घर की कहानी यही होनी चाहिए,
0: यही होनी चाहिए
1: और जोड़ के रखें.
0: एग्जैक्टली.
1: चीजों पर दरगुजर करें, छोटी छोटी चीज को इशू मत बनाएं. जो लड़कियां आती हैं उनको भी मैं समझती हूँ कि छोटी छोटी बात जो होती है ना उठा के सास की शोहर के आगे नहीं ले जानी चाहिए. और शोहर की बात जो है स्पेशली बहुत सी लड़कियों की आदत होती है अपने घरों में जाके करती है मैरिज,
0: नहीं करनी चाहिए.
1: सबसे गलत चीज है, आप अपने शोहर की इज्जत करवाना चाहते हो ना तो उसकी बात अपने तक रखो. अगर कोई भी बात हो रही है ना तो अपने शोहर की इज्जत करवाने के लिए जरूरी है कि अपनी वो बात अपने तक रखो, ना कि अपनी माँ बहन और अपनी सहेलियों के साथ शेयर करो. बहुत गलत चीज है.
0: बिल्कुल.
1: बहुत खराब हो तो फिर बड़ों तक ले जाओ, अदरवाइज खुद सॉल्व करो. मैं तो यही समझ.
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. और थैंक्स अ लॉट अनिका, आपने कॉल किया. थैंक यू जी. और इंशाल्लाह आप देखते हैं सुबह 6 बजे से जागी भी होती हैं या नहीं जागी होती हैं आप?
1: हाँ मैं जागी होती हूँ, इंशाल्लाह 7 बजे कोशिश करूंगी.
0: चलें ठीक है.
1: 7 बजे बच्चे का स्कूल होता है. और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा. डियर फैमिली भी डियर जिंदगी भी बहुत अच्छा था और डियर फैमिली भी बहुत अच्छा रहा. और आगे भी कोशिश करेंगी आप.
0: इंशाल्लाह कोशिश करूंगी.
1: कोशिश नहीं, आप अच्छा कहती हैं. तो बाकी मेरी तरफ से अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी को मैंने हर्ट किया हो तो.
0: अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा है. और इसलिए मैंने थोड़ा सा इस बात की जरा वो भी की है, वजाहत भी की है कि अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो अपनी लाइफ की नहीं कर रहा है, एक माशरे में सुधार के लिए कर रहा है. और हमारे माशरे के मसाइल मौजूद हैं, इस चीज को समझना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. तो मैं यही वजाहत करना चाह रही थी. थैंक यू सो मच अनिका, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. आप भी ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: वेलकम बैक। और हमारे साथ जो हैं कॉलर भी हैं, कुछ मैसेजेस भी हैं, उनको भी शामिल करते हैं। 6 बजे से भाई नसीम तो साथ होंगे, चलें इस बात की तो श्योरिटी मिल गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम मैडम
2: जी। भाई कहाँ थे आप, इतने दिनों से गायब थे, आज आपके कहने

0: पे मैंने शो का नाम रख दिया और बिल्कुल गायब चल रहे हैं, क्या बात है?
1: कुछ नहीं मैडम, बस ऐसी तबीयत सही नहीं।
0: तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है?
1: अभी ठीक है मैडम।
0: चलेंगे, लेकिन अच्छा हो भाई कॉल आ गई रजा की, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था।
1: मैं कह रहा हूँ पिछले 15 मिनट से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आप अटेंड ही नहीं कर रहे। आई
0: हाय, नहीं बस मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप जरूर कॉल करें, क्योंकि आज तो आपके वजह से ही नाम रखा गया शो का। जी
1: मैंने अभी सुना आपने कहा।
0: जी जी, और ये बताएं भाई आप, सबसे पहले तो हाँ भाई ईद मुबारक आपको, कैसी गुजरी ईद?
1: मैडम बीमारी में गुजर गई, तबीयत ठीक नहीं थी काफी बीमार।
0: ओहो, क्या हो गया था?
1: कुछ
0: नहीं, खैर इंशाल्लाह। आप एक तो पता है सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लिया करें, जो सबसे बड़ा मसला होता है वो यही होता है। आपने जो बोली है बात, मुझे जहाँ तक लगा हार्ट ही का है ना आपने?
1: हार्ट का है, हार्ट।
0: हाँ नहीं नहीं, आप अली रजा सबसे पहले ना स्ट्रेस लेना छोड़ें, अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हवाले कर दें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सब कुछ सही रहेगा, अल्लाह ताला बिल्कुल सही रखेगा सब कुछ, ठीक है?
1: इंशाल्लाह।
0: आप कम उम्र हैं अभी बहुत, और आपने इंशाल्लाह ताला आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी देखनी है और बहुत तवील देखनी है, बस आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें और खुश रहा करें हमेशा।
1: खुश रहने वाली बात बताऊं मैं आपको एक, मैं परसों क्या सोच रहा था, बीमार लेटा हुआ, आने वाली जनरेशन के बुजुर्ग जो होंगे वो हम लोग होंगे।
0: अब सोच ले क्या हाल होगा।
1: जो खुद अभी तक बच्चे बने बैठे हैं वो जनरेशन के बुजुर्ग होंगे।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इंशाल्लाह, बस इंशाल्लाह मेरी दुआएं अब तो और हर वक्त आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला, लेकिन आपने खुद से ही एफर्ट करनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है?
1: कोशिश कर रहा हूं मैडम, डॉक्टर ने भी यही बोला है कि स्ट्रेस वगैरह ना लो, जो होना है वो होगा, तुम्हारे साइड से कुछ भी होगा,
0: कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए हर चीज को अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ें और बिल्कुल रिलैक्स रहें, ठीक है? और इंशाल्लाह ताला सुबह में 6 से 9 अगर जागे होते हैं हमें जरूर कॉल कीजिएगा, ताकि मुझे आपकी खैर खबर भी पता चलती रहे, और दुआ में मैं याद रखूंगी, लेकिन वही चीज है आपके अपने हाथ में है ये चीज, बिल्कुल अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखना है और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना आगे से, ठीक है? ये समझे कि आपकी बहन की एडवाइस और आपने लाजमी सुननी है इंशाल्लाह ताला। चले ख्याल रखिएगा अली रजा, बस एक कॉलर और हैं होल्ड पर, उनसे बात करते हैं एक मिनट और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होती है, लेकिन थैंक्स अ लॉट आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा, ठीक है? ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी। रे जी तो हमारे साथ थे अली रजा, और आप लोग भी, सब लोग दुआ भी कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, अली रजा की जितनी भी एक तो मुश्किलात परेशानियां हैं अल्लाह ताला सब की सब बिल्कुल दूर करे, और अल्लाह ताला हमेशा इनको हमेशा खुश खुर्रम रखे। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह कितनी नरम दिल हैं, कितनी कहते हैं ना अच्छी पुफी भी होंगी आप और अच्छी खाला भी होंगी।
0: क्यों?
2: नहीं ये बात तो है, आपके दिल में या उसमें ना एकदम फीलिंग आ जाती है। अल्लाह ताला हमारे भाई को बिल्कुल से तंदुरुस्ती दे, इसी तरह हंसा मुस्कुराता लाए। और वो जो भी हमारी एक सिस्टर सुना रही थी ना वाक्य, ये शायद आप सुना रही थी कि वो बहन बता रही थी कि वो कह रहे हैं कि यार मेरी अम्मी जो है ना वो खुश नहीं है। उसको कहना था भाई मसला अम्मी का नहीं है, मसला मेरी सास का है, अम्मी तो मसला ही कोई नहीं है। तो हमेशा ना बात जब भी कॉन्फ्लिक्ट की हो, दूसरे आदमी की बात, दूसरे पर्सन की बात हमेशा सुननी चाहिए, बेशक गलत ही क्यों ना हो, उसको ना एहसास रहता है कि मेरी बात सुनी गई है, हाँ उसके बाद आप फैसला करें, लेकिन कहे ना कि सर्टिफिकेट दे दे, नहीं वो तो बिल्कुल वही सही होगा, तो वो उसके उसमें ना एक ग्रीवनेस रहती है उसको। बाकी आप सुबह आ रही हैं, जबरदस्त है भाई, बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग कंप्लेन करते हैं ना वक्त नहीं है, खुल के खेलें, खुला मैदान है, टेस्ट मैच होगा
0: इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह बिल्कुल, बस आप भी दुआ करते रहिएगा कि इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा जाए इंशाल्लाह, क्योंकि अब काफ़ी अर्सा हो गया है मुझे, मेरा ख्याल है 2019 या 2018 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं लास्ट मैंने किया है ये गुड मॉर्निंग कतर, तो उसके बाद से काफ़ी लंबा जो एक ब्रेक आ गया है, और 3 घंटे का भी, फिर सुबह की एक एनर्जी अलग चाहिए होती है, फिर उसके बाद अभी जो माशाल्लाह से हमारा शो हो रहा था, तो उसमें उन्होंने भी एक ज़बरदस्त, मतलब जो है ना एक उन्होंने अपना रखा है, मयार रखा है, स्टैंडर्ड रखा है, तो डेफिनेटली मतलब जो एक ऑडियंस जिसकी भी बन जाती है ना, वो फिर दूसरे को एक्सेप्ट इतनी ईजिली करती नहीं है, तो ये भी एक दिमाग में बात होती है।
2: नहीं, जगह बना लेते हैं और आपने भी इतना अच्छा एडवर्टाइज कर दिया है, जो आपके लिसनर्स भी हैं और सुबह वाले भी हैं इसी तरह ही हैं, बन जाएंगे। और हम शुरू से सुबह को भी देखते आ रहे हैं, तो एक दो घंटे की स्विच करने से मैनेज हो जाता है। और आपके माशाल्लाह प्रोग्राम इतने एनर्जेटिक होते हैं, डिस्कशन होता है, तो उसको आप बड़े अच्छा मैनेज कर लेंगी। मुझे तो आप 2-3 साल से तजुर्बा है आपको कॉल करते हुए।
0: चलें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी उम्मीदों को पूरा करे इंशाल्लाह ताला।
2: बाकी सिर्फ आपको सुबह उठने का मसला हो तो
0: नहीं, नहीं वो तो उठता ही होता है, वो तो उठना ही होता है, उसमें तो कोई बात ऐसी है ही नहीं।
2: आप ना घबराएं जनाब, नाश्ते में हम लोग साथ में होंगे, बहुत एनर्जी, कॉफी, चाय, खाना पीना, बातें सब, डोंट वरी
0: इंशाल्लाह ताला। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा ज़ुल्कर्नैन साहब, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अच्छा जी, इसके साथ ही अब मेरा हो गया है जाने का वक्त और फजील के हो गया है आने का वक्त, तो इंशाल्लाह ताला आपसे हो जाती है सुबह के वक्त मुलाकात। कल से इंशाल्लाह सुबह 6 बजे मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 5:02 और आ गए पुराने दिन वापस।

वाइब्रू और 5:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और ये जो वापस आए ना पुराने दिन, ये सिर्फ एक दिन के लिए आए, तो आज ही के लिए है, फिर उसके बाद कल से नया शो, और कल से एक ऐसा शो जो आपके लिए ही पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया। और इसमें ये बस समझ लीजिए कि गाना प्ले करने के लिए मैं हूँ, मैं ऐसे बिहेव करूंगा जैसे आपके कार का ब्लूटूथ या फिर स्टीरियोटाइप जो होता है ना, तो वो ऐसा ही मैं बिहेव करूंगा कि आप जो कहेंगे वो गाना मैं प्ले कर दूंगा। ऐसा होता है ना मोबाइल में, कहते हैं आप कि हे दोस्त प्ले दिस सॉन्ग, आप मुझसे बस यही कहिएगा, मैं आपके मर्जी का गाना जो है वो प्ले कर दूंगा। क्योंकि कल से शाम 4 से 5 शो लेकर आ रहा हूँ, द रिक्वेस्ट शो, जिसमें आपके अपने मर्जी के गाने होंगे।

0: अब वो चाहे साउथ के गाने हो, चाहे वो नॉर्थ के गाने हो, चाहे वो वेस्ट के हो, चाहे वो ईस्ट के हो, चाहे वो नेपाल के हो, चाहे वो बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के, पश्तो सॉन्ग हो, जो आपका दिल कहे वो सॉन्ग आप मुझसे कह सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, जैसे कि ये कि जब भी आप सॉन्ग बताएं तो एक बार बता दें किस गायक ने, किस सिंगर ने उस गाने को गाया, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि भाई मेरे लिए फिल्टर यहाँ पर लगाना आसान हो जाए। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक सर्च बार होता है, उसमें पूरी बाकायदा सर्चिंग करनी पड़ती है कि गाने का नाम, अब गाने का नाम भी सही होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद मूवी सही है या नहीं है, और फिर उसके बाद सिंगर, क्योंकि एक अलग, एक ही नाम से अलग अलग गाने जो हैं वो अलग अलग सिंगर गाते हैं। तो फिर मैं कैसे पता लगाऊंगा कि किस सिंगर के बारे में आप चाह रहे हैं गाना सुनना? तो ये सब क्लियर कर दिएगा कल के दिन से शाम को 4 से 5 आपके मर्जी के गाने, और फिर हम कुछ भी खेलेंगे। तो इस एक घंटे जो 4 से 5 का टाइम होगा, इस घंटे हम पूरी बातें करेंगे FM 107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम फिर सवाल करेंगे आज का सवाल क्या है और कुछ खास अपडेट है, और उसके अलावा आज 31 तारीख है तो पेट्रोल का रेट बढ़ा के कम हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सी जानकारियां जो चल रही हैं, जो न्यूज़, जो ट्रेंड पे चल रही है, उन सब बारे में हम करेंगे बात FM 107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

107 पे वाइब टू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। एफएम 107 पे फजील के साथ हैं आप। 5:16 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और अभी से लेकर 7 बजे तक आज आखिरी बार मैं आपके साथ हूं। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं कि मौसम का हालचाल क्या है। अच्छी खासी गर्मी जो है वो बढ़ रही है, 41 डिग्री सेल्सियस तक कल का तापमान पहुंच गया था, लेकिन अगर आज के बारे में बात करें तो इस वक्त है 38 डिग्री सेल्सियस। शाम का वक्त है, कम है, लेकिन दोपहर को इतनी तेज हो जाता है कि मुझे लगता है कि अब तो पसीना आने लग गया। अब तो वो वाला दौर आ रहा है धीरे धीरे कि पसीना आने के बाद पसीना नहीं आएगा। सो ओवरऑल अगर हम अभी के बारे में बात करें तो अभी 38 डिग्री सेल्सियस पे है। कम से कम रात को 7-8 डिग्री सेल्सियस और गिरेगा, तकरीबन 31-32 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। और बीच की तरफ अभी भी माहौल बेहतर है, ठीक ठाक है। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि कल के दिन मैं गया था बीच और मौसम ऐसा था कि हल्की हल्की ठंडक लगने लग गई थी। तो अगर हवा चल रही है तो बीच पे जाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि हवा किस तरफ की है। सो ओवरऑल हवा अच्छी थी, इतनी कोई ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं लग रही थी, आराम से हम लोग करीब 2.5-3 घंटे बैठे फिर चले आए। सो अभी 15 मील/hour की रफ्तार से हवा चल रही है। ह्यूमिडिटी स्टेइंग एट लो 28%, 28% पे ह्यूमिडिटी है और वेदर ये धीरे धीरे आने वाले वक्त में और ज़्यादा तेज़ होता रहेगा। और कल 44 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है, वेंसडे आफ्टरनून के आसपास 44-43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अनाउंस किया है रेगुलेटेड आउटडोर एनफोर्समेंट, यानी कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो अब बाहर के कामों के लिए चेंज कर दिया गया है, रेगुलेटेड कर दिया गया है आउटडोर वर्किंग आवर्स को। अब अगर आप 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपका काम अगर बाहर रहता था तो अब आपको बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। एज पर द अनाउंसमेंट आउटडोर वर्क इज प्रोहिबिटेड। टाइम जो है वो है सुबह के 10 से लेकर 3:30 बजे तक। इसकी टाइमिंग जून 1 से यानी कि कल के दिन से शुरू हो जाएगी। सितंबर 15 तक इसकी टाइमिंग है, सितंबर 15। सो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ये अनाउंस कर दिया था कल ही और आज आपके लिए ये न्यूज। तो आज जितना कर लिया तो कर लिया, अब तो टाइम ख़त्म ही हो गया है। वैसे अगर कल से अगर आपको कोई भी कहे या आपके अपने ऑफिस मेंबर या आपके यू नो कंस्ट्रक्शन वाले कहे कि भाई नहीं 10 बजे के बाद वहाँ पर अपने साइड पे जाना है, तो आप उनको जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का दिखा दीजिएगा, ठीक है। अलाउड नहीं है, अगर फिर भी काम करवाया जाता है तो ये लेबर के लिए भी रिस्की है और जो लोग हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए भी बेहद रिस्की है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस क्या हैं। कतर एनर्जी ने अनाउंस किया है फ्यूल प्राइसेस फॉर द मंथ ऑफ जून 2026 और जो लेटेस्ट रेट है वो है प्रीमियम 91 के, यानी कि प्रीमियम 91 का जो पेट्रोल मिलेगा वो 2 कतरी रियाल पर लीटर का मिलेगा। सुपर 95 आपको मिलेगा 2.10 पर लीटर और डीजल मिलेगा आपको 2.05 पर लीटर। बहुत ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है। ओवरऑल ये जो प्राइस है अब आपको कमती में ही मिलेगा लेकिन प्रीमियम का प्राइस थोड़ा ऊपर गया है, इतू सही ऊपर जाता है वो पता भी नहीं चलता है, और सुपर का प्राइस थोड़ा कम हुआ है और डीजल का प्राइस भी कम हुआ है। कम भी नहीं कह सकते, डीजल का प्राइस तो उतना ही चल रहा था और सुपर का भी, खैर। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें प्रीमियम का प्राइस ऊपर गया, इतना तो पता भी नहीं चलता। बाकी इन्जॉय करें, मजे करें। फिर हम बात कर लेते हैं बाकी कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि कतर रेल ने इशू किया है सेफ्टी रिमाइंडर फॉर मेट्रो स्टेशंस। क्या कुछ है ये जो मेट्रो ने अनाउंस किया है, वो है अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स को सेफ रखें, अपने साथ रखें। गायब हो जाने पर मेट्रो के कर्मचारियों की और मेट्रो रेल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इमरजेंसी बिल्कुल, अगर आपको ऐसा फील हो कि अगर आपको इमरजेंसी है तो मेट्रो के अंदर इमरजेंसी बटन होता है, आप उसे भी दबा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेट्रो स्टेशन पे हैं तो वहाँ पर इमरजेंसी जो असिस्टेंस है वो भी ले सकते हैं। डिस्टेंस थोड़ा रखें डोर्स से, जो रेल के यानी कि मेट्रो रेल के जो डोर है उससे थोड़ा डिस्टेंस रखें, और एंट्री पॉइंट पर भी आपको डिस्टेंस रखना है, ओपनिंग और क्लोजिंग के दौरान भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा स्मोकिंग अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी स्मोकिंग अलाउड नहीं है। उसके अलावा बच्चे जो हैं
उन बच्चों के लिए भी ये है कि अगर आप छोटे हैं, आपकी उम्र, बच्चों की उम्र जो है वो कम है, तो पेरेंट्स को साथ में रहना है जब वो लिफ्ट में हो या एस्केलेटर्स पे हो, तो बच्चों का साथ देना पड़ेगा, साथ में रहें ताकि बच्चे को किसी भी तरह की रिस्क ना आए। तो ये कुछ खास और ज़रूरी ऐलान या ज़रूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए एफ एम 107 पे। तो कुछ बातें, अब हम जरा इवेंट के लिए बात कर लेते हैं। वैसे इवेंट जो हो रहे थे वो तो अब हो चुके हैं। अब जितने भी इवेंट आपको दिखेंगे जून के महीने से, मुझे लगता है सारे के सारे इवेंट अब अंदर की तरफ होंगे, यानी कि यू नो बाहर की तरफ कोई इवेंट नहीं होगा। एक इवेंट मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो भी बाहर होकर भी अंदर होता है, जो मैंगो फेस्टिवल होता है। मैं तो उसी के इंतजार में हूँ कहीं तो जल्दी से लग जाए। लेकिन हम बात कर लेते हैं, जून 5 को एक ज़बरदस्त मैच है अल अरबी स्पोर्ट्स क्लब में, और ये है AFC एशियन कप, लेबनान वर्सेस यमन का मैच है, और डेट है 5 जून फ्राइडे। 2 बजे से ये मैच जो है वो शुरू होएगा अल अरबी स्पोर्ट्स क्लब में, और ये ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव और रीजनल फुटबॉल का ज़बरदस्त खेल है, लेबनान वर्सेस यमन। अब बात कर लेते हैं DECC के बारे में। इंडोर ये इवेंट है, कतर टेक समिट 2026, जो डेट ट्यूसडे जून 9 से शुरू होने वाला है, और ये बिजनेस टू बिजनेस समिट है जिसमें टेक डेवलपर्स होंगे, इनोवेटर्स होंगे और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी होंगे। वेल, कॉन्सर्ट का जिनको शौक है उनके लिए बता दें, क्योटो लाइव इन दोहा, क्या बात है, सराया कॉर्निश होटल में आप इनका लुत्फ उठा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कतर की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थर्सडे 18th of June, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा अभी टाइम है। तो ये कुछ ऐसे वाले इवेंट जिसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। और मीना प्री ओन्ड बोट शो भी अभी जारी है ओल्ड दोहा पोर्ट साइड वॉक पे, वहाँ पर भी जाके आप इस मीना प्री ओन्ड बोट शो का लुत्फ उठा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आज का सवाल क्या है। आज के सवाल पे आ जाते हैं, बड़ा ही सिंपल, कोई लोड नहीं है यार।

0: गया यार, आखिरी दिन है क्या, मतलब ऐसे दिमाग पर लोड डाले बस इतना कि पिछले चार दिन आपको थोड़े से खंगालने हैं, थोड़े से यू नो अपने दिमाग पर जोर डालना है और सोचना है कि कुछ अलग खाया क्या आपने, बस इतना सा सवाल है यार। इस ईद उल अदहा आपने कुछ नया ट्राई किया खाने में, क्योंकि कई कई घरों में होता है ना कि आपको बुलाया जाता है, आपको दावतें दी जाती हैं, आपके दोस्त आपको दावत देते हैं। कई बार आप इंडिया के हैं, नेपाल के कोई दोस्त बन गया, आप इंडिया के बांग्लादेश का कोई बंदा दोस्त बन गया, फिर आप वहाँ का डिश खा रहे हैं, कुछ नया ट्राई किया आपने, कुछ नया खाना खाया है, वो आप हमें बताएं हमारे व्हाट्सअप नंबर 666-22-107 पे, 666-22-107। वैसे मुझे यहाँ तो याद नहीं कि मैंने कुछ खाया हो कुछ अनोखा बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल में, ईद उल अदहा वगैरह में, लेकिन इंडिया में एक बार मैं अपने एक ऐसे दोस्त के घर पे गया जो ऐसा होता नहीं पैसे वाला होता है थोड़ा, और घर भी नहीं कह सकते, उसका एक्चुअली होटल था। सो वहाँ पर गए तो उनने मुझे बढ़िया सा ऑर्डर करके खिलाया, और तब उस खाने का नाम था लासांगा रिकोटा, और वो भाई खिचड़ी थी यार। मैं क्या खिचड़ी खिला कि इतना महंगा नाम रख दिया लासांगा रिकोटा। कुछ लोग लसानिया भी कहते हैं, लेकिन ये क्या यूनिक चीज थी, मुझे लेकिन भाई टेस्टी, क्या गजब का टेस्ट था, मुझे मजा आ गया खाने के बाद। कुछ खानों का आपको पता नहीं होता है तो वो खाने के बाद मजा आ जाता है, उनका नाम नहीं पता होता है, किसमें नहीं पता है, लेकिन वो दिल खुश कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यू नो आप खाना खाएं और आपको पता है कि ये चीज़ क्या है, इसमें पड़ा क्या है, कि चावल है, कि दाल है, कि आलू है, कि गोभी है, कि घुइयां है, लेकिन आपको वो जो टेस्ट मज़ा आता है, जो टेस्ट लगता है, उसका नाम नहीं पता, और वो पता कि क्या क्या यूज़ हुआ है उसमें, ये आपको आइडिया है। सो ये चीज़ हुई है, तो मुझे लगा कि यार आज क्यों नहीं ये सवाल कर लिया जाए, और कई लोग ऐसा करते भी हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। वैसे मेरे जानकारी में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिन्होंने नया कुछ खाने में ट्राई किया हो, बट इस ईद उल अदहा आपने कुछ नया खाना ट्राई किया जो आप हर साल खाते रहते हैं, कलेजी, जैसे कि कल भी हम बात कर रहे थे, कलेजी वगैरह तो सब चाप रहे हैं भाई, कलेजी तो कोई ना छोड़ रहा, लेकिन फिर भी आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं या किया आपने खाने में, वो हमें बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे, 666-22-107 पे। और फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं, कुछ लोगों के मैसेज ले देते हैं, फिर आप धीरे से हमें जवाब बता सकते हैं। ये मैसेज है हिशाम साहब का, और सलाम ही किया होगा हिशाम साहब का, सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। और फिर ये एक और है, सलाम वालेकुम अस्सलाम नासिर साहब नासिर, एच लगा दिया भाई, आपका नाम नासिर होगा, नासिर तो मैंने कभी ना सुना नाम नासिर। ओके भाई ने लिखा है कि आवाज़ सुन के अच्छा लगा, इतनी मतलब अम्मी भी अगर ये कह देना कि बेटा बहुत दिन बाद तुम्हारी आवाज़ सुन के अच्छा, ये तो मैंने अपनी अम्मा की आवाज़ अम्मा की ज़बान से ना सुना। ओके आगे एक और है, भाई ने कहा है अस्सलाम वालेकुम भाई, फिर से 5 बजे, ये रेगुलर वाले नहीं है पक्का मैं बता रहा हूँ, जो रेगुलर वाले उनको पता है उनको अंदाज़ा है, ये रेगुलर वालों को अंदाज़ा है कि कौन कब कैसे आ रहा है। अब ये इनको कल मैं 4 बजे सुनाई दूंगा, ये कहेंगे अरे भाई फिर से टाइम चेंज कर लिया, अरे कल से 4 से 5 अपना हिसाब किताब होगा, ठीक है। बाकी आप हमें जवाब बता सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-22-107। बाकी लोगों के मैसेज कुछ ही देर में, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, गले को पानी ले लेता हूँ, फिर आता हूँ वापस, ठीक है। दिल से देसी,
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

107 पे वाइटू हाल है बीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। 5:32 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आज का सवाल इतना हल्का है कि आपको लोड ही नहीं लगेगा, मतलब किसी भी तरह से बस आपको याद करना है कभी या फिर आपने इन चार दिनों में कुछ नया खाना ट्राई किया क्या। क्योंकि मैंने मैंने

ऐसी जगह में अगर आप अनोखी जगह पे रह रहे हैं तो आपको अलग अलग जगह से लोग मिल जाते हैं और कुछ तो अलग आप खा भी लेते हैं। तो मैंने हमेशा सुना था एक गोल गोल बिहारी डिश होती है, डिश नहीं है वो, स्नैक भी लोग कहते हैं उसे, कुछ लोग तो डिश की तरह खाते हैं, और ये है बैगन का भरता जिसको कायदे से बनाया जाता है और फिर वो गोल गोल होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही लाजवाब उसका नाम होता है, मैं नाम बताऊंगा कुछ देर में। लेकिन आपने कभी ट्राई किया तंदूरी मोमो? मतलब मोमोज, ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भाइयों को पता भी होगा कि ये मोमोज क्या है। ये सारा मोमोज आया नेपाल से होते हुए और फिर हमारे शहरों में आया, दिल्ली में आया, ये मेरे ख्याल में लिया होगा इसने 10-20 साल, लेकिन जब आया है तो भाई सही में दिल्ली, यूपी और पंजाब में ये ऐसा कंज्यूम किया जा रहा है भाई जितना पहाड़ों पे नहीं कंज्यूम किया जा रहा है। ये पहाड़ों की डिश थी या कहें स्नैक था, ये वहाँ से आया और लोगों ने ऐसा दबा के खाया है, इतनी कंजम्पशन बढ़ गई है इसकी कि उससे मतलब लोगों के पास असल में गोश्त नहीं मिलता है लोगों को कि वो चिकन के आइटम जो है वो डाल पाए मोमोज में। तो लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें डालना शुरू कर दी जो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे मोमो देखो जो होता है वो चिकन का होता है, मतलब हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए लेकिन कोई गोभी भर दे तो उसको मोमोज मानोगे क्या आप? मैं तो नहीं मान रहा मोमोज भाई। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, तंदूरी मोमोज उन्होंने नाम दिया है, और ये वेज तंदूरी मोमो कौन है ये मुझे समझ नहीं आता, मुझे जिस दिन मिल गए मैं केस करूंगा इनके ऊपर नॉन वेज वाला बनके तो ऐसे ऐसे खाने वाले हैं। और एक भाई ने कहा भी है कि इन्होंने क्योंकि ये जो कहानी मेरे जहन में आई ना, वो कहानी आई है एक भाई की बातों से, और ये इनका नाम तो मुझे नहीं दिख रहा है, नाम अगर मैं प्रोफाइल तक चेक कर लेता हूँ भाई, कुछ लोग नाम नहीं लिखते तो नहीं लिखते, मैं इतने दिन से 3 महीने से बोल बोल के मेरा गला सूख गया होगा, मैं यकीन मानो मेरा गला सूख लेता है तो मैं शोरबे से गला गीला करता हूँ लेकिन आप लोग मानते नहीं हो यार। तो खैर इनका नाम तो नहीं लिखा है, मैं कोशिश करूंगा भाई अगर आप नाम लिख कर दे दे। तो इन्होंने कहा कि मैंने एक बार मोमोज खाया है, लेकिन ये वेज मोमोज खिलाने के लिए लेकर गया था इनका दोस्त। एक तो ऐसे दोस्त मैं क्यों रखते हो यार, वेज कोई खाना है? मैंने एक जगह बहुत सही चीज सुनी थी मेरा दिल खुश हो गया था भाई, कई बात कुछ बातें ऐसी होती है दिल खुश हो जाता है। मैं तारिक भाई ने खाता ही जिनको पता है, मैं तारिक भाई किसको कहता हूँ उनको पता है। तो उन्होंने कहा था कि देखिए बिल्कुल आपको वेज खाना खाना चाहिए, और वेज खाना खाने का सही तरीका यह है कि पहले उस वेज खाने को बकरे को खिलाएं फिर बकरा खा जाए। अरे भाई ये ऐसी बातें मत बोला करो तुम, मरा वैसे भूख लग जाती है ना फिर ओके फिर ये है साजिद खान का मैसेज, साजिद हेयर दोहा विक्टर्स। ओके चने की दाल का हलवा ट्राई किया? अरे मेरा भाई चने की दाल का हलवा, हाँ ये यार न जाने कितने जमाने से मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरी अम्मी 2014 में बनाया करती थी, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था, फिर उसके बाद मुझे मिला ही नहीं। और चने की दाल भाई लोग बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा ये वो है जो थोड़ी टाइट हो जाती है, चने की दाल आप फ्रिज वगैरह में रखें ना बनाने के बाद, इसको लोग बर्फी टाइप में काटते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग काटते हैं, लेकिन मेरे घर में बर्फी टाइप का काटते थे और अच्छी खासी मोटी परत होती थी। आए हाय चने की दाल याद दिला दी यार, ये तो बहुत ही यूनिक खाना, और मुझे लगता है कि ये आपने शायद ये पाकिस्तानी वाले भाई हैं साजिद भाई, हाँ तो ये उधर भी चलता है, हमारी तरफ भी चलता है भाई ये तो। खैर ये तो फिर अलग ही यूनिक बात हो गई, चने की दाल का हलवा मैंने तो बहुत लंबे वक्त से ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर कोई ट्राई करा दे तो मैं मना नहीं करूँगा, है ना। तो अच्छा मेरे जैसे ही आदमी जो होता है ना, हमारे जैसे आदमियों को माएँ मना करती कि बेटा ट्रेन में जब चले तो बिस्किट कोई दे तो मत खाना मेरे जैसे लोगों का किडनैप होता है, कोई भी मीठा खिला दे मुझे, कोई खाना मुझे खिला दे, मेरा मुँह आ आ मेरा मुँह खुल जाता है अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, सॉरी फॉर डिले, ईद मुबारक, वेलकम बैक। हाय हाय हाय ईद मुबारक मेरा भाई आपको भी, थोड़ी देर हो गई, 5वां दिन लेकिन सही है, चलता है। मकसूद साहब ने ये मैसेज किया है। उसके अलावा हाय हाउ आर यू, मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इनका प्रोफाइल पे इनका नाम यही है मैं और क्या बोलूँ बताओ, है ना, इतना कहने के बाद भी किसी ने नाम नहीं दिया, बाकी आई एम गुड, आप कैसे। फिर ये मैसेज है, लिसनिंग टू यू फ्रॉम यूके, सीम्स लाइक यू हैव गुड हॉट वेदर, गुड

गुड है, नथिंग इज गुड हेयर, एनीथिंग हॉट इट इज बियॉन्ड गुड. There is something you tolerate, there is something you cannot tolerate. You go outside, you kill yourself. So if it is good, then maybe for you it is good. But for us, it is like a death penalty. For me. तो ड्राइव थ्रू थ्रू थ्रू थ्रू वॉट एवर. इतनी अंग्रेजी भी नहीं बोलनी चाहिए कि गड़बड़ी हो जाए. सो वालेकुम अस्सलाम पहले, और सीम्स लाइक यू हैव अ गुड हॉट वेदर विच वी लैक हेयर. आपका हम वेलकम कर देंगे, आप आए तो पहले आज ही. अगर आपको समझ में वैसे आ ही रहा होगा उर्दू में, लेकिन आज ही यह ऐलान हुआ है कि कल से सुबह 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कोई भी आउटडोर वर्क नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा. यह ऐलान किया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने. स्लाइटली मैंने न्यूज भी बता दी. सो कोई गुड वेदर जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर. यहाँ पर हालत होती है कि इंसान की हालत खराब हो जाती है. अब्दुल समद का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम. फैसल नहीं, फजील मेरा नाम है, FAZWL. वालेकुम अस्सलाम. फिर यह है इखलाक साहब का मैसेज. क्या इखलाक है भाई. सलाम वालेकुम. इन्होंने कहा है कि आटा आलू खाया है. ये भी कोई डिश होती है क्या भाई. मैं क्या दुनिया के अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ, मेरे को अलग अलग खाने मिले. मुझे खिचड़ी लसांगा रिकॉटा कोई खिलाता है, खिचड़ी बोल दे रहा है, वो प्लेट में लाकर डाल दे रहा. फिर अलग ये आटा आलू क्या होता है भाई. आटा आलू क्या खा लिया आपने, कमाल है. आटा आलू कोई डिश होती तो बताओ मेरा भाई, ये आटा आलू कौन खिला रहा है. एक ये मैंने क्या आलू मैश करते हैं ना, तो पोटैटो मैश, पोटैटो मैश ये सब करके लोग खिला देते हैं. ये मैं मानता हूँ कि वो टेस्टी होता है. ये आटा आलू आई डोंट नो. ईद मुबारक फजुमिया. नसीम साहब का मैसेज है, वालेकुम अस्सलाम. पहले तो आपको भी ईद की बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद. लिट्टी चोखा, ये बिल्कुल सही कहा. हाँ लिट्टी चोखा, मैं भूल गया था उसका नाम. इनका नाम अभी भी नहीं है, सीबी इनका नाम है. इनको सीबी के नाम से ही लोग हमारे FM 107 के लिसनर्स जानते हैं. और लिट्टी चोखा उसका नाम है. जब मैंने पहली बार ट्राई किया था, पहले तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा. मुझे पहली बार जब किसी ने खिलाया तो वो ड्राई ही खिला दिया. और उसको असली खाने का तरीका है कि उसको घी में पूरा डुबोया जाता है, और घी वो वाला घी जो पहले से पिघला होता है. तो उस बंदे ने मुझे सूखा खिलाया, मेरा गला सूखा हो गया. फिर मैंने अगेन शोरबे से गला गीला किया. मैं पानी में भरोसा ही नहीं करता भाई. मेरे को जरा भी अगर ऐसा लगा कि गला सूख रहा है, मैं शोरबा पीता हूँ. इंसानों में गिनती होगी कि नहीं अल्लाह जाने. बाकी सीबी भाई ने बिल्कुल सही है, लिट्टी चोखा अलग खाना है. अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, इट्स नावेद. मूंग की दाल का भगिया भी ट्राई करो. भगिया भाई, हमारी तरफ भगिया कहते हैं पेड़ को और खेतों को. भगिया क्या होता है. और मोमोज बहुत वैरायटी आ गई है. हाँ यार, मैं लेकिन एनीथिंग विच इज वेज, जो नॉनवेज का सामान है, जो नॉनवेज ही है, मैं उसे नहीं मानता भाई. मैं उसे फिर डिश नहीं मानता. वो ये है कि आपने अपने दिल को मन को बहलाने के लिए काम कर लिया और मोमोज वगैरह बना लिया, बट मैं नहीं मानता भाई. मेरे लिए तो साग साग नहीं जब तक वो साग गोश्त ना हो. है ना. आलू को भी मैं आलू नहीं, मैं आलू को देख के मुंह फेर लेता हूँ. आलू जब अपने दिल से कहता अच्छा आलू गोश्त, तब मैं कहता आओ इधर. तब मैं कहता सलाम अलैकुम. सो ये बात है. बाकी ये भी बात सही है कि मुझे ये मूंग की दाल का भगिया कभी ट्राई करना है. भगिया होता क्या है पहले तो आप बताओ नवेद साहब. आगे है कामरान इज हियर, आई ट्राई मटन रिब्स मंडी. ओके मंडी, मंडी नहीं. कामरान, कामरान साहब ने मटन रिब्स ट्राई किया है, और इसे चाप भी कहते हैं. एक ज़माना था जब अब्बा कहते थे, अबे बेटा हो इसमें जान होती है. मैं अब्बा की बात नहीं मानता था. फिर मेरे को अगर अब्बा ये कहते कि बेटा टेस्ट होता है, तो मेरे को देख के बड़ा अजीब लगता था रिब्स या चापे, तो मेरे को ऐसा कभी मज़ा नहीं आया. लेकिन क्या होता है कि आपके टेस्ट बड्स जो होते हैं ना, समय के साथ अच्छे होते रहते हैं. और मेरे टेस्ट बड्स मेरे अब्बू से भी ज़्यादा अच्छे हो गए. जो आदमी पानी नहीं शोरबा पी के गला गीला कर रहा है, तो आपको तो पता है मेरे टेस्ट बड्स कितने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं. कभी कभी अब भी अब्बू हमारे कह देते हैं कि बस करो बेटा इतना भी क्या है. लेकिन आगे बढ़ेंगे. यूसुफ भाई ने क्या लिखा है, फजील मुझे चिकन मोमोज अच्छे लगते हैं. चिकन मोमोज ही मोमोज होते हैं. मैं पहले

0: मोमोज नहीं खाता था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कबीर के कहने पे मैंने टेस्ट किया तो अच्छे लगे, तब से बहुत शौक से खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मोमोज कबीर के फेवरेट है। अरे मोमोज की तो अलग एक दुनिया है, आपको पता है ऐसे इस दुनिया में लोग हैं, अगर उनको मोमोज के नाम का शहर दे दो और सिर्फ जिंदगी भर मोमोज खिलाते रहो वो खुशी खुशी खाएंगे। और जब से चिकन मोमोज लोगों ने इजाद कर लिया है, इनोवेट कर लिया है, मोमोज आम तौर पे वेज ही हुआ करते थे, मतलब जब शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे धीरे फिर ये इंडिया के दिल्ली में आ गया, और दिल्ली में जो चमत्कार हुआ है मोमोज की दुनिया में समझदारों को पता है, ठीक है। फिर वो चमत्कार भाई साहब मोमोज के साथ हुआ है, तो उसमें कैबेज डाले दे रहे हैं, है गोभी के पत्ते, और फिर उसमें पनीर मोमोज डाले दे रहे, पनीर ठीक, और क्या क्या। फिर उसके बाद लेकिन जब चिकन मोमोज आया, उसकी लोकप्रियता ऐसी बढ़ी है कि फिर अच्छों अच्छों को शौक जो है उसका लग गया है। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में वैसे है, मेरे ख्याल से अब तक तो आ ही गए हैं, पहाड़ों से ये आए हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पर भी अब तो 8-10 साल से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था, अब मुझे लगता है डिग्रेड होने लगे होंगे धीरे धीरे। चने की दाल का हलवा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अरे यार चने की दाल का हलवा मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, कोई खिला दो प्लीज़, अगर वो खिला दोगे तो मैं शोरबे से गला तर करना बंद कर दूंगा। यूके वाले भाई के लिए कभी आओ ना खुशबू लगा के कतर, गर्मी में पता चल जाएगा। अरे भाई 400 रियाल का परफ्यूम भी काम नहीं कर रहा गर्मी में यहाँ के, 400 रियाल का परफ्यूम, 600 रियाल का कोई भी परफ्यूम लगा लो, कोई भी इत्र लगा लो, उसका तो ये हो जाता कि मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। बाकी ये बात तो सही है कि यहाँ की गर्मी अच्छी खासी है। फराज अहमद का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजील भाई। वालेकुम अस्सलाम, आई एम हमजा, ईद मुबारक भाई। कब आएगी कॉल? हमजा साहब कॉल आ जाएगी समय पे, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। दिस इज नोमान हेयर एंड ईद मुबारक टू यू ऑल, इट वॉज अ जोक, यहाँ हॉट वेदर नहीं मिलता। मैं समझता हूँ नोमान साहब, आप यूके से हमें सुन रहे हैं, आपके शहर का नाम भी माशाल्लाह चिशायर है, शायर, मैं हो सकता गलत प्रोनाउंस कर रहा, मुझे बता दो, मैं वैसे भी कौन सा, मैं मुझे तो 2 साल लगे थे मुशायरिब सही से प्रोनाउंस करने में, कि मुशायरिब है मुशरिब है क्या, मैं फिर 2-4 लोगों को बार बार सुना तब जाके मुझे समझ में आया मुशायरिब है, और अभी भी कई बार मुझे लगता है शायद ये मुशरिब है। ओके ये जोक तक सही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है, और ये इतना ज़्यादा हॉट वेदर यहाँ पर हो जाता है कि हम उसे जोक में नहीं लेते भाई फिर। है ना, तो गर्मी में यहाँ पर 2 फट जाती है, एक तो दूध और इंसानों का दिमाग। और हम इंसान ये चाहते हैं, एम्प्लॉयज खास तौर पे, कि बॉस को हर वक्त एसी में रखो। कि दूध फटे चलेगा, इंसान का दिमाग नहीं फटना चाहिए भाई साहब। मेरे फरहत साहब का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजी भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। लिट्टी चोखा इट्स अ कॉपी लाइक है दाल बाटी
1: चूरमा।
0: हाँ यार ये तो हो सकता है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, है ना, मैं हिस्ट्री उसी की पढ़ लेता हूँ जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान से हूँ मैं, लेकिन मुझे अब तक पता नहीं चला मोमोज क्या होते हैं, और पाकिस्तान में तो नहीं मिलते हैं। अच्छा, आपके लोकेशन पे शायद नहीं मिलते होंगे, लेकिन प्लीज़ अरबाज खान, इनका नाम है अरबाज भाई, मैं आपको कहता हूँ एक बार चिकन मोमोज लाल चटनी के साथ, ज़्यादा मत इस्तेमाल कर रहा है, लाल चटनी भी कभी कभार मसावी की तरह टेस्ट करती है भाई, दिमाग खोल देती है, गर्मी से ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मोमोज, चिकन मोमोज ट्राई करें आप, नेपाल के कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको चिकन मोमोज उम्मीदन मिल जाएंगे, और ट्राई करें, और एक बार ट्राई करके हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, तो कोई भी खाना जब आपको खाना हो, ट्राई करना हो नया, तो उसे 2 या 3 खाएं, उसके बाद आपको सही टेस्ट समझ में आएगा। तो 1-2 ट्राई करें, एंड देन यू विल नो कि भाई ये क्या मस्त चीज़ है भाई, एकदम ऐसा दिमाग पर चढ़ जाती है चीज़, कुछ चीज़ ऐसा होता है ना पेट को अच्छी लगती है, ये दिमाग पे चढ़ जाती है, और जैसे झटके लगते हैं ना कभी कभी। आपने वो देखा है जब किसी को CPR दिया जाता है, अच्छा वो वाला देखा होगा आपने, 2 को आपस में रगड़ा जाता है दोनों हाथ से पकड़ के, उसमें से थोड़ी चिंगारी निकलती है, और इंसान जाते हुए इंसान के सीने पे लगा जाता है, सीना एकदम धड़क से उठ जाता है ऊपर, तो जब आपको मोमोज की याद आएगी ना और आप लेटे रहेंगे तो ऐसे ही धड़क से आपका सीना उड़ जाएगा। जिनको मोमोज की ललक है उनको, है ना, ये होता है भाई, ऐसे झटके लगते हैं मोमोज जिनको पसंद है उनको खाने के झटके लगते हैं। लेकिन लोगों ने अभी तो मोमोज ही ट्राई नहीं किए, कई लोगों ने ट्राई किए, कुछ लोग दाल बाटी के बारे में कह रहे हैं। ओके, शहजादा सलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, हमारे घर में 4-5 दिन की बासी रोटी की चकोलियां मेरी अम्मी बनाकर खिलाती थी, ये गरीबों का खाना। अरे नहीं यार, खाना कोई गरीबों का नहीं होता, ला ला ला ला ला, ला। मैं नहीं मान रहा, खाना तो टेस्टी होता है, कोई भी खाना हो अगर उसमें घी लग जाए तो ओहो क्या खाना है। उसके अलावा ये मैसेज कैसर साहब ने कहा है, ट्राई दुमपुख्त। पहले तो ये बताएं दुमपुख्त ये किस जगह की डिश है, क्योंकि मुझे लग रहा है दुमपुख्त कहाँ की होगा भाई, ना खा अगर लगा है तो पाकिस्तान की है, अच्छी उर्दू लगी है ना आखिर में। बाकी अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप बताएं, मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता, मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी। कैसर भाई ने कहा है दुमपुख्त, ये दुमपुख्त क्या होती है, क्या ये वेज है, क्या ये नॉन वेज है, कहाँ की डिश है, ये बताएं, और बाहर सुनने वाले भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-2107-6662-2107। बाकी ये मैसेज है पाकिस्तान का दमपोक है हर सर इसमें, सर मत बोलिए सर, इसमें चावल होते हैं और उसे उसके ऊपर बकरा होता है, इट्स लाइक मंदी, मंदी भी तो यहां पर ऐसी होती है। तो क्या ये वही है जो अभी मैंने नाम लिया, जो भाई ने कहा था दुमपुख्त, क्या ये दुमपुख्त है? फिर ये मैसेज है गोश का होता है लिट्टी चोखा, नहीं अच्छा ये मंदी जैसा ही होता है, बकरा ऊपर होता है, ठीक है, ये भी खाना यूनिक है एंड यू गाइस कैन ट्राई दिस। और उसके अलावा ये मैसेज है हमें तो भाई नाश्ते में लाल चटनी रोटी घी। एक तो बज रहा है 5:30, मुझे लग रहा है कि अगर कोई स्नैक्स का भी भूखा होगा उसको भूख ही लग जाएगी अभी। नाम क्या है भाई का, मुशीर आलम, मुशीर साहब ने कहा है कि नाश्ते में लाल चटनी रोटी और घी, ये भी खाना भाई बहुत ही लाजवाब होता है। कुछ लोग ना दाल रोटी या नॉर्मल अंडा रोटी वगैरह खा लेते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर पहली बार आकर पता चला कि पश्तो भाई निहारी खाते हैं यार, पराठे निहारी है। मैं कह इतनी सुबह सुबह इतना भारी कैसे खा लेते, क्या इनका खाना ही यही है? मैं कहा ओ इंटरेस्टिंग, फिर मैंने भी वही शुरू कर दिया। फिर लोग मुझे कहते हैं अब पश्तो भाई, मैं कहा भाई डेर खा। मैं भी जलमी, जलमी का मतलब होता है जवान लड़का, मैंने थोड़ा थोड़ा सीख लिया है। ओके, तो दोस्तों 5:50 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आपसे आज का सवाल यही किया है कि आपने कुछ यूनिक खाना ट्राई किया हो, या फिर आप बताना चाहते हो लोगों को यूनिक खाना, इस बकरीद ट्राई किया हो या फिर पहले कभी ट्राई किया हो और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वो ज़रूर बताएं, या आप चाहते हैं कि कुछ नए खाने जो बाकी दुनिया में इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, बाकी शहरों में बाकी मुल्क में इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, जैसे पाकिस्तान में मोमोज एक भाई ने कहा इतने ज़्यादा नहीं बिकते, तो लेकिन दिल्ली में तो इसका लोग मतलब ये वाला क्या कह सकते हैं नौकरी नहीं ना, ये वाला काम करके बिजनेस करके लोग लखपति बन चुके हैं मोमोज बना के, पता है आपको दिल्ली में इतने चल रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, मुझे मुंबई का इतना आइडिया नहीं, मुंबई में तो शायद वो वड़ा पाव चलता है, तो वहाँ पर लखपति वड़ा पाव से, इधर अलग चीज़ से, यूपी के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि यूपी की जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है वो यहाँ पर बैन है। कई बार लोग ना वो पाउच में लेकर आते हैं और एयरपोर्ट पे पकड़ जाते हैं, जिनको पता है उनको पता है। बाकी 5:51 मैं कानपुर का हूँ, इतना नहीं बताना चाहिए था। ये आखिरी मैसेज कुछ ले लेते हैं, और है कि सलाम, ये क्या है, लगता है ब्रेक, अभी लगाता हूँ यार। लगा रहा हूँ ब्रेक। अब्दुल समद कहना है इनका कि खाने में तो मुझे सरसों का साग भिंडी कीमा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है, ये ही तो असली खाना है। आपने जब तक कहा सरसों का साग मुझे नॉर्मल लगा, भिंडी मैं यहीं पर रुकने वाला था और दूसरे मैसेज पे बढ़ने वाला था, बट आपने जब कहा कीमा तब लगा कि अपना भाई बोल रहा है। तब मुझे लगा कि पूरी बात सुननी चाहिए। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं FM 107 पे, और आज का सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं नए लोगों के लिए। सवाल ये है कि आप कुछ नया ट्राई करते हैं या आप बताना चाहते हैं कुछ नया खाना लोगों को जो उनके मुल्क में उनके शहरों में शायद बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है तो उनको ट्राई करना चाहिए, तो वो क्या हो सकता है? या फिर आपने इस ईद उल अधा

0: एफ एम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी, टाइम फॉर टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 6:02 सुंदर एफएम 107 दिल से देसी।
2: यू

10 मिनट हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 होने वाले हैं। वेल, आज का सवाल ये था कि आपने कुछ नया ट्राई किया क्या इन 4 दिनों में, या फिर आपने कभी ट्राई किया हो और आप रिकमेंड करना चाहते हैं कि कुछ नए तरीके का खाना बाकी हमारे FM 107 के सुनने वाले ट्राई करें, खाएं नया खाना, तो वो क्या हो सकता है। जैसे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई मोमोज के बारे में, कई लोगों को नहीं पता था, मतलब पता तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं पहुंची, तो मैं एक बार कहूंगा उसको ट्राई करें। और फिर अभी समझ में आया दमपख्त भी एक तरह का खाना होता है, तो उसे भी ट्राई करना चाहिए। और ये आम तौर पे मैंने इवन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में भी इस नाम को कहीं देखा नहीं है, है ना। या फिर कोई ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पर मेन पाकिस्तानी खाने ही मिलते हों, तो नमकीन गोश्त, कढ़ाई चिकन और ये सारी चीज़ें तो देख ली हैं, दमपख्त ये नहीं देखा है मेरा भाई। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहीं दिख गया तो मज़ा आ जाएगा, तो ये भी एक बार ट्राई जो है वो करेंगे। उसके अलावा ये आटा आलू अभी तक समझ नहीं आया, ये आटा आलू क्या है। मुझे उन्होंने बस इतना लिखा है आलू का कीमा, तो एक्चुअली मैश्ड पोटैटो जो है लोग खाते हैं और उसको भी बनाने का एक तरीका होता है। एक बार मैंने खाया था और 2.5-3 साल पहले ही खाया था, बहुत यूनिक डिश होती है, लेकिन बनाने का सही तरीका अगर है आपके पास तो वो भी बड़ी लाजवाब होती है। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। फजील भाई, अपने मोमोज वाला छोड़ दिया मेरा मैसेज, कौन सा। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, मैंने मोमोज खाए, मुझे पसंद भी है। एक तो मैंने फिश मोमोज खाए, फिश मोमोज, ओह दैट्स यूनिक, ये तो कुछ ज़्यादा यूनिक हो गया। फ़िश मोमोज तो मैंने आज तक नहीं खाए और ना ही मुझे आमतौर पे दिखते हैं। और दूसरा बातों के क्या, दूसरे बातों के मैसेज खाएं, कभी खाए अपने बातों के मोम, किसी ने नहीं खाया होगा बातों के मोमोज, ये क्या होता है बातों, कौन सा डिश।

0: ए भाई कुछ नया ही पता चल रहा है, आज मुझे पता चला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? नान खालिया ये सिर्फ औरंगाबाद और उसके आसपास ही बनता है। एक तो वो तंदूरी नान है, अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं तो औरंगाबाद इंडिया सिटी, औरंगाबाद इंडिया ये लिखा है इन्होंने, और इनका नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा, बट नान के बारे में कह रहे हैं। एक तो वो आती है, मुझे नान खटाई ही पसंद है मुझे तो नान खटाई ही चाहिए, या ये वाला तो पूरे एशिया में फेमस है। मुझे लगता है यहाँ पर भी अगर कहीं ठेला चलता तो ये दोपहर में सोते हुए या खाना खाते हुए सुनाई को सुनने में मिल जाता, मुझे तो नान खटाई चाहिए साद ने कहा है। वैसे नान खटाई एक ये कह सकते स्नैक टाइप का है, बिस्किट है, मैं और क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ। बाकी तो नान खटाई अलग चीज़ है, लोगों को पता ही है। नान खटाई भी यूनिक चीज़ है, बहुत ही लाजवाब होती है। ये जो नान है ना, ये एक अलग तरह के किस्म की चीज़ है, ये मतलब नशे की तरह है, आपको बार बार मन करता है खाने का अगर इसके बारे में बात है तो। मेरे फरहत क्या कहते हैं फिर भाई, एक डिश है कुसकुस मुरक्कन, कुसकुस मुरक्कन जो गोश्त और वीट रवा के बनते हैं फुल टू वेजीज के साथ, सूक वाकिफ में रेस्टोरेंट में मिलेगा। अच्छा कुसकुस, ये तो मेरे को नोरा फतेही का गाना याद है, कुसू कुसू याद है, कुसकुस क्या होता है? ठीक है, ये देखो जितने सुन रहे हैं हमें, ये नाम नोट कर लो, अगर आपको नए खाने एक्सप्लोर करने का दिल करता है, मुझे लगता है ऐसे हैं 40% 50% लोग जिनको नए खाने एक्सप्लोर करने का शौक है, बाकायदा वो नए खाने ढूंढते हैं, वो रोज़मर्रा के उन्हीं गोश्त में उन्हीं गोश्त के अलग अलग बनाए डिश के खाने को नहीं पसंद करते हैं। तो फरहत भाई का कहना है कुछ कुछ गोश्त खा कर देखिए, मुरक्कन डिश है और वीट रवा के बनते हैं जिसमें वेजीज का भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा नो नो ब्रो, स्लो कुक्ड मटन विद पोटेटोज टोमेटो गार्लिक लॉट्स ऑफ मीट फ्यू सेलेक्टेड स्पाइसेस दैट इट द टेस्ट बर्ड्स ऑन फायर, इट इज़ अ मस्ट ट्राई डिश, एक्चुअली यू आर मोर देन वेलकम एनी टाइम, बी माई गेस्ट प्लीज, इट विल बी माई प्लेजर। मैं पहुँच जाऊँगा भाई, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये दमपोख्त की बिरयानी बनाई है, दमपोख्त हाँ, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो करेक्ट मी हाँ, लेकिन स्लो कुक्ड मटन आलू और टमाटर के साथ गार्लिक होता है और काफ़ी मीट होता है, कुछ सेलेक्टेड स्पाइसेस और फिर तो टेस्ट बर्ड्स आपके खुल जाएंगे। टेस्ट बर्ड्स भी ऐसे ही होते हैं, जबान के जो ये टेस्ट होते हैं ना, ये समय के साथ खुलते रहते हैं। मुझे भाई भिंडी नहीं पसंद थी, लेकिन अगर भिंडी आ जाए गोश्त के साथ, अगर आ जाए, ब्रैकेट में हमेशा गोश्त रहेगा जब भी मैं वेज की बात करूँ, ठीक है अगर वो आ जाए भिंडी अब, तो मैं खा लूँगा, लेकिन पहले मुझे थोड़े से ऐसा लगता है ये खाना कौन खाता है अम्मी, ऐसा मुँह बना के कर देता, लेकिन अब भिंडी का टेस्ट लगता है मज़ेदार। आई शेयर अ पाकिस्तानी डिश फ्रॉम पेशावर कॉल्ड चरसी कढ़ाई। अरे अरे भाई ये कैसे कैसे नाम है भाई, यू शुड बी एबल टू गेट इट इन पेशावरी रेस्टोरेंट। ओह अच्छा पेशावरी रेस्टोरेंट, हाँ ये तो पूरी तरह से अच्छा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अलग है लेकिन पेशावरी रेस्टोरेंट अलग है, इसको आप पाकिस्तानी से नहीं जोड़ सकते, उनके खाने भी काफ़ी हद तक अलग होते हैं, लेकिन ये भी कढ़ाई कभी तो ट्राई करूँगा। मैंने दो चीज़ तो निश्चित कर ली है, दो चीज़ तो मैंने लिख ली है, एक तो ये दमपोख्त, ये मुझे ट्राई करना है क्योंकि दो तीन लोगों ने अभी तक लिख दिया है, और एक कुसू कुसू सॉरी कुसकुस सॉरी भैया कुसकुस, ठीक है कुसकुस मुरक्कन भी ट्राई करूंगा, और फिर ये चरसी कढ़ाई तो मैंने सुनी है, कभी अगर जाना हुआ किसी रेस्टोरेंट मिल गया तो मैं बिल्कुल, और सनसेट की फोटो भेजिए मेरे भाई ने, क्या लाजवाब सनसेट है जस खान साहब, अब कल से मुझे भी देखना मैसर हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई, एक बार आप बफेलो मोमो ट्राई हैं, बफेलो मोमो ट्राई कीजिए, चिकन मोमो भूल जाएंगे, हिमालय की चीज़ है। ओ अच्छा हाँ, मतलब ये तो ऑब्वियसली, लेकिन बफेलो भाई चिकन तक तो ठीक था, मैंने और भी गोश्त के बारे में सुना है इंडिया में लेकिन बफेलो के ये वाले भी आ रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है कि मैं घर में ज़्यादा रुकने लगा हूँ, दुनिया का कम पता लगने लगा मुझे मेरी नॉलेज कम हो रही है, मेरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है मम्मा। फिर एक और ही मैसेज है, एक डिश है उसका नाम है बंगा, वो सिर्फ औरंगाबाद से ही मिलता है। ओके नान खालिया, अच्छा नान खालिया इसका नाम है, मुझे लग रहा था ये कह रहे थे कि नान खा लिया आपने, अगर अगर वो खा लिया तो फिर बेस्ट होता है, लेकिन प्रॉपर नाम है नान खा लिया। ये औरंगाबाद की डिश है, इसमें गोश्त के बड़े टुकड़े, फोटो भेजे हैं इन्होंने, गोश्त के बड़े टुकड़े हैं और तेल के लिए अलग तेल है या चटनी है, अलग कटोरी रखी है, या मुझे लगता है ये वो होगा कहते हैं ना तरी होता है तो वो होगा, और फिर रखे हैं कुलचे, मजेदार क्या बात है। लेकिन ये भी ट्राई करना है, अगर औरंगाबाद जाऊंगा तो ट्राई करूंगा, क्योंकि फिर यहाँ पर तो पता नहीं कहाँ मिलती है और उस तरह की मिलती है नहीं, ये भी एक सवाल होता है ना। फिर उसके बाद है ये मैसेज किस भाई का, दुमपुख्त है पेशावरी ट्राई की, अच्छा पेशावरी ट्राई प्लीज दुमपुख्त, ये मैं कल तो चलो कल से तो शुरू हो रहा है लेकिन इस वीकेंड मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा और आपको 4 से 5 के शो में पक्का सुनने को मिलेगा कि मैंने दुमपुख्त ट्राई किया है, ठीक है, पेशावरी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी जो पाकिस्तानी है वो भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मसाला भर के, ये भाई करेले के अंदर मसाला भर के खाई तो बहुत ज़बरदस्त होता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है मोमोज वाला। अच्छा ये तो ऊपर का मैसेज है, मैं इससे भी ट्राई करूंगा अब्दुल समद भाई, मैं बाकी ऑडियो आपका सुनता हूँ, हो सकता है आपने ऑडियो में बाकी जानकारी लिखी हो क्योंकि ये तो अधूरी बात हो गई। तो ये वाला खाना अपन बिल्कुल ट्राई करेंगे। तो 3 डिश हो गई, एक कुसू कुसू आई नो जानबूझ के बोला मैंने, कुसकुस मुरक्कन डिश, दुमपुख्त और कुसकुस दुमपुख्त और इन, और तीसरी क्या करो, इतने पैसे भी नहीं है ना कि एक ही हफ्ते में सब ट्राई कर डालूं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई ट्राई ऑल दिस। बीफ मोमो तो कभी अगर मिला तो मिला, देखी जाएगी वो वाला है, बट 3 में से 2 तो हो गई है, बाकी ये नान खालिया तो औरंगाबाद में करेंगे और करेली के अंदर ये देखा जाएगा ये कौन सा डिश है, ये कुछ नया है इसे भी ट्राई करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपके मैसेज की तरफ बढ़ेंगे मजीद, और आज हम व्हाट इफ के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि कल से हमारा शो, अपना शो जो है वो चेंज होने वाला है, और कल से शो होगा द रिक्वेस्ट शो, जिसमें हम आपकी मर्जी के गाने प्ले करेंगे और ये आपकी मर्जी के गाने होंगे पूरी तरह से, अलग अलग जबान के भी हो सकते हैं, चाहे आप पश्तो गाना सुनना चाहें, चाहे आप किसी स्पेसिफिक यू नो सिंगर का गाना सुनना चाहें, चाहे आप पॉप गाना सुनना चाहें, लेकिन हर दिन एक थीम होगी, उस थीम के बेसिस पर ही आप गाने की चॉइस रख सकते हैं। बॉलीवुड भी होगा, नेपाल के गाने भी होंगे, लेकिन थीम का लिहाज ये तो करना ही पड़ेगा। उसी बेसिस पे अगर पॉप गाने हैं, फिर यू नो कुछ ऐसे गाने होंगे जो रोमांटिक होंगे, लव बेस्ड होंगे, पॉप होगा उसमें, कंटेम्प्रेरी होंगे, तो उसके बेसिस पे आप जो गाने कहेंगे वो तुम्हारा भाई प्ले करेगा, और इसी दौरान 4 से 5 में आप सुनेंगे ये ज़बरदस्त सॉन्ग, और साथ ही क्विज भी होगा क्योंकि ये बदलाव है और बदलाव बहुत ज़रूरी भी है, और इसी बदलाव के चलते आज हम व्हाट इफ पर भी बदलाव के बारे में बात करेंगे। बने रहिए FM 107 पे मेरे यानी फजल के साथ, पता चलेगा आपको दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: You

अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6:30 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और जिंदगी में बदलाव, चेंज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर रोज एक जैसी लाइफ जीने से इंसान का बड़ा नुकसान होता है। उसके दिमाग पर उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ते हैं, उसकी बॉडी ख़राब होती है, उसकी बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए हमारे आप देखें कि रिलीजन में और फेस्टिवल जो है ये वक्त वक्त पे आता रहता है, ताकि इंसान सिर्फ काम ना करता रहे, उसे इन्जॉय भी करे, अपनी लाइफ को इन्जॉय करे, सेलिब्रेट करता रहे, कुछ नया करता रहे, लोगों से मिले, यारों से मिले, सिर्फ काम पर फोकस ना करें। लेकिन अगर क्या होगा, ऐसा हो जाए कि इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल फ्लैट हो जाए, रोज़ एक ही काम हो, ऑफिस 9 से 5 और कुछ चेंज अगर ना हो, अगर इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल फ्लैट हो जाए, यानी हर दिन बिल्कुल एक जैसा रेगुलर डे हो, तो क्या होगा? वही सेम काम बिना किसी बदलाव के, कोई माइलस्टोन नहीं या छुट्टी के बगैर काम करना, तो इंसान का दिमाग और जिस्म बिल्कुल स्टैग्नेट हो जाएगा। इस एंडलेस मोनोटनी में कई ऐसे खतरनाक साइकोलॉजिकल और फिजिकल हालात फेस करने पड़ेंगे कि इंसान उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और आजकल ये एक्चुअली हो भी रहा है। हम आज जिस व्हाट इफ के बारे में बात करने वाले हैं वो इसी बारे में है कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक काफ़ी मुख्तसर कर लिया है। वो उस तरह से खुलकर सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह से हमारे दादा या हमारे अब्बा लोग किया करते थे, हमारी माएँ किया करती थीं। और अब लोग बहुत ज़्यादा आपस में या खुद के ग्रुप में रहते हैं और बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं करते। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इंसान ने ये सब छोड़कर सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया, 9 से 5 जॉब और सिर्फ रेगुलर बेसिस पे रेगुलर उतने ही काम जितने हम करते आए हैं ये करते रहेगा, कोई फेस्टिवल नहीं हो, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो क्या होगा हमारे लाइफ में? कॉग्निटिव रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ब्लर होगा। जब हर दिन एक जैसा होगा तो ब्रेन नई मेमोरीज बनाना बंद कर देगा। आपको याद ही नहीं रहेगा कि कोई काम आपने कल किया है या फिर 10 दिन पहले या 5 दिन पहले, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप एक काम करते हुए आ रहे हैं और पूरी जिंदगी एक लंबे धुंधले दिन जैसी आपको लगेगी। उसके अलावा आपको डिल्यूजन्स भी होंगे। दिमाग को चलने के लिए नई इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती हैं। जब कोई चेंज नहीं मिलेगा तो दिमाग खुद से फेक सेंसरी इनपुट्स क्रिएट करने लगेगा, जिससे लोगों को अकेले में अजीब आवाज़ें आने लगेंगी। लेकिन अगर आप हेलुसिनेशन या डिल्यूजन के बारे में बात करें, तो जब दिमाग को नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि लगातार आप किसी हफ्ते या 2 हफ्ते लगातार आपने सिर्फ अपना काम किया और घर पे बैठे, काम किया घर पे बैठे, नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, सिर्फ ऑफिस गए और घर आ

सिर्फ अपने काम में लगा रहा। सोचने की ताकत भी ऐसे में खत्म हो जाती है, इंटेलेक्चुअल डेथ जिसे कहते हैं। बिना किसी बदलाव के, चेंजेस के, दिमाग के जो न्यूरल पाथवेज है वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं। इंसान बिल्कुल एक बेसिक मशीन की तरह चलने लगेगा, जहां कुछ भी नया सोचने या सीखना बिल्कुल उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में कहा भी जाता है कि आपको घर पे नहीं बैठना चाहिए। और वैसे आमतौर पे देखा भी गया है कि जो मेल है, मर्द हजरात, वो घर पे बहुत लंबा नहीं बैठते। लेकिन इस जेनरेशन के साथ एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम थोड़ी सी अभी बात भी करेंगे। उसके अलावा एक तरह से टोटल इमोशनल नमनेस जो है वो बन जाती है। लोग धीरे धीरे हर तरह का इमोशन ढूंढेंगे, और क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जब वो एक ही काम करते रहेंगे तो वो सब कुछ खो देंगे, अपने इमोशन खो देंगे, तो वो इमोशन ढूंढने की तलाश करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर उनकी लाइफ सिंपल चलती रही, रेगुलर डे वही 9 से 5 का काम और फिर घर, ना उन्हें गुस्सा आएगा, ना खुशी होगी और ना ही डर लगेगा। इंसान एक रोबोटिक स्टेट में चला जाएगा जो बिना किसी फीलिंग्स के बस काम करता रहेगा। अचानक एक्सट्रीम गुस्सा आना, इस भयानक मोनोटनी के प्रेशर से बचने के लिए शांत से शांत इंसान का दिमाग भी अचानक स्नैप कर जाएगा। लोग बिना किसी वजह के, बिना किसी खास और ठोस वजह के अचानक चिल्लाने लगेंगे, छोटी सी बात पर वायलेंट हो जाएंगे, अपना वजूद भूल जाएंगे। जब आपका काम, कपड़े और रूटीन कभी नहीं बदलेंगे, डेली बेसिस पे आप सेम काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है, तो आपका सेल्फ खत्म हो जाएगा। लोग खुद को एक आज़ाद इंसान के बजाय एक बड़ी मशीन का एक छोटा सा बेजान पुर्जा समझने लगेंगे। फिजिकल रिश्तों का पूरी तरह से खत्म हो जाना, सोशल रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, भयानक दिमागी थकान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिना किसी वीकली ऑफ के, शाम के ब्रेक के या बदलाव के, दिमाग का स्ट्रेस हार्मोन हमेशा हाई रहेगा। इससे बिना किसी भारी काम के भी लोग हर वक्त भयानक थकान और कमजोरी महसूस करेंगे, और ये आमतौर पे आज के दिनों में भी आप महसूस करते होंगे। जब आपकी कोई भी दिन छुट्टी नहीं है, आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, थोड़ा इस बार ज़्यादा काम आ गया, इस हफ्ते ज़्यादा लोड आ गया, तो आपके दिमाग पर ये बात चढ़ जाती है और फिर गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी निकलने लगता है। उम्र का जल्दी बढ़ना, ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर तो। मोनोटनी और रूटीन से बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, लोग फिजिकली बहुत जल्दी बूढ़े होने लगेंगे और उनकी बॉडी बिना किसी बीमारी के भी अंदर से टूटने लगेगी। एम्पैथी का खत्म होना, जब हर दिन एक जैसा होगा तो दूसरों की परवाह करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। लोगों के बीच से दोस्ती और प्यार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिससे परिवार सिर्फ एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह जाएगा। नींद का सिस्टम तबाह हो जाएगा। जिनको नींद से मोहब्बत है, मेरे जैसा आदमी, जब दिन और रात में कोई फर्क महसूस ही नहीं होगा तो बॉडी की नेचुरल क्लॉक बेकार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। लोग या तो 20 घंटे सोते रहेंगे या उन्हें महीनों तक नींद नहीं आएगी, जिससे दिमाग का कंट्रोल पूरी तरह से खो जाएगा। लेकिन ये ऐसा कभी होगा नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर ऐसा हो कि आप पूरी तरह से सिर्फ रेगुलर डे, अपना जो ऑफिस का दिन होता है वो गुजारे और फिर घर चले जाए, नॉर्मल आपकी दिनचर्या हो, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ना आए, कुछ नया ना सीखें, कुछ नया काम ना करना पड़े, रेगुलर सेम डे सेम तरीके से आपने अगर जीना शुरू करा तब ऐसा होगा। लेकिन आज की जनरेशन एक्चुअली में ऐसा डेलिब्रेटली तो नहीं कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली उनके साथ ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है, बात करते हैं।

दोस्तों अगर हम देखें तो ऊपर से देखने में हम सबकी जिंदगी नॉर्मल लगती है, लेकिन एक्चुअली में अंदरूनी जो लाइफ है लोगों की वो काफी हद तक बदल चुकी है जब से ये टेक्नोलॉजी आई है। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बच्चों का, नई जनरेशन का और हम लोगों का भी जो 90s के हैं या अगर 80s के हैं या 70s के हैं उनका बढ़ चुका है। लोग फिजिकली एक साथ होते तो हैं पर मेंटली सब अपने फोन में बिजी होते हैं या फिर घरों में अपने मोबाइल चलाते रहते हैं या फिर टीवी से जुड़े रहते हैं। उसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आई है, जो रिसर्च में भी देखी गई है, लोग घरों में बैठकर अब उनका मूड खराब हो रहा है, वो बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड काम ने एक टेंशन जो है लोगों के मन में डाल दी है और वो रेगुलर बेसिस पे चिड़चिड़े रहते हैं।

रहते हैं, काम और घर के बीच का फर्क जो है वो खत्म हो गया, जिससे लोग हर वक्त बिजी रहते हैं, तो उनका कुछ नया नहीं हो रहा, उनकी लाइफ में सिर्फ काम करते हैं और वो घर पे ही रहते हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और फिर घर पे ही सो जाते हैं, कुछ नया नहीं है, कहीं निकल नहीं रहे। और ख़ास तौर पे बैचलर्स जिनकी फैमिली है वो मजबूरी में या फिर अपने उनके फैमिली मेंबर्स कहते हैं बाहर निकलने को, तो वो निकल भी जा रहे हैं, लेकिन बैचलर्स के साथ ये रेगुलर बेसिस पर घर पे रहना और काम करना सबसे बड़ा मसला बन चुका है। उसके अलावा दिखावा, सोशल मीडिया पे लोग अपनी रियल लाइफ जीने से ज़्यादा उसे इंटरनेट पर अच्छा दिखाने में लगे हुए हैं, तो असल में वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पे उनके हज़ारों दोस्त हैं लेकिन असल में वो कनेक्ट नहीं है, दिल से जो कनेक्शन होता है वो नहीं है, बट कहीं वो घूमने जाते हैं, कहीं टहलने जाते हैं, वहाँ पर एक कुछ तस्वीरें खींचते हैं और वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, कुछ लाइक्स में वो खुश हो जाते हैं और फिर वो घर पे आ जाते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे चल रहा है और ये बर्नआउट करता है, थकान बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है वो है लोगों में कम मुलाकातें। हमारे दौर में हुआ करता था, दौर क्या हमारा कौन सा दौर था, लेकिन हमारे अम्मा अब्बा बताते थे कि एक दूसरे के घरों में जाना बहुत ज़्यादा शौक से जाया जाता था, लेकिन कल्चर थोड़ा चेंज हुआ, अब लोग मिलने जाते हैं तो कॉल करते हैं। पहले अब्बा हमारे बताते थे कि पहले कॉल नहीं होती थी, बस घर पहुंच जाते थे उसी वक्त, अगर फुप्पी के घर जा रहे हैं या किसी यूनिक अलग अनोखे लोगों के घर भी जा रहे हैं तो बस ऐसे ही पहुंच जा रहे हैं, खटखटाते थे और फिर घर के अंदर और फिर वहीं पर सफाई हो रही है भाग दौड़ करके। तो ये भी देखने को मिला है कि हमने अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, मुलाकातें हमने बहुत कम कर दी हैं, लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के बजाय व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर उस पर रब्ता करते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, लेकिन असल में मुलाकात नहीं हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी कि हम रेगुलर बेसिस पे सिर्फ एक अपनी ज़िंदगी जिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इंसानी दिमाग ऐसा बना ही नहीं है, जैसे ही उसको बोरियत महसूस होती है तो वो बाहर निकलता है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी हमें एक बार फिर से रोक लेती है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, दोस्ती बढ़ाएं, कई बार हमें 10 लोग मिलते हैं उनमें से 2 से दोस्ती होती है, उन 2 से अच्छी दोस्ती बन जाए, इसलिए बाहर निकलें, लोगों से मिलें और खुश रहने की पूरी कोशिश करें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपके मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

107 पे वाइब्रू 6:46 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और बात कर ली हमने व्हाट इफ में आज की। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई वही अपना काम करते हुए तो इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा। यही वजह है कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कि पता चला कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है रेगुलर बेसिस पे ही काम। तो चेंज बड़ा ज़रूरी है, बदलाव बड़ा जरूरी है। इसलिए कल शाम 4 से लेकर 5 बजे तक द रिक्वेस्ट शो में मैं आपसे मिलूंगा, जहां पर हर रोज एक नई थीम होगी। अगर आपको पार्टी पॉप गाने, कंटेम्प्रेरी गाने पसंद हैं, पार्टी एंथम पसंद है, लव सॉन्ग्स पसंद है, तो उसके हिसाब से है ना, थीम के अकॉर्डिंग आप अपने मर्जी के गाने मुझसे कह सकते प्ले करने को और वही गाने प्ले होंगे। उसके अलावा क्विज भी होगा। लेकिन अभी मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं और ये मैसेज है भाई जी, ये है कुसकुस। ओ क्या बात है, कुसकुस ये दाल है क्या है मेरा भाई? भाई ने आज भेज ही दिया, इसमें तो वेजीज वगैरह भी हैं, नॉन वेज तो ना दिख रही है, लेकिन ठीक है मैं मान लेता हूँ ये भी चलेगा। उसके अलावा ये मैसेज है सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, और कहते हैं कि पेशावर पाकिस्तान में है भाई। अरे मैं, मेरे को पता है पेशावर पाकिस्तान में है, लेकिन कई लोग ऐसे भी करते हैं ना कि खाने अलग हो जाते हैं फिर से, ठीक है। और फिर जैसे हमारे अपने यूपी में भी, वहाँ पर बिरयानी चलती है, लेकिन बिरयानी तो असली हैदराबादी है भाई। बिरयानी चलती है लेकिन लखनवी बिरयानी अलग है, हैदराबादी बिरयानी अलग है। आलू डालते हैं मुंबई वाले, तो ऐसे ये भी अलग हो जाता, तो डिश थोड़ी अलग हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या पाकिस्तानी खाना अलग है, पेशावरी खाना थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये भी नहीं कि एकदम ही अलग हो गया, बट डिश का फर्क तो नज़र आता है, हमें साफ हो जाता है। अब जैसे आप बिरयानी के बारे में बात करिए, तो लखनऊ और कानपुर 80 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन भाई मतलब वहां पर ऐसा मुक्के बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। लखनऊ वाले कहते हैं कि हमें बिरयानी होती लखनवी, और कानपुर वाले कहते हैं अरे यार इन लोग को बिरयानी मतलब नहीं पता, हम इन लोग कौन, इनको कौन बताए बताओ, ये कहते हैं सादी बिरयानी खाते हैं, वो ऐसे बात करते हैं कानपुर वाले। तो कानपुर वालों में जो, या कानपुर वालों की बिरयानी होती है उसमें मिर्चें पड़ी होती है, और अच्छी मतलब ऐसे बड़ी बड़ी मिर्चें पड़ी होती हैं खतरनाक वाली। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस बात को समझें कि हर शहर की डिश जो है 20-30 किलोमीटर में चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही पाकिस्तान में भी होगा, मुझे लगता है कि पेशावरी खाना तो अलग ही होता है, थोड़े टेस्ट में जो है वो फ़र्क होता है, बाकी खाना तो सब बना लेते हैं। लेकिन अब जैसे लखनऊ के बारे में हम बात करें, वहाँ पर कुलचे निहारी चलता है, उसका तोड़ है ही नहीं। लोग कहते हैं निहारी देखिए आप यहाँ की खाई, लेकिन असल जो निहारी बनी थी वो पहली बार लखनऊ में बनी थी, और निहारी बनी थी नवाब साहब के लिए, और निहारी का मतलब ये है कि निहार मुँह खाया जाए सुबह, और उसके भी कई वजाहत थे। अब वो वजाहत लेकर बैठेंगे तो ज़माने गुजर जाएंगे। मुझे लगता है एक खाना बना कैसे, सर्वर को कह देना तुम लोग, ठीक है कि भाई खाना बना कैसे, इसके पीछे नियम कानून क्या है ये बताओ सर्वर भाई, तो वो आपको बाकायदा बता भी देंगे। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे से, और ये जून जुलाई अगस्त का जो महीना है शाम को 4 से 5 हमारा और आपका राबता रहेगा। तब तक मुझे फजील को दीजिए इजाजत, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपने बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: You are listening to
1: AI Unlocked.
2: AI Unlocked.
1: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Ved.
0: Only on FM 107 दिल से देसी.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं AI Unlocked.
1: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Vaid.
2: Only on FM 107, दिल से देसी.
0: और अब बारी है AI वर्ड ऑफ द वीक.
3: AI वर्ड ऑफ द वीक.
0: और आज का AI वर्ड ऑफ द वीक है बिहेवियरल सर्विलेंस AI. सिंपल शब्दों में बात की जाए तो ये AI सिर्फ देख नहीं रहा, पैटर्न समझ रहा है. नॉर्मल बिहेवियर का बेसलाइन बनाता है, अनयूजुअल मूवमेंट को फ्लैग करता है और ह्यूमन को सिर्फ अलर्ट मिलता है, डिसीजन नहीं. तो डिसीजन अभी भी ह्यूमन के हाथ में ही है. AI जज नहीं करता, AI सिर्फ सजेस्ट करता है. तो आपके बिहेवियरल चेंजेस को वो नोट करता है एंड सब कुछ आपके ऊपर लिए गए डेटा के बेस पर. सो AI सिंपली क्या है, AI को ट्रेन किया जाता है डेटा दे करके और उन डेटा को एनालाइज करके AI आपको समझने की कोशिश करता है. अब बात करते हैं दोस्तों आज के AI टूल ऑफ द वीक की.
3: AI टूल ऑफ द वीक.
0: तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के AI टूल ऑफ द वीक की. और इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग AI टूल है वो है रनवे जेन 3 अल्फा. टेक्स्ट टू वीडियो हो, इमेज टू वीडियो हो या वीडियो टू वीडियो हो, ये परफेक्ट है. अगर आप एक क्रिएटर हैं, रील्स, एड्स, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाते हैं तो ये टूल आपके लिए गेम चेंजर है. रनवे जेन 3 एक एडवांस्ड AI वीडियो जनरेशन टूल है जो सिर्फ एडिटिंग नहीं करता, ये वीडियो क्रिएट करता है. मतलब आप टेक्स्ट लिखो, वीडियो बन जाता है. आप इमेज अपलोड करो, इमेज मूव करने लगती है. आप एग्जिस्टिंग वीडियो लो, उसका स्टाइल चेंज हो जाता है. ये फोटो शॉप नहीं है भाई, ये वीडियो का इमेजिनेशन इंजन है. अब इस टूल से आप क्या क्या कर सकते हैं जल्दी से थोड़ा कर समझाता हूँ आपको. इसमें आप जाइए, टेक्स्ट लिखिए, आप लिखते हैं कि अ सिनेमैटिक शॉट ऑफ अ सिटी एट नाइट, रेन फॉलिंग, नियॉन लाइट्स, और रनवे उसको वीडियो बना देता है. कैमरा मूवमेंट, लाइटिंग, मूड, सब AI डिसाइड करता है. अब इमेज टू वीडियो, आप एक फोटो अपलोड करो और रनवे उस फोटो को जिंदा कर देता है, यानी बाल हवा में उड़ा देता है, बैकग्राउंड मूव हो रहा है, लाइट नेचुरल लगती है. सो परफेक्ट फॉर इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब इंट्रोस, ब्रांड विजुअल्स एटसेट्रा. अब वीडियो टू वीडियो, एक नॉर्मल वीडियो लो और उसको बोल दो कि सिनेमैटिक बना दो या एनिमेटेड बना दो या ड्रामेटिक बना दो, बस कलर ग्रेडिंग चेंज कर देता है, टेक्सचर ऐड कर देता है, मूड ट्रांसफॉर्म कर देता है. रनवे कुछ भी कर सकता है. हॉलीवुड क्रिएटिव्स प्री विजुअलाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एड एजेंसी स्टोरी बोर्ड टाइम हाफ कर रही है, एड एजेंसी भी इसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है. एंड इंडी क्रिएटर्स प्रोडक्शन कॉस्ट बिना कैमरे के बना रही है. जिनके पास बजट नहीं था उनके पास अब इमेजिनेशन का शॉर्टकट है. एक चीज याद रखो लेकिन दोस्त, रनवे पावरफुल है लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं है. AI वीडियो का ड्राफ्ट देता है आपको, फाइनल एडिट ह्यूमन डिसाइड करता है. इमोशन, स्टोरी, टाइमिंग, ये सब क्रिएटर का काम है. AI से वीडियो

एक ऐसा टूल जो प्रूफ करता है AI क्रिएटिविटी का दुश्मन नहीं, AI क्रिएटिविटी का एक्सेलरेटर है। मिलते हैं अगले एपिसोड में AI की बहुत सी नई नई ताजा खबरों के साथ। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, भाई जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजर से छुप जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही शानदार है, वर्क आइडेंटिटी वर्सेस पर्सनल आइडेंटिटी। भाई सेपरेटिंग हु यू आर फ्रॉम व्हाट यू डू, तो इसके ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों आज के ये प्रोग्राम में हम एक बहुत ही अहम और नई सोच देने वाले टॉपिक को लेकर आए हैं आपके लिए, और हम काम की वजह से जो पहचान बनाते हैं और वो पहचान जो असल में हम खुद की हैं, इन दोनों में क्या फर्क होता है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। अक्सर हम अपना तारुफ देते हुए कहते हैं मैं फला हूँ, मैं ये काम करता हूँ, कभी हम ये नहीं कहते कि मैं कैसा इंसान हूँ। आज का प्रोग्राम इसी बात पर सवाल उठाता है दोस्तों, क्या हम सिर्फ अपनी जॉब हैं या हम इससे कहीं ज्यादा हैं। इस प्रोग्राम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि काम हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। आज का जो सेशन है दोस्तों आपको सोचने पर मजबूर करेगा और शायद कुछ पुरानी सोच को बदलने का मौका भी देगा। हमारी डेली जिंदगी का ज्यादा हिस्सा दोस्तों काम के इर्द गिर्द ही घूमता है। भाई सुबह उठना, काम पर जाना, डेडलाइंस, मीटिंग्स, टारगेट्स और फिर थक कर घर वापस आकर सो जाना। धीरे धीरे दोस्तों

हम कहना चाहिए कि ऐसा लगने लगता है कि हम सिर्फ अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। भाई अगर जॉब अच्छी हो तो हम खुद को वैल्यूएबल समझते हैं और अगर काम में मसला हो तो हम खुद को भी कमजोर महसूस करते हैं। ये एक खामोश प्रेशर होता है जो हम पर असर करता है या करता रहता है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी प्रेशर को समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हम ये बात क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि काम हमारी जिंदगी का सिर्फ एक रोल ही नहीं है। जैसे हम किसी किरदार को ड्रामा में निभाते हैं लेकिन ड्रामा खत्म होने के बाद हम वही रहते हैं जो असल में हैं। तो सोचिए जरा, अगर कल आपका जो काम है, जो नौकरी है, वो चेंज हो जाए या किसी वजह से आप अपनी जॉब छोड़ दें तो क्या आपकी पहचान भी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग इस सवाल से घबराते हैं या घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी काम से जोड़ रखी होती है, अपनी नौकरी के साथ जोड़ दी होती है। ये प्रोग्राम इसी खौफ को समझने के लिए आज मैं कर रहा हूँ कि काम जो आपकी नौकरी है वो जरूरी है, इज्जत देती है, रोजी का जरिया है, लेकिन ये हमारी पूरी पहचान नहीं होती। हम किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, किसी के दोस्त हैं, माँ हैं, बाप हैं, पड़ोसी हैं, शहरी हैं और सबसे बढ़कर एक इंसान हैं भाई। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी को सिर्फ एक टाइटल या डेजिग्नेशन तक महदूद ना रखें बल्कि अपनी वैल्यू को वर्क, काम से बाहर भी महसूस करें, अपनी नौकरी के अलावा भी महसूस करें। भाई यहाँ पर मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कहने का कि नौकरी छोड़ दें या जिम्मेदारियों से भाग जाएं, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल नहीं। मकसद सिर्फ इतना है कि जो नौकरी है और जिंदगी है इसके दरमियान सेहतमंद एक जो हद है, जो लिमिट्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वो बनी रहनी चाहिए या बनानी चाहिए। भाई जब हम अपनी पूरी कोशिश का दारोमदार सिर्फ जॉब पर रख देते हैं तो फिर थोड़ी सी नाकामी भी हमें अंदर से तोड़ देती है। तो यहाँ मकसद यही है समझने का कि जिंदगी के और भी पहलू होते हैं भाई, जहां से हम खुशी, सुकून और तसल्ली हासिल करते हैं, है ना। तो मकसद यही है कि हम खुद को सिर्फ नौकरी के वर्कर के तौर पर ही नहीं बल्कि मुकम्मल इंसान के तौर पर देख सकते हो, अपने आप को समझ सकते हो। दोस्तों आज के दौर में हर कोई बिजी है लेकिन सवाल ये है कि हम किस चीज में बिजी हैं, काम में या खुद को भूलने में। जब हम हर वक्त अपनी परफॉर्मेंस, सैलरी और पोजीशन के बारे में सोचते रहते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी असल फीलिंग्स, इंटरेस्ट और ख्वाब इग्नोर कर देते हैं। तो मकसद यही है दोस्तों कि जरा सोचिए कि नौकरी के अलावा आपको क्या पसंद है, जो काम आप करते हैं, आप किस चीज पर खुश होते हैं, आप किस पल में, किस सेकंड में, किस उस हिस्से में दिल से मुस्कुराते हैं। इन सवालों के जवाब ही आपकी रियल आइडेंटिटी है। तो भाई यहाँ पर हमने अभी तक प्रोग्राम के हिस्से में यही बुनियाद रखने की कोशिश की है कि हम हमारा जो काम पे रोल है, हमारा जो नौकरी पे रोल है, वहां से निकलकर हम किस तरीके के इंसान हैं या हमारी किस तरीके की पहचान है या किस तरीके से हम पहचाने जाते हैं। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और हमारी शख्सियत को भी बहुत ज्यादा बनाने या तोड़ने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो आइए दोस्तों अब और मजीद जानते हैं कि हु आर वी बियॉन्ड वर्क और इस पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। भाई जब आप अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आते हैं तो आप अपनी कौन सी पर्सनैलिटी लेकर घर लौटते हैं? क्या आप सिर्फ थके हुए वर्कर होते हैं या जिंदा दिल इंसान होते हैं? हमारे अंदर बहुत से पहलू होते हैं जो काम के रश में दब जाते हैं। कोई लिखना पसंद करता है, कोई पेंटिंग पसंद करता है, कोई किसी और की मदद करके खुश होता है, लेकिन जब हम सिर्फ काम को ही जिंदगी बना लेते हैं, अपनी नौकरी को ही जिंदगी बना लेते हैं तो ये चीजें धीरे धीरे पीछे रह जाती हैं, है ना। तो समझने की जरूरत यह है कि नौकरी का जो काम है उससे बाहर वाली पहचान भी उतनी ही कीमती है जितनी जो आप कर रहे होते हैं।
काम के लिए

या काम के अलावा हम रिश्तों में भी जीते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी और सोसाइटी वगैरह वगैरह। भाई ये रिश्ते हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं जो कोई भी जॉब नहीं दे सकती। जरा सोचिए, जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो कौन काम आता है, आपकी डेजिग्नेशन या आपका इंसान होना? अक्सर जवाब इंसान होना ही है ना। हमें याद दिलाने की या याद रखने की जरूरत है कि हम सिर्फ परफॉर्मर ही नहीं हैं, बल्कि महसूस करने वाले लोग भी हैं। अगर हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को मजबूत रखें तो काम का प्रेशर भी कम महसूस होता है दोस्तों। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रिश्तों और जज्बात को काम के नीचे ना दबा दें। दोस्तों बहुत से लोग कह देते हैं कि मुझे नौकरी पे मशगूल रहने के अलावा और कुछ पसंद ही नहीं है, लेकिन असल में प्रॉब्लम पसंद ना पसंद की नहीं, पसंद की कमी की नहीं, वक्त की कमी की होती है। भाई जब हम अपने लिए वक्त निकालना छोड़ देते हैं तो शौक भी ज्यादा नहीं रहते। समझने की बात यह है कि पर्सनल आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए छोटी छोटी कोशिशें काफी होती हैं। रोज के सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालना किसी पसंदीदा एक्टिविटी के लिए आपकी जिंदगी को बैलेंस दे सकती है। काम अपनी जगह है, लेकिन आपका दिल और दिमाग भी ध्यान मांगता है दोस्तों। तो ये दोनों चीजें जब साथ चलती हैं तब जिंदगी पुरसुकून होती है। भाई पर्सनल आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ हॉबीज ही नहीं बल्कि वैल्यूज भी होती हैं। आप किस बात पर यकीन रखते हैं, आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। अगर आपकी जॉब आपकी वैल्यूज के खिलाफ जा रही है तो अंदर ही अंदर एक कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगता है। तो सोचने का मकसद या मौका ये है दोस्तों कि हम अपनी वैल्यूज को पहचाने। जब हम अपनी जिंदगी के फैसले सिर्फ पैसे या स्टेटस पर नहीं बल्कि अपनी वैल्यूज पर करते हैं तो हम ज्यादा मुतमईन महसूस करते हैं। भाई नौकरी तब बेहतर है जब वो आपकी सोच और दिल के साथ मैच करे, जब ये आपको काम करने में भी वहां मजा आएगा। और जब ये मैच हो जाती है तो फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो आपकी पर्सनल शख्सियत है उसमें भी आप बेहतर रोल अदा करते हैं। तो जनाब कभी कभी हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी इसलिए भी भूल जाते हैं कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे होते हैं, घर वाले, सोसाइटी और काम की डिमांड्स। जब सब कुछ हमसे कुछ ना कुछ चाहता है और हम अदा ही करते चले जाते हैं लेकिन खुद से कुछ नहीं पूछते, तो रिमाइंडर ये है कि खुद से सवाल करना जरूरी है। मैं क्या सोचता हूँ, मुझे किस चीज से सुकून मिलता है। जब हम अपनी पर्सनल नीड्स को समझने लगते हैं तब ही हम अपनी असली पहचान के करीब जाते हैं, वरना हम सिर्फ दूसरों के लिए ही जीते रहते हैं। तो दोस्तों आइए अब प्रोग्राम के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं और अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्पस और ग्रोथ हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है, जो मकसद है और जो आगे बढ़ने की चाह है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले ये जानिए कि ग्रोथ को अक्सर लोग प्रमोशन और सैलरी से नापते हैं, लेकिन असल ग्रोथ अंदर होती है। इमोशनल मैच्योरिटी, सब्र और खुद को समझने की सलाहियत भी प्रोग्रेस का हिस्सा होती है। अगर आज आप पहले से ज्यादा मुतमईन हैं, काम हैं, ज्यादा सुन सकते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं तो ये भी कामयाबी ही है। भाई हमारी मशगूलियत हमें रिजल्ट से सिखाती है या दिखाती है, जबकि जिंदगी प्रोसेस सिखाती है। जब हम अपनी आइडेंटिटी को जॉब से अलग रखते हैं हम सीखने के लिए खुले रहते हैं। इस सोच से प्रेशर कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर ग्रोथ रेस नहीं रहती बल्कि एक सफर बन जाती है जो लगातार चलता रहता है और ये सफर इंसान को हर दिन बेहतर बनाता जाता है।

0: को अक्सर हम अपनी वर्ड्स से जोड़ देते हैं इस सोच से नाकामी बहुत दर्दनाक लगती है लेकिन जब हम समझते हैं कि हम अपनी जॉब से ज्यादा हैं तो फेलियर एक सबक बन जाता है पर गलती हमें रोकती नहीं बल्कि नया रास्ता दिखाती है पर्सनल आइडेंटिटी स्ट्रांग हो तो इंसान गिर कर भी संभल जाता है वो खुद को बेकार नहीं कहता बल्कि सीखने वाला समझता है और इस तरह हम डर के बजाय एक्सपीरियंस को कबूल करते हैं और ग्रोथ को मुमकिन बनाते हैं और यही सोच दिल को हल्का करती है हिम्मत बढ़ाती है और आगे बढ़ने की ताकत पैदा करती रहती है रोजाना मुश्किल लम्हों में जो भी हमारी जिंदगी में सामने आते हैं भाई जो हमारी ग्रोथ है वो सिर्फ तेज चलने का नाम नहीं है बल्कि रुक कर सोचने का भी मतलब रखती है जब हम लगातार भागते रहते हैं तो डायरेक्शन धुंधली हो जाती है और ये जरूरी होता है कि हम कभी कभी खुद से सवाल करें मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ क्या ये मेरी वैल्यूज से मिलता है इस किस्म की सोच पर्पस को वाजे रखती है और जब हम पॉज लेना सीखते हैं तो फैसले बेहतर होते चले जाते हैं इससे पर्सनल आइडेंटिटी मजबूत होती है और काम को नया मतलब मिल जाता है ये आदत स्ट्रेस कम करती है फोकस बढ़ाती है और जिंदगी के फैसलों में सुकून और यकीन पैदा करती है लंबे अरसे के लिए मुसलसल ग्रोथ और बेहतरी को सपोर्ट करते हुए तो दोस्तों प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सरवर मिर्जा आपके साथ कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि अभी आगे हमें बहुत कुछ समझना बाकी है बस मैं यूं गया और यूं वापस आया देखते और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है एक जज्बा है एक ख्वाब है जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं एक नई रूहानी मुलाकात एक नया जज्बा एक नई सोच के साथ
0: वहीं दोस्तों बर्न आउट की बात करें तो अक्सर तब होता है जब काम ही जिंदगी बन जाए जब हम अपनी एनर्जी सिर्फ जॉब पर खर्च करते हैं तो जिस्म और दिमाग दोनों थक जाते हैं भाई पर्पस हमें ये सिखाता है कि अपनी ताकत को समझें कब काम करना है और कब रुकना है सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है दोस्तों बल्कि जरूरत होती है जो लोग अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को जिंदा रखते हैं वो थकान को पहचान लेते हैं इस सोच से बैलेंस पैदा होता है काम बेहतर होता है और जिंदगी ज्यादा सुकून वाली लगती है जब बाउंड्रीज क्लियर होती हैं तो बर्नआउट कम होता है और इंसान अपनी सेहत रिश्तों और परफॉर्मेंस तीनों को बेहतर रख पाता है रोजाना बिना शर्मिंदगी के बिना प्रेशर के या किसी भी थकान के साथ तो जनाब सेल्फ अवेयरनेस पर बात होती है जो ग्रोथ की बुनियाद होती है जब तक इंसान खुद को नहीं समझता वो आगे नहीं बढ़ पाता अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को पहचानना बेहद जरूरी होता है अक्सर हम जॉब के फीडबैक को ही अपना स्केल बना लेते हैं और असल जरूरत खुद से सच्ची बातचीत करना होता है दोस्तों रोज थोड़ा सा वक्त खामोशी में सोचने से अंदर की आवाज सुनाई देती है ये आदत पर्सनल आइडेंटिटी को वाजे करती है और कॉन्फिडेंस पैदा करती है सेल्फ अवेयरनेस से फैसले बेहतर होते हैं और इंसान अपने सफर पर यकीन के साथ चलना सीख जाता है इस तरह ग्रोथ अंदर से महसूस होती है और जिंदगी पर्पसफुल लगती है हमेशा के लिए वहीं पर्पस हमेशा एक जैसा नहीं रहता बल्कि वक्त के साथ चेंज होता रहता है भाई जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में इंसान की प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं कभी करियर अहम होता है कभी फैमिली और कभी सेहत सबसे ऊपर आ जाती है जब हम अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल रखते हैं तो ये तब्दीलियां डरावनी नहीं लगती इस सोच से जो शर्मिंदगी है जो गिल्ट है वो कम होती है और एक्सेप्टेंस बढ़ता है इंसान अपने नए रोल्स को बेहतर अंदाज में कबूल करता है

तो दोस्तों पर्पस का इवॉल्व होना नाकामी नहीं बल्कि ग्रोथ की निशानी होती है। ये समझ इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती है और चेंज के बावजूद जिंदगी मीनिंगफुल महसूस होती रहती है और इंसान खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना सीखता है हमेशा खुद के साथ। तो जनाब पर्सनल ग्रोथ के लिए बाउंड्रीज बनना बहुत जरूरी होती हैं। जब हम हर वक्त अवेलेबल रहते हैं तो काम पर्सनल जिंदगी पर कब्जा कर लेता है, इसलिए नो कहना सीखना भी सेल्फ रेस्पेक्ट का हिस्सा है। अपना वक्त प्रोटेक्ट करना सेल्फिशनेस नहीं होती बल्कि सेहतमंद चॉइस भी होती है। जब बाउंड्रीज क्लियर होती हैं तो इंसान थकान को पहले पहचान लेता है, इससे स्ट्रेस कम होता है और फोकस बढ़ता है, काम बेहतर होता है क्योंकि दिमाग ज्यादा फ्रेश रहता है। बैलेंस जिंदगी ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मुमकिन बनाती है और इंसान हर रोल में बेहतर परफॉर्म करता है जो उसे ओवरऑल जिंदगी में सुकून और स्टेबिलिटी देता है और खुशी पैदा करता है हमेशा के साथ। दोस्तों पर्पस और ग्रोथ सिर्फ खुद तक महदूद नहीं रहती बल्कि दूसरों पर भी असर डालती हैं। जब कोई शख्स अंदर से मुतमईन होता है तो उसका रवैया पहले से पॉजिटिव होता है। ऐसा इंसान बेहतर दोस्त, बेहतर कलीग और बेहतर फैमिली मेंबर बनता है। वो दूसरों से कॉम्पिटिट करने के बजाय उनके साथ चलना पसंद करता है और इस सोच से जेलसी और इनसिक्योरिटी कम होती चली जाती है। हेल्दी माइंडसेट से टीम वर्क मजबूत होता है और पर्सनल आइडेंटिटी जब स्ट्रांग हो तो मुआशरे में भी बेहतरी आती है। इस तरह इंडिविजुअल ग्रोथ कलेक्टिव प्रोग्रेस का जरिया बन जाती है और सोसाइटी में सुकून और बैलेंस पैदा होता है जो तमाम लोगों के लिए मुस्बत माहौल तैयार करता है हमेशा और बेहतर रहता है। भाई हर दिन मोटिवेटेड रहना मुमकिन नहीं होता और ये बात समझना जरूरी है। पर्पस का मतलब ये नहीं कि इंसान हर वक्त इंस्पायर्ड फील करे, कभी कभी सिर्फ डिसिप्लिन रहना भी काफी होता है। जब आप अपनी वैल्यूज के मुताबिक चल रहे होते हैं तो मोटिवेशन बाद में आ जाती है। इस सोच से खुद पर प्रेशर कम होता है, इंसान अपनी स्पीड और कैपेसिटी को एक्सेप्ट करता है, ग्रोथ का सफर रियलिस्टिक बन जाता है। ये अप्रोच जिंदगी को आसान बनाती है और काम और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस पैदा करती है। इस तरह इंसान गिल्ट के बगैर अपना बेहतर वर्जन बनाता रहता है और समझदारी के साथ आगे बढ़ता रहता है हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों क्राइसिस पर बात करते हैं जो अक्सर जॉब चेंज या काम छूटने पर महसूस होती है। जब पहचान सिर्फ काम से जुड़ी हो तो अचानक खालीपन महसूस होता है, लेकिन अगर पर्सनल आइडेंटिटी पहले से मजबूत हो तो ये फेस संभालना आसान हो जाता है। जिंदगी में सिर्फ एक रोल पर डिपेंड करना रिस्की होता है दोस्तों। सीखना, रिश्ते, सेहत और क्रिएटिविटी जैसे पहलू जिंदगी को बैलेंस देते हैं। जब हम मल्टीपल पहलू डेवलप करते हैं तो एक चीज के हिलने से या खत्म होने से पूरी जिंदगी नहीं हिल जाती या गिर जाती। ये सोच इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा करती है और इंसान को मुश्किल वक्त में भी उम्मीद और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का हौसला देती है और हर रोज के सफर में कुछ ना कुछ बेहतर सिखाती रहती है। वहीं ग्रोथ का मतलब कभी कभी उन चीजों को छोड़ना होता है जो पहले सही लगती हैं। कुछ आदतें या सोच वक्त के साथ हमारी ग्रोथ को रोक लेती हैं। इन चीजों से कहना चाहिए सीधे लफ्जों में चिपके रहना सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी है अक्सर नुकसान देता है। जब हम अपनी आइडेंटिटी को काम से अलग समझते हैं तो चेंज का डर कम हो जाता है। इंसान नए रास्तों को एक्सप्लोर कर लेता है या करने लगता है और फिर लेटिंग गो आसान नहीं होता लेकिन जरूरी होता है। मैं ये प्रोसेस इंसान को इमोशनली मैच्योर बनाता है और नई पॉसिबिलिटीज के लिए स्पेस क्रिएट करता है जो ग्रोथ को नेचुरल अंदाज में आगे बढ़ने देता है और जिंदगी में क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन पैदा करता है वक्त के साथ। तो दोस्तों पर्पस डायरेक्शन देता है जबकि पेशेंस उस डायरेक्शन पर चलना सिखाता है। अक्सर हम जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं और खुद से नाइंसाफी कर लेते हैं। हर तब्दीली वक्त मांगती है और हर ग्रोथ ग्रेजुअल होती है।

जब हम काम के प्रेशर से निकलकर प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। वहीं पेशेंस से हम अपने आप को समझने लगते हैं। इस सोच से कंपैरिजन कम होता है और फोकस बढ़ता है। ग्रोथ फिर स्ट्रगल नहीं रहती बल्कि इंटरनेशनल सफर बन जाती है, जो धीरे धीरे स्टेबिलिटी और सुकून की तरफ ले जाता है और जिंदगी के फैसलों में क्लियरिटी, पेशेंस, हिम्मत, यकीन और बेहतर बैलेंस पैदा करता रहता है रोजाना हर दौर में हमेशा के लिए। वहीं दोस्तों, ग्रैटिट्यूड ग्रोथ का वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब तवज्जो सिर्फ अचीवमेंट पर हो तो शुक्र का एहसास कम हो जाता है, लेकिन शुक्र का एहसास इंसान को ग्राउंडेड रखता है, जमीनी रखता है। रोज की छोटी चीजों की कदर करना दिल को मुतमईन करती है। ये आदत पर्सनल आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि इंसान अपनी वर्थ को सिर्फ रिजल्ट से नहीं जोड़ता। शुक्रगुजार रहने से तवानाई बरकरार रहती है, यकीन जानिए। इस सोच के साथ काम और जिंदगी दोनों बेहतर महसूस होते हैं और स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। रोजाना माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, जिससे इंसान इमोशनली स्टेबल महसूस करता है और मुश्किल हालात में भी उम्मीद और सब्र कायम रखता है। वहीं दोस्तों, कंपैरिजन ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर शख्स का सफर और वक्त मुख्तलिफ होता है। दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी समझना खुद पर जुल्म होता है। जब हम अपनी आइडेंटिटी को खुद डिफाइन करते हैं तो तसल्ली महसूस करते हैं और इस सोच से वैलिडेशन की जरूरत कम होती है। इंसान अपनी रफ्तार और फैसलों पर यकीन करता है और पर्पस क्लियर होने से डायरेक्शन मिलता है और ग्रोथ नेचुरल लगती है। ये फ्रीडम जिंदगी को हल्का बनाता है और काम को भी ज्यादा मीनिंगफुल महसूस करवाता है। रोजाना यूजर्स अपनी एनर्जी को बेहतर जगह लगाने लगते हैं, स्ट्रेस कम रहता है और सुकून, भरोसा और सेल्फ कॉन्फिडेंस मुस्तहकम हो जाता है इस वक्त के साथ हमेशा के लिए। भाई, पर्सनल ग्रोथ सिर्फ किताबों या सेमिनार से ही नहीं होती बल्कि जिंदगी के तजुर्बों से भी होती है। हर एक्सपीरियंस, चाहे अच्छा हो या मुश्किल, इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। काम में कामयाबी हो या गलती, दोनों ग्रोथ का हिस्सा होती है। जब हम अपनी पहचान को वाइड रखते हैं तो हम हर हालत को टीचर बना लेते हैं और इस सोच से हम शिकायत के बजाय सीखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे रवैया बदलता है और रिस्पॉन्स बेहतर होता है। यही अप्रोच इंसान को इमोशनली स्ट्रांग बनाती है और जिंदगी के हर दौर में उसे अपने आप पर भरोसा देती रहती है, जो उसे मुश्किल फैसलों में कभी खुद को संभल कर आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। वहीं दोस्तों, सेल्फ रेस्पेक्ट पर्सनल ग्रोथ का बुनियादी हिस्सा होती है, जो काम से ऊपर होती है। जब हम अपनी कीमत सिर्फ जॉब की परफॉर्मेंस से जोड़ देते हैं तो हम कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को पहचान लेते हैं तो अपनी वर्थ खुद डिफाइन करते हैं। इस सोच से इंसान मजबूत होता है, वो तनकीद से टूटना नहीं बल्कि सीखता है। सेल्फ रेस्पेक्ट बाउंड्रीज बनाना सिखाती है और फैसले क्लियर हो जाते हैं। यही चीज जिंदगी को बैलेंस्ड और डिग्निफाइड बनाती है। जब इंसान अपने आप को काबिल और लायक समझता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हर रोल में बेहतर रवैया पैदा होता है रोजाना, जो जिंदगी के ताल्लुकात और फैसलों को मुस्तहकम करता है। दोस्तों, पर्पस का एक पहलू ये भी है कि जिंदगी को प्रोजेक्ट के बजाय मास्टरपीस समझा जाए। प्रोजेक्ट डेडलाइन पर खत्म हो जाता है, जबकि मास्टरपीस धीरे धीरे बनता रहता है। जब हम जिंदगी को इसी नजर से देखते हैं तो जल्दी कामयाबी का प्रेशर कम हो जाता है। हर दिन छोटी मेहनत अहमियत रखती है। इस अप्रोच से पेशेंस आती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। इंसान सफर को एंजॉय करना सीख जाता है और खुद पर सुकून महसूस करता है। ये सोच थकान कम करती है और कंपैरिजन से दूर रखकर जिंदगी को बेहतर और बैलेंस्ड अंदाज में चलने में मदद देती है। लगातार हमेशा और ग्रोथ के हर मरहले पर इंसान को मुस्तहकम बनाती रहती है रोजाना और बेहतर। वहीं दोस्तों, सेल्फ कंपैशन ग्रोथ का वो हिस्सा है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। काम में गलती पर हम खुद को सख्त जज करते हैं।
जब हम अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। भाई एक ऐसा सफर जहां हम उन किताबों की कहानी सुनते हैं जिनके अल्फाज ने दुनिया भर के लोगों को बदला या बेहतर सोच दी है और जिंदगी को एक नए अंदाज से देखना सिखाया है। हर एपिसोड में एक ऐसी किताब पर हम बातचीत करते हैं जिसने दुनिया भर के सोचने वालों का तरीका बदल दिया है, और आज हम एक ऐसी ही किताब पर बातचीत करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लाखों कायरीन के दिलों को छुआ है, और वो है द सीक्रेट। लिखने वाले हैं रोंडा बर्न। मैं हूं आपका दोस्त

सोच है, एक नया अंदाज़े ज़िंदगी है, और इस किताब का नाम है, जैसे मैंने अर्ज किया, The Secret. और लिखने वाले हैं होंडा बाइन. ये किताब दुनिया भर में काफी लोगों की जिंदगी पर असर डाल चुकी है. आज का प्रोग्राम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी बनेगा. दोस्तों, आज हम सिर्फ पेजेस ही नहीं पलट रहे हैं इस किताब के, बल्कि अपनी सोच, अपनी आदत और अपनी नजर को एक नए एंगल से देख रहे हैं. इसलिए आज का ये वक्त, आज के ये कुछ लम्हात सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा भी है. तो साहब, द सीक्रेट की बुनियादी पैगाम बहुत सीधे हैं, लेकिन उतना ही गहरे भी हैं. ये किताब कहती है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनती है. जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो हम बिलीव या यकीन करते हैं, वही चीजें हमारी जिंदगी में वापस आती हैं. इस किताब के राइटर इस कंसेप्ट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से एक्सप्लेन करते हैं. इसका सीधा मतलब ये है कि आप जो सोचते हैं, कायनात उसी किस्म का जवाब आपको देती है. अगर हम सिर्फ मसाइल या कमी और डर पर फोकस करते हैं तो वही ज्यादा होता चला जाता है. भाई, दिमाग उसी तरीके से हमें बनाता चला जाता है ना, और ये तो हमें सिखाया जाता है. हमारे बड़े भी कहते हैं और हमारा दीन भी कहता है कि अच्छा सोचो, अच्छा ही सोचो और अच्छी ही उम्मीद रखो. और सुभान अल्लाह, उम्मीद रखना भी एक ईमान का हिस्सा है. लेकिन अगर हम शुक्र, उम्मीद और यकीन का साथ देना छोड़ देते हैं या उसके साथ जीना छोड़ देते हैं तो हमें मुश्किलों का सामना होता है. और वहीं इसके बरअक्स, हमें अगर यही चीजें हम फॉलो करते हैं तो जिंदगी और भी बेहतर होती चली जाती है, धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है. तो भाई, इस प्रोग्राम के दौरान हम आपसे कोई गायबाना बात नहीं करने जा रहे हैं या ख्याली बातें नहीं.

करने जा रहे हैं। ये जो बुक है द सीक्रेट, हमें ये बताती है कि सोच और जज्बा मिलकर अमल बनाते हैं। जब हम सिर्फ पॉजिटिव बात नहीं कहते बल्कि उसे महसूस भी करते हैं तब असर अच्छा होता है। और इसके राइटर रोंडा बर्न कहती हैं कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल और दिमाग में उसे पा चुके होते हैं या उसे पाने का एहसास कीजिए। तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी रोजमर्रा की नॉर्मल सोच पर भी गौर करें। हम सुबह उठकर किस मूड में होते हैं, शिकायत के साथ या शुक्र के साथ, तो भाई ये चीजें असर डालती है ना, क्योंकि वही सोच पूरे दिन शेप करती है। अच्छा मूड होता है, सुबह सुबह अच्छे उठते हैं, तो ये चीजें हमारे खुद के हाथ में है दोस्तों। चलिए जी, अब थोड़ा डिटेल में अब बात करते हैं और जानते हैं कि बुक ऑफ द वीक, ये जो द सीक्रेट किताब है, इसको हमने क्यों चुना है और इससे हमें क्या पैगाम मिलता है। एक्चुअल में हमें ये किताब क्या सिखाती है भाई, किताब के मुताबिक जिंदगी में तीन बुनियादी कदम होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मतलब पहला कदम ये है कि आप वाज़े तौर पर जाने कि आप चाहते क्या हैं। दूसरा कदम यकीन का है, बिना शक और डर के। और तीसरा कदम है उस चीज को हासिल करने का जज्बा, शुक्र और इंतजार के साथ। तो यहां पर इस किताब के राइटर के मुताबिक अक्सर लोग पहले ही कदम पर अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो चाहते क्या हैं। ये किताब हमें क्लियरिटी सिखाती है। द सीक्रेट में बहुत सी हकीकी कहानियां शामिल की गई हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी हेल्थ, पैसे और रिश्तों में फर्क महसूस किया है। यहां एक ही बात बार बार रिपीट होती है, फोकस की पावर। जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो बेहतर होती चली जाती है क्योंकि उसके हिसाब से फिर हम सोचते हैं, हमारी आदतें बेहतर होती हैं, हम उसको मुख्तलिफ तरीके से करने की और बदलने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर आप सिर्फ बिल्स, कर्ज और टेंशन पर फोकस करते रहेंगे तो वो ही बढ़ती चली जाएगी, जाहिर है। तो जब आप अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर शुक्र करते हैं तब जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती चली जाती है। किताब ये भी कहती है कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्र करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। मजीद ये भी वो वाजे करती हैं कि द सीक्रेट का मतलब ये नहीं कि आप बिना मेहनत के सब कुछ हासिल कर लेंगे, बल्कि ये किताब हमें राइट डायरेक्शन में एक्शन लेना सिखाती है। जब सोच और अमल एक हो जाते हैं तब नतीजा सामने आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप सेहतमंद होना चाहते हैं तो सिर्फ सेहत के बारे में सोचना ही काफी नहीं होगा बल्कि सेहत के मुताबिक जिंदगी भी जीनी होगी। किताब का असल असर दोस्तों ये है कि ये आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सिखाती है कि जो कुछ भी आज जिंदगी में है वो किसी हद तक हमारी अपनी सोच का नतीजा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों पर जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है इसका। तो दोस्तों द सीक्रेट ने सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नया डिस्कशन शुरू किया है। इस किताब के बाद लोग पर्सनल डेवलपमेंट, माइंडफुलनेस और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ज्यादा मुतवज्जे हुए हैं। कॉर्पोरेट दुनिया, स्पोर्ट्स, हेल्थ और एजुकेशन में भी इस सोच का असर देखा गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, डिसीजन मेकिंग बेहतर हुई और लाइफ के चैलेंजेस हैंडल करना आसान हुए। ये किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि हम मजबूर नहीं बल्कि पावरफुल हैं। बस हमें अपनी सोच को पहचानने और कंट्रोल की जरूरत होती है। तो दोस्तों आज के दौर में जब स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर वगैरह हर जगह है तो ये किताब द सीक्रेट एक पॉज लेने का पैगाम देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ भाग दौड़ ही नहीं भाई, ये महसूस करने का भी नाम है। जब आप अपनी एनर्जीज को ठीक जगह पर लगाने शुरू कर देते हैं तब चीजें आसान होती चली जाती हैं। इस किताब का असर सिर्फ पढ़ते वक्त तक महफूज नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे डेली लाइफ के डिसीजंस पर नजर आता है दोस्तों। इसीलिए आज जब सालों बाद द सीक्रेट उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले दिन थी। द सीक्रेट का एक बहुत गहरा और असर दुनिया पर ये पड़ा है या जिन लोगों ने इसको पढ़ा है उन पर ये पड़ा है कि सोचने के तरीकों को बदलो, उस पर ताकत लाओ। पहले लोग अपनी जिंदगी को ज्यादातर सर्कमस्टेंसेस के हवाले कर देते थे लेकिन इस किताब के बाद एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या हम वाकई अपनी जिंदगी पे काबू पा सकते हैं? तो वो है,
इस सोच ने

बहुत से लोगों को पैसिव रहने के बजाय एक्टिव बनने पर मजबूर कर दिया। स्कूल्स में पॉजिटिव थिंकिंग पर बात होने लगी, ऑफिसेज में माइंडसेट और मोटिवेशन पर ट्रेनिंग शुरू हुई और लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये देखने लगे कि उनकी सोच, उनके जज्बात और फैसलों को किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन था दोस्तों, जो धीरे धीरे हर इंसान को मदद करने लगा है। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर बात करें तो द सीक्रेट का काफी गहरा इम्पैक्ट देखा गया है। मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइफ कोचेस और ट्रेनर्स ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी सेशन का हिस्सा बनाना शुरू किया है। वहीं वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर या सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर हम देखते हैं पॉडकास्ट और सेमिनार्स वगैरह में, ये मैसेज कॉमन हो गया कि अपनी रियलिटी को खुद डिजाइन किया जा सकता है जब आप अच्छी सोच रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल खत्म हो जाती हैं, बल्कि ये कि मुश्किलात को देखने का नजरिया बदल जाता है। जब इंसान ये समझने लगता है कि वो हर रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देने की ताकत रखता है, तब उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक बैलेंस आ जाता है। इसी वजह से द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं रही, बल्कि एक मूवमेंट बनती जा रही है। दोस्तों, कॉरपोरेट दुनिया में भी द सीक्रेट के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। लीडरशिप और मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ये बात होने लगी कि लीडर्स सबसे पहले अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं। जब लीडर्स पॉजिटिव, क्लियर और फोकस्ड होते हैं तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। और यहाँ इस किताब की राइटर का भी ये मानना है कि जब आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर यूज करते हैं तो चीजें नेचुरली अलाइन होने लगती हैं। बहुत सी कंपनीज ने ग्रेटिट्यूड कल्चर इंट्रोड्यूस किया, जहां एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट किया जाता है। इस चेंज का नतीजा सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि मेंटल पीस और जॉब सेटिस्फेक्शन की सूरत में भी सामने आ रहा है। वहीं पर्सनल लेवल पर अगर देखा जाए तो द सीक्रेट ने लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ लाया है। लोगों ने अपने पैटर्न्स देखने शुरू किए। बार बार वही मसला क्यों रिपीट होता है, वही रिश्तों के कन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं, या वही फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों वापस आ जाता है। इस किताब ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद हम सिर्फ सिचुएशन के शिकार नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं। ये रियलाइजेशन आसान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जिम्मेदारी लेना मुश्किल होता है, लेकिन जब इंसान ये कदम उठाता है तब अंदर से एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हेल्थ और वेलनेस की फील्ड में भी दोस्तों द सीक्रेट का असर देखने में आया है। बहुत से डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट ने माइंड बॉडी कनेक्शन पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया। ये समझ आने लगा कि स्ट्रेस, नेगेटिव सोच और इमोशनल बर्डन हेल्थ पर सीधा असर डालती हैं। जब इंसान अपनी सोच को थोड़ा हल्का करता है, शुक्र और उम्मीद को ज्यादा जगह देता है, तो बॉडी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगती है। यहाँ राइटर भी यही कहती हैं कि फील गुड टू अट्रैक्ट गुड सिर्फ ये एक स्लोगन ही नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बनना चाहिए। इसी वजह से माइंडफुलनेस और पॉजिटिविटी पर बेस्ड रूटीन्स दुनिया भर में पॉपुलर होती चली गई। भाई, तनकीद भी द सीक्रेट का एक हिस्सा रहा है और ये बात भी समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं होता, और ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो किताब का असल मैसेज ये नहीं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये है कि प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे किया जाए। जब आप अपनी एनर्जी सिर्फ शिकवा और शिकायतों पर खर्च नहीं करते, बल्कि सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, तब चीजें बेहतर होती चली जाती हैं। इसी बैलेंस की वजह से ये किताब रेलेवेंट है। अगर हम इस किताब को एक जुमले में समझे दोस्तों, तो शायद ये कहा जा सकता है कि ये जिंदगी का कंट्रोल पूरी तरह सिखाने में मदद करती है। इंसान के पास अपनी सोच, अपने जज्बात और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना आसान होता है, और यही तीन चीजें मिलकर फ्यूचर को शेप करती हैं। द सीक्रेट ने दुनिया को ये याद दिलाया कि हर इंसान के अंदर एक टीचर छुपा होता है। जब तक हम अपनी इस ताकत को नहीं पहचानते, तब तक हम सिर्फ रिएक्ट करते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस बात को समझ लेते हैं, जिंदगी धीरे धीरे मीनिंगफुल बनने लगती है। दुनिया भर में द सीक्रेट को जो एक्सेप्टेंस मिली, उसका एक रीजन ये भी था कि लोग अपनी लाइफ को मीनिंग देना चाहते थे। 2006 में पहले डॉक्यूमेंट्री आई और फिर बुक ने उस मैसेज को और ज्यादा फैला दिया। जब कोई आइडिया फिल्म, टीवी इंटरव्यूज और फिर किताब की शक्ल में आता है दोस्तों, तो आम इंसान को लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, कुछ प्रैक्टिकल भी होगा। इसी वजह से बहुत से लोगों ने इसे अपनी रूटीन में फिट करना शुरू किया। सुबह उठकर पॉजिटिव लाइन बोलना,

अदा करना और साथ ही साथ अपने गोल्स को विजुलाइज करना। भाई दोस्तों ये चीजें सिंपल लगती हैं लेकिन जब रोज की जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप रिपीट होती हैं तो इंसान का मूड, उसकी सेल्फ टॉक और उसका अप्रोच चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी किताब का ग्लोबल इम्पैक्ट सिर्फ फैंस तक लिमिटेड नहीं रहा, क्रिटिक्स ने भी इस पर काफी बात की। भाई दोस्तों जब कोई चीज कंट्रोवर्शियल होती है तो लोग उसे इग्नोर नहीं करते, लोग या तो डिफेंड करते हैं या क्वेश्चन करते हैं और दोनों सूरत में डिस्कशन बढ़ता है। और डिस्कशन का फायदा ये होता है कि लोग अपनी सोच को एग्जामिन करने लगते हैं। मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ, मैं शिकायत क्यों करता हूँ, मैं शुक्र क्यों नहीं करता, मैं गोल्स क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा। भाई वर्ल्ड इंपैक्ट की बात करें तो द सीक्रेट ने सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दी। वहीं कुछ बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसका जिक्र हुआ जिससे और ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचा। आज भी आप ऑनलाइन देखें तो मैनिफेस्टेशंस, विजन बोर्ड्स, अफर्मेशन, जर्नलिंग, ये सब टर्म्स बहुत कॉमन हैं। ये सब चीजें पहले भी मौजूद थी लेकिन ये किताब द सीक्रेट ने इनको मेनस्ट्रीम बनाया। इसका असर एक आम घर तक भी गया। माँ बाप अपने बच्चों को कहने लगे बेटा पॉजिटिव सोचो। स्टूडेंट्स को सिखाया गया अपने गोल इमेजिन करो और वर्किंग लोगों ने अपने डेस्क पर मोटिवेशनल लाइन्स चिपकाना शुरू कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज इंस्टेंटली चेंज हो गई है दोस्तों, लेकिन एक कल्चर शिफ्ट जरूर आया है या आ भी सकता है। लोगों ने अपनी लैंग्वेज और अपनी डेली थिंकिंग पर फोकस देना स्टार्ट किया है। किताब की पॉपुलैरिटी का एक मेजर साइन ये भी है कि ये बहुत सी जुबानों में ट्रांसलेट हुई। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक द सीक्रेट प्रोडक्ट्स और बुक्स 52 यानी 52 से ज्यादा लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। वहीं 50 लैंग्वेज और मल्टी मिलियन सेल्स का जिक्र भी मिलता है। जब कोई मैसेज इतनी जुबानों में फैलाया जाए तो उसका मतलब होता है कि उस मैसेज में कोई बात तो ऐसी है जो अपनाई जा सकती है। भाई आपको जो अच्छा लगे आप रख लें, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ दें, ये तो हमें बड़े समझाते ही हैं। तो जैसे होप, कंट्रोल और बेटर फ्यूचर का ख्वाब होता है दोस्तों, वहीं अगर हम अपने ऊपर काम करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। हर मुल्क में लोग स्ट्रेस से गुजरते हैं, हर कल्चर में लोग चाहते हैं कि उनकी मेहनत का नतीजा निकले। इसलिए इस बुक का आइडिया दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में लोगों को अपने आप से मिलता जुलता लगा, चाहे वो इसे किताबी समझें या माइंडसेट ट्रेनिंग। भाई इम्पैक्ट का एक पहलू ये भी है कि इस किताब ने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लफ्ज से दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया। जब किताब कहती है कि आप अपनी सोच से अपनी रियलिटी को शेप करते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि इंसान अपने आप को विक्टिम कम समझने लगता है। लेकिन यहाँ बैलेंस जरूरी है। हर प्रॉब्लम सिर्फ सोच की वजह से नहीं होती, कभी हालात, इकॉनमी, हेल्थ और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। इसलिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इस कंसेप्ट को ब्लेम की जगह चॉइस के लिए यूज करें। भाई जो चीज मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर फोकस करूं, मेरा एटीट्यूड, मेरा एफर्ट्स, मेरी प्लानिंग, मेरी आदतें, ये सब मेरे हाथ में है। जब ये माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है दोस्तों तो इंसान छोटी छोटी चीजों में भी बेहतर करना शुरू कर देता है। दोस्तों दुनिया में सेल्फ हेल्प का मार्केट हमेशा से स्ट्रांग रहा लेकिन द सीक्रेट ने इसे और ज्यादा कॉमर्शियल और विजिबल बना दिया। भाई बुक और फिल्म ने 2009 तक ह्यूज सेल्स जनरेट किए और रिलेटेड मर्चेंडाइज भी निकाले। ये चीज कुछ लोगों को पसंद आती है और कुछ को नहीं, लेकिन मार्केट रियलिटी ये है कि जब लोग किसी मैसेज से इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो वो उससे रिलेटेड टूल्स भी लेना शुरू कर देते हैं। जर्नल्स, प्लानर्स, विजन बोर्ड किट्स, ग्रेचुअल नोटबुक्स वगैरह वगैरह। इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि लोग प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करते हैं। नेगेटिव साइड ये हो सकता है कि कोई इंसान शॉपिंग को सेल्फ इम्प्रूवमेंट समझ ले। इसलिए दोस्तों असल चीज आपकी डेली प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी में छुपी है। एजुकेशन पर इम्पैक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब टीचर्स और ट्रेनर्स पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट और ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं वही आइडिया होता है कि सोच और एफर्ट से आउटकम्स इम्प्रूव हो सकते हैं। द सीक्रेट का मैसेज कभी कभी सिंप्लीफाइड होता है लेकिन इसने एक सीधा सा लेसन पॉपुलर किया। आप अपने दिमाग को जिस डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं आपका बिहेवियर उसी तरफ जाता जाता है। इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने आप से बेहतर बात करना सीखते हैं, अपनी तैयारी को नेगेटिव प्रिडिक्ट

एक्शन से साबोटाज नहीं करते और अपने गोल्स को क्लियर लिखते हैं. यहाँ पे बेस्ट अप्रोच ये है कि पॉजिटिव सोच के साथ रियलिस्टिक प्लानिंग भी हो, यानी टाइम टेबल, प्रैक्टिस, फीडबैक और इम्प्रूवमेंट. इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप का एंगल भी बहुत इंटरेस्टिंग है. भाई ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन एक मैग्नेट की तरह काम करता है. जब आप अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के लिए शुक्र अदा करना शुरू करते हैं तो आपका एटीट्यूड सॉफ्ट हो जाता है और कन्फ्लिक्ट्स कम होने लगते हैं. इसका दुनिया पर असर इस तरह आया कि लोग कंप्लेंट्स की जगह अप्रिसिएशन की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर भी थैंक यू, ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्स जैसे एक्सप्रेशंस कॉमन हो गए हैं. अब ये हर जगह जेन्युइन हो जरूरी नहीं, लेकिन ट्रेंड ये जरूर बना कि लोग पॉजिटिविटी को पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं. अगर इस ट्रेंड को मैच्योर तरीके से यूज किया जाए तो फैमिलीज में मोहब्बत बढ़ती है, वर्क प्लेस में कोऑपरेशन इम्प्रूव हो सकता है और फ्रेंडशिप में एम्पैथी आ सकती है. दोस्तों, हेल्थ और मेंटल वेलबींग पर द सीक्रेट का इम्पैक्ट दो तरह से देखने में आया है. एक तरफ किताब का मैसेज लोगों को होप देता है, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से मूड लिफ्ट होता है. दूसरी तरफ अगर कोई इंसान सीरियस बीमारी या डिप्रेशन में हो तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ट्रीट करने की कोशिश करें और मेडिकल हेल्प ना लें तो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है. इसलिए आप अपनी सोच को हेल्दी रखें, दुआ करें, होप रखें, ग्रेटिट्यूड जरूर करें, लेकिन साथ साथ प्रोफेशनल गाइडेंस, थेरेपी, डॉक्टर्स कंसल्टेशंस और प्रैक्टिकल रूटीन्स को भी इम्पोर्टेंस दें. भाई किस तरीके से हमें बताया गया, हमारे दीन में भी तो ऐसे ही है कि पहले अपना काम करो, फर्ज अदा करो और फिर अल्लाह से उम्मीद रखो. तो दुनिया में इस बैलेंस की बात बढ़ने लगी और सेल्फ हेल्प को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के साथ कनेक्ट किया गया. दोस्तों, इस किताब का एक मेजर कल्चर इम्पैक्ट विजुअलाइजेशन का ट्रेंड है. आज आप एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और परफॉर्मर्स को देखें, वो अपनी परफॉर्मेंस से पहले सीन इमेजिन करते हैं. ये कंसेप्ट न्यू नहीं, लेकिन इस किताब से इसे हाउस होल्ड टर्म बना दिया. विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिकल बेनिफिट ये होता है कि आपका दिमाग अपने टारगेट को क्लियर देखता है और फिर स्टेप्स प्लान करना आसान हो जाते हैं. जब टारगेट होता है दोस्तों तो इंसान कंफ्यूज रहता है, लेकिन जब आप डिटेल्स में इमेजिन करते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी रूटीन कैसी है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, तो दिमाग नेचुरली अलाइनमेंट ढूंढता है. इसलिए दुनिया में विजन बोर्ड्स और गोल जर्नलिंग का क्रेज आया. ऑफिशियल द सीक्रेट प्लेटफॉर्म पर भी लैंग्वेजेस और प्रोडक्ट्स का मेंशन इसी एक्सपेंशन को शो करता है. भाई मीडिया स्टडीज के एंगल से देखें तो द सीक्रेट ने स्पिरिचुअलिटी प्लस सेल्फ हेल्प को एंटरटेनमेंट फॉर्मेट में पॉपुलर किया. तो भाई कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के तौर पर डिस्क्राइब की गई और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंटरव्यू के जरिए प्रेजेंट किया गया. जब कोई आइडिया सिनेमैटिक म्यूजिक, स्टोरीज और इंस्पायरिंग टोन में प्रेजेंट होता है तो ऑडियंस इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करती है. यही वजह है कि इस कंसेप्ट का स्प्रेड फास्ट हुआ. लेकिन यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है दोस्तों, ऑडियंस को ये समझना कि स्टोरी और इंस्पिरेशन के साथ रियलिटी चेक्स भी जरूरी है. भाई आप होप क्रिएट करें लेकिन फॉल्स गारंटीज ना दें. आप मोटिवेशन दें लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी मेंशन करें. इस बैलेंस से ऑडियंस को बेनिफिट मिलता है. एक और वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि द सीक्रेट ने लोगों को लैंग्वेज ऑफ ऑडियंस सिखाया. पहले लोग अक्सर बोलते थे मेरे पास नहीं, मुझे या मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, वगैरह वगैरह. तो इस किताब के बाद काफ़ी लोगों ने अपनी लैंग्वेज चेंज करनी शुरू की. मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं चांसेस ढूंढ सकता हूँ. भाई ये सिर्फ वर्ड का चेंज नहीं होता, ये आइडेंटिटी का चेंज होता है. आप जब अपने आप को कैपेबल बोलते हैं तो आप ज़्यादा ट्राई करते चले जाते हैं और जब आप ज़्यादा ट्राई करते हैं तो रिजल्ट्स का चांस बेहतर होते चले जाते हैं. दुनिया भर में कोचिंग कल्चर इसलिए ग्रो हुआ कि लोग चाहते थे कोई उन्हें गाइड करे कि नेगेटिव सेल्फ टॉक से कैसे निकले. भाई द सीक्रेट ने इस डिमांड को पॉपुलर डिस्कोर्स में ला दिया. किताब की क्रिटिसिज्म का सबसे सेंसिटिव पॉइंट विक्टिम ब्लेमिंग का रिस्क है. कुछ क्रिटिक्स का कहना होता है कि अगर आप हर चीज को

0: जाए तो फिर किसी मुश्किल सिचुएशन का शिकार इंसान को भी आप ब्लेम कर सकते हैं जो अनफेयर है। भाई मैसेज ये हो कि आप अपनी सोच को बेहतर बनाएं, लेकिन साथ ही ये भी हो कि आप किसी की तकलीफ का मजाक ना बनाएं, ना उसे ब्लेम करें। कंपैशन और रियलिटी एक साथ चलती हैं दोस्तों। ये अप्रोच हमें काफी मैच्योर बनाती है और सेल्फ हेल्प को इंसानियत तक पहुंचाती है। दोस्तों आप जरा सोसाइटी लेवल पर देखें तो इस किताब ने चैरिटी और गिविंग की लैंग्वेज को भी एम्पलीफाई किया। जब आप ग्रेटिट्यूड और एबंडेंस का माइंडसेट रखते हैं तो आप शेयरिंग के लिए ज्यादा ओपन होते हैं। ये ट्रेंड बहुत सी कम्युनिटीज में देखा गया। लोग इंस्पायर होकर वॉलंटियर वर्क, डोनेशंस और हेल्पिंग कल्चर को प्रोमोट करते हैं। जब आप खुद को कुछ करने के लिए लगा देते हैं तो आप अपने जहन को भी बेहतर बना रहे होते हैं। जब आप खुद को ब्लेस्ड समझते हैं तो आप ओपन हो जाते हैं। इसलिए इस किताब का इम्पैक्ट सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं, कभी कभी सोशल वॉर्म्थ भी बन जाता है। हाँ, ये हर जगह परफेक्ट नहीं, लेकिन कन्वर्सेशंस का रुख व्हाट आई कैन गिव की तरफ जरूर जाता है और ये सोसाइटी के लिए हेल्दी साइन है। दोस्तों दुनिया में द सीक्रेट जैसी किताबों का इफेक्ट एक और जगह नजर आता है, वर्क प्लेस मोटिवेशन और एचआर कल्चर में, जो आज की जिंदगी का एक बहुत अहम और बड़ा हिस्सा है। कंपनीज टीम बिल्डिंग में ग्रेटिट्यूड सर्कल्स, एप्रिसिएशन ईमेल्स और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करती हैं। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि एम्प्लॉयज अपने आप को सीन फील करते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास होता है उनको। जब इंसान अप्रिशिएटेड होता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनता चला जाता है और कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैलेंस जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करके ओवर वर्क को जस्टिफाई ना किया जाए। भाई रियलिस्टिक वर्क प्लेस कल्चर वो होता है जहाँ पॉजिटिविटी के साथ बाउंड्रीज भी रिस्पेक्टेड हों। और इसलिए इस किताब का बेस्ट यूज ये है कि आप एनवायरमेंट को सपोर्ट बनाएं। चलिए दोस्तों अब इम्पैक्ट को डेली रूटीन की लैंग्वेज में समझते हैं। द सीक्रेट ने बहुत से लोगों को मॉर्निंग रूटीन की तरफ पुश किया। सुबह उठकर शुक्र अदा करना, अपनी दीनी चीजें पूरी करना, अपनी इबादत पूरी करना और गोल्स को पूरा करना, फिर काम ब्रीदिंग, फिर डे प्लानिंग वगैरह वगैरह। ये रूटीन दुनिया भर में पॉपुलर हुए और सोशल मीडिया पर ये बातें आम होती चली गईं। इससे फायदा ये हुआ कि लोग रिएक्शन के मोड में दिन स्टार्ट नहीं करते बल्कि इंटेंशन के मोड में स्टार्ट करते हैं। आप इमेजिन करें, जब आप सुबह फोन की नोटिफिकेशन से दिन स्टार्ट करते हैं तो माइंड स्कैटर्ड होता है, लेकिन जब आप 2 मिनट शुक्र से स्टार्ट करते हैं तो जहन कितना सुकून पाता है। ये छोटी सी शिफ्ट पूरे दिन का टोन सेट कर देती है। इसीलिए इस किताब का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट लाइफस्टाइल डिजाइन के कंसेप्ट को भी मजबूत करता है। भाई ग्लोबल कल्चर में एक और चेंज ये आया कि लोग अपनी सोच को सीरियसली लेने लगे। पहले सोच को बच्चों की बात समझा जाता था, लेकिन इस किताब ने बड़ों को ये बात सिखाई। इसका फायदा यह है कि इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिट नहीं रखता बल्कि ग्रोथ तक ले जाता है। लेकिन यहाँ फिर एक रिस्पॉन्सिबल नोट ये कि भाई सोच के साथ डिसिप्लिन जरूरी है। सोच को रियलिस्टिक स्टेप्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए जब आप कोई चीज इंस्पायर करती है तो साथ ही ये भी बताती है कि भाई सोच प्लान जो है उसको बेहतर बनाइए। छोटे गोल, छोटी डेडलाइन, छोटे एक्शंस वगैरह वगैरह। दुनिया में सेल्फ हेल्प का मैच्योरिटी लेवल तब बढ़ता है दोस्तों जब इंस्पिरेशन और प्लानिंग दोनों एक साथ चलती हैं।
1: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों के उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
0: तो दोस्तों द सीक्रेट का इम्पैक्ट रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के डिस्कशंस पर भी हुआ है, क्योंकि इसमें यूनिवर्स बेहतरीन चीज़ जो हमारे अंदर की एनर्जी है और फेथ जैसे लैंग्वेज आते हैं। राइटर के मुताबिक बुक अपने

स्टेप्स प्रोसेस करती है कि भाई वो क्या है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो इसको भी कोर्ट के कंटेक्स्ट में मेंशन किया गया है और इससे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स में अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन लेते हैं। कुछ लोग इसे प्योरली स्पिरिचुअल समझते हैं, कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल टूल समझते हैं और कुछ लोग इसे मार्केटिंग समझते हैं। भाई बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप इसे माइंडसेट एंड ग्रैटिट्यूड के लेंस से प्रेजेंट करें ताकि हर जानने वाले और समझने वाले को ये मैसेज मिल सके। यानी आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि भाई एक ही तरह से समझ लो चीज़ को। आप बस इतना कर सकते हैं कि अपनी सोच को आप क्लीन कर सकते हैं, अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हैं और शुक्र के साथ एक्शन ले सकते हैं और ये यूनिवर्सल मैसेज बन जाता है। वर्ल्ड इम्पैक्ट का एक पहलू होप इकॉनमी भी है। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग होप बेस्ड कंटेंट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। द सीक्रेट ने होप को एक सिस्टम की शक्ल दी, विजुअलाइजेशंस, ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस। इसलिए क्राइसिस के दिनों में भी लोग इस किताब को रिविजिट करते हैं। भाई ज़रा सोच के देखिए, जब कोई इंसान अपनी जॉब लूज़ कर दे या कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए तो उस वक्त दिमाग किस कदर नेगेटिव हो जाता है या नेगेटिविटी में चला जाता है। ऐसे मैसेज या ऐसे वक्त में या ऐसे हाल में अगर कोई फ्रेमवर्क मिल जाए जो कहे रुक जाओ, अपनी सोच को रीसेट करो, तो वो एक इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, एक दोस्त की तरह, एक पार्टनर की तरह। इसलिए इम्पैक्ट सिर्फ सक्सेस स्टोरीज का ही नहीं बल्कि इमोशनल कोपिंग का भी होता है। हाँ, ये रिप्लेसमेंट नहीं लेकिन सपोर्ट डेफिनेटली हो सकती है और इसी सपोर्ट की वजह से इस किताब का नाम बार बार वापस आता है। तो साहब, किताब का कंसेप्ट ये है कि कम्युनिटी सर्कल्स जो हैं उनको भी शेप किया जाए। दुनिया भर में बुक क्लब्स, ऑनलाइन ग्रुप्स और सेमिनार बनाए जाएं जहां लोग अपने एक्सप्रेशंस को शेयर कर सकें। इस शेयरिंग से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप होता है। जब आप दूसरे लोगों को स्ट्रगल और प्रोग्रेस शेयर करते हुए देखते हैं या सुनते हैं तो आपको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है दोस्तों। इसीलिए द सीक्रेट का इम्पैक्ट सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं, सोशल भी है दोस्तों। लेकिन यहाँ कॉजन की बात है, कॉजन लेना ज़रूरी है या कॉजन आ जाता है कि हर स्टोरी को एब्सोल्यूट ट्रुथ ना समझा जाए। पढ़ने वालों को ये मैसेज मिलना चाहिए कि हर इंसान की जर्नी डिफरेंट होती है। आप अपनी स्पीड से चलें, अपनी कंडीशंस को समझें, यानी हर चीज़ को समझकर, हर चीज़ को समझते हुए कदम उठाएं। इस मैच्योरिटी से कम्युनिटी सपोर्ट हेल्दी रहता है। भाई मनी माइंडसेट की अगर बात करें तो इसके इम्पैक्ट को भी छुआ है इस किताब ने, क्योंकि इस किताब में प्रॉस्पेरिटी पर भी फोकस किया गया है। ऑफिशियल पब्लिशर पेजेस और समरीज ये बताती हैं कि बुक पैसों से, हेल्थ से, रिलेशनशिप से और हैप्पीनेस पर अप्लाई करने की बात करती है। इससे दुनिया में फाइनेंशियल मोटिवेशन कंटेंट का बूम आता है। लोग बजटिंग के साथ साथ पैसों को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना सीखते हैं और इन मुख्तलिफ चीज़ों पर बात भी करने लगते हैं। कई लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनके अंदर मैं पैसा डिज़र्व नहीं करता, ये पैसा गंदी चीज़ है जैसी बिलीव्स बैठी हुई हैं। जब आप बिलीव्स को चैलेंज करते हैं तो आप अर्निंग और सेविंग हैबिट्स को भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ दोबारा बैलेंस, यानी कि सिर्फ बिलीव से ही पैसा नहीं आता दोस्तों, स्किल से, एफर्ट से, मार्केट नॉलेज से और प्लानिंग भी चाहिए होती है। तो बेस्ट मैसेज यही है कि माइंड सेट प्लस स्किल सेट, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ लोग द सीक्रेट बुक को इसलिए पसंद करते हैं कि ये उन्हें होप और कंट्रोल देती है और कुछ लोग इसलिए डिसलाइक करते हैं कि ये लाइफ को ओवर सिंप्लीफाई करती है। भाई इस बहस का पॉजिटिव आउटकम ये है कि ऑडियंस क्रिटिकल थिंकिंग सीखती है, है ना। तो आज अगर मैं बात करूं इस किताब के हवाले से तो ये कहा जा सकता है कि हर बुक एक लेंस होती है दोस्तों। आप डिसाइड करें कि आपको क्या यूजफुल लगता है, है ना। भाई हाईलाइट ये किया गया है कि साइंटिफिक क्लेम्स पर डिबेट करी जाए, इसलिए आप सबको मैं ये कहूँगा कि टेक अवेज जो हैं उनको चूज़ कीजिए।

ये सब कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं और इस ट्रेंड का बेनिफिट ये है कि पॉजिटिविटी शेयर होती है, लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि कंटेंट खराब भी हो जाता है, कभी कभार आपको दूसरी तरफ भी ले जाता है, सिर्फ कोट्स या कहना चाहिए रियल वर्क मिसिंग होना ही इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती, बहकना भी इसका एक मसला होता है। इसलिए एडवांटेज ये है कि आप डेप्थ तक जा सकते हैं और समझ सकते हैं, और ये भी कि हर जगह प्रोसेस समझा जा सकता है, ग्रेजुएट्यूड का मतलब क्या है, ग्रेजुएट्यूड का टाइम क्या है, ग्रेजुएट्यूड का प्रैक्टिकल स्टेप क्या है, ये सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, सीखी जा सकती हैं कि उनको फोकस किया जाए जो चीज़ परफेक्ट हो लाइफ के अंदर। पर ये भी नहीं कि सिर्फ इन पे ही हम डिपेंड करें, बल्कि बेटर नेक्स्ट स्टेप पर हम बिलीव करें, और ये रियलिस्टिक पॉजिटिविटी है। तो दोस्तों, अब इम्पैक्ट ऑन यूथ की बात करते हैं, जो युवा पीढ़ी पे, जवान पीढ़ी पे जो इस किताब को पढ़ते हैं उनका क्या असर पड़ा है। यंग जनरेशन को इस बुक का आइडिया इसलिए अपील करता है कि ये उन्हें ख्वाब और कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन यूथ के लिए गाइडेंस ज़रूरी भी होती है। भाई सिर्फ विजुअल्स ही ना करें या विजुअलाइज ही ना करें, स्किल बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पॉजिटिविटी के साथ स्टडी प्लान भी हो, अगर आप जॉब सीकर हैं तो अफर्मेशंस के साथ सीवी इंप्रूवमेंट हो, नेटवर्किंग हो और इंटरव्यू प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज का रूटीन भी हो। इस तरह इस किताब का मैसेज युवा पीढ़ी को कंफ्यूज नहीं करता बल्कि मोटिवेट करता है। ग्लोबल इंपैक्ट का बेस्ट वर्जन वही है जहां सेल्फ हेल्प को प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कनेक्ट किया जाए, और ये एक ब्रिज का काम करता है दो लोगों के बीच में, किताब और उसके पढ़ने वाले के दरमियान। और किताब का इम्पैक्ट सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस पर भी हुआ है, लोग अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखे हैं। अब आप सोचें, दिन भर में हम कितनी बार अपने आप को नेगेटिव लेबल कर देते हैं, मैं स्लो हूँ, मैं लकी हूँ, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, वगैरह वगैरह। भाई जब आप इस पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को रीराइट कर सकते हैं। मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता हूँ। दोस्तों, ये आइडेंटिटी शिफ्ट दुनिया भर में थेरेपी और कोचिंग के थ्रू भी डिस्कस होती है। द सीक्रेट ने इस डिस्कशन को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज दी, यानी आप अपने माइंड के नरेटर को चेंज कर सकते हैं, और जब नरेटर चेंज होता है तो इमोशंस चेंज होते हैं, और इमोशंस चेंज होते हैं तो डिसीजंस चेंज होते हैं, और ये चेन इफेक्ट वर्ल्ड इम्पैक्ट का हिडन पार्ट है। दोस्तों, एक और पहलू ग्रेटिट्यूड कल्चर का भी है। ऑफिशियल पेजेस पर भी द सीक्रेट की इंटेंशन यही बताई जाती है कि जॉय, वेलबींग, अबंडेंस की तरफ गाइड करें। यानी ग्रेटिट्यूड की पावर इसलिए स्ट्रांग होती है कि यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। जब आप शुक्र करते हैं, आपका दिमाग स्कार्सिटी से निकल कर अबंडेंस की तरफ जाता है। प्रैक्टिकल लेवल पर आप छोटी चीजों का शुक्र करते हैं, सेहत, फैमिली, जॉब, सेफ्टी, रूफ, फूड, हर एक चीज। इससे माइंड काम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। भाई आज दुनिया में ग्रेटिट्यूड जर्नल्स का ट्रेंड इसलिए है कि लोग अपनी अटेंशन को दुनिया भर में ट्रेन करना चाहते हैं, और इसी की वजह से ये बुक द सीक्रेट का लॉन्ग टर्म कल्चरल फुटप्रिंट है। अब यहाँ से हम थोड़ा हाउ सोसाइटी कंज्यूम होप पर बात कर लेते हैं। जब कोई बुक सिंपल प्रॉमिस करती है दोस्तों, तो लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए किताब को कभी कभी तो टू गुड टू बी ट्रू भी कहा गया है। लेकिन अगर आप मैसेज को मैच्योर लेंस से देखें तो ये प्रॉमिस से ज़्यादा प्रैक्टिस बन सकता है ना। अब हम अगर अपनी और आपकी ही बात करें तो आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। आप अपनी इंटेंशन, एफर्ट्स, हैबिट्स कंट्रोल करते हैं, रिजल्ट अल्लाह की मर्जी, सर्कमस्टांसेस और टाइम पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए बेस्ट इंटरप्रिटेशन ये है, पॉजिटिव माइंडसेट से आप अपना बेस्ट वर्जन एक्टिवेट करते हैं, और जब आप बेस्ट वर्जन में होते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा नोटिस करते हैं और बेहतर डिसीजंस लेते हैं, और ये रियलिस्टिक सोशल मैसेज बन जाता है। दुनिया में इस किताब ने एक और

जबर चेंज ये किया है कि लोग कंप्लेंट डिटॉक्स की बात करने लगे हैं, यानी दिन भर में कितनी कंप्लेंट्स हम बोलते हैं और वो हमारे मूड को कितना डाउन करती हैं। जब आप कंप्लेंट कम करते हैं आपका मूड नेचुरली अपलिफ्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स डिस्कस ना करें, मतलब ये है कि प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए सॉल्यूशंस भी ढूंढें। भाई एक प्रैक्टिस ये है कि आप ये शुरू करें कि मैं आज एक दिन में 10 कंप्लेंट्स काउंट करूंगा और उनको 10 सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करूंगा। ये एक्सरसाइज पढ़ने वालों को एम्पावर करती है। भाई इस किताब का ग्लोबल इम्पैक्ट का प्रैक्टिकल फेस ये है कि लैंग्वेज और फोकस को रीट्रेन करा जाए। आप अपने घर, ऑफिस, दोस्तों के सर्किल में भी इस अप्रोच से पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। इस बुक का इम्पैक्ट फेथ इन पॉसिबिलिटीज के कल्चर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आज दुनिया में इनोवेशन और स्टार्टअप्स का जमाना है दोस्तों, पॉसिबिलिटी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाउंडर पहले ही कह दे कि नहीं होगा तो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं होता। इस किताब के जरिए पॉसिबिलिटी को इमोशनली अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन रियल दुनिया में पॉसिबिलिटी को स्ट्रक्चर चाहिए। रिसर्च है, प्लानिंग है, टेस्टिंग है, फेलियर्स हैं, लर्निंग है। तो इसीलिए द सीक्रेट का बेस्ट यूज एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स के लिए ये हो सकता है कि वो अपनी फेयर बेस्ड थिंकिंग को रिड्यूस करें और एक्शन बेस्ड थिंकिंग बढ़ाएं। भाई आप अपने जहन को Why not का सवाल सिखाइए, फिर how का प्लान बनाइए। ये कॉम्बिनेशन वर्ल्ड इंपैक्ट को यूजफुल बनाता है, वरना सिर्फ ख्वाब ही ख्वाब रह जाते हैं। तो दोस्तों आप चलिए लॉन्ग रनिंग बेस्ट सेलर के हवाले से बात करें या इसके वाली बात करें तो इम्पैक्ट के तौर पर देखें। पब्लिशर सोर्सेज और ऑथर के ऑफिशियल पेजेस ये शो करते हैं कि द सीक्रेट लॉन्ग लास्टिंग बेस्ट सेलर और ग्लोबल इम्पैक्ट का पार्ट बन चुकी है। ऐसी बुक्स का इम्पैक्ट इसलिए ड्यूरेबल होता है कि हर जनरेशन को एक सिंपल मैसेज दे देती है। जिस तरह कुछ क्लासिक बुक्स हर दौर में रेलिवेंट रहती हैं, इसी तरह ये बुक भी या इसका मैसेज भी लोग अपने फेस के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं। कोई इसे करियर के लिए यूज करता है, कोई हीलिंग के लिए, कोई रिलेशनशिप के लिए, वगैरह वगैरह। और ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इसका राज है। और जब कोई मैसेज फ्लेक्सिबल हो तो वो कल्चर में घुल मिल जाता है और फ्रेजेस, हैबिट्स और रिचुअल्स की शक्ल ले लेता है। दोस्तों इस प्रोग्राम के एंड की तरफ आते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि द सीक्रेट का वर्ल्ड इम्पैक्ट तब सबसे हेल्दी होता है जब हम इसे टूल बॉक्स समझें, फाइनल ट्रूथ नहीं। टूल बॉक्स में से आपको जो टूल सूट करता है आप यूज करिए। मिसाल के तौर पर ग्रेजुएट्यूड का टूल है, विजुअलाइजेशन का टूल है, सेल्फ टॉक का टूल है और वहीं क्लियरिटी ऑफ गोल्स का टूल है। और साथ में आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करें, मेहनत, अल्लाह सुबहाना व ताला से दुआ, सब्र और कंसिस्टेंसी दोस्तों, क्योंकि लाइफ एक रात में चेंज नहीं होती, लाइफ छोटी छोटी चेंजेस से चेंज होती है। और जब आप छोटी तब्दीली को सेलिब्रेट करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो आज से इस किताब का एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, जो दुनिया भर के लोग यूज़ कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड लिस्ट को अगर देखें, आप रोज़ सिर्फ 5 चीज़ें लिख लें जिनके लिए आप शुक्र अदा करें। ये चीज़ बहुत सिंपल हो सकती है। आज वक्त पर उठ जाना, घर का सुकून, किसी दोस्त को मैसेज, सेहत का बेहतर फील करना, तिलावत करना, इबादत करना, काम का एक टास्क कंप्लीट करना, वगैरह वगैरह। इस लिस्ट का मकसद ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स को डिनाई करें, मकसद ये है कि आप अपनी अटेंशंस को बैलेंस करें, क्योंकि अटेंशंस जिस तरफ जाती हैं एनर्जी भी उधर जाती है। जब आप शुक्र को हैबिट बना लेते हैं आपका माइंड रेजिलियंस बिल्ड करता है, और रेजिलियंस ही वो चीज है जो दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान को अलग बनाती है। ये छोटा सा प्रिंसिपल आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देगा, और जब ग्रोथ आती है दोस्तों तब जिंदगी में होप नेचुरली बढ़ती है, और होप ही वो रोशनी है जो अंधेरे से बाहर निकालती है या बाहर का रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों आज हमने इस किताब के जरिए ये देखा कि किस तरीके से दुनिया भर पे इसका इम्पैक्ट पड़ा, जो बैलेंस्ड है, रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल

0: तरीके से। इस किताब ने दुनिया को एक सिंपल मैसेज दिया कि आपकी सोच, आपका फोकस और आपका शुक्र आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेप करता है। साथ ही इस पर डिबेट भी रही और ये भी जरूरी है कि हम ब्लाइंड प्रोमिसेस के बजाय मैच्योर प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करें। अगर आप इस प्रोग्राम से सिर्फ एक चीज लेकर जा रहे हैं तो वो ये हो कि आज से अपनी लैंग्वेज और अपनी अटेंशन को थोड़ा सा बेहतर कर दीजिए। शुक्र, क्लियरिटी और छोटे एक्शन, बस ये तीन चीजें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ महसूस हुआ होगा और अपनी लाइफ में एक नया स्टेप लेने में ये प्रोग्राम आपको मदद करेगा। अल्लाह सुभान व तआला आपको खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे और आपके आज के दिन को और मजीद जिंदगी को और भी बेहतर बनाए। तो दोस्तों, इसी के साथ सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी जिंदगियों को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज पल्स ऑफ कुरान की एक और एपिसोड लेके मैं हाजिर हूं और आज जिस आयत का, जिस सूरत का हमने इंतखाब किया है वो है सूरह अद-दुहा की आयत नंबर 11। और इसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तो अल्लाह ताला इस आयत में कहते हैं कि और अपने रब की नेमतों का चर्चा करो और अपने रब की नेमतों का ज्यादा से ज्यादा तस्करा किया करो। ये एक छोटी मगर बहुत गहरी आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला इंसान को ये सिखा रहे हैं कि वो अपने रब की नेमतों को पहचाने, उन पर शुक्र अदा करें और उन्हें याद रखें। अक्सर इंसान अपनी परेशानियों को तो फौरन गिन लेता है लेकिन नेमतों को भूल जाता है। हालांकि अगर इंसान गौर करे तो उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमतों से भरी हुई है। सबसे पहली नेमत हमारी जिंदगी है। सुबह जब इंसान आंख खोलता है तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। कितने लोग रात को सोते हैं मगर सुबह नहीं जागते, लेकिन अल्लाह हमें एक और दिन देता है ताकि हम बेहतर जिंदगी गुजार सकें, इबादत कर सकें और अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। इसके बाद सेहत एक अजीम नेमत है। जब तक इंसान बीमार नहीं होता उसे सेहत की कीमत का अंदाजा नहीं होता। एक आम सा बुखार भी इंसान को कमजोर कर देता है। सोचें, अगर हाथ ना चले, आंखें ना देख सके या जबान बोल ना सके तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाए। अल्लाह ताला ने हमें जिस्म के बेशुमार निजाम दिए हैं जो बगैर रुके काम करते हैं। दिल धड़कता रहता है, सांस चलती रहती है, खून गर्दिश करता रहता है। इंसान इन चीजों पर कभी गौर नहीं करता, हालांकि ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। इसी तरह घर, खानदान और वालिदैन भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, कुछ वालिदैन की मोहब्बत से महरूम होते हैं। अगर हमारे पास एक महफूज घर है, माँ बाप की दुआएं हैं, बहन भाई हैं या अच्छे दोस्त हैं तो ये सब अल्लाह का फजल है। इल्म भी बहुत बड़ी नेमत है। हर इंसान को पढ़ने, समझने या सीखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर अल्लाह ने हमें तालीम हासिल करने का मौका दिया है तो ये बहुत बड़ी रहमत है। एक तालिब इल्म के लिए किताबें, स्कूल, असतज़ा और सीखने की सलाहियतें सब नेमते हैं। इसीलिए इल्म हासिल करना सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का भी एक तरीका है। बाज़ औक़ात इंसान दूसरों को देखकर अपनी नेमतें भूल जाता है। अगर किसी के पास बड़ा घर, ज्यादा पैसा या अच्छी गाड़ी हो तो इंसान अपने पास मौजूद चीजों को कम समझने लगता है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने से कम लोगों को भी देखो, जब इंसान ये देखता है कि दुनिया में कितने लोग भूख, जंग, बीमारी या तन्हाई का शिकार है, तो उसे अपनी जिंदगी की नेमतों का एहसास होता है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ईमान है। मुसलमान होना, कुरान को मानना, नमाज पढ़ना और अल्लाह को पहचानना, ऐसी नेमतें हैं जो हर किसी को नहीं मिलती। दुनिया में बहुत से लोग सच्चाई तलाश करते रहते हैं लेकिन हिदायत नहीं पाते। अगर अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है तो ये बहुत बड़ा इनाम है। इसीलिए ईमान की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। नेमतों को पहचानने का एक फायदा ये भी है कि इंसान के दिल में सुकून पैदा होता है। आज बहुत से लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी कमियों को देखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने उन्हें क्या कुछ दिया हुआ है। जब इंसान रोजाना अपनी नेमतों के बारे में सोचता है तो उसके दिल में शुक्र पैदा होता है और शुक्र दिल को खुशी देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा अल्लाह की नेमतों को याद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा जिंदगी गुजारते थे मगर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अगर खुशी मिलती तो शुक्र करते, अगर आजमाइश आती तो सब्र करते। यही एक मोमिन की निशानी है। आज के दौर में सोशल मीडिया ने भी इंसान को नाशुक्रा बनाने में किरदार अदा किया है। लोग दूसरों की खूबसूरत जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलात भी होती हैं। सिर्फ बाहर से सब कुछ अच्छा नजर आता है, इसलिए हमें अपनी तवज्जो दूसरों से हटाकर अल्लाह की दी हुई नेमतों पर रखनी चाहिए। नेमतों को पहचानने का मतलब सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं बल्कि दिल से महसूस करना भी है। जब इंसान खाना खाए तो सोचे कि कितने लोग भूखे हैं, जब पानी पिए तो याद करे कि कहीं लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, जब घर में सुकून से सोए तो याद करे कि कुछ लोग खौफ और जंग में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो कभी शुमार नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि इंसान हर लम्हे अल्लाह की रहमत में डूबा हुआ है। हम सांस लेते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, मोहब्बत करते हैं, ख्वाब देखते हैं, ये सब अल्लाह की अता है। जब इंसान नेमतों को पहचान लेता है तो उसका रवैया बदल जाता है, वो ज्यादा आजिज बन जाता है, दूसरों की मदद करता है और नाशुक्री से बचने लगता है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसके पास है वो सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि अल्लाह का फजल भी है। अपनी जिंदगी में अल्लाह की नेमतों को तलाश करना, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना, अपने दिल में शुक्र पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान नेमतों को पहचान लेता है वही

0: नेमत को अल्लाह की अमानत समझो। एक खूबसूरत बात यह भी है कि आजी इंसान के इल्म में इजाफा करती है, क्योंकि हम्बल इंसान सीखने के लिए तैयार रहता है, जबकि मगरूर इंसान समझता है कि उसे सब कुछ आता है। अगर हम अपनी जिंदगी में आजी पैदा करना चाहते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह की अता है। हम हमेशा दूसरों से बेहतर नहीं होते। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है और दुनिया की नेमतें हमेशा नहीं रहती। असल कामयाबी अल्लाह की रजा है। सूरह दोहा की यह आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह की नेमतों का जिक्र जरूर करो, लेकिन आजसी के साथ, क्योंकि शुक्रगुजार और हम्बल इंसान अल्लाह के भी करीब होता है और लोगों के दिलों में भी इज्जत पाता है। तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की आयत और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा आज का शो। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट।
2: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप।
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
3: विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
5: हर आदत बदलती है एक अच्छी नियत से, और हर अच्छी नियत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: मैक्सिमम म्यूजिक मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107 दिल से देसी।

मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपके आरजे महवेश खान। शो लेकर आ गए हैं एक दफा फिर से आपके लिए इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, और उम्मीद करते हैं कि आज भी आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, मजे में होंगे, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज इस्लामिक मॉडर्न लाइफ में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे अपनी पर्सनल बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अक्सर ऐसा ये होता है कि कुछ सोशल प्रेशर की वजह से या कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हम इन बाउंड्रीज को इग्नोर कर देते हैं, या हमें लगता है कि ये इतनी जरूरी चीज नहीं है। लेकिन आज हम आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव बताएंगे कि क्यों आपकी जो पर्सनल बाउंड्रीज है वो मैटर करती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो पर्सनल बाउंड्रीज हैं ये होती क्या है। इंसानी जिंदगी ताल्लुकात से बनती है। हम घर में वालदैन, बहन भाइयों, शरीक कोई हयात और बच्चों के साथ जुड़े होते हैं। बाहर दोस्त, पड़ोसी, साथी, कारकुन और माशरे के दीगर अफराद से हमारा वास्ता रहता है। इन ताल्लुकात को खूबसूरत, मुतवाजन और बावकार बनाने के लिए एक चीज बहुत ही जरूरी है, और वो है आपकी जाती हुदूद यानी पर्सनल बाउंड्री। सादा लफ्जों में बाउंड्रीज का मतलब है अपनी जिंदगी, वक्त, जज्बात, तवनाई और हुकूक के गिर्द एक मुनासिब दायरा कायम करना, ताकि दूसरों के साथ मोहब्बत, एहतराम और तवाजुन के साथ जिया जा सके। ये दीवार खड़ी करना नहीं, बल्कि अपने लिए एक सेहतमंद हद मुकर्रर करना है। बाज़ लोग समझते हैं कि बाउंड्रीज बनाना खुद खर्ची है या दूसरों से दूरी इख्तियार करना है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। ज़ाती हुदूद दरअसल हमारे ताल्लुकात को खराब नहीं बल्कि बेहतर बनाती हैं। ये इंसान को सिखाती हैं कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं, कहाँ खामोश रहना है और कहाँ अपनी बात रखनी है। आज के दौर में बहुत से लोग जज्बाती दबाव, जहनी थकन और ताल्लुकात के बोझ का शिकार हैं। अक्सर वजह ये नहीं होती कि उनके पास मसाइल बहुत ज्यादा हैं, बल्कि वजह ये होती है कि उनके पास अपनी हुदूद वाज़े नहीं होती। हर एक को खुश करने की कोशिश, हर मुतालबा मान लेना, हर बात बर्दाश्त करते रहना, अपनी राय ना देना, ये सब इंसान को अंदर से थका देते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स हर वक्त आपसे वक्त मांगता है, आपके आराम की परवाह नहीं करता, कोई बार बार ऐसी बातें कहता है जो दिल को चुभती हैं, कोई आपकी निजी जिंदगी में बेजा मुदाखलत करता है। अगर इंसान इन मामलात में हद मुकर्रर ना करे तो आहिस्ता आहिस्ता दिल बोझल हो जाता है। यही वजह है कि बाउंड्रीज सिर्फ एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक इंसानी जरूरत है। बाउंड्री सिर्फ एक चीज का नाम नहीं, इसकी कई शक्लें हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल स्पीड।

दिल में रिसेंटमेंट आता है, बाहर मोहब्बत, अंदर थकन और नाराजगी, ये हेल्दी नहीं। सख्त हकीकत ये है कि बाज लोग एक्सेसिव नाइसनेस एक्सप्लॉइट करते हैं। वो जान लेते हैं कि इनकार नहीं करेगा, ये हर बार मान जाएगा, ये गिल्ट में आ जाएगा और फिर इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। ये रिलेशनशिप नहीं, इम्बैलेंस बन जाता है। हर बात खुद को इग्नोर करना एक पैगाम देता है कि मैं अहम नहीं, और ये आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ वर्थ को कमजोर करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। इस्लाम दूसरों के हुकूक सिखाता है, मगर इंसान को अप्रूवल सीकिंग गुलामी नहीं सिखाता। मोमिन का मकसद लोगों को हर हाल में खुश रखना नहीं, अल्लाह को राजी करना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर हर फैसले का मयार लोग क्या कहेंगे हो जाए तो इंसान आजाद नहीं रहता। इस्लाम लोग क्या कहेंगे के खौफ से आजाद करता है। सबको खुश रखना मुमकिन ही नहीं, और ये एक हकीकत है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, सब कभी खुश नहीं होंगे। किसी को आप बहुत सॉफ्ट लगेंगे तो किसी को बहुत ही सख्त, किसी को ज्यादा अवेलेबल तो किसी को कम। लोगों की तवक्कात कभी खत्म नहीं होंगी। अगर जिंदगी अप्रूवल के पीछे गुजरी तो सुकून नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसे लोग जो नहीं कहते वो गिल्ट महसूस करते हैं। मसलन, मैंने इनकार किया, शायद मैं सेल्फिश हूँ, मैंने अपना वक्त बचाया, शायद गलत किया, मैंने बाउंड्री कायम की, शायद उनको बुरा लग गया हो। ये गिल्ट अक्सर अनहेल्दी कंडीशनिंग का नतीजा होता है। हर गिल्ट सच्चा नहीं होता, बाज़ गिल्ट सिर्फ आदत टूटने का डिस्कम्फर्ट होता है। फर्क समझना जरूरी है। खिदमत और पीपल प्लीजिंग में फर्क है, और ये बहुत अहम फर्क है। खिदमत मोहब्बत से होती है, जबकि पीपल प्लीजिंग खौफ से। खिदमत चॉइस है, पीपल प्लीजिंग कंपल्शन है। खिदमत में सुकून होता है, जबकि पीपल प्लीजिंग में एग्जॉशन होता है। ये फर्क पहचानना मैच्योरिटी है। हर हाँ नेकी नहीं, बाज़ औक़ात हाँ कहना नुकसान होता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। क्योंकि मुसलसल आपका अवेलेबल रहना बाज़ औक़ात दूसरों को अनहेल्दी डिपेंडेंट बना देता है, और खुद को बर्न आउट करना इसलिए हर यस वर्च्यू नहीं। अगर आप अच्छा बनने की कोशिश करते रहे, मुमकिन है कि आप अच्छे नजर आए मगर अंदर से खाली हो जाएंगे। और एक एम्प्टी इंसान दूसरों को भी हेल्दी मोहब्बत नहीं दे सकता। खुद को बचाना सेल्फिशनेस नहीं, जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कंपैशनेट थे, मगर पीपल प्लीजर नहीं थे। फर्क समझे, रहमत थे मगर प्रिंसिपल भी थे, नरमी थी मगर हुदूद भी थी। ये आइडियल मॉडल है। अगर आप में ये चीजें हों तो गौर करें। हर बात पर फौरन यस कहना, इनकार से घबराना, लोगों के मूड के मुताबिक खुद को बदलना, नाराजगी के खौफ से सच ना कहना, अपनी जरूरियात पर शर्मिंदा होना, हर वक्त अप्रूवल ढूंढना, ये साइंस हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझें, आप सबके जिम्मेदार नहीं, आप हर मसला सॉल्व नहीं कर सकते, आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, और ये फेलियर नहीं, हकीकत है। फिर छोटी बाउंड्रीज बनाएं। छोटी छोटी बातों पर भी कभी आपको लगे ठीक नहीं है तो नहीं कहना शुरू करें। छोटी जगहों पर अपनी राय दें, आहिस्ता आहिस्ता दिल मजबूत होगा। अक्सर लोग सिर्फ तब खुश होंगे जब आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ें, तो क्या वो एक्सेप्टेंस सेहतमंद है? सोचने की बात है। मोहब्बत जो आपको मिटा दे और उसके बाद मिले, वो मोहब्बत नहीं बोझ बन सकती है। खुद
سے سوال کریں کہ اللہ کی رضا

0: और कबूतरों ने अंडे दिए ताकि दुश्मन ना पहुंच सके। आखिरकार अब मदीना पहुंचे जहां अंसार ने खुशामदीद कहा। यह हिजरत इस्लामी कैलेंडर का खास है और इसे हिजरी कहा जाता है। मदीना में आपने मस्जिद नबवी तामीर की, महाजरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया और एक माशरती मुहायदा मिसाक मदीना तश्किल दिया जिसमें मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल के हुकूक तय किए गए। मदीना हिजरत के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनस्सम इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी। आपने सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर की जो इबादत, तालीम और इज्तमा का मरकज बनी। इसके अलावा आपने मुहाजरीन और अंसार के दरमियान अखुवत का रिश्ता कायम किया जिसने माशरती इत्तेहाद को मजबूत किया। मदीना में कायम के बाद कुरैश ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी दुश्मनी जारी रखी। उन्होंने मदीना पर हमलों की मनसूबाबंदी की और मुसलमानों के तजारती रास्तों को रोका। इसके जवाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफा और इस्लाम की हिफाजत के लिए कई गजवात और सराया की क़यादत की। अहम गजवात में शामिल हैं गजवा बदर, ये पहला मार्का था जिसमें 313 मुसलमानों ने 1000 के कुरैश के लश्कर को शिकस्त दी। ये फतह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की ईमान की अजीम मिसाल थी। फिर गजवा ओहद, इसमें मुसलमानों को इब्तदाई कामयाबी मिली लेकिन तीरंदाजों की नाफरमानी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान थी। ताहम ये जंग सब्र और नज़्म व ज़ब्त की अहमियत सिखाने वाली थी। गज़वा खंदक, कुरैश और उनके इत्तेहादियों ने बड़ी फ़ौज के साथ मदीने पर हमला किया। आपके मशवरे से हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खंदक खोदने का मनसूबा पेश किया जिसने दुश्मन को रोक दिया। अल्लाह की मदद से तूफ़ान और फरिश्तों की फ़ौज ने दुश्मन को पसपा कर दिया। इन गज़वात के अलावा आपने दीगर सराया और मुहैदात के ज़रिए इस्लाम की दावत को मजबूत किया। आपकी हिकमत अमली हमेशा दिफाई थी और आपने कभी जुल्म या जाहिरियत की जंग शुरू नहीं की। 6 हिजरी में आपने मक्का जाके उमरा अदा करने का इरादा किया लेकिन कुरैश ने आपको रोक दिया। इस मौके पे सुलह हुदैबिया का मुहैदा हुआ जो एक अशराय अमन का मुहैदा था। इस मुहैदे की शरायत बज़ाहिर मुसलमानों के हक में कम थी लेकिन एक अजीम हिकमत अमली फतेहयाब साबित हुई। इसने इस्लाम की दावत को फैलाने के लिए अमन का माहौल फराहम किया और बहुत से लोग इस दौरान इस्लाम में दाखिल हुए। इसी दौरान आपने मुख्तलिफ बादशाहों और सरदारों को खतूत लिखकर इस्लाम की दावत दी जिन्हें रोम के कैसर और ईरान के कसरा, हबशा के निजासी और दीगर शामिल थे। 8 हिजरी में कुरैश ने सुलह हुदैबिया की शरायत तोड़ दी। इसके जवाब में आपने 10,000 सहाबा के साथ मक्का की तरफ पेशकदमी की। कुरैश के पास मुकाबला करने की हिम्मत ना थी। आपने बगैर खूनरेजी के मक्का फतह किया। ये फतह इस्लाम की अजीम कामयाबी थी। आपने काबा को बुतों से पाक किया और ऐलान फरमाया, आज तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इस ऐलान से आपने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, हत्ता कि उन लोगों को भी जिन्होंने आप पे जुल्म किया था। इस रहमत और अफू ने बहुत से कुरैश के दिलों को जीत लिया और वो इस्लाम कबूल करने लगे। फतेह मक्का के बाद इस्लाम की दावत तेजी से फैली। अरब के मुख्तलिफ कबाइल ने वफूद की शक्ल में मदीना में आकर इस्लाम कबूल किया। इस दौर को आमुल वफूद कहा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबाइल को इस्लाम की तालीमात सिखाई, उनके लिए मौलम मुकर्रर किए। मक्का की फतह ने अरब में इस्लाम की बढ़तरी को वाज़े कर दिया और बहुत से लोग जो पहले मुखालिफ थे अब ईमान ले आए। 10 हिजरी 632 में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा किया जिसे हुजतुल विदा कहा जाता है। इस मौके पे आपके साथ 1,00,000 से जायद साहबा मौजूद थे जिसे हजतुल विदा कहा जाता है। इस मौके पे आपके साथ 1,00,000 से जायद साहबा मौजूद थे। इरफात के मैदान में आपने तारीखी खुतबा हजतुल विदा दिया जो इंसानियत के लिए एक अजीम पैगाम था। इस खुतबे में आपने चंद अहम बातें इरशाद फरमाई। तमाम इंसान बराबर हैं, कोई अरबी या जमी, सिया या सफ़ेद दूसरे पे फोकियत नहीं रखता सिवाय तकवा के। औरतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए और उनके साथ एहसन सलूक किया जाए। سود حرام ہے اور جاہلیت کی تمام رسومات ختم کی جاتی ہیں۔ اللہ کی عبادت اور قرآن و سنت پر عمل کی تلقین کی۔ اس موقع پر سورہ المائدہ کی آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا۔ کیا آیت اسلام کی تکمیل کی نوید تھی؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا، کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا؟ سب نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ حضرت الوداع کے بعد اب مدینہ واپس آیا۔ 11 ہجری 632 عیسوی میں آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ کو بخار ہوا جو کچھ دن جاری رہا۔ اس دوران آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں نماز کی امامت کا حکم دیا، جو خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ آخرکار 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ نے اس دار فانی سے رخصت لے لی۔ آپ کی وفات مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوئی۔ آپ کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر صحابہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صدمے سے انکار کرنے لگے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تاریخی کلمات کہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وفات پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ آپ کی تدفین مسجد نبوی کے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوئی، جہاں آپ آج بھی موجود ہیں۔ آپ کی وفات سے امت مسلمہ ایک عظیم رہنما سے محروم ہوئی، لیکن آپ کی تعلیمات اور سنت آج بھی زندہ ہیں۔ لسنرز، یہ تھا آج کا شو، اور آج ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک مختصر جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ میں امید بھی کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ کبھی تفصیلی طور پہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کام کرنے کا، آپ کے لیے کوئی شو لانے کا مجھے موقع ملے انشاءاللہ۔ آج ہمارے 10 Stories of the Prophet کا یہ جو سلسلہ تھا یہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے عنقریب ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔
1: نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی

0: दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करना एक्सीडेंट्स को रोकता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने में मदद देता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए कुछ जरूरी इकदाम जानिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल सेफली करें, मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करें, ज्यादा स्पीड पर ना चलें, रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहनें और स्कूटर की लाइट ऑन रखें, हमेशा हेलमेट ठीक तरह से पहनें। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या ई स्कूटर्स राइडर्स को अपनी और दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ई स्कूटर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बाईसाइकिल के बराबर हैं, जैसे राइडर्स का हेलमेट पहनना और फ्रंट और बैक पर लाइट्स लगाना। ई स्कूटर राइडर्स को रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहननी चाहिए जो दूसरे रोड यूजर्स को दिखाई दें। उन्हें रोड पर डेजिग्नेटेड जगह इस्तेमाल करनी चाहिए जो या तो साइड वॉक्स पर या रोड क्रॉसिंग के साइड्स पर हैं, जो पेडेस्ट्रियंस के लिए डेजिग्नेटेड होती हैं, बिल्कुल साइकिलिस्ट की तरह। याद रखिए, ई स्कूटर से होने वाले वायोलेशंस बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स की तरह ही होते हैं। अगर ई स्कूटर राइडर्स एक्सीडेंट का सबब बनता है तो वो दूसरी पार्टी को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार होगा। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिक प्लेसेस में पेट्स के लिए कुछ लॉज रखे हैं. जैसे डॉग्स को अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है और परमिटेड एरियाज में भी लीज्ड होना जरूरी है. इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें. डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशन हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं. ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है. अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं. अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें. ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल

FM 107 से आप पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।

अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुला रिज्क दे देता तो वो जमीन में सरकशी का तूफान बरपा कर देते, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और उन पर निगाह रखता है। वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद मीह बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही काबिल तारीफ वली है। उसकी निशानियों में से है जमीन और आसमानों की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं। वो जब चाहे उन्हें इकट्ठा कर सकता है। तुम लोगों पर जो मुसीबत भी आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, और बहुत से कसूरों से वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है। तुम जमीन में अपने खुदा को आजिज कर देने वाले नहीं हो, और अल्लाह के मुकाबले में तुम कोई हामियो नासिर नहीं रखते। उसकी निशानियों में से हैं ये जहाज जो समंदर में पहाड़ों की तरह नजर आते हैं। अल्लाह जब चाहे हवा को साकिन कर दे और ये समंदर की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाएं। उसमें बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो कमाल दर्जे सब्र और शुक्र करने वाला हो, या उन पर सवार होने वालों के बहुत से गुनाहों से दरगुजर करते हुए उनके चंद ही करतूतों की पादाश में उन्हें डबो दे। और उस वक्त हमारी आयात में झगड़े करने वालों को पता चल जाए कि उनके लिए कोई जाए पनाह नहीं है।

जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सरोसामान है, और जो कुछ अल्लाह के हां है वो बेहतर भी है और पायदार भी। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं, जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। हमने जो कुछ भी रिस्क उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जब उन पर ज्यादती की जाती है तो उसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला लें उनको मुलामत नहीं की जा सकती। मुलामत के मुस्तहक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक आजाब है। अलबत्ता जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये बड़ी उलुल अजमी के कामों में से है। जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे उसका कोई संभालने वाला अल्लाह के बाद नहीं है। तुम देखोगे कि ये जालिम जब आजाब देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की भी कोई सबील है, और तुम देखोगे कि ये जहन्नम के सामने जब लाए जाएंगे तो जिल्लत के मारे झुके जा रहे होंगे और उसको नजर बचा बचा कर कनंखियों से देखेंगे। उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए थे कहेंगे कि वाकई असल ज़ियाकार वही है जिन्होंने आज कयामत के दिन अपने आप को और अपने मुताल्लिकीन को खसारे में डाल दिया। खबरदार रहो, जालिम लोग मुस्तकिल आजाब में होंगे और उनके कोई हामी और सरपरस्त न होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में उनकी मदद को आए। जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसके लिए बचाव की कोई सबील नहीं।

हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके आयान सल्तनत के पास भेजा और उसने जाकर कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। फिर जब उसने हमारी निशानियां उनके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगे। हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़ कर थी और हमने उनको आजाब में धर लिया कि वो अपनी रविश से बाज आएं। हर आजाब के मौके पर वो कहते, ऐ साहिर, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है उसकी बिना पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जू ही कि हम उन पर से आजाब हटा देते वो अपनी बात से फिर जाते थे। एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, लोगो, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता मैं बेहतर हूं या ये शख्स जो जलील व हकीर है और अपनी बात भी खोल कर बयान नहीं कर सकता? क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता इसकी अर्दली में ना आया? उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने उसकी इताअत की। दरहकीकत वो थे ही फासिक लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उनको इकट्ठा गर्क कर दिया और बाद वालों के लिए पेश रौ और नमूना इबरत बना कर रख दिया।